नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है, उससे ठीक पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आपके आसपास के मंदिरों में अब आपको तैयारी दिखने लगी होगी। शहर शहर प्रसिद्ध मंदिरों से लेकर गली मोहल्लों तक के तमाम मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। तस्वीरें देखिए।

0: कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनुहार चंद्र वंश रोहिणी नखत दिन विशुद्ध बुधवार वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न राशि एक साथ जब शुभ ये संजोग बना प्रकट भये श्रीनाथ। कोई 5000 साल पहले कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की काल कोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। फिर क्या मथुरा, क्या गोकुल और क्या वृंदावन, यमुना की हर लहर से लेकर गोवर्धन पर्वत के शिखर तक ब्रज की रज रज कृष्णमय हो उठी। मथुरा में जहां आज कृष्ण जन्म स्थान माना जाता है, वह 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आज कन्हैया की ये जन्मभूमि एक बार फिर प्रकाश से जगमगा रही है। भगवान कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव से पहले पूरे मथुरा को सजाया जा रहा है। ये तो तमाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि मंदिर की बात निराली है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं हैं, वो की जा रही हैं। और वहीं उत्सव की बात की जाए तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 बजे के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है, वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
0: बताया गया है कि 5 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के दिन नए बने रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक हर बार की तरह इस बार भी विशेष आकर्षण रहने वाला है। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे भगवान कृष्ण की मंगला आरती होगी, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाअभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती होगी, जिसके बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा। फिर रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से 12:50 बजे तक होगी और शयन आरती रात 1:55 से 2 बजे तक होगी। इस मौके पर जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक चालू रहेगा। अगले दिन भी जन्माष्टमी के उत्सव और विशेष दर्शन का ये दौर जारी रहेगा।
1: दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है, वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराजकर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारीगण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: ब्रज के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। फिलहाल सारा ब्रज अपने लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटा है।
1: भगवान का जो उत्सव है ना, बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ, दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है कि जो भी यहाँ आए ठाकुर जी का जन्मोत्सव बनाने, वो एक अच्छा संदेश लेके जाए और भगवान के प्रति जो आस्था है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण, विश्वास और जो श्रद्धा है उसको लेके आए, वो उसकी श्रद्धा में कहीं कोई भाव अधूरा ना रहे। इसी को देखते हुए पूरे नगर को, पूरे ब्रजमंडल को अजन्मे के जन्म के लिए तैयार किया जा रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
3: अनोखा है ब्रज और उतने ही अनूठे हैं ब्रज के बाल गोपाल। कान्हा ने जहां ब्रज भूमि को अपनी बाल लीलाओं और रास के रंग का साक्षी बनाया, तो वहीं कुरुक्षेत्र की धरती उनके मुख से निकले गीता ज्ञान सागर की गवाह बनी। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं अद्भुत हैं। वह ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इंसानों की जिंदगी से जुड़े हर भाव और हर संवेदना को जिया है। श्री कृष्ण के जीवन में घटी घटनाओं में मानव जीवन के लिए वो तमाम संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें समझे जाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के ब्रज में बीते बाल्यकाल से लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत के रण तक उनके जीवन की कहानियां अंधेरे में बिखरी रोशनी की तरह हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तुएं जैसे मोरपंख, बांसुरी, दर्शन चक्र वगैरह, ये सभी अपने आप में कई सीख समेटे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबके पहले बात मोरपंख की। भगवान कृष्ण का मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं, जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, करुणा, रिश्ते आदि। अगर इन रंगों को सलीके और मर्यादा में रखा जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही तालमेल की। इसी तरह भगवान कृष्ण की बांसुरी भी सुंदर संदेश देती है। बांसुरी में 8 छेद होते हैं, ये जीवन का प्रतीक है। इसमें जो छेद हैं वो कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हो लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जिया जा सकता है। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे हुए है, ये भी आपको बता दें। वैसे तो ये हथियार है लेकिन नाम है सुदर्शन। सु प्लस दर्शन, यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उसका व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्तित्व सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। भगवान कृष्ण वैजयंती माला भी धारण करते हैं। कमल के फूल के बीजों से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं कि इंसान को हर तरह की परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, जीत तभी मिलती है। और अंत में बात बाल गोपाल के पसंदीदा माखन मिश्री की। माखन नर्म और एकदम पिघलने वाला होता है, जबकि मिश्री सख्त होती है लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव माखन की तरह नर्म और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन। लेकिन ये ब्रज का वृंदावन नहीं है बल्कि राजस्थान की धरती पर मौजूद गुप्त वृंदावन धाम है। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम मनाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। भगवान कृष्ण के लिए खास फूल बंगला झांकी तैयार हो रही है, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशालकाय पंडाल लगाया गया है। भगवान के लिए 108 प्रकार का विशेष भोग बन रहा है। गुप्त वृंदावन धाम में इस बार जन्माष्टमी पर 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में भक्तों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए दर्शन सुगम बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या खास होने वाला है जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, इस बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रीतम जैन।
4: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि 1 महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है जो भगवान का दरबार है सिर्फ उसका जो सजावट है वो की जाती है, पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मंदिर फूलों से सजेगा। फूल बंगला जो है वो उसको कहा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ जयपुर में मिलने वाले नहीं पर बाहर से भी कई सारे फूल हैं वो मंगवाए गए हैं। बहुत ही कलरफुल ये जो डेकोरेशन है ये यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की पोशाक की मैं बात करूँ तो पोशाक वृंदावन से आ रही है। खास पोशाक जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उनके जन्मोत्सव के लिए बनवाई जा रही है, जो कि वृंदावन से आ रही है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग रंगों के जो प्रॉप्स हैं वो रखे हुए हैं, जिनकी सजावट चल रही है। 2 दिन का समय अभी बच रहा है, जिन 2 दिनों में ये पूरी सजावट जो है वो की जाएगी।
3: अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के ही धौलपुर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी से पहले दिन रात कान्हा की पोशाकें बनाने का काम लगातार चल रहा है। धौलपुर जिले के 50 से ज्यादा कारखानों में कारीगर योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए पोशाकें तैयार कर रहे हैं। इन पोशाकों पर मोतियों, नग, शीशा और स्टोन से काम किया जा रहा है। इन कारखानों में ज्यादातर मुस्लिम कारीगर काम करते हैं। यहाँ साल भर भगवान के लिए पोशाकें बनाने का काम इसी तरह से चलता है। जन्माष्टमी पर्व और नवरात्रि में भगवान श्री कृष्ण, राधा और माता रानी की पोशाकों की खूब मांग होती है। ठाकुर जी और राधा के लिए तैयार की जाने वाली पोशाकों को मुस्लिम कारीगर हाथ से पूरी कढ़ाई की कारीगरी करते हैं और इसके बाद इन पोशाकों की कटाई और सिलाई की जाती है। कारीगर फिलहाल यहाँ राधा रानी के लिए आकर्षक लहंगा, ओढ़नी और पटुका बना रहे हैं। यहाँ से बनी पोशाक मथुरा वृंदावन से देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी के लिए भेजी जाती है। जन्माष्टमी से पहले हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहां जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है। और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग लिस्ट यहां पर चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
1: दिनों थोड़ा ठाकुर जी के देखो, सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी है तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं, तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
2: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है। बस
3: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं, जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो जन्माष्टमी की तैयारियां शहर शहर जोर शोर से चल ही रही हैं, बाजारों में खूब रौनक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग राज्यों के दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें। एक तस्वीर है झांसी की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। शुक्रवार को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले शहर के बाजार कान्हा की भक्ति के रंग में रंग गए हैं। बाजारों में जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। जन्माष्टमी पर घरों, मंदिरों, और विभिन्न स्थानों पर सजने वाली झांकियों और पंडालों के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी झालरें, आकर्षक लाइटें, फूल मालाएं, पर्दे, पालने, मुकुट, पगड़ी, बांसुरी, माखन मटकी, सिंहासन और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से जुड़ी तमाम सामग्री बिक रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के आगर मालवा से भी आई, जहां दुकानों पर भगवान के लिए रंग बिरंगी पोशाक, बांसुरी, झूले सब दिखाई दे रहे हैं। जन्माष्टमी तक बाजारों में ये रौनक यूं ही नजर आने वाली है। चलिए अब आपको कान्हा के मथुरा में सजे बाजारों की एक झलक भी दिखा देते हैं। यहाँ के हर गली बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी हैं और कृष्ण भक्त बड़े उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है।
1: इस तरह के गोपाल जी बाजार में सज के तैयार हैं और ये पोशाक का बाजार है। यहाँ पोशाक भी बिक रही है, ठाकुर जी के झूला भी बिक रहे हैं, गोपाल जी भी बिक रहे हैं, तो सभी चीज इस दुकान पर बिक रही है। और जो द्वारकाधीश मंदिर के पास का बाजार है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान की पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज में एक बड़ा ठाकुर जी का जो जन्म है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनोखे तरीके से मनाया जाता है। ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई जाएगी, नए उनके झूले होंगे, नए वस्त्र होंगे, नई बांसुरी होगी, नई मुकुट होगा।
0: बड़ी तादाद में ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है से दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। दावा ये भी है कि इनके पास लड्डू गोपाल के श्रृंगार से जुड़े सामान का जबरदस्त कलेक्शन है जो कृष्ण भक्तों को लुभा रहा है।
2: इस बार सब जो भी हैंडक्राफ्ट वर्क है, थ्री पीस में, ये सब स्टोन बूटी वाला सब बुटीक पीस इस बार ट्रेंड में बहुत काफी है। कस्टमर की भी काफी डिमांड है। रेगुलर पैटर्न पहना पहना के तो कस्टमर परेशान हो चुका है, तो उन्हीं की डिमांड देखते हुए हम ये सुंदर सुंदर कली के पैटर्न में और यूनिक यूनिक इंग्लिश कलर जो है, रेड पीला सब पहना चुके हैं। इसीलिए हम कस्टमर्स के लिए इस बार नए से नई वैरायटी लाने की हमने कोशिश की है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं हमारे स्टॉक में वेरिएशन, कितना सुंदर सुंदर कलर, कितना सुंदर सुंदर पगड़ी के साथ ये आपको अवेलेबल रहेगा। ये देखिए, ये तो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए हमने डिजाइन करवाया है विद लड्डू गोपाला विद मैचिंग पगड़ी।
0: दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे काना के लिए मोर पंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है, तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
3: होली की पूरी फूल तैयारी हो रही है। मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
1: कहीं नहीं होती,
3: नहीं होती, नहीं।
1: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब कुछ
3: जी जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे
1: सब मिल जाता है,
3: जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
1: नहीं है,
3: नहीं।
1: क्या क्या क्या नाम है आपका?
4: भावना।
1: क्या तैयारी कर रही
4: है? भैया ठाकुर जी की कर रहे जन्माष्टमी की। हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए, तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं बनती है। यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली, और यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीला है चाहिए भगवान ने। यहाँ की तो है ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक, नेत्र, मालाएं, ठाकुर जी, यहाँ की से कोई, यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
5: जो है मतलब जो कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारा जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और इन पोशाकों की बाहर का ऑर्डर भी है हमारे पास में, अपने और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो रात दिन मतलब जो कि हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
1: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है। और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहाँ सभी गुलजार हैं, लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र, नेत्र, ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
6: तो तैयार हो जाइए जन्माष्टमी के इस पर्व को जीएनटी संघ मनाने के लिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें और रंग लगातार आपको गुड न्यूज टुडे पर हम दिखाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अच्छे कपड़े जा रही है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
2: शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि को संपत्ति का फायदा होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन सी राशि के लोगों के घर में शुभ कार्य होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन से किनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी? शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली

0: राशि परिवर्तन से किस राशि को संपत्ति का फायदा होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन सी राशि के लोगों के घर में शुभ कार्य होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन से किनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी? शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, इस साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार। काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान। 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।

0: پوری دنیا تمہارے خلاف باتیں کر رہی ہو یا بول رہی ہو, افواہیں اڑا رہی ہو, تمہارے گھر کے تمہیں جینے نہ دے رہے ہوں, تمہارا جینا بڑا دشوار ہو گیا ہو, یا سوشل میڈیا دیکھ کر کے تمہارے من کو بہت برے برے خیال آ رہے ہوں اور اپنے خیالوں سے نہ بچ پا رہے ہوں, پوری دنیا کو تم چپ نہیں کرا سکتے. اور جو بھی پوری دنیا کو چپ کرانے کا اپائے کرے گا وہ ہمیشہ وفل ہوگا. تو پوری دنیا کے منہ بند کرانے سے بہتر ہے کہ اپنے کانوں کو بند کر لیا جائے. اور آپ اپنے کانوں کو بند کر لیں گے تو پوری دنیا کچھ بھی بولتی رہے کوئی فرق نہ پڑے گا. یہی وہ آتم شدھی کا شیور ہے کہ ہم پوری دنیا کو ٹھیک نہیں کریں گے. اس شیور کے مادھیم سے آپ کیول اپنے آپ کو ٹھیک کریے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو پوری دنیا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی. اور پوری دنیا نہ بھی ٹھیک ہو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تمہارے پریشان ہونے کا کارن ہی یہی ہے کہ تم سب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو خود کو چھوڑ کر. اور ہمارا راستہ یہی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ باقی کو چھوڑ دو. انہیں جب یہ بات سمجھ آئے گی وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے. ہم سب کا من ٹھیک کراتے ہیں, خود کا من ٹھیک نہیں کراتے. اس لیے اس آتم شدھی شیور میں آپ کو بلایا ہی اس لیے گیا کہ آپ دیش کا بھوشیہ ہیں, آپ دیش کا نیتتو کریں گے. اور آنے والے دنوں میں جب پوری دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مادھیم سے, اے آئی کے مادھیم سے, چیٹ جی پی ٹی کے مادھیم سے پورن آوشکار کرے گی. کل ہی ابھی کسی دنیا کے اے آئی کے سب سے بڑے ویکتی نے ایک بیان دیا, ایلون مسک نے, اس نے کہا کہ ایک سال بعد اے آئی اتنی ایکٹیویٹ ہو جائے گی, اتنے اچھے موڑ پر پہنچ جائے گی کہ یہ مہا مانو جیسا کام کرے گی. مہا مانو مطلب پورن وکست منشیہ جیسا کام کرے گی. ایسا ان کا کل کا بیان تھا. بہت لوگوں نے طرح طرح کی پرتکریائیں دی اس پر, طرح طرح کی باتیں کی, اس سے پھر منشیتا پر بڑا دشپربھاؤ پڑے گا, لوگوں کے ورک چھوٹ جائیں گے, جاب چھوٹ جائے گی, بڑا ڈرایا گیا. ہم اس کے وپریت, اس ڈر سے ہم وپریت. ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ کسی کی جاب چھوٹے گی یا بے روزگار ہوگی پوری دنیا. ایسا ہمارا بالکل بھی ماننا نہیں. اے آئی سے اور آدمی فری ہوگا, کیونکہ اصلی میں زندگی ایک بات تمہیں یاد رکھنی جیسی ہوگی کہ جب تک تم کام کرو گے تب تک تم اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, آدمی کو کام سے فری ہونا چاہیے تاکہ وہ موکش کے لیے بھی تو کچھ بچار کر سکے, اپنے لیے بھی تو کچھ بچار کر سکے. تو جس دن اے آئی پورن روپ سے ڈیولپ ہوگی, سچ مانا جائے منشیتا کے یگ کا, اصلیت میں, سچائی میں, اصلی دن اسی دن پرارمبھ ہوگا جس دن آدمی کا مائنڈ فری ہو جائے گا. پہلے آدمی کیول شریر سے کام کرتا تھا, طاقت سے, جب مشینیں نہیں تھیں, کنواں کھودنا, بڑے بڑے پہاڑ کاٹنا, بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا, صرف مزدوروں سے کام ہوتا تھا, مزدور شریر سے ہی کام ہوتا تھا, شریر کام کرتا تھا, برین کا کوئی کام تھا بھی نہیں. اور جو تھوڑا موڑا برین کا کام کرتے تھے, بدھی سے کام کرتے تھے, انہیں بدھی مان مانا جاتا تھا. دھیرے دھیرے سمے بدلا, برین نے جب کام کرنا شروع کیا تو مشینیں بنائی گئی, مشینیں بنائی گئی تو شریر کے کام کم ہو گئے, شریر کا کام کم ہو گیا. اب جو کھدائی کئی مہینوں میں ہوتی تھی وہ کئی گھنٹوں میں جے سی بی کرنے لگی, برین سے جے سی بی چلنے لگی کہ کیسے چلانا ہے. تو جب مشینری یوگ آیا تھا تب بھی لوگوں نے ورودھ کیا تھا, مزدوروں نے, کہ ہم لوگوں کی پیٹ پر لات لگے گی, کوئی مزدوری نہیں کروائے گا, بھوکے مر جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, افواہیں پھیلائی گئی تھی. پر ایسا نہیں ہوا, لوگوں نے جے سی بی چلانا سیکھا, نئے نئے آپریٹر بنے, جے سی بی کے پارٹس بیچنے والے بنے, انجینئر بنے, ورک شاپ کھولے گئے اور دوسرے راستے چنے گئے. مشینری یگ آیا تو شریر کا کام خالی ہو گیا, شریر ایک دم فری ہو گیا. پھر آدمی فٹنس پہ کام کرنے لگا, ہیلتھ پر کام کرنے لگا, باڈی ڈیٹاکس پر کام کرنے لگا. اب مشینری یگ کے بعد ایک نیا یگ آیا, اے آئی کا. تو مشین کا کام برین سے ہوتا تھا, پہلے طاقت کا کام شریر سے ہوتا تھا, پھر شریر کا کام برین سے ہوتا تھا مشینری یگ میں. اب اے آئی کے آنے کے بعد اب برین بھی آپ کا فری ہو جائے گا. جب آپ کا برین فری ہو جائے گا तो सच में आपके पास कोई काम बचेगा नहीं, ऐसा है नहीं। आप कुछ ना कुछ नया रास्ता तो चुन ही लेंगे, नया रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन असलियत में जब आपका ब्रेन का काम फ्री हो जाएगा तो आपके पास एक नया रास्ता बचेगा, मनुष्यता का, आनंद का, मोक्ष का, जीवन जीने का। और उसमें भी फिर जब आपका ब्रेन फ्री हो जाएगा तब आप नया आविष्कार के बारे में सोच पाएंगे कि और क्या नया किया जा सकता है दुनिया के लिए। अभी हम पिछले दिनों जब जापान गए थे तो जापान में हमने वहां के दार्शनिक को पढ़ा, एकाकू को, हाकुइन एकाकू को, तो उसने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि मैं जब चाय पीता हूं तो सिर्फ चाय पीता हूं, मैं जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, मैं जब खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, मैं जब बैठता हूं तो सिर्फ बैठता हूं। आपको भी 3 दिन में यही करना है कि केवल एक समय में एक ही काम करना है, 2 काम नहीं करना है। आप जब जो कर रहे हैं सिर्फ आपको वही करना है। इन 3 दिनों में ये पहला ध्यान रखना, ना आपको पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है, आप जहां हैं वहीं 3 दिन में रहना, वर्तमान में रहना, और वर्तमान में आनंद के साथ रहना, एकदम पागलों की तरह, जैसे पागल रहते बेफिक्र। 3 दिन बाद घर का जिक्र ठीक है, इन 3 दिन में आप बेफिक्र रहना कि जो लुटता हो लुट जाए, जो डूबता हो डूब जाए। और तुम कर भी क्या सकते हो, मान लो परमात्मा रूठ जाए, एकदम से भूकंप आ जाए, पूरी पृथ्वी उल्टा दे, तो क्या तुम भूकंप रोक दोगे? ऐसा तो तुम कर नहीं सकते हो। इसलिए कर भी क्या सकते हो, जो जहां होना जैसा है तो वो हो जाने देना, जो चल रहा होगा सो चलने देना। तुम बहुत 3 दिन तक बेफिक्र रहना। तो पहला तुम्हें जो ध्यान रखना है इन 3 दिनों में, वो पहला ये गुण रखना है कि आपको वर्तमान में जीना है, कोई बोझ लेके नहीं जीना, कोई दिमाग पे प्रेशर भी मत देना, कोई ताकत भी मत लगाना। कई बार आप ये भी मत सोचना कि ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटा उपाय है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसी से ही पूरा फर्क पड़ना। एक बात आपको ध्यान रखने जैसा है कि जो बहुत छोटा है वही बहुत काम की बात है, यही बहुत काम की बात है। तो पहला गुण, पहला नियम आपको यही 3 दिन रखना है कि आपको वर्तमान में जीना है। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएंगे, बहुत आनंद के साथ खाएंगे। जब आप सोएंगे तो सिर्फ सोएंगे। और बात यदि आप माने हमारी, तो इन 3 दिनों में, क्योंकि हम सेल फोन तो जमा नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपकी भी व्यवस्था नहीं होगी, हमारी भी सुरक्षा की व्यवस्था इतनी नहीं हो पाएगी, तो हो सके तो इन 3 दिनों में आप मोबाइल बहुत कम उपयोग करें, मुश्किल से 1 घंटा, 24 घंटे में इतनी कोशिश आप करें कि 3 दिन में आप मोबाइल बहुत कम उपयोग करें, सिर्फ 1 घंटा। नहीं तो फिर ब्रेन डिटॉक्स नहीं हो पाएगा, उल्टा और वो वहां का कचरा तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा, और यहां तुम साफ करते जाओ, फिर घर जाओगे तो बराबर के बराबर, जैसे घर से आए थे वहीं यहां से जाओगे। लोग, घर वाले पूछेंगे कुछ हुआ, बोले हुआ तो है, जो वहां कचरा आता रहा दिमाग में वो साफ हुआ है। तो घर वाले पूछेंगे जो घर से कचरा ले गए थे वो साफ हुआ, वो नहीं हो पाया। ऐसे आपको फिर कई से बड़े लग जाएंगे, तब भी आपका ब्रेन साफ ना हो पाएगा, माइंड डिटॉक्स ना हो पाएगा। तो 24 घंटे में आपको एक बार 20-30 मिनट दिन में और 20-30 मिनट शाम को, कोई जरूरी काम के लिए, कोई आपको बात करनी है, कोई आवश्यकता है, तो इन 3 दिन में आप इतनी कोशिश करना है कि आपको मोबाइल बहुत कम चलाना है। और तीसरी बात, इन 3 दिन में आपको सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है। एक्टिव का मतलब आपको कुछ दौड़ भाग नहीं करनी है कि आप पुशअप करने लगो, डंबल उठाने लगो, ऐसा कुछ भी नहीं आपको करना है। सक्रिय का मतलब जो भी हो रहा, वैसे आप धाम से थोड़ा दूर हो, यहाँ से गौशाला भी पास में है, पहाड़ी भी पास में है, किनारा भी पास में, बैठना है आपको, आपस में भी बैठना है, तो थोड़ा कम बोलें, कम बात करें, प्रकृति के पास ज़्यादा बैठें, नेचर से ज़्यादा बात करें। अभी तक आप सबसे बातें करते रहे, दुनिया से बातें करते रहे, मीटिंग करते रहे, व्हाट्सएप पर बातें की आपने, इंस्टाग्राम पर बहुत बातें की, अब इन 3 दिनों में आपको खुद से बातें करनी है। इतना ध्यान रखना है आपको कि 3 दिन में आपको बहुत मौन रहना है, जितना कम बोलें इशारों में काम चले, इशारों में आपको काम करना होगा, वरना कुछ आप ठीक से रिजल्ट 3 दिन बाद ले नहीं पाएंगे। यदि आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आपको ये तीसरी कोशिश करनी है कि बहुत कम बोलना है। चौथी बात, जीवन में एक बात आपको याद रखना है कि एक सही निर्णय व्यक्ति को बदल देता है, एक सही सोच व्यक्ति को बदल देती, एक सही रास्ता व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देता है। आपका रास्ता बेहतर हो फिर चलते जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपका रास्ता गलत हो तो कितनी भी मेहनत करो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, और बाद में फिर यही होगा कि परिणाम ठीक नहीं निकला। ज्यादातर दुनिया के लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो मेहनत बहुत करते हैं पहुंचते नहीं, क्योंकि रास्ते गलत होते। शोर बाहर है, शांति अंदर है। शांति बाहर है ही नहीं, आनंद बाहर है ही नहीं। जिस सुख की खोज में आज पूरे देश का युवा, पूरी दुनिया का व्यक्ति बाहर खोज रहा, आप आनंद लूटने के लिए, मजे लेने के लिए, सुख पाने के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या यूट्यूब आदि आदि प्लेटफॉर्म पर जाकर के खोज रहे हो कोई अपना, कोई अपना मिल जाए, कुछ बेहतरीन जानकारी मिल जाए, कुछ बेहतर देखने को मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, सब मोबाइल पे मिल जाए, ऐसी खोज में जो आप जा रहे हो वो सच में वो वहां है नहीं, वो आपके अंदर है, आपके पास है, वहां कभी आप गए नहीं। इसलिए आपको ये बड़ी कोशिश करनी है एक बात समझने की कि सच्ची शांति आपके अंदर है, सच्चा सुख आपके अंदर है। उसको आपने यदि समझ लिया तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आपके आ जाए, जीवन में कितनी भी विकराल स्थिति आपके सामने प्रकट हो जाए, वो आपको डिगा नहीं सकती, आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकती, आपके मन को हीन नहीं कर सकती। इसलिए एक नियम आप अपने जीवन में बनाओ, शिकायत मत करो, सामना करो हर परिस्थिति का। शिकायत करने से आप कभी सफल नहीं हो सकते, सामना करने से ही आप सफल हो सकते। और जो भी है उसे पीछे छोड़ो, जो बीता है उसे पीछे छोड़ो। भगवान कृष्ण से कर्ण ने शिकायत की कि मैंने ऐसा भला क्या किया, ऐसा मेरा कौन सा अपराध था, मेरा जो जन्म हुआ वो बड़े अपमान में हुआ, मुझे श्राप भी गुरु का मिला, जन्म के बाद मुझे अपनों ने छोड़ा, इतना अन्याय मेरे साथ हुआ क्यों। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जन्म तो मेरा भी विचित्र हुआ, जेल में हुआ, अपनों को मुझे भी छोड़ना पड़ा, माँ बाप को रात में ही छोड़ना पड़ा, बचपन में मारने के लिए पूतना को भेजा गया, तृणावर्त को भेजा गया, संकटासुर को भेजा गया, फिर भी मैंने शिकायत नहीं की, सामना किया, इसलिए मैं कृष्ण हूं तुम कर्ण हो। यही तुम्हारी जिंदगी का हाल है, तुम शिकायत करोगे तो कर्ण बन जाओगे, और सामना करोगे, मुस्कुराओगे तो कृष्ण बन जाओगे। आप अपने अंदर के अध्यात्म को कमजोर नहीं, इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ। और बुरा ना मानना, अंदर की शांति पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए ना हिमालय की आवश्यकता है, ना किसी गुफा की आवश्यकता है। और हमारे सनातन का अध्यात्म इतना कमजोर नहीं है कि आपको हिमालय जाना पड़े या आपको गुफा में जाना पड़े। इतना मजबूत है हमारा अध्यात्म कि ये शोर में शांति खोज लेता और बाजार में आराम खोज लेता है, इतना ताकतवर है अध्यात्म। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और तैयारी में सिर्फ एक ही बात, बाहर नहीं अंदर। तो जब आप 3 दिन का ये 5 स्टेप का शिविर करेंगे, कुछ देर बाद जब चालू होगा, उसमें बुद्धि नहीं लगाना है। आपने बुद्धि लगाई तो ब्रेन डिटॉक्स ना होगा, उल्टा ब्रेन में और ख्याल आए, ये करने से ऐसा तो हमने ऐसा सुना था, फिर इसको हमने ऐसा देखा था, फिर ऐसा करने से क्या होगा, इसका क्या फर्क, जरा चेक कर लें क्या फर्क होता है, अच्छा देखते हैं हमारा ब्रेन डिटॉक्स होता भी है कि नहीं होता है, अच्छा हम देख रहे हैं, अच्छा मन हल्का हुआ कि नहीं हुआ, लग नहीं रहा है कि हुआ है, थोड़ा तो लग रहा है कि हुआ। आप ये करते रहोगे तो उल्टा और भरता जाएगा, और 3 दिन बाद आप एकदम निराश जाएंगे, इतने निराश जाएंगे कि आप जो बड़े बड़े सपने देख करके आए, बड़े बड़े ख्वाब देख करके आए, बड़ी बड़ी इमेज बना करके आए, बड़े बड़े आप विचार करके आए हैं, वो आपको ठीक उल्टे मिलते जाएंगे। फिर अभी थोड़ा आपका ऐसा डीमोटिवेट होगा, फिर थोड़ी देर में आपको चाय में धक्का मुक्की लगेगी तो और दिमाग खराब होगा, फिर आपको थोड़ी देर में भोजन में थोड़ा सा एक आध कंकड़ वंकड़ आ जाएगा तो और दिमाग खराब होगा, इससे अच्छा तो घर पर ही रहते, काय को 3 दिन बर्बाद कर लिए।
1: और 3 दिन बर्बाद हुए सो ठीक है, यहाँ पर आकर के कुछ हुआ भी नहीं ये और बेफिजुली में, इससे अच्छा तो 3 दिन जाकर के किसी गुफा में बैठ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाद में आपके ये ख्याल आया था, तो इससे अच्छा ब्रेन डिटॉक्स होने की वजह वायरस भर जाएंगे। तो इस 3 दिन के सेवन में आपको ये सोचना ही नहीं, ये पहले सोचना है कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये सोचना है, ये आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ये आपको सोचना है। एक बात तुम याद रखना अपनी जिंदगी में मेरे पागलो, ना मोटिवेशन काम आता है, ना इंस्पिरेशन काम आता है, जीवन में काम आता है तो रियलाइजेशन काम आता है। आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, कितने भी आप, और मोटिवेशनल स्पीच हमेशा याद रखना 2-4 दिन बड़ा जोश चढ़ता, 6 बजे ही उठेंगे, 2-4 दिन बहुत काम आती है मोटिवेशनल बातें, और 2-4 दिन बाद वो एकदम फुर। तो ना मोटिवेशन बातें काम आती हैं, ना इंस्पिरेशन कहते हैं, हमारी अंग्रेजी तो ठीक जा रही ना, तो कि वो भी काम नहीं आती, वो किसी को देख करके भी 1-2 घंटे हाँ वो उसके जैसा हमें बनना है, उसके जैसा हमें होना है। तो ना मोटिवेशन बातें काम आती हैं, ना इंस्पिरेशन बातें काम आती हैं, जिंदगी में जो भी काम आता है और जो भी सफलता दिलाता है, तुम भी जहां बैठो यदि हमारी जगह बैठना चाहते हो तो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के मार्ग पर मत चलो, चलना है तो रियलाइजेशन के मार्ग पर चलो, तो आप पहुंच जाओगे बोध के मार्ग पर। आपके अंदर यदि वो बोध आ गया, आप अंदर से अनुभव वो कर पाए, तो आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे, आप मंजिल तय कर पाएंगे। और हम चाहते भी हैं कि आप हमारे जैसे हंसो, हर विपरीत परिस्थिति में हमारे जैसे ठहाका लगाओ। 2 दिन अभी हम पे बुखार चढ़ा रहा, आज हम बुखार पे चढ़ गए, इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसी को जलवा कहते हैं। जो बुखार हम पे चढ़ा रहा हो 104.5 उसके ऊपर तुम चढ़ जाओ, इससे बड़ा जलवा क्या हो सकता जिंदगी। लेकिन वो तभी हो सकता जब आपके पास रियलाइजेशन हो, बोध हो, क्योंकि पता है कि इसकी ये गतिविधि है, इसे ये करना है, तो तुम्हें कोई दुनिया में मोटिवेट करेगा। एक बात और याद रखना, खासकर हमारे शिष्य, हमसे जुड़े हुए लोग, यदि तुमको कोई भी व्यक्ति अपनी बातों से मोटिवेट कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें डीमोटिवेट भी करवा सकता है। आप किसी की बातों से प्रभावित हो सकते तो किसी की बातों से डीमोटिवेट भी हो सकते, आप प्रभावित भी हो सकते, बल्कि होना यह चाहिए कि किसी की कोई भी बात है तुम प्रभावित कर सको, वो तुम्हें प्रभावित ना कर पाए। ऐसा हुआ भी एक घटना, इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे आज के सत्र को। एक कुआं में मेढकों का बड़ा बाजार लगा था, मेढक रहते थे बाजार का, एक मेढक रहते थे बड़ा पूरा खानदान कुनवा, गांव का गांव बसा था मेढकों का, तरह तरह की वैरायटी के मेढक थे, पुराने मेढक थे, नए मेढक थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। बहुत पुराना कुआं था राजाओं के जमाने का, तो उसमें एक लोहे की छड़ी लगी हुई थी, उस लोहे की छड़ी बड़ी चिकनी थी, लोहे का पाइप था, और कई सदियों से, कई सालों से मेंढकों की पूरी टीम एक स्पेशल दिन बाहर निकलती थी अपने अपने गुफाओं से, अपने अपने मकानों से, सबके मकान थे, फ्लैट, किसी का फ्लैट था जो पुराना था, उनके पास में फार्म हाउस थे थोड़ी बड़ी गुफा वाले, वो फार्म।
2: शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि को संपत्ति का फायदा होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन सी राशि के लोगों के घर में शुभ कार्य होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन से किनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी? शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कान्हा की नगरी में दिखने लगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, आज निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा, 250 कलाकार।

0: जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति रैप पर जमकर झूमे युवा, झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में प्रेरणा युवा महोत्सव का छाया रंग। नेपाल के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बढ़ाया हाथ, जरूरतमंदों के लिए भेजी 4 ट्रक राहत सामग्री। वायुसेना ने देश में विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खंगतक 243 का परीक्षण किया, टेस्ट में सभी मानकों पर उतरा खरा। भारत में होगी पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का ऐलान किया, अगले साल 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सजाया जा रहा है बद्रीनाथ मंदिर, मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर भी की गई है सजावट। फूलों की जगह इस रंग बिरंगी लाइटों से की जा रही है मंदिर की सजावट, रास्तों पर भी की जा रही है सजावट। रंग बिरंगी लाइटों की सजावट से जगमग हुआ भगवान बद्री विशाल का धाम, रात के अंधेरे में दूर तक दिख रही है मंदिर की भव्यता। मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर भी की गई है विशेष लाइटिंग, 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर रात में भी खुले रहते हैं भगवान बद्रीनाथ के कपाट। लड्डू गोपाल के जन्म के बाद भगवान बद्री विशाल को लगाया जाता है भोग, फिर की जाती है शयन आरती। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्कोन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी, कृष्ण जन्मोत्सव के लिए की जा रही है मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए हैं इंतजाम, मंदिर की सड़क का एक लेन किया गया है बंद। जन्माष्टमी के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन के लिए लगाए गए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ हथियारबंद जवान भी रहेंगे तैनात। बाबा विश्वनाथ धाम काशी से मथुरा भेजे गए विशेष उपहार, जन्माष्टमी के लिए भगवान लड्डू गोपाल के लिए भेजी गई विशेष उपहार सामग्री। बाबा विश्वनाथ के सामने विधि विधान से पूजन के बाद रवाना की गई उपहार भेंट सामग्री, काशी मथुरा के बीच 2 साल पहले 2024 से शुरू हुई थी ये परंपरा। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, मंदिर में इस बार लोटस थीम पर मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का होगा विशेष श्रृंगार, मंदिर ने भगवान कृष्ण के लिए वृंदावन से तैयार किया कराई स्पेशल ड्रेस। भगवान लीलाधर के गर्भगृह के श्रृंगार के लिए देश भर के साथ सिंगापुर और मलेशिया से भी मंगाए गए हैं फूल। 56 भोग के साथ साथ देश विदेश के 600 से ज्यादा व्यंजनों का लगाया जाएगा भोग, जन्माष्टमी के दिन रात 2 बजे तक कान्हा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार विशेष ड्रोन शो और 7 मिनट के लाइट और साउंड शो की भी तैयारी की गई। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी जारी, वृंदावन से मंगाए गए फूलों से की जा रही है मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के भोग अर्पित करने की तैयारी, 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद को किया जा रहा है इंतजाम, 100 किलो का बनाया जा रहा है केक। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के लिए तैयार की जा रही है विशेष ड्रेस, पिछले 1 महीने से पोशाक तैयार करने में जुटे हैं मंदिर के श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को बारिश

0: बचाने के लिए भी किए जा रहे हैं खास इंतजाम। जन्माष्टमी के दिन के लिए लगाए जा रहे हैं वाटरप्रूफ पंडाल। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी किए जा रहे हैं इंतजाम। महिला श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे हैं पिंक बूथ। राजस्थान के जैसलमेर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। जैसलमेर में स्थित दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों में जबरदस्त रौनक। मंदिर पैलेस में स्थित गिरधारी जी मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जारी। मंदिर में गाए जा रहे हैं श्री कृष्ण से जुड़े गीत। कान्हा के जन्मोत्सव से पहले मंदिरों में बढ़ी रौनक। मेवों से बने खूबसूरत हिंडोले में ठाकुर जी को जला रहे हैं श्रद्धालु। कृष्णमय हुआ शहर का माहौल। मंदिर में भजन गाते हुए दिखे श्रद्धालु। आरती में शामिल हुई महिलाएं। मान्यता है कि अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी पर सुदर्शन चक्र से खोता था कुआं। अयोध्या में विधि विधान से पूजन और सरयू स्नान के बाद पहली बार वृंदावन की सुदामा कुटी लाई गई है श्री कृष्ण रजत संकल्प शिला। विशेष रथ से हुआ आगमन। सुदामा कुटी में नाभा पीठाधीश्वर जगत गुरु सुतीक्षित दास महाराज ने सानिध्य में संतों ने रजत शिला का भव्य स्वागत किया। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। संकल्प शिला के आगमन पर भक्तिमय हुआ माहौल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाएगा संकल्प शिला का सहस्त्र धारा अभिषेक। वडोदरा के करोली बाग में इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का निर्माण। लगभग 82 किलो नाडा छड़ी की इस्तेमाल से तैयार की गई है ये प्रतिमा। इसके निर्माण में आई है करीब 16,700 रुपए की लागत। पिछले 10 सालों से पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव मना रहा है वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश मंडल। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल देखने को मिला। दही हांडी फोड़ने के लिए कर रही हैं जबरदस्त तैयारी। कई स्तर के मानव पिरामिड बनाने की चल रही है प्रैक्टिस। मुंबई और ठाणे में होती है बड़ी दही हांडी प्रतियोगिताएं जहां रखे जाते हैं लाखों रुपए के नकद पुरस्कार। देश भर में विघ्नहर्ता के आगमन की तैयारी तेज। कर्नाटक के रामनगर में बनाई जा रही हैं बप्पा की अलग अलग स्वरूपों और आकार की प्रतिमाएं। प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी गोबर और प्राकृतिक रंगों से हो रहा है मूर्ति का निर्माण। पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहद सराहनीय पहल है। गणपति के श्रृंगार के लिए प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा है इस्तेमाल। बारीक नक्काशी से हो रही है सजावट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ। करगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव। इससे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की निभा रहे थे जिम्मेदारी। अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य। मंदिर मामले में सुनवाई में निभाई थी अहम भूमिका। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल 3 सदस्यों में महेश भागचंद का भी शामिल। तो वहीं 2020 में मंदिर के भूमि पूजन में बनाए गए थे मुख्य यजमान। शिक्षाविद डॉक्टर निर्मला यादव भी बनाई गई राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य। ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य बनी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखे स्थानीय संस्कृति के रंग। 15 साल बाद धूमधाम से निकाली जा रही है मां काली की देवरा यात्रा। केदार घाटी में गांव गांव पहुंचकर श्रद्धालुओं को आशीष दे रही हैं मां काली। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। यात्रा टोली पर की जा रही है पुष्प वर्षा। केदार घाटी में लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं मां काली का स्वागत। महिलाएं गा रही हैं मंगल गीत, गांव गांव गूंज रहा था काली का जयकारा। केदार घाटी की शक्ति और करोड़ों भक्तों की आराध्य हैं मां काली। 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करेंगी मां काली। परंपरा के साथ साथ इलाके की सदियों पुरानी संस्कृति और लोक विश्वास का प्रतीक है ये यात्रा। मां काली की यात्रा को लेकर केदार घाटी में उत्सव का माहौल है। बाबा केदार के भक्तों के लिए राहत की खबर, बारिश थमने के बाद मौसम साफ हुआ, शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला। तिरुचेंदूर स्थित प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में अवनी उत्सव की शुरुआत हुई। 12 दिन चलेगा यह धार्मिक उत्सव। तमिल महीने अवनी यानी कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है ये उत्सव। पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ होती है अवनी उत्सव की शुरुआत। विशेष विश्व रूप दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़ते हैं भक्त। उत्सव में भाग लेने के लिए तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में बड़ी संख्या में थूथुकुड़ी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष अनुष्ठान और जुलूस की तैयारियां पूरी हुई। 4 सितंबर को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च करेगा इसरो। आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा होगी और भी बेहतर। दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय को विभागीय सम्मेलन का आयोजन, तो वहीं पीएम मोदी भी शामिल हुए। पीएम ने जल सुरक्षा को संदेश को देश और धरती के लिए जरूरी बताया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। सीएम शिवेंदु अधिकारी ने कफ के प्रतिबंधित सिरप की शीशियों पर चलाया रोड रोलर। गोरखपुर एम्स में शुरू हो सकती है एयर एम्बुलेंस सेवा। इस महीने के अंत तक तैयार हो सकता है गोरखपुर एम्स का हेलीपैड। एयर एम्बुलेंस के लैंडिंग के मानदंडों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है हेलीपैड। एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से मरीजों के लिए होगी सुविधा। पांच सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 48 स्कूली शिक्षकों, 21 उच्च शिक्षा के शिक्षकों और MoSDE के 13 शिक्षकों को मिलेगा अवार्ड। यूपी के मथुरा इलाके को मिली 1051 करोड़ की लागत से तैयार 229 विकास योजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। इस महीने शुरू हो सकती है बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन। कलीना अग्रहारा से तवरेकेरे के तक चलेगी ट्रेन, तो वहीं यात्रियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। डेंगू और चिकनगुनिया से राहत के लिए IIT कानपुर में मच्छरों पर रिसर्च, मच्छरों के दिमाग और सूंघने की क्षमता पर शोध। 100 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद में रेलवे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन को देखने का मिला मौका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि को संपत्ति का फायदा होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन सी राशि के लोगों के घर में शुभ कार्य होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन से किनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी? शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शुक्र देव अपनी राशि बदल चुके हैं और आज हम ये जानेंगे कि शुक्र देव के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। अब जान लेते हैं दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देव के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है? देखिए, शुक्र अभी तक कन्या राशि में विद्यमान थे। अब 2 सितंबर को दोपहर में तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा है शुक्र के राशि परिवर्तन के समय और अष्टम भाव में मंगल विद्यमान हैं। शुक्र और चंद्रमा का संबंध भी बना हुआ है। इस समय रिश्तों को लेकर के सावधानी रखनी होगी। आर्थिक बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा और कीमती धातुओं का मूल्य नीचे की तरफ जा सकता है, उसमें भी उतार चढ़ाव आ सकता है। यानी शुक्र का ये राशि परिवर्तन रिश्तों के मामले में और फाइनेंशियल कंडीशन में जबरदस्त प्रभाव पैदा करेगा और वो प्रभाव हम सबको अपने जीवन में दिखाई देगा। शुक्र के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि जो अलग अलग राशियां हैं उन राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों को पारिवारिक समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। वृषभ राशि, इस समय सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के मामले में और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। कर्क राशि, धन वस्त्र और संपत्ति की प्राप्ति होगी। सिंह राशि,
करियर और आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन जाएंगे। तुला राशि, करियर, परिवार और जीवन की मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। वृश्चिक राशि, जीवन में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मकर राशि, मानसिक और पारिवारिक अशांति हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। कुंभ राशि, धन, उपहार और समृद्धि का लाभ आपको मिलेगा। मीन राशि, लोगों से प्रेम और सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। शुक्र के राशि परिवर्तन पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपने ये तो जान लिया कि 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर शुक्र का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है, लाभकारी नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? सामान्यतः शुक्र का राशि परिवर्तन सबके लिए अनुकूल है, फायदेमंद है, लेकिन मेष, वृषभ और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन अनुकूल नहीं है। इनको नियमित रूप से श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। नियमित रूप से सफेद मिठाई का दान करना चाहिए और इस समय सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लाभ होगा। शुक्र का ये राशि परिवर्तन लोगों के रिश्तों पर, विवाह पर और वैवाहिक जीवन पर गहरा असर डालेगा। जो लोग शनि प्रधान हैं, उनकी शादियां तय हो सकती हैं, उनको प्रेम संबंध में लाभ हो सकता है, रिश्तों की समस्या हल हो सकती है। और जो लोग बृहस्पति प्रधान हैं, उन्हें धन का, संपत्ति का और समृद्धि का लाभ हो सकता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है। तो अलग अलग स्थितियों के हिसाब से शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और सबके लिए अच्छा ही है। केवल मेष, वृषभ और मकर वालों को अपना ध्यान रखने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी केस में या मुकदमे में फंसे हुए हैं,
तो हर रविवार को भगवान काल भैरव की अगर उपासना करें तो केस और मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: कान्हा की नगरी में दिखने लगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, आज निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा, 250 कलाकार शामिल होंगे। भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव पर सजे देश भर के बाजार, लड्डू गोपाल के लिए खरीदारी में जुटे लोग। जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति रैप पर जमकर झूमे युवा, झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में प्रेरणा युवा महोत्सव का छाया रंग। नेपाल के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बढ़ाया हाथ, जरूरतमंदों के लिए भेजी 4 ट्रक राहत सामग्री। वायुसेना ने देश में विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खंगतक 243 का परीक्षण किया, टेस्ट में सभी मानकों पर खरा उतरा। भारत में होगी पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी, ICC ने वेन्यू और तारीख का ऐलान किया, अगले साल 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ विस्तार से क्या चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का हमारा विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र अपनी राशि परिवर्तन चूंकि कर चुके हैं, लेकिन इस सब का हमारी और आपकी तमाम राशियों पर किस तरह का असर पड़ेगा और उससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, पंडित जी इसके बारे में तमाम जानकारियां हमसे साझा करेंगे, उपाय के बारे में भी बताएंगे, महा उपाय के बारे में जानेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
5: अगर आप अपने संतान की, अपने बेटे की, बेटी की उन्नति चाहते हैं तो अपने आहार, विचार और व्यवहार को सात्विक रखिए। माता पिता के कर्म भी संतानों को भुगतने पड़ते हैं, इसलिए संतान हो जाने के बाद अपने आहार, विचार और व्यवहार को सात्विक बनाए रखना चाहिए।
4: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 3 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
5: दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:25 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा जीरा खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। तमाम सवाल पंडित जी से हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है कि शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, आखिर ये मामला क्या है, क्या होता है शुक्र का राशि परिवर्तन?
5: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि शुक्र देव अपनी राशि बदल चुके हैं। शुक्र देव के राशि बदलने का क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, शुक्र देव अभी तक कन्या राशि में विद्यमान थे। अब 2 सितंबर को दोपहर में तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन के समय वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा है और शुक्र के राशि परिवर्तन के समय अष्टम भाव में मंगल विद्यमान हैं। शुक्र और चंद्र का संबंध भी राशि परिवर्तन के समय में बना हुआ है। अब शुक्र के राशि परिवर्तन से रिश्तों में थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इसलिए इस समय रिश्तों को लेकर सावधानी रखनी पड़ेगी। जो फाइनेंशियल मार्केट है, आर्थिक बाजार है, वहां थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और कीमती धातुओं का मूल्य नीचे की तरफ जा सकता है, वहां भी उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। किसी कीमती धातु का मूल्य ऊपर जा सकता है और किसी कीमती धातु का मूल्य नीचे आ सकता है।
4: चलिए, इसी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो आगे जाकर हम इस शो में शामिल करने वाले हैं, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन अब आते हैं राशिफल पर और पहली 3 राशियों का पंडित जी आपको हाल बताएंगे कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, इनके भाग्य में आज क्या है पंडित जी आपको बताएंगे।
5: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिख रही है, करियर की समस्या आपकी हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना

0: मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्रा में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: पंडित जी से सवाल लेते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे यह है कि शुक्र के राशि परिवर्तन की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो तो बताइए। पहली 6 राशियों के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, शुक्र के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। शुक्र जो है वो भावनाओं का, पारिवारिक जीवन का, धन और वैभव का स्वामी है, तो इन तमाम मामलों को शुक्र प्रभावित करेगा। क्या करेगा आइए जानते हैं। अगर मेष राशि की बात करें तो पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर सकती है, परिवार में दिक्कतें इस समय आ सकती हैं और आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। वृषभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहिए। यूरिन, किडनी, आंखों की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन, बेवजह की चिंताएं ये आपको परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन की चिंताएं, पारिवारिक समस्याएं ये सब दूर होंगी, धन का लाभ होगा और सेहत बेहतर होगी। कर्क राशि, धन की प्राप्ति, वस्त्र की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति होती दिख रही है, मन प्रसन्न होगा, मन में और जीवन में खुशियां आएंगी। सिंह राशि, करियर और आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में आनंद में व्यस्त रहेंगे, पैसे आएंगे भी और आप आनंद के लिए खर्च भी करेंगे। कन्या राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको संपत्ति का लाभ होगा, ये संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं, पैसे की दिक्कतें, पैसे की किल्लत समाप्त हो जाएगी।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और राशिफल पर वापस आते हैं और अगली 3 राशियों का हाल आपको पंडित जी बताएंगे कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ।

0: योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चले आते हैं सवाल जवाब पर, यानी दर्शकों के सवालों को इस शो में शामिल करने का वक्त आ गया है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देती हूं कि आप भी कोई भी प्रश्न इस शो में भेजना चाहते हैं, ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखाते हैं, आप नोट कर लीजिए, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल भेजने हैं। तो पहला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है वो पंडित जी बताएंगे।
0: जी आज का पहला प्रश्न वैदेही ने हमें लिखा है और वैदेही हमें राजस्थान से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1996, जन्म का समय सुबह के 8 बजे, जन्म का स्थान है जयपुर राजस्थान। वैदेही कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, हालांकि मेरा करियर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैदेही आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का समय साल 2027 में बनता है, अप्रैल 2027 से दिसंबर 2027 का जो समय है इसमें आपके विवाह होने की संभावना बन रही है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से हो सकता है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं हैं। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का। पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है, कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी करने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न पीतांबर जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं। पीतांबर जी की जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1965, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म स्थान है छपरा बिहार। पीतांबर जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ न कुछ समस्याएं मेरे स्वास्थ्य में लगातार लगी हुई हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मुझे क्या उपाय करना चाहिए। पीतांबर जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्यादातर समस्याएं मानसिक हैं, बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव, बेवजह की परेशानी आपको ज्यादा दिक्कत दे रही है। शरीर में डाइजेशन के अलावा कोई और दिक्कत आपकी दिखाई नहीं दे रही है, तो आप ऐसा करिए पीतांबर जी, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
1: चलिए शुक्र के राशि परिवर्तन का पहली 6 राशियों के लिए किस तरह का असर रहने वाला है वो तो पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया है, बाकी बची हुई 6 राशियों के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर आया है, क्या प्रभाव इनका पड़ेगा वो जानते हैं पंडित जी से विस्तार से।
0: तो हमने आपको 6 राशियों के बारे में बताया कि शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, अब बाकी छह राशियों के बारे में जानते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, मनचाही इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, विवाह का मामला, धन का मामला, करियर का मामला, ये सारे मामले एक एक करके आपके बेहतर होते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, जीवन में कोई शुभ और मंगल कार्य होता दिख रहा है, परिवार में कोई विवाह हो जाए, संपत्ति का लाभ हो जाए, आप गाड़ी खरीद लें, आप किसी शुभ कार्य में व्यस्त हो जाएं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। धनु राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, इस समय आपको धन भी मिलेगा और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। मकर राशि, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बेवजह की मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, पारिवारिक अशांति हो सकती है, तनाव बिना वजह के आपका बढ़ सकता है। कुंभ राशि, धन का, उपहार का, समृद्धि का लाभ आपको मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, प्रॉपर्टी का फायदा मिल सकता है, धन और उपहार की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि, तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, खासतौर से धन वाले काम पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी और लोगों से प्रेम और सहयोग आपको प्राप्त होगा।
1: चलिए राशिफल पर आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है, पंडित जी से जानते हैं।
0: तुला राशि, बेवजह की चिंता इस समय परेशान कर सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: शुक्र का राशि परिवर्तन क्या रहने वाला है, राशियों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, ये तो पंडित जी ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं पंडित जी से कि अगर शुक्र का राशि परिवर्तन पंडित जी अनुकूल ना हो तो इस सिचुएशन में आपको क्या कुछ करना चाहिए, कौन कौन से उपाय हैं जो आप बताएंगे हमें।
0: देखिए, कुछ लोगों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, क्या उपाय करना चाहिए। सामान्यतः शुक्र का राशि परिवर्तन सबके लिए अनुकूल ही है, लेकिन मेष, वृषभ और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। इनको नियमित रूप से श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। नियमित रूप से सफेद मिठाई का दान करना चाहिए और सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कतें नहीं होंगी।
1: चलिए, इसी के साथ पहुंच गए हैं इस शो के अंत की तरफ और अंतिम तीन राशियां बची हैं, मकर, कुंभ और मीन की बारी है। जानते हैं इनके लिए आज क्या कुछ खास है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल

आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: बन जाएंगे, मानसिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए दर्शकों के सवालों को एक बार फिर से शो में शामिल करते हैं और अगला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है, इस शो में कौन सी समस्या आई है वो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है सवाल।
0: जी अगला प्रश्न हमें दीपक जी ने लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। दीपक जी की जन्म की तारीख है 20 मार्च 1978। जन्म का समय रात में 11:55। जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं और साथ में जगह स्थान भी बदलना चाहता हूं, तो इसकी संभावना कब है? क्या मुंबई से बाहर निकल सकूंगा और नौकरी आगे कैसी रहेगी? दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का समय इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में दिखाई दे रहा है। उस समय आप नौकरी भी बदलेंगे और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। नवंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच में बड़े परिवर्तन की संभावना आपके लिए दिख रही है। एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती का मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल यानी चौथा सवाल लेने की, और पंडित जी ही आपको बताएंगे कि कौन से दर्शक का अंतिम सवाल हमने लिया है।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है, और सविता जी हमें गाजियाबाद से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 22 नवंबर 2012। जन्म का समय 6:32। जन्म स्थान है गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की सेहत में अक्सर दिक्कतें लगी रहती हैं, अक्सर उसको चोट चपेट लगती रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा बेटा ठीक रहे? सविता जी, आपके पुत्र की कुंडली के अनुसार मंगल की स्थिति बेहतर ना होने की वजह से बार बार उसकी सेहत बिगड़ती है और बार बार दुर्घटना जैसी संभावनाएं बन जाती हैं। तो आप ऐसा करिए, एक तो अपने बच्चे का ध्यान अगले साल के अप्रैल तक रखिए, अप्रैल

0: 27 तक, उसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे सुबह शाम दोनों समय अपने बच्चे के नाम से हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर अपने बच्चे के गले में मंगलवार को पहनाइए, स्थितियां बेहतर होंगी।
1: चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी शो से जुड़ा हुआ। पंडित जी ये बताइए, शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में हम लगातार बात तो कर रहे हैं, लेकिन विशेष प्रकार से कौन कौन से फायदे लोगों के जीवन में इससे हो सकते हैं?
0: जी देखिए, शुक्र तुला राशि में चले गए। तुला राशि शुक्र की अपनी बड़ी प्रिय राशि मानी जाती है, इसीलिए शुक्र का तुला में जाना इस बात के लिए अच्छा है कि जो लोग शुक्र या शनि प्रधान हैं, अगर वो विवाह की बात करें, अगर वो रिश्तों की बात करें, अगर वो प्रेम संबंधों की बात करें, तो उसमें उनको फायदा अवश्य होगा। जो लोग बृहस्पति प्रधान हैं, वो अगर पैसे के लिए कोशिश करें, अगर प्रॉपर्टी या गाड़ी के लिए कोशिश करें, तो इस समय उनको प्रॉपर्टी का, पैसे का, गाड़ी का लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक बात जरूर समझिए कि चूंकि बृहस्पति की ऐसी प्लेसमेंट है, शनि की ऐसी प्लेसमेंट है कि लोग थोड़ा एग्रेसिव हो रहे थे, अब थोड़ा माइल्ड होंगे, तो अगर प्रेम से, दुलार से आप संबंध बनाने या संभालने का प्रयास करेंगे तो इस समय शुक्र की वजह से आपको लाभ होगा। लेकिन मेष राशि, वृषभ राशि और मकर राशि के लोग अपने रिश्तों को लेके, अपने वैवाहिक जीवन को लेके, अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 3 सितंबर को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 3 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर मध्यम बना रहेगा, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, धन के निवेश में सावधानी बनाए रखें। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए पंडित जी आपको बताएंगे आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि शुक्र की स्थिति को अच्छा करने के लिए किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए। शुक्र का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है, इसीलिए शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा अकेले ना करें, माता लक्ष्मी की पूजा श्री हरि के साथ अगर करें तो शुक्र को ताकत मिलेगी और आपके जीवन में वैभव और संपन्नता आएगी।
1: चलिए पंडित जी से अब जानेंगे 3 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, ऐसा करने से आपकी संतान की और करियर की समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 3 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि आज के शो की गुड लक राशि जिसके बारे में अक्सर हम जानकारी देते हैं वो कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सी मेटल सबसे ज्यादा बेहतर होती है। आज की गुड लक राशि है मेष। आपके लिए तांबा धारण करना सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। ऐसा करने से आप तमाम दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे।
1: चलिए शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में पंडित जी ने आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं, कौन सी राशि के लिए कैसा रहने वाला है वो भी बता दिया है, तमाम उपाय आपको क्या करने हैं वो भी जानकारी पंडित जी ने विस्तार से आपको दे दी है। अब बात करते हैं अंत की तरफ बढ़ते हुए खास उपाय के बारे में। तो आज का महा उपाय जिसका इंतजार अक्सर आपको भी रहता है उसके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से ही।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप किसी अपयश के, बदनामी के शिकार हो रहे हैं तो क्या करेंगे। रोज सवेरे जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा और सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। सप्ताह में एक दिन रविवार को नमक का सेवन बंद कर दीजिएगा। आप अपयश और बदनामी से बचेंगे, आपका नाम और यश बढ़ेगा।
1: तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: कहते हैं मंजिल पाने का जज्बा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 साल की रागिनी इस बात की मिसाल हैं। बचपन में एक हादसे ने उनसे उनका पैर छीन लिया, लेकिन पढ़ने की चाह नहीं छीन सका। आज रागिनी एक पैर के सहारे करीब 400 मीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचते हैं। आर्थिक तंगी के कारण परिवार उनके लिए कृत्रिम पैर या फिर ट्राईसाइकिल का इंतजाम नहीं कर पा रहा, लेकिन जब रागिनी की कहानी प्रशासन तक पहुंची तो उन्हें मदद की उम्मीद जगी है। देखिए,
8: ये 400 मीटर का रास्ता रागिनी के सपनों तक पहुंचने की राह है। एक पैर के सहारे वो हर रोज कदम बढ़ाती है और इसी तरह 7 साल की रागिनी स्कूल पहुंचती है। रागिनी के लिए पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी है।
9: रागिनी कहाँ के रहने वाला हो?
10: रानीपुर के।
9: अभी कहाँ जाता रू? कहाँ पढ़े लू रागिनी?
10: सरकारी स्कूल।
9: कहाँ स्कूल बा? तो क्या दिक्कत बा रागिनी? तो कैसे पढ़े जा लू? जोर से बोला।
10: एक
9: ओर से कैसे जा पावे लू पढ़े? गिर के बैठ जा लू। का पढ़ल चाह तरू? तो फिर दिक्कत क्या होता पढ़े में? पढ़बू साइकिल पैसे चाहिए ना।
8: रागिनी का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की थी तब एक हादसे में उसका एक पैर डैमेज हो गया था, लेकिन वक्त के साथ उसका हौसला कम नहीं हुआ। उम्र बढ़ी तो उसके सपने भी बड़े होते गए।
11: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
9: पढ़ना चाहती है?
11: पढ़ना चाहती है। लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
9: क्या चाहिए आपको?
11: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
8: रागिनी के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं। परिवार और स्कूल प्रशासन अब कोशिश कर रहे हैं कि रागिनी को कृत्रिम पैर या फिर ट्राईसाइकिल मिल सके।
12: विद्यालय में योजना आने के बाद उसका एडमिशन हुआ। योजना जो है विगत कुछ दिन पहले समाप्त हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है।
8: रागिनी की कहानी अब प्रशासन तक भी पहुंच गई है।
13: 7 साल की बच्ची है और उसका पैर इस स्थिति में नहीं है कि वो पैदल चल सके। मैंने अधिकारियों को इसीलिए भेजा है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण करा करके जो भी उपकरण हम देने की स्थिति में है उसको तत्काल हम दे दें। अभी डॉक्टरों की रिपोर्ट आ रही है और जैसी रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है हम तत्काल आज ही उसे उपकरण प्राप्त कराएंगे और उस बच्ची को स्कूल जाने की स्थिति हम उसके सामने रखेंगे, जिससे वो बच्ची स्कूल जा करके अपना न केवल शैक्षणिक कार्य पूर्ण कर सके बल्कि उसके घर के लिए भी जो शौचालय या अन्य कोई कमियां और भी हैं हम उसे भी पूरा कराएंगे।
8: अब उम्मीद है कि मदद के साथ उसके सपनों की राह और आसान होगी। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: न बड़े सितारों की फौज, न करोड़ों का प्रमोशन, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की कमाई दमदार है। काफी कम बजट में बनी इस फिल्म का प्रमोशन भी लगभग ना के बराबर हुआ है। बावजूद इसके फिल्म को लेकर दर्शकों का प्यार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश 4 हफ्ते बाद भी पैसों की बरसात कर रही है। अब तक फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आइए जानते हैं फिल्म की कामयाबी का राज क्या है।
14: बॉक्स ऑफिस पर जहां बड़ी बड़ी फिल्मों की सांसें उखड़ रही हैं, वहीं हनुमान अंश की रफ्तार ने हर किसी को हैरान कर रखा है। ट्रेड पंडित भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हैं। रिलीज के 26वें दिन भी फिल्म ने करीब 8.50 करोड़ की नेट कमाई कर ली है, यानी 4 हफ्ते बाद भी कमाई का मीटर डाउन होने को तैयार नहीं है और अब फिल्म 60 करोड़ के आंकड़े पर दस्तक दे रही है। यही है हनुमान अंश का असली दमखम। न बड़ा सितारा, न सितारों की फौज, न करोड़ों का प्रमोशन, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश का डंका बज रहा है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की ये पहली फिल्म है और लीड एक्टर भी पहली बार बतौर मुख्य कलाकार बड़े पर्दे पर उतरे हैं। फिल्म का बजट बेहद कम है, प्रमोशन भी लगभग न के बराबर है। बावजूद इसके फिल्म को लेकर दर्शकों का प्यार अनलिमिटेड निकला। कमाई के आंकड़ों की बात करें तो हनुमान अंश का भारत में नेट बॉक्स ऑफिस आंकड़ा 53.63 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी टिकट खिड़की से फिल्म करीब 54 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और अब 60 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। फिल्म की लागत के मुकाबले इसका प्रॉफिट करीब 2700% ज्यादा बताया जा रहा है और यही वजह है कि हनुमान अंश के कारोबार का ट्रेड भी सभी को चौंका रहा है। हनुमान अंश की इस कामयाबी ने ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने इसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल और रियलिटी चेक बताया है। उनका इशारा साफ है कि सिर्फ बड़े नाम का बोर्ड लगाकर अब बॉक्स ऑफिस नहीं जीता जा सकता। स्टार बड़ा हो या छोटा, असली स्टार आज की कहानी है और हनुमान अंश ने ये बात बाखूबी साबित कर दी है। फिल्म की तारीफ सिर्फ ट्रेड गलियारों तक सीमित नहीं है। फैशन जैसी फिल्मों के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी हनुमान अंश को देखकर इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि थिएटर में फिल्म देखकर उन्हें सिनेमाई जादू का अनुभव हुआ और बिना स्टार वाली ये फिल्म भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम केस स्टडी है। लेकिन हनुमान अंश की असली कहानी सिर्फ करोड़ों की कमाई में नहीं छिपी है। फिल्म का एक भजन सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि हर तरफ उसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस भजन को आवाज दी है बुंदेलखंड के 25 साल के सुनील लोधी ने। सुनील जन्म से देख नहीं सकते लेकिन उनकी आवाज ने लाखों दिलों को भक्ति से रोशन कर दिया। हनुमान अंश की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म नहीं चल रही, किस्मत के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। एक तरफ नए कलाकारों और सीमित बजट वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों को चुनौती दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया न देख पाने वाले गांव के एक गायक की आवाज थिएटर से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रही है। और अब सवाल सिर्फ 60 करोड़ का नहीं, सवाल ये है कि 60 करोड़ से आगे हनुमान अंश की कमाई कहां जाकर रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: सरहद पर देश की हिफाजत करने वाले भारतीय सेना के जवान मुश्किल की हर घड़ी में आम लोगों के लिए भी उम्मीद और भरोसे का नाम बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के बीच पहाड़ से अचानक मलबा सड़क पर आ गिरा और एक कार उसमें फंस गई। ऊपर से लगातार गिरते पत्थर और मलबे के बीच हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर जवान बने मददगार।

मुसीबत की घड़ी, पहाड़ से गिरता मलबा, चारों तरफ खतरा और बीच सड़क पर फंसी एक कार। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय सेना के जवान संकट मोचक बनकर सामने आए। जवानों ने न सिर्फ अपनी सूझबूझ दिखाई बल्कि जान जोखिम में डालकर मलबे में फंसी कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश के बीच पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर तुनुहट्टी के पास अचानक पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबे की चपेट में एक कार फंस गई। हालात इसलिए भी ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि बारिश लगातार जारी थी और पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा था। ऐसे में वहां से गुजर रहे भारतीय सेना के जवानों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। जवानों ने सेना के ट्रक से रस्सी बांधी और फंसी हुई कार को सावधानी के साथ खींचना शुरू किया। चुनौती आसान नहीं थी लेकिन जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद जवान कार को मलबे से बाहर निकालने में कामयाब रहे और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। सेना की इस तत्परता ने एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बारिश के चलते पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा था और सड़क से गुजरना बेहद जोखिम भरा हो गया था। ऐसे हालात में सेना के जवानों ने बिना देर किए जो मदद की उसने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। पहाड़ों में बारिश कई बार चंद मिनटों में हालात बदल देती है। ऐसे संवेदनशील इलाकों में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। चंबा प्रशासन ने वाहन चालकों से खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और मलबा प्रभावित इलाकों में जल्दबाजी नहीं करने की अपील की है। वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा करना सेना का फर्ज है, लेकिन जब रास्ते में किसी की जिंदगी मुश्किल में फंस जाए तो यही जवान मदद का हाथ बढ़ाने में भी सबसे आगे नजर आते हैं। तुनुहट्टी में भी पहाड़ में आए मलबे के बीच सेना के जवानों ने सिर्फ एक कार को नहीं निकाला बल्कि मुश्किल की घड़ी में भरोसे की डोर बनकर सामने आए। भारतीय सेना सरहद पर दुश्मनों के सामने ढाल भी है और संकट के समय अपनों के लिए सबसे भरोसेमंद मददगार भी। चंबा से विशाल आनंद, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
10: कान्हा की नगरी में दिखने लगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, 250 कलाकार हो रहे हैं शामिल।
11: पटना में जन्माष्टमी से पहले कृष्णोत्सव का भव्य आगाज, भोपाल में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय रासलीला समारोह।
10: अयोध्या के श्री राम मंदिर में CEO सहित नई नियुक्तियों के बाद 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप।

नेपाल के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बढ़ाया हाथ, जरूरतमंदों के लिए भेजी 4 ट्रक राहत सामग्री।

जीएसएलवी F-17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण, विधि विधान से पूजा कर EOS-5 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की कामना की। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने बजाई NASDAQ एक्सचेंज की ओपनिंग बेल, कहा बढ़ रही है भारत अमेरिका की साझेदारी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं कान्हा के जन्मोत्सव के साथ। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे में ब्रज के तमाम मंदिरों के साथ साथ शहर को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जन्माष्टमी के लिए भक्तों के मथुरा पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अब से कुछ घंटों के बाद जन्मोत्सव से जुड़े अनुष्ठानों का श्री गणेश होने जा रहा है, जिसके बाद पूरा ब्रज धाम कान्हा के जन्मोत्सव के रंग में रंग जाएगा, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
2: तो ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर हर तरफ रौनक दिखाई देने लगी है। लोग धूमधाम से जन्मोत्सव मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। इस खास मौके पर देशभर के बाजार भी सज गए, जहां पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये रंग भी आगे आपको दिखाएंगे।
1: वहीं इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायण जीएसएलवी F-17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तिरुपति में विधि विधान से पूजा कर EOS-05 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की कामना की। ये लॉन्चिंग आज देर रात श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। EOS-05 भारत की पहली ऐसी सैटेलाइट होगी जो 36,000 किलोमीटर ऊपर रहकर भारत के बड़े हिस्से की तस्वीरें लेंगी, तो इसकी और खासियतें आगे आपको बताएंगे।
2: साथ ही आपको ऐसी पवित्र धार्मिक यात्रा पर लिए चलेंगे जहां पर मां काली के जयकारे भी गूंज रहे हैं। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, जहां देवी काली की पवित्र देवरा यात्रा कई गांव से होकर गुजरी, तो भक्तिभाव से भरे श्रद्धालु भी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये पारंपरिक धार्मिक यात्रा 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
1: इसके अलावा भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत को महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी मिल चुकी है। ये मुकाबले मुंबई और वडोदरा में होंगे, तो इसमें क्या होने वाला है खास बताएंगे आगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे के 9 गुड न्यूज का।
2: देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है, उसके लिए बद्रीनाथ मंदिर भी सज चुका है। मंदिर के सिंहद्वार के ऊपर भी सजावट की गई है। मंदिर परिसर और रास्तों की रंग बिरंगी लाइट से मंदिर की सजावट की जा रही है। जन्माष्टमी के मौके पर रात में भी भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले रहते हैं। लड्डू गोपाल के जन्म के बाद भगवान बद्री विशाल को भोग लगाया जाता है।
1: राजस्थान के जैसलमेर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में स्थित दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों में जबरदस्त रौनक है। मंदिर पैलेस में स्थित गिरधारी जी मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जारी हैं। मेवों से बने खूबसूरत हिंडोले से श्रद्धालु ठाकुर जी को झुला रहे हैं। मान्यता है कि अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी पर सुदर्शन चक्र से कुआं खोदा था।
2: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थानीय संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं। 15 साल बाद मां काली की देवरा यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह है। यात्रा टोली पर पुष्प वर्षा की जा रही है, तो वहीं 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर मां काली बाबा केदार के दर्शन करेंगे।
1: भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खंगतक 243 का सफल परीक्षण किया है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और JSR डायनेमिक्स ने मिलकर तैयार किया है। ये बम लगभग 140 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से ही लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ तबाह कर सकता है। इस स्वदेशी हथियार का परीक्षण Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है।
2: 4 सितंबर को इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-5 लॉन्च करेगा। आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा बेहतर होगी। ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से इमेजिंग करने वाला भारत का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये उपग्रह हर 30 मिनट में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर लेगा और किसी भी खास क्षेत्र की निगरानी मात्र 5 मिनट के अंतराल पर दोबारा कर सकेगा।
1: अजय देवगन एक बार फिर से दर्शकों को डराने और रोमांचित करने की तैयारी में हैं। श्वेतान और रे 2 की सफलता के बाद अजय देवगन फिल्म्स और पैनोरमा स्टूडियोज ने नई हॉरर थ्रिलर फिल्म पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म का टाइटल फिलहाल तय नहीं हुआ है। इसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और फिल्म के निर्देशन रोहित जुगराज कर रहे हैं।
2: भारत को पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी मिल गई है। ये प्रतियोगिता पहले श्रीलंका में खेली जानी थी, लेकिन क्रिकेट प्रशासन से जुड़ी समस्याओं की वजह से श्रीलंका से मेजबानी छिन गई। प्रतियोगिता में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल होंगे। 14 से 28 फरवरी तक मुंबई और वडोदरा में मैच होंगे।
1: भारत और ब्राजील के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता में होने वाले इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल मैच के टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा। टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर मिल रहे हैं। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बुधवार को एक्स पर ये जानकारी शेयर की है।
2: चीन में 4 महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर से समुद्र में मछली पकड़ने का काम शुरू हो गया है। 1 सितंबर से रोक खत्म होते ही शानडोंग के बंदरगाहों से हजारों नाव समुद्र की ओर रवाना हो गई हैं। किंगदाओ और रोंगचेंग से मछुआरों ने नए सीजन की शुरुआत की और इस बार समुद्र में हेयरटेल, स्पेनिश मैकेरल और सिल्वर प्रॉम्फ्रेट जैसी मछलियां भी पकड़ने की उम्मीद है।

0: और चलिए शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी खबरों से। गुड न्यूज ये आ रही है कि कान्हा और कान्हा के स्वागत में पूरा देश कृष्णमय हो गया है। मथुरा से लेकर देश के अलग अलग शहरों तक जन्माष्टमी की रौनक देखते ही बन रही है। ब्रजधाम दुल्हन की तरह सज चुका है।
1: मंदिरों से लेकर गलियों तक बस कान्हा के आगमन का इंतजार है। काशी से कान्हा के लिए खास उपहार भेजे गए तो झांसी में भव्य झांकियों के जरिए युवाओं को कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जा रहा है। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कृष्ण लीला का मंचन भी हुआ।
0: आपको बता दें कृष्ण जन्म से लेकर उनकी लीलाओं तक हर दृश्य ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया है। पटना भी कृष्ण भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। वहीं कलाकारों ने मंच पर कृष्ण की लीलाओं को जीवंत किया। भक्तिमय प्रस्तुतियों ने माहौल को अलग ऊर्जा से भर दिया। यानी शहर अलग है लेकिन उत्साह एक है, उमंग एक है। सभी को इंतजार है सिर्फ नंदलाल के आने का। लोग भक्ति भाव में यहाँ झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह से भक्ति में आस्था में लीन नजर आ रहे हैं। देश भर के तमाम मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खासा तैयारियां यहां पर भी की गई हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित किया जाने वाला है। जन्माष्टमी के पर्व का बेहद ही उत्साह के साथ इंतजार किया जा रहा है।

0: चमक, ये दमक और ये मनोहारी सजावट श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे ब्रज धाम में नजर आ रही है। क्या मंदिर और क्या शहर के चौक चौराहे और गलियां सब जन्मोत्सव के रंग में मानो रंग गई हैं। जहां देखो जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक रहने वाला है। इस खास मौके पर विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहने वाला है, इसलिए मंदिर के हर एक कोने को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस खास मौके पर करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ब्रज आने वाले हैं। उत्सव बड़ा है, इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की लीलाओं की मनमोहक प्रस्तुति होगी। और हाँ, श्रद्धालुओं के लिए शानदार सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं।
2: नगरी में जब कोई आए तो उसे चारों तरफ ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के चलचित्र, ये सारी चीज नजर आए। तो इस तरह के जो मंच हैं वो सभी चौक चौराहे पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला होगी, कहीं पर गायन होगा, कहीं पर मंचन, लीला मंचन होगा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है पूरे ब्रज में देखने के मिलेंगे। तो इस तरह के जो सेल्फी पॉइंट है वो यहाँ बनाए गए हैं। करीब 17 सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जहां श्रद्धालु आए और भगवान श्री कृष्ण की याद, जो जन्म उत्सव की याद है, उसको यहां से ले जाएं। इस तरह के होर्डिंग बैनर पूरे जो रास्ता श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ जाता है, श्री कृष्ण जन्म स्थान से हाईवे की तरफ जाता है, उस पर इस तरह के होर्डिंग बैनर पूरे में लगे हुए हैं। क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ 3 और 4 सितंबर को पहुंचे तो भगवान के चारों तरफ दर्शन नजर आए उसे, और भगवान की नगरी में आकर भगवान को समर्पण हो जाए।
0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बेहद खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास उपहार भेजे गए हैं। इनमें चांदी की चम्मच, पाजेब, मुरली और कंगन शामिल हैं, और भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भेजे गए हैं। इन उपहारों को मथुरा भेजने से पहले विश्वनाथ धाम में मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई और फिर इन्हें मथुरा के लिए रवाना किया गया।
3: और मथुरा एवं काशी के मध्य जो सनातन नवाचारों का आदान प्रदान, सनातन उपहारों का आदान प्रदान, परंपराओं को जीवंत करने की परंपरा प्रारंभ हुई है, उसी के क्रम को अक्षुण रखते हुए, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में, जैसा हम सभी जानते हैं, दिनांक 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है। उससे ठीक पहले आज 2 सितंबर को, 2 दिन पहले ही, श्री काशी विश्वनाथ धाम से महा लड्डू गोपाल के लिए, जो भगवान कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा, श्री कृष्ण जन्मस्थल न्यास के लिए उपहार सामग्री वाहन में एकत्र करके प्रेषित की गई है।
0: खबर तो ये भी है कि मथुरा में होने वाले इस भव्य महोत्सव के लिए बाबा महाकाल की नगरी से डमरू और मृदंग के जाने माने वादकों को आमंत्रित किया गया है, जबकि पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित पुष्प, वस्त्र, मेवा मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, मोर पंखी और बांसुरी समेत दूसरे मंगल सामग्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अयोध्या से मथुरा भेजी गई हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जन्माष्टमी का पर्व नजदीक आया तो इससे जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो गए। यूपी के झांसी में ऐसा ही आयोजन हो रहा है। खास बात यह है कि इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए झांसी नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में भी बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। इस महोत्सव में कहीं भगवत गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश दिया गया है, तो कहीं पर भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया, कहीं कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया है।

इस भव्य आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नए ढंग से कृष्ण लीलाओं का मंचन किया। कृष्ण जन्म से लेकर कारागार से बाहर निकलने तक भव्य तौर पर इसे दिखाया गया।

0: हवाई आयोजकों की ओर से बारिश के बावजूद करीब 4 से 5 हजार युवाओं के कार्यक्रम में पहुंचने का दावा किया गया। कार्यक्रम में भगवद गीता की शिक्षाओं के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन कीर्तन, रॉक बैंड का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि आध्यात्मिक संदेश को युवाओं तक पहुंचाने के लिए आधुनिक अंदाज का सहारा लिया गया है
1: और यही वजह है कि भक्ति रैप ने युवाओं का खास ध्यान अपनी ओर खींचा और दर्शकों ने इसे अनोखे अंदाज की जमकर सराहना की है। खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर खास तरह से मंचन किया गया। आपको बता दें झांसी में जबरदस्त आयोजन हुआ, युवाओं के लिए खास रहा जहां पर 4 से 5 हजार युवा जुटे हुए थे। कार्यक्रम में भगवद गीता की शिक्षाओं के साथ भगवद गीता के यहां पर भजन कीर्तन रॉक बैंड का आयोजन भी किया गया।
0: झांसी में इस्कॉन की ओर से इस प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है जहां पर कई स्टॉल भी लगाए गए, लोगों ने खरीदारी की और वहां पर काफी लोग पहुंचे खरीदारी करने के लिए और अलग अलग तरह के स्टॉल झांसी में लगाए गए।
1: तो अब जन्माष्टमी की तैयारियां देश भर में शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों में एक तरफ जहां सजावट शुरू हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, दूसरी ओर बाजार सज चुके हैं। यहां पर कान्हा के स्वागत के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, उनके पोशाक से लेकर तमाम तरह की चीज़ें यहां पर बाजार में लोगों की डिमांड देखने को मिल रही है। यहां पर प्रतिमाएं लेने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, कान्हा के स्वागत की धूमधाम से तैयारी की गई है। कुछ इस तरह से पूरे देश में जन्माष्टमी से पहले देखने को मिल रही है।
0: तो वहीं पटना में कृष्णोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को दिखाया, कालिया मर्दन और कई लीलाओं को देखकर भक्त भाव विभोर हो गए।

0: देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण की लीलाओं को कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि युवा भी इससे जुड़ सके, युवा भी इसकी झलक पा सके। और भक्ति भाव अब हर किसी में देखने को मिल रहा है। कान्हा के आने की पूरी तैयारियां, खासा जोश उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है।
1: बाकी बिहारी लाल की
0: ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई हैं, जहां पर 7 दिवसीय रामलीला समारोह चल रहा है। आपको बता दें, इसमें शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे और कृष्ण लीला का मंचन देखा और पूजा अर्चना की।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बांके बिहारी के जयकारे गूंज रहे हैं। 7 दिवसीय रामलीला समारोह जारी है और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की है। कृष्ण लीला का मंचन भी यहां पर चल रहा था।

तो जन्माष्टमी को लेकर कृष्ण मंदिरों में रौनक बिखरी हुई है। त्योहार को लेकर मंदिरों में दर्शन पूजन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो चलिए आपको कान्हा की इन्हीं मनमोहक प्रतिमाओं के दर्शन अब करवाते हैं।

0: ये जन्माष्टमी पर्व की ही महिमा है कि इन दिनों हर कृष्ण मंदिर में कान्हा की मुस्कान, माखन की खुशबू का एहसास और मंदिरों में भक्तिगान गुंजायमान है। तभी तो जन्माष्टमी पर आपके त्योहार को खुशियों से भर देने के लिए नंदलाला आ रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत की तैयारियां जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में भी हो रही हैं। फूल बंगले की थीम पर सजाया गया ये धाम कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के लिए भक्ति और उत्सव का केंद्र बना हुआ है।
1: तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है जो भगवान का दरबार है सिर्फ उसका जो सजावट है वो की जाती है, पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मंदिर फूलों से सजेगा। फूल बंगला जो है वो उसको कहा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ जयपुर में मिलने वाले नहीं पर बाहर से भी कई सारे फूल हैं वो मंगवाए गए हैं।
0: जानकारी के अनुसार इस बार यहाँ कान्हा के लिए पोशाक वृंदावन से मंगवाई गई है, तो गुप्त वृंदावन धाम में नंदलाला के दिव्य दर्शन करने के लिए करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिनको भगवान की कुछ खास सेवा करने का अवसर भी मिलेगा।
2: यहाँ पर हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है ताकि जो भी भक्त लोग आते हैं किसी समय पे भी आते हैं, हालांकि कहा जाता है कि रात के समय में हर मंदिर में रश ज़्यादा रहता है, लेकिन हमने व्यवस्था ऐसे की है कि हर व्यक्ति जो यहाँ पे आएगा उस दिन उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छे से उसके दर्शन हो, और जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही जो भी सेवाएं का उनको मौका मिलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल माखन मिश्री सेवा है, झूलन सेवा है, वो भी करने का उनको अच्छे से मौका मिलेगा।
0: आयोजकों ने बताया कि इस पावन दिन पर नंद गोपाल के 4 विशेष अभिषेक के साथ 108 भोग लगाए जाएंगे, तो वहीं मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म की बेला पर महाआरती का भी आयोजन खास रहने वाला है। वहीं श्री राधा गोविंद जी की ये मनमोहक तस्वीर अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर की है। यहाँ भी जन्माष्टमी पर्व को मनाने के लिए मंदिर के अंदर बाहर साज सजावट से लेकर और व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
3: वीरे देख पा रहे हैं अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर की, जहां सुंदर भगवान कृष्ण और राधा की जो प्रतिमा है वो यहां पे देखने को मिल रही है, राधा गोविंद जी की प्रतिमा। और खास करके जब जन्माष्टमी होती है तो जन्मोत्सव भगवान का मनाने के लिए बड़ी संख्या में रात को 12 बजे लोगों की मौजूदगी अलग अलग कृष्ण मंदिरों में होती है। अहमदाबाद के इस इस्कॉन मंदिर की बात करें तो हजारों की तादाद में यहां पे लोग पहुंचते हैं और भगवान का जन्मोत्सव धामधूम से मनाया जाता है।
0: इस बार यहां जन्माष्टमी लोटस थीम पर मनाई जाएगी। भगवान का फूल बंगला सजाने के साथ उनके 56 भोग की व्यवस्था, तो भगवान के लिए विशेष श्रृंगार और वस्त्र वृंदावन से तैयार करवाए गए हैं। यही नहीं, जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे 7 मिनट का लाइट एंड साउंड शो भी रखा गया है।
4: इसके अंदर में प्रोग्राम्ड लाइटनिंग सीक्वेंस रखा है, साथ में प्रोग्राम्ड साउंड सिस्टम हमने इस प्रकार से रखा है कि भगवान का जब प्रकट बिजलियाँ कड़की थी लाइटनिंग ऐसी होगी, फिर जैसे बारिश हो रही थी उस समय, तो मंदिर के अंदर हमने ऐसा प्रोविजन रखा है कि जब वो म्यूजिक बजेगा तो वैसी प्रकार के पानी भी जो है वो गिरेगा। ऑब्वियसली हम गिले नहीं होंगे उस पानी से, लेकिन वैसा इफेक्ट्स हमने डाला है। तो पूरा 7 मिनट का ये शो हर आधे घंटे के अंदर आप जब मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर आएंगे तो आपको ये देखने को प्राप्त होगा।
0: इसके अलावा यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष ड्रोन शो भी होगा, जिसमें 300 ड्रोन की मदद ली जाएगी, तो देश विदेश की 600 से ज्यादा चीजें भी भगवान को अर्पित की जाएंगी। इन जैसी कई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के पीछे कोशिश यही है कि यहां आने वाला हर श्रद्धालु जन्माष्टमी की रौनक और उसके महत्व को आत्मसात कर पाए, क्योंकि ऐसी ही खूबसूरती इन दिनों उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में भी नजर आ रही है। चार धाम यात्रियों से गुलजार बद्रीनाथ मंदिर को जन्माष्टमी के लिए

0: जय गोपाला। चमोली से कमल नयन सिरोड़ी, अहमदाबाद से अतुल तिवारी और जयपुर से रिदन जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आया तो इसकी रौनक हर तरफ दिखाई देने लगी है। लोग धूमधाम से जन्मोत्सव मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। इस खास मौके पर देश भर के बाजार सज चुके हैं।

0: आया जन्माष्टमी का पर्व तो सज गए देश भर के बाजार, धौलपुर से लेकर पाली तक, झांसी से लेकर औरैया और आगर मालवा तक। बाजारों की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। एक से बढ़कर एक मनोहारी लड्डू गोपाल के विग्रह दुकान पहुंचे ग्राहकों का मन मोह ले रहे हैं। इसके अलावा भगवान के श्रृंगार के लिए रंग बिरंगी पोशाक, मुकुट और माला, बांसुरी और मटकी, पालना और झूला भी बाजार में खूब बिक रहे हैं।
1: जन्माष्टमी को लेकर हर कोई उत्साहित है, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी है और हर कोई अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगारित करने के लिए, उन्हें अलग अलग तरह से तैयार करने के लिए खरीदारी में जुटा हुआ है। दुकानों पर भीड़ लगी है, खासकर महिलाएं तरह तरह के पोशाक खरीद रही हैं, बांसुरियां खरीद रही हैं, भगवान कृष्ण के हाथों में पहनाने के लिए कुछ अंगूठियां, कुछ कड़े और उनके सर पर साफे पहनाने के लिए भी विभिन्न तरह के साफों की खरीदारी में काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं।
2: इसे हम बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन हम माखन का भोग लगाते हैं, लड्डू जी को बहुत ही उत्साह से अच्छे से मनाते हैं, उनके लिए नए वस्त्र और बहुत सारी चीजें नई नई करते हैं उनके लिए और हमें बहुत खुशी मिलती है।
0: दुकानों पर लड्डू गोपाल की अलग अलग आकार और डिजाइन के विग्रह मौजूद हैं। दुकानदारों के अनुसार लाइट और मोतियों से सजे झूले ग्राहकों को खासा पसंद भी आ रहे हैं। इनकी कीमत 800 से 2000 रुपए तक है। वहीं लड्डू गोपाल की प्रतिमाएं 100 से 6000 रुपए तक की रेंज में मिल रही हैं। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें। इसके लिए लोग मौजूदा ट्रेंड और अपने बजट के हिसाब से खरीदारी में जुटे हैं।
3: बार मार्केट में भारी उत्साह है कस्टमर जन्माष्टमी को लेकर और हमारे पास काफी जो कस्टमर आ रहे हैं उनके प्रति हम नए नए कलेक्शन लेके आए। इस बार हमारे पास हैंडवर्क पोशाक है, स्टोन वर्क में, डायमंड वर्क में, जर्दोजी में, बुटीक में, कलाकारी में और भी खूब सारी वैरायटी है। अपन लड्डू गोपाल के गहने हैं, ज्वेलरी है, झूले है, सिंहासन है, पालने हैं और भारी उत्साह दिखने को मिल रहा है। और स्पेशल हमारे पास इस बार पोशाक है जो हैवी रेंज में है, जो 100 रुपए से लेकर 1000, 1200, 1500 रुपए की रेंज में मिल जाएगा आपको। अच्छी अच्छी वैरायटी मिलती है अपने पास में।
0: राजस्थान के धौलपुर की बनी भगवान की पोशाकों की देश के बाजारों में अच्छी खासी मांग है। यहाँ करीब 50 से अधिक कारखाने हैं जिनमें कारीगरों द्वारा कान्हा और दूसरे भगवानों की पोशाक तैयार होती है। कारीगर बताते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर तो कान्हा और राधा की पोशाकों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है।
4: इस समय जो है जन्माष्टमी का सारा ऑर्डर चल रहा है, त्योहार है, तो हम सब लोग, पूरी हमारी टीम इसी में लगी हुई है और हमको तो जैसा मजदूरी मिलती है बाकी सारा तो मथुरा वृंदावन में ही जो भी है होलसेलर जी करते हैं और हमारी ड्रेसें जो हैं मथुरा के अलावा इंडिया से विदेश में भी जाती हैं।
0: बात यूपी के बाजारों की करें तो यहां भी दुकानों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इनमें कोई पालना और पोशाक खरीदने पहुंचा है, कोई श्रृंगार का सामान खरीदने आया है और कोई भगवान के लिए नया आसन खरीदने आया है। और तो और लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव पर भोग लगाने के लिए माखन, मिश्री, पंचामृत की सामग्री, मेवा और तुलसी दल की मांग भी बढ़ गई है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, धौलपुर से उमेश मिश्रा, पाली से भरत भूषण जोशी, झांसी से अजय झा और औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गणेश उत्सव की कैसी है तैयारी।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कान्हा की नगरी में दिखने लगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, 250 कलाकार हो रहे हैं शामिल। पटना में जन्माष्टमी से पहले कृष्णोत्सव का भव्य आगाज, भोपाल में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय रासलीला समारोह। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सीईओ सहित नई नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेकर नया रूप, बदलेगा मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल। जीएसएलवी F-17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण, विधि विधान से पूजा कर EOS-5 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की कामना। नेपाल के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बढ़ाया हाथ, जरूरतमंदों के लिए भेजी 4 ट्रक राहत सामग्री। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने बजाई NASDAQ एक्सचेंज की ओपनिंग बेल, कहा बढ़ रही है भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गणपति उत्सव की रौनक अब पूरे देश में दिखने लगी है। गुजरात महाराष्ट्र में तो इस उत्सव का लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब गजानन प्रतिमाओं के आगमन से इस पर्व का उल्लास और भी ज्यादा बढ़ गया है।
1: मुंबई में गणपति प्रतिमाओं को पंडाल में लाने का सिलसिला जारी है। हजारों की संख्या में भक्त बप्पा के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। ढोल ताशे की गूंज के साथ बप्पा का स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं अकोला में भी कल बप्पा का शानदार स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बप्पा की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। हर बार की तरह ही इस बार भी गणपति प्रतिमाओं में कुछ अनोखे प्रयोग भी किए जा रहे हैं। सूरत में टिश्यू पेपर से बने इको फ्रेंडली गणपति की काफी चर्चा हो रही है। इस प्रतिमा को पर्यावरण का ख्याल रखते हुए तैयार किया गया।
0: आपको बता दें, ऐसी प्रतिमा के विसर्जन से नदियों को कोई नुकसान नहीं होता है, ये सस्टेनेबल होता है। वहीं वडोदरा में भी एक इको फ्रेंडली गजानन की प्रतिमा तैयार की गई है। इस प्रतिमा को पूजा में इस्तेमाल होने वाले कलावे से तैयार किया गया है। इस प्रतिमा को बनाने में करीब 82 किलो कलावे का इस्तेमाल हुआ है। तो कुछ इस तरह से प्रतिमाओं को तैयार किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे गणेश विसर्जन के दौरान, और लोगों की भक्ति में भी कोई कमी ना आए, कोई बाधा ना आए।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेश उत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाना छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल मना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रूपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह ले। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा ले। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है। जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब आपको एक ऐसी धार्मिक पवित्र यात्रा में लेकर चलते हैं जहां पर आस्था है, परंपरा है और इस बीच मां काली के जयकारे भी गूंज रहे हैं। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, जहां देवी काली की पवित्र देवरा यात्रा कई गांव से होकर गुजरी तो भक्ति भाव से भरे श्रद्धालु भी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मां काली की यात्रा 15 साल बाद शुरू होने से पूरी केदार घाटी में आस्था का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि पारंपरिक धार्मिक यात्रा 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। चारधाम की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की यात्रा है। इसमें हर मुश्किल के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कायम रहता है। इस बार अगस्त में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मौसम ने श्रद्धालुओं की कई बार परीक्षा ली, रास्तों पर चुनौतियां आईं, लेकिन धामों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया कि चारधाम की ओर आस्था का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।

0: पहाड़ों की चढ़ाई, रास्ते की मुश्किलें और ऊपर से बदलता मौसम, कहीं बारिश तो कहीं भूस्खलन का खतरा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं रुकी।
1: जब भी बरसात की अलर्ट प्राप्त होता है या अत्यधिक बरसात हो रही होती है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों को कई बार यात्रा को रोकना पड़ता है और इसको कुछ देर के लिए रोका जाता है जब तक कि हालात सामान्य न हो जाएं।
0: जिस रास्ते पर कदम कदम पर मौसम परीक्षा ले रहा था, उसी रास्ते पर श्रद्धालुओं के कदम लगातार चारधाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसी आस्था और उत्साह की वजह से अब अगस्त में चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार साल में इस बार अगस्त का महीना चारधाम यात्रा के लिए सबसे खास रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त रौनक देखने को मिली। अगस्त में चारों धाम में रिकॉर्ड 2,31,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। इनमें सबसे ज्यादा भीड़ बद्रीनाथ धाम में रही, जहां 1,25,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।
2: केदारनाथ धाम में भी मौसम सुहावना बना हुआ है, हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रशासन के मुताबिक धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान तैनात हैं। इसके अलावा केदारनाथ, लिंचौली, भीमबली, गौरीकुंड सहित तमाम स्थानों पर स्वास्थ्य कैंपों की भी स्थापना की गई है।
0: खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार अगस्त में चारधाम यात्रा में 93,680 श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे, यानी मौसम की चुनौती आई लेकिन आस्था के कदम नहीं रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: बाबा नीम करोली पर बनी फिल्म हनुमान अंश की काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि उनका यह अनुभव है कि बाबा की लीलाएं अद्भुत रही हैं, उनमें एक अलग खिंचाव होता है। सहवाग ने इस फिल्म को बाबा के लिए एक शानदार ट्रिब्यूट बताया।
4: मेरे कुछ बहुत पुराने करीबी लोग नीब करोली बाबा महाराज जी के बहुत पुराने भक्त हैं। करीब 10 साल पहले मेरे एक दोस्त ने भी मुझे महाराज जी के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में बताया था और तब से मैं उनके बारे में सुनता और पढ़ता आ रहा हूँ और एक गजब अट्रैक्शन रहा है महाराज जी के प्रति। महाराज जी का व्यक्तित्व, उनकी करुणा, उनकी कृपा और उन्होंने अपने भक्तों के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है वो दर्शाता है महाराज जी क्या थे, बिना बताए बिना जताए व्यक्ति को उसके ट्रू सेल्फ से मिला देते थे।
3: न बड़े सितारों की फौज, न करोड़ों का प्रमोशन, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की कमाई दमदार है। काफी कम बजट में बनी इस फिल्म का प्रमोशन भी लगभग ना के बराबर हुआ। बावजूद इसके फिल्म को लेकर दर्शकों का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है।
5: आपको बता दें बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश 4 हफ्ते बाद भी पैसों की बरसात कर रही है। अब तक फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आइए जानते हैं फिल्म की कामयाबी का राज क्या है।
6: कैसी लगी सब लोगों को फिल्म? म्यूजिक कैसा लगा?
7: बॉक्स ऑफिस पर जहां बड़ी बड़ी फिल्मों की सांसें उखड़ रही हैं, वहीं हनुमान अंश की रफ्तार ने हर किसी को हैरान कर रखा है। ट्रेड पंडित भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हैं। रिलीज के 26वें दिन भी फिल्म ने करीब 8.50 करोड़ की नेट कमाई कर ली है, यानी 4 हफ्ते बाद भी कमाई का मीटर डाउन होने को तैयार नहीं है और अब फिल्म 60 करोड़ के आंकड़े पर दस्तक दे रही है। यही है हनुमान अंश का असली दमखम। न बड़ा सितारा, न सितारों की फौज, न करोड़ों का प्रमोशन, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश का डंका बज रहा है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की ये पहली फिल्म है और लीड एक्टर भी पहली बार बतौर मुख्य कलाकार बड़े पर्दे पर उतरे हैं। फिल्म का बजट बेहद कम है, प्रमोशन भी लगभग न के बराबर है। बावजूद इसके फिल्म को लेकर दर्शकों का प्यार अनलिमिटेड निकला। कमाई के आंकड़ों की बात करें तो हनुमान अंश का भारत में नेट बॉक्स ऑफिस आंकड़ा 53.63 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी टिकट खिड़की से फिल्म करीब 54 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और अब 60 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। फिल्म की लागत के मुकाबले इसका प्रॉफिट करीब 2700% ज्यादा बताया जा रहा है और यही वजह है कि हनुमान अंश के कारोबार का ट्रेड भी सभी को चौंका रहा है। हनुमान अंश की इस कामयाबी ने ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने इसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल और रियलिटी चेक बताया है। उनका इशारा साफ है कि सिर्फ बड़े नाम का बोर्ड लगाकर अब बॉक्स ऑफिस नहीं जीता जा सकता। स्टार बड़ा हो या छोटा, असली स्टार आज की कहानी है और हनुमान अंश ने ये बात बाखूबी साबित कर दी है। फिल्म की तारीफ सिर्फ ट्रेड गलियारों तक सीमित नहीं है, फैशन जैसी फिल्मों के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी हनुमान अंश को देखकर इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि थिएटर में फिल्म देखकर उन्हें सिनेमाई जादू का अनुभव हुआ और बिना स्टार वाली ये फिल्म भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम केस स्टडी है। लेकिन हनुमान अंश की असली कहानी सिर्फ करोड़ों की कमाई में नहीं छिपी है। फिल्म का एक भजन सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि हर तरफ उसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस भजन को आवाज दी है बुंदेलखंड के 25 साल के सुनील लोधी ने। सुनील जन्म से देख नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाज ने लाखों दिलों को भक्ति से रोशन कर दिया। हनुमान अंश की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म नहीं चल रही, किस्मत के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। एक तरफ नए कलाकारों और सीमित बजट वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों को चुनौती दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया न देख पाने वाले गांव के एक गायक की आवाज थिएटर से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रही है। और अब सवाल सिर्फ 60 करोड़ का नहीं, सवाल ये है कि 60 करोड़ से आगे हनुमान अंश की कमाई कहां जाकर रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात करेंगे नेपाल की, जहां पर आई आपदा से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। सेना और सरकारी एजेंसियां तो पीड़ितों की मदद कर ही रही हैं और साथ ही कई सामाजिक संगठन और जाने माने लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। इन्हीं में से एक हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने बड़े पैमाने पर पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इस राहत सामग्री को नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपा गया है ताकि जरूरतमंद परिवारों तक से पहुंचाया जा सके। इस राहत सामग्री में पीड़ित परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों का खास ख्याल रखा गया है, इसलिए इसमें चावल और दाल से लेकर नमक, मसाले, पानी, सोयाबीन तेल, बिस्किट और नमकीन शामिल है।
3: चलिए वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का, आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए सुदेश लहरी की फनी इंस्टा स्टोरी।
8: दोस्तों, कोई भी इंसान अच्छी बात कर सकता है, वक्त अच्छा होना चाहिए। आज मेरी वाइफ ने खूब कहा है, तुम खुद ही कहो।
9: खूब
8: बहुत अच्छा
3: कहा। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
5: देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: काना की नगरी में दिखने लगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, 250 कलाकार हो रहे हैं शामिल। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक, नई डिजाइन की पोशाक, बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे हैं खरीदारी, मिट्टी के मटकों की भी भारी डिमांड। पटना में जन्माष्टमी से पहले कृष्णोत्सव का भव्य आगाज, भोपाल में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय रासलीला समारोह। अकोला में गणेश उत्सव से पहले बापा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, जमकर की गई आतिशबाजी। GSLV-F17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण, विधि विधान से पूजा कर EOS-5 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की कामना। नेपाल के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बढ़ाया हाथ, जरूरतमंदों के लिए भेजी 4 ट्रक राहत सामग्री।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शुक्र देव अपनी राशि बदल चुके हैं और आज हम ये जानेंगे कि शुक्र देव के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:25 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देव के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है। देखिए, शुक्र अभी तक कन्या राशि में विद्यमान थे, अब 2 सितंबर को दोपहर में तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा है शुक्र के राशि परिवर्तन के समय और अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध भी बना हुआ है। इस समय रिश्तों को लेकर के सावधानी रखनी होगी। आर्थिक बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा और कीमती धातुओं का मूल्य नीचे की तरफ जा सकता है, उसमें भी उतार चढ़ाव आ सकता है। यानी शुक्र का ये राशि परिवर्तन रिश्तों के मामले में और फाइनेंशियल कंडीशन में जबरदस्त प्रभाव पैदा करेगा
और वो प्रभाव हम सबको अपने जीवन में दिखाई देगा। शुक्र के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जो अलग अलग राशियां हैं उन राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों को पारिवारिक समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। वृषभ राशि, इस समय सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के मामले में और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। कर्क राशि, धन, वस्त्र और संपत्ति की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, करियर और आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन जाएंगे। तुला राशि, करियर, परिवार और जीवन की मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। वृश्चिक राशि, जीवन में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मकर राशि, मानसिक और पारिवारिक अशांति हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। कुंभ राशि, धन, उपहार और समृद्धि का लाभ आपको मिलेगा। मीन राशि, लोगों से प्रेम और सहयोग मिलने की संभावना बन रही है।
शुक्र के राशि परिवर्तन पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने ये तो जान लिया कि 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर शुक्र का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है, लाभकारी नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? सामान्यतः शुक्र का राशि परिवर्तन सबके लिए अनुकूल है, फायदेमंद है, लेकिन मेष, वृषभ और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन अनुकूल नहीं है। इनको नियमित रूप से श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें, नियमित रूप से सफेद मिठाई का दान करना चाहिए और इस समय सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए जिससे लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बनी रहेगी,
भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुक्र का ये राशि परिवर्तन लोगों के रिश्तों पर, विवाह पर और वैवाहिक जीवन पर गहरा असर डालेगा। जो लोग शनि प्रधान हैं उनकी शादियां तय हो सकती हैं, उनको प्रेम संबंध में लाभ हो सकता है, रिश्तों की समस्या हल हो सकती है। और जो लोग बृहस्पति प्रधान हैं उन्हें धन का, संपत्ति का और समृद्धि का लाभ हो सकता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है। तो अलग अलग स्थितियों के हिसाब से शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और सबके लिए अच्छा ही है। केवल मेष, वृषभ और मकर वालों को अपना ध्यान रखने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी केस में या मुकदमे में फंसे हुए हैं तो हर रविवार को भगवान काल भैरव की अगर उपासना करें तो केस और मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे

आपको पास्ट में जाना है न फ्यूचर में जाना है। आप जहां हैं वहीं 3 दिन में रहना, वर्तमान में रहना, और वर्तमान में आनंद के साथ रहना, एकदम पागलों की तरह जैसे पागल रहते बेफिक्र। 3 दिन बाद घर का जिक्र ठीक है, इन 3 दिन में आप बेफिक्र रहना कि जो लुटता हो लुट जाए, जो डूबता हो डूब जाए। और तुम कर भी क्या सकते हो, मान लो परमात्मा रूठ जाए, एकदम से भूकंप आ जाए, पूरी पृथ्वी उल्टा दे, तो क्या तुम भूकंप रोक दोगे? ऐसा तो तुम कर नहीं सकते हो। इसलिए कर भी क्या सकते हो, जो जहां होना जैसा है तो वो हो जाने देना, जो चल रहा होगा सो चलने देना। तुम बहुत 3 दिन तक बेफिक्र रहना। तो पहला तुम्हें जो ध्यान रखना है इन 3 दिनों में, वो पहला ये गुण रखना है कि आपको वर्तमान में जीना है, कोई बोझ लेके नहीं जीना, कोई दिमाग पे प्रेशर भी मत देना, कोई ताकत भी मत लगाना। कई बार आप ये भी मत सोचना कि ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटा उपाय है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसी से ही पूरा फर्क पड़ना। एक बात आपको ध्यान रखने जैसा है कि जो बहुत छोटा है वही बहुत काम की बात है, यही बहुत काम की बात है। तो पहला गुण, पहला नियम आपको यही 3 दिन रखना है कि आपको वर्तमान में जीना है। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएंगे, बहुत आनंद के साथ खाएंगे। जब आप सोएंगे तो सिर्फ सोएंगे। और बात यदि आप माने हमारी, तो इन 3 दिनों में, क्योंकि हम सेल फोन तो जमा नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपकी भी व्यवस्था नहीं होगी, हमारी भी सुरक्षा की व्यवस्था इतनी नहीं हो पाएगी, तो हो सके तो इन 3 दिनों में आप मोबाइल बहुत कम उपयोग करें, मुश्किल से 1 घंटा 24 घंटे में। इतनी कोशिश आप करें कि 3 दिन में आप मोबाइल बहुत कम उपयोग करें, सिर्फ 1 घंटा, नहीं तो फिर ब्रेन डिटॉक्स नहीं हो पाएगा, उल्टा और वो वहाँ का कचरा तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा, और यहाँ तुम साफ करते जाओ, फिर घर जाओगे तो बराबर के बराबर, जैसे घर से आए थे वहीं यहाँ से जाओगे। लोग घर वाले पूछेंगे कुछ हुआ, बोले हुआ तो है, जो वहाँ कचरा आता रहा दिमाग में वो साफ हुआ है। तो घर वाले पूछेंगे जो घर से कचरा ले गए थे वो साफ हुआ, वो नहीं हो पाया। ऐसे आपको फिर कई सेवर लग जाएंगे, तब भी आपका ब्रेन साफ ना हो पाएगा, माइंड डिटॉक्स ना हो पाएगा। तो 24 घंटे में आपको एक बार 20-30 मिनट दिन में और 20-30 मिनट शाम को, कोई जरूरी काम के लिए, कोई आपको बात करनी है, कोई आवश्यकता है, तो इन 3 दिन में आप इतनी कोशिश करना है कि आपको मोबाइल बहुत कम चलाना है। और तीसरी बात, इन 3 दिन में आपको सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है। एक्टिव का मतलब आपको कुछ दौड़ भाग नहीं करनी है कि आप पुशअप करने लगो, डंबल उठाने लगो, ऐसा कुछ भी नहीं आपको करना है। सक्रिय का मतलब जो भी हो रहा, वैसे आप धाम से थोड़ा दूर हो, यहाँ से गौशाला भी पास में है, पहाड़ी भी पास में है, किनारा भी पास में, बैठना है आपको, आपस में भी बैठना है, तो थोड़ा कम बोलें, कम बात करें, प्रकृति के पास ज़्यादा बैठें, नेचर से ज़्यादा बात करें। अभी तक आप सबसे बातें करते रहे, दुनिया से बातें करते रहे, मीटिंग करते रहे, व्हाट्सएप पर बातें की आपने, इंस्टाग्राम पर बहुत बातें की, अब इन 3 दिनों में आपको खुद से बातें करनी है। इतना ध्यान रखना है आपको कि 3 दिन में आपको बहुत मौन रहना है, जितना कम बोलें इशारों में काम चले, इशारों में आपको काम करना होगा, वरना कुछ आप ठीक से रिजल्ट 3 दिन बाद ले नहीं पाएंगे। यदि आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आपको ये तीसरी कोशिश करनी है कि बहुत कम बोलना है। चौथी बात, जीवन में एक बात आपको याद रखना है कि एक सही निर्णय व्यक्ति को बदल देता है, एक सही सोच व्यक्ति को बदल देती, एक सही रास्ता व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देता। आपका रास्ता बेहतर हो फिर चलते जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपका रास्ता गलत हो तो कितनी भी मेहनत करो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, और बाद में फिर यही होगा कि परिणाम ठीक नहीं निकला। ज्यादातर दुनिया के लोग यही सबसे बड़ी गलती करते कि वो मेहनत बहुत करते पहुंचते नहीं, क्योंकि रास्ते गलत होते। शोर बाहर है, शांति अंदर है। शांति बाहर है ही नहीं, आनंद बाहर है ही नहीं। जिस सुख की खोज में आज पूरे देश का युवा, पूरी दुनिया का व्यक्ति बाहर खोज रहा, आप आनंद लूटने के लिए, मजे लेने के लिए, सुख पाने के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या यूट्यूब आदि आदि प्लेटफॉर्म पर जाकर के खोज रहे हो कोई अपना, कोई अपना मिल जाए, कुछ बेहतरीन जानकारी मिल जाए, कुछ बेहतर देखने को मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, सब मोबाइल पे मिल जाए।

ऐसी खोज में जो आप जा रहे हो वो सच में वो वहां है नहीं, वो आपके अंदर है, आपके पास है, वहां कभी आप गए नहीं। इसलिए आपको ये बड़ी कोशिश करनी है एक बात समझने की कि सच्ची शांति आपके अंदर है, सच्चा सुख आपके अंदर है। उसको आपने यदि समझ लिया तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आपके आ जाए, जीवन में कितनी भी विकराल स्थिति आपके सामने प्रकट हो जाए, वो आपको डिगा नहीं सकती, आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकती, आपके मन को हीन नहीं कर सकती। इसलिए एक नियम आप अपने जीवन में बनाओ, शिकायत मत करो, सामना करो हर परिस्थिति का। शिकायत करने से आप कभी सफल नहीं हो सकते, सामना करने से ही आप सफल हो सकते। और जो भी है उसे पीछे छोड़ो, जो बीता है उसे पीछे छोड़ो। भगवान कृष्ण से कर्ण ने शिकायत की कि मैंने ऐसा भला क्या किया, ऐसा मेरा कौन सा अपराध था, मेरा जो जन्म हुआ वो बड़े अपमान में हुआ, मुझे श्राप भी गुरु का मिला, जन्म के बाद मुझे अपनों ने छोड़ा, इतना अन्याय मेरे साथ हुआ क्यों। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जन्म तो मेरा भी विचित्र हुआ, जेल में हुआ, अपनों को मुझे भी छोड़ना पड़ा, मां बाप को रात में ही छोड़ना पड़ा, बचपन में मारने के लिए पूतना को भेजा गया, तृणावर्त को भेजा गया, संकटासुर को भेजा गया, फिर भी मैंने शिकायत नहीं की, सामना किया, इसलिए मैं कृष्ण हूं तुम कर्ण हो। यही तुम्हारी जिंदगी का हाल है, तुम शिकायत करोगे तो कर्ण बन जाओगे, सामना करोगे मुस्कुराओगे तो कृष्ण बन जाओगे। आप अपने अंदर के अध्यात्म को कमजोर नहीं, इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ। और बुरा ना मानना, अंदर की शांति पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए ना हिमालय की आवश्यकता है न किसी गुफा की आवश्यकता है। और हमारे सनातन का अध्यात्म इतना कमजोर नहीं है कि आपको हिमालय जाना पड़े या आपको गुफा में जाना पड़े। इतना मजबूत है हमारा अध्यात्म कि ये शोर में शांति खोज लेता और बाजार में आराम खोज लेता है, इतना ताकतवर है अध्यात्म। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और तैयारी में सिर्फ एक ही बात, बाहर नहीं अंदर। तो जब आप 3 दिन का ये 5 स्टेप का शिविर करेंगे, कुछ देर बाद जब चालू होगा, उसमें बुद्धि नहीं लगाना। आपने बुद्धि लगाई तो ब्रेन डिटॉक्स ना हुआ, उल्टा ब्रेन में और ख्याल आए, ये करने से ऐसा, तो हमने ऐसा सुना था, फिर इसको हमने ऐसा देखा था, फिर ऐसा करने से क्या होगा, इसका क्या फर्क, जरा चेक कर लें क्या फर्क होता है, अच्छा देखते हैं हमारा ब्रेन डिटॉक्स होता भी है कि नहीं होता है, अच्छा हम देख रहे हैं, अच्छा मन हल्का हुआ कि नहीं हुआ, लग नहीं रहा है कि हुआ है, थोड़ा तो लग रहा है कि हुआ। आप ये करते रहोगे तो उल्टा और भरता जाएगा, और 3 दिन बाद आप एकदम निराश जाएंगे, इतने निराश जाएंगे कि आप जो बड़े बड़े सपने देख करके आए, बड़े बड़े ख्वाब देख करके आए, बड़ी बड़ी इमेज बना करके आए, बड़े बड़े आप विचार करके आए हैं, वो आपको ठीक उल्टे मिलते जाएंगे। फिर अभी थोड़ा आपका ऐसा डीमोटिवेट होगा, फिर थोड़ी देर में आपको चाय में धक्का मुक्की लगेगी तो और दिमाग खराब होगा, फिर आपको थोड़ी देर में भोजन में थोड़ा सा एक आध कंकड़ वंकड़ आ जाएगा तो और दिमाग खराब होगा, इससे अच्छा तो घर पर ही रहते, काय को 3 दिन बर्बाद कर लिए, और 3 दिन बर्बाद हुए सो ठीक है, यहाँ पर आकर के कुछ हुआ भी नहीं, ये और बेफिजूली में, इससे अच्छा तो 3 दिन जाकर के किसी गुफा में बैठ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाद में आपकी ये ख्याल आता तो इससे अच्छा ब्रेन डिटॉक्स होने की वजह वायरस भर जाएंगे। तो इस 3 दिन के सेवन में आपको ये सोचना ही नहीं, ये पहले सोचना है, ये आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये सोचना है, ये आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ये आपको सोचना है। एक बात तुम याद रखना अपनी जिंदगी में मेरे पागलों, ना मोटिवेशन काम आता है, ना इंस्पिरेशन काम आता है, जीवन में काम आता है तो रियलाइजेशन काम आता है। आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, कितने भी आप, और मोटिवेशनल स्पीच हमेशा याद रखना 2-4 दिन बड़ा जोश चढ़ता, 6 बजे ही उठेंगे, 2-4 दिन बहुत काम आती है मोटिवेशनल बातें, और 2-4 दिन बाद वो एकदम फुर,
तो ना मोटिवेशन बातें काम आती हैं, ना इंस्पिरेशन कहते हैं, हमारी अंग्रेजी तो ठीक जा रही ना, तो वो भी काम नहीं आती। वो किसी को देख करके भी एक दो घंटे हाँ वो उसके जैसा हमें बनना है, उसके जैसा हमें होना है। तो ना मोटिवेशन बातें काम आती हैं, ना इंस्पिरेशन बातें काम आती हैं। जिंदगी में जो भी काम आता है और जो भी सफलता दिलाता है, तुम भी जहां बैठो यदि हमारी जगह बैठना चाहते हो तो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के मार्ग पर मत चलो, चलना है तो रियलाइजेशन के मार्ग पर चलो, तो आप पहुंच जाओगे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने पुराने से पुराने दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
9: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
4: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
5: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, खूबसूरत लाइट से जगमगा हुआ दिल्ली का इस्कॉन मंदिर, कल देश भर में मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक, नई डिजाइन की पोशाकें, बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे खरीदारी, मिट्टी के मटकों की भी बढ़ी भारी डिमांड। पटना में जन्माष्टमी से पहले कृष्णोत्सव का भव्य आगाज, भोपाल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय रासलीला समारोह। अकोला में गणेश उत्सव से पहले बापा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, जमकर की आतिशबाजी। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 15 सितंबर से फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग। GSLVF 17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण, विधि विधान से पूजा कर EOS 5 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की काम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर पूरा ब्रजधाम रोशन, तमाम मंदिरों के साथ साथ दुल्हन की तरह सज गया शहर। मथुरा में आज भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन, 250 कलाकार हो रहे हैं शामिल। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में मथुरा और वृंदावन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, इस बार 50 से 75 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। जन्माष्टमी पर्व के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा के लिए खास सौगात, लड्डू गोपाल के लिए भेजी गई विशेष उपहार सामग्री। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ मथुरा रवाना हुई विशेष उपहार सामग्री, 2024 में शुरू की गई थी खास परंपरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सजाया जा रहा बद्रीनाथ मंदिर, मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर भी की गई सजावट। फूलों की जगह इस बार रंग बिरंगी लाइटों से की जा रही है मंदिर की सजावट, रास्तों पर भी की जा रही है सजावट। रंग बिरंगी लाइट की सजावट से जगमग हुआ भगवान बद्री विशाल का धाम, रात के अंधेरे में दूर तक दिख रही है मंदिर की भव्यता। मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर भी की गई विशेष लाइटिंग, 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर रात में खुले रहते हैं भगवान बद्रीनाथ के कपाट। लड्डू गोपाल के जन्म के बाद भगवान बद्री विशाल को लगाया जाता है भोग, फिर की जाती है शयन आरती। भोपाल के रविंद्र भवन में 7 दिवसीय रासलीला समारोह का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने राधा कृष्ण का स्वरूप धारण किए कलाकारों की उतारी आरती, उनका वंदन किया, राज्य की संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम। पटना के मिलर ग्राउंड में आज से कृष्ण उत्सव की वजह से शुरुआत हुई और सीएम सम्राट ने उद्घाटन किया। हर हृदय में कृष्ण, हर पल में उत्सव, रखी गई कृष्णोत्सव की मुख्य थीम, कलाकारों ने की सुंदर प्रस्तुति। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भजन और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित कार्यक्रम ने बांधा समा, कल कार्यक्रम का समापन। झांसी में दिखे कृष्ण भक्ति के अनोखे रंग, इस्कॉन के यूथ फेस्टिवल का शानदार आयोजन। कृष्ण भक्ति संस्कृति और प्रेरणा का अनूठा संगम देखने को मिला, फेस्टिवल में भक्ति रैप और रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुति। कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया है माहौल। कार्यक्रम में युवाओं की जबरदस्त मौजूदगी। इस्कॉन परिसर में वृंदावन बाजार भी श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। बाजार में भगवान कृष्ण की तस्वीरों से लेकर आकर्षक पोशाक, पगड़ी और धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध। इस मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और युवा। हर तरफ जश्न का माहौल। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए की जा रही है मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में उमड़ती है श्रद्धालु की भारी भीड़। भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए खास इंतजाम। मंदिर की सड़क का एक लेन किया गया बंद। जन्माष्टमी के दौरान श्रद्धालु की भीड़ के प्रबंधन के लिए लगाए गए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ हथियारबंद जवान भी रहेंगे तैनात। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी जारी। वृंदावन से मंगाए गए फूलों से की जा रही है मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के भोग अर्पित करने की तैयारी। 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा है इंतजाम। 100 किलो का बनाया जा रहा है केक। राजस्थान के जैसलमेर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। जैसलमेर में स्थित दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों में जबरदस्त रौनक। मंदिर पैलेस में स्थित गिरिधारी जी मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जारी। मंदिर में गाए जा रहे श्री कृष्ण शेर जुड़ेगी। कान्हा के जन्मोत्सव से पहले मंदिरों में बढ़ी रौनक। मेवों से बने खूबसूरत हिंडोले में ठाकुर जी को झूला रहे हैं श्रद्धालु। कृष्णमय हुआ शहर का माहौल। मंदिर में भजन गाते दिखे श्रद्धालु। आरती में शामिल हुई महिलाएं। मान्यता है कि अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी पर सुदर्शन चक्र से खोदा कुआं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखे स्थानीय संस्कृति के रंग। 15 साल बाद धूमधाम से निकाली जा रही है मां काली की देवरा यात्रा। केदार घाटी में गांव गांव पहुंचकर श्रद्धालु को आशीष दे रही मां काली। यात्रा को लेकर श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह। यात्रा टोली पर की जा रही पुष्प वर्षा। केदार घाटी में लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे मां काली का स्वागत। महिलाएं गा रही हैं मंगल गीत। गांव गांव गूंज रहा है मां काली का जयकारा। केदार घाटी की शक्ति और करोड़ों भक्तों की आराध्य है मां काली। 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करेंगी मां काली। परंपरा के साथ साथ इलाके की सदियों पुरानी संस्कृति और लोक विश्वास का प्रतीक यात्रा। मां काली की यात्रा को लेकर केदार घाटी में उत्सव का माहौल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज को सीएम योगी देंगे 977 करोड़ की सौगात। 57 परियोजना का लोकार्पण और 167 योजनाओं का शिलान्यास। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर। फिर से शुरू हो रही है मानसून के दौरान सुरक्षा कारणों से बंद की गई केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर सेवाएं। द्वितीय चरण की यात्रा के तहत 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन। 7 सितंबर से श्रद्धालु कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सीईओ सहित नई नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप। बदलेगा मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नगद राशि की गिनती अब मशीनों से कराने की तैयारी। 2 बैंक और आईआईटी के विशेषज्ञों से प्रस्ताव दिए गए।

0: 4 सितंबर को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूएस 5 लॉन्च करेगा इसरो। आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा होगी बेहतर। जीएसएलवीएफ 17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। विधि विधान से पूजा कर सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की कामना। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक से बने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खगंतक 243 का किया सफल परीक्षण। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जेएसआर डायनेमिक्स ने मिलकर किया तैयार। लगभग 140 किलोमीटर से अधिक की दूरी से लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ तबाह कर सकता है ये बम। सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान से किया गया परीक्षण। पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान की नई पारी। प्राइवेट एयरलाइन FLY-91 से जुड़े अभिनंदन। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने बजाई NASDAQ एक्सचेंज की ओपनिंग बेल। कहा, बढ़ रही है भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी। दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी भी हुए शामिल। पीएम ने जल सुरक्षा को देश और धरती के लिए बताया जरूरी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर में नशे के खिलाफ अभियान। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कफ के प्रतिबंधित सिरप की शीशियों पर चलाया रोड रोलर। गोरखपुर एम्स से शुरू हो सकती है एयर एम्बुलेंस सेवा। इस महीने के अंत तक तैयार हो सकता है गोरखपुर एम्स का हेलीपैड। एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के मानदंडों के मुताबिक तैयार किया जा रहा हेलीपैड। एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से मरीजों के लिए होगी सुविधा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आर्मी ने आयोजित की स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। राष्ट्रगान से हुई टूर्नामेंट की शुरुआत। आर्मी ने लड़कियों को खेल में हिस्सा लेने के लिए किया प्रोत्साहित।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

0: खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, खूबसूरत लाइटों से जगमग हुआ दिल्ली का इस्कॉन मंदिर। कल देश भर में मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक, नई डिजाइन की पोशाकें, बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे हैं खरीदारी, मिट्टी के मटकों की भी भारी डिमांड। पटना में जन्माष्टमी से पहले कृष्णोत्सव का भव्य आगाज हुआ। भोपाल में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय रासलीला समारोह का आयोजन। अकोला में गणेश उत्सव से पहले बापा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, जमकर की गई आतिशबाजी। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग होगी। जीएसएलवी F-17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन, विधि विधान से पूजा कर EOS-5 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की कामना।

0: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जो खास उमंग है, जो उत्साह है, वो GNT के स्टूडियो में सज चुका है और हमारे स्टूडियो से हम आपको तमाम ऐसे ही कुछ भजन सुनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की उमंग सिर्फ हमारे स्टूडियो तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में लोग इसको लेकर डूबने को तैयार है।
1: आपको बता दें, उनके जन्मस्थान मथुरा के कारागार से लेकर वृंदावन की कुंज गलियों तक और देश के कोने कोने से लेकर सात समंदर पार तक हर तरफ बस हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है।
0: मंदिरों को अलौकिक रोशनी और सुगंधित फूलों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो कहीं पर कान्हा के स्वागत के लिए 56 भोग और पंचामृत की तैयारियां अंतिम चरण में है। द्वापर युग के उस दिव्य क्षण को मथुरा में एक बार फिर से जीवंत करने के लिए भक्तों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है।
1: तो वहीं दिल्ली सहित दूसरे शहरों और श्रीहरि के धाम बद्रीनाथ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं।
0: तो श्री कृष्ण के इस खास उत्सव पर हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जसराज जी के शिष्य परुमिता देशमुख जी मौजूद हैं हमारे साथ। परुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, जो कान्हा के भजन से कार्यक्रम को संगीतमय बनाएंगी। सुमित कुमार तबला वादक उनके साथ देंगे और साथ ही हमारे संवाददाता कृष्ण के मंदिरों से लाइव भी जुड़ेंगे, वहां की रौनक भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए।

0: आ रहे हैं कान्हा। किशन कन्हैया के जन्मोत्सव की घड़ी करीब आ रही है। मुरलीधर के स्वागत के लिए देश के कोने कोने में तैयारियां चल रही हैं। खास तौर से कृष्ण नगरी मथुरा इस उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। अब उस पल का इंतजार है जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र लगेगा और पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले वासुदेव योगेश्वर गिरधारी का प्राकट्य होगा। जन्माष्टमी के इस खास अवसर के लिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को शानदार तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट से सजी श्री कृष्ण जन्मभूमि की छटा देखते ही बनती है।
1: जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि भगवान का प्राकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवास करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं।
0: इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के अलौकिक दर्शन होने वाले हैं। इसके लिए जन्मभूमि के अंदर भी अनूठी लाइटिंग की गई है।
1: मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है अंदर भी और मंदिर के बाहरी परिसर में भी।
0: गोवर्धन धारी सर्वव्यापी देवकी नंदन मुरारी भगवान माधव गोविंद के जन्मोत्सव के सिलसिले में दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भी जोरदार तैयारियां की गई है। यहां पर मनमोहक झांकियां सजाई गई हैं और भजन कीर्तन का सिलसिला अभी से जारी है। इस्कॉन मंदिर में 4 सितंबर को तड़के 4 बजे से ही दर्शन शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर यहां लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है। जन्माष्टमी का उत्सव इस मंदिर में सुबह 4 बजे से मध्य रात्रि तक मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की घड़ी नजदीक है तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम को भी फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता भगवान बद्री विशाल का मंदिर दूर से ही बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर भी विशेष लाइटिंग की गई है जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ा रही है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। ऐसे में श्रीहरि के सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ में इस पावन अवसर पर उत्साह देखते ही बनता है। जन्माष्टमी की रात बद्रीनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान बद्री विशाल के कपाट जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि में भी खुले रहते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद ही भगवान बद्री विशाल को भोग लगाया जाता है और शयन आरती की जाती है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी ब्रजभूमि के समान ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्साह देखते ही बनता है। जैसलमेर का भगवान श्री कृष्ण से खास नाता माना जाता है। मान्यता है कि द्वारका जाते समय अर्जुन को प्यास लगी थी तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर सुदर्शन चक्र से कुआं खोदा था जो आज भी मौजूद है। लिहाजा आज भी यहाँ पर धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। खास तौर से यहाँ के श्री गिरधारी जी के मंदिर में जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियाँ की जा रही है। मंदिर में कृष्ण जन्म की बधाइयाँ गाई जा रही हैं। ठाकुर जी को मेवों से बने खूबसूरत हिंडोले में झुलाया जा रहा है और भक्ति और श्रद्धा के अनूठे रंग दिख रहे हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया, बद्रीनाथ से कमल नैन सिलोड़ी और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो जन्माष्टमी का पर्व है, देश भर में भक्ति उत्साह उमंग देखने को मिल रही है और इसी पर्व पर हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पंडित जसराज की शिष्या परोमिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ सुमित कुमार जी मौजूद हैं, तबला वादक हैं, इसके अलावा हमारे साथ शंभू जी मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से आपने अपनी श्लोक के साथ शुरुआत की कार्यक्रम की, मंत्रमुग्ध कर देने वाला वो श्लोक था। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जन्माष्टमी के पर्व पर जिस तरह से लोगों के मन में आनंद होता है, गोकुल में उस वक्त जब श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, अवतरित हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो जो आनंद उस वक्त था, अगर उसे सुरों में बयां करना हो तो आप किस प्रकार करेंगे?
2: जब जन्म हुआ था तब। ओके, ठीक है। एक मेरे गुरुजी का है, मिसे ही मिसे आए गोकुल के नाल, तो वो मैं गाती हूँ।
0: जी बिल्कुल।

0: बहुत खूब गाया आपने, और भी भजन आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे साथ राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। राज जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, हर जगह पर बाजार सज चुके हैं, और मथुरा नगरी की तो बात ही क्या करें, वहां पर भी पूरी सजावट है, बस इंतजार है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का। इस बार क्या ऐसी खासियत है इस जन्मोत्सव में, ये थोड़ा बताइएगा, और क्या योग बन रहे हैं इस बार?
1: देखिए अगर मुझसे आप एस्ट्रोलॉजिकली इस जन्मोत्सव की बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद जो समय वो था द्वापर का, जब भगवान कृष्ण का वास्तविक जन्म हुआ था, ऐसा समय बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। जो ये भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की जो तिथि हमें प्राप्त हो रही है, जो परिस्थितियां हमें प्राप्त हो रही हैं, ऐसा समय एस्ट्रोलॉजिकली आसानी से प्राप्त नहीं। जब कहा जाता है योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, जब सब अपने अपने परफेक्ट प्लेस पर पहुंच जाएं, एवरी प्लैनेट नक्षत्र योग तिथि एवरीथिंग, लाइक अगर इस बार की हम बात करते हैं तो चंद्रमा वृष राशि के अंतर्गत विराजमान होंगे। भगवान का जब जन्म हुआ था तब ये नियम था कि रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत चंद्रमा विराजमान थे, वृष राशि में चंद्रमा विराजमान थे, और वही परिस्थिति इस बार की जन्माष्टमी पर पड़ने जा रही है कि भगवान कृष्ण का जो जन्म का लग्न था यानी वृष लग्न, भगवान कृष्ण की जो जन्म राशि है यानी वृष राशि, वो दोनों रात्रि को 12 बजे विद्यमान होंगी। इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। इस बार अगर मैं ग्रह योग की बात करूं, हंस नामक महापुरुष जो पंच महापुरुष योग है, स्पिरिचुअलिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट सुप्रीम प्लैनेट जुपिटर अपने एग्जॉल्टेड राशि यानी कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। शुक्र जो कि वृष भगवान कृष्ण के जन्म लग्नेश हैं, जिसके कारण कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो मंत्रमुग्ध कर देता है, मोहित कर देता है, बिकॉज उनके शुक्र बहुत अच्छे हैं। और इस बार बहुत वर्षों बाद ऐसी परिस्थितियां पड़ रही हैं कि जब शुक्र अपने स्वराशिगत राशि में अपने तुला राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, तो अगर इस बार के मैं ग्रहों की बात करूं, इस प्रकार के योगों की बात करूं, इस प्रकार के परिस्थितियों की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि जिन योगों को मनुष्य ढूंढता है, जो वास्तविकता में परमात्मा को हृदय में प्रकट करने वाला योग होना चाहिए, वो योग इस बार बन रहा है। जो योग द्वापर में बना था जब भगवान का एक्चुअल अवतरण हुआ था, वो योग इस बार बन रहा है। भगवान वास्तविकता में दोबारा द्वापर की तरह अवतरित होने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आवश्यक है कि हमारे हृदय के अंदर वो भाव होना चाहिए, वो विचार होना चाहिए। जिस प्रकार देवताओं ने जब भगवान का अवतरण हुआ तो उस टाइम पर प्रार्थना किया था, किस प्रकार प्रार्थना किया देवताओं ने, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी। देवता मिलकर के भगवान से आराधना करते हैं कि जय जय सुरनायक, आप देवताओं के भी राजा हैं, देवाधिदेव हैं, आप देवताओं के पति हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, आप लोगों को सुख प्रदान करते हैं प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी आप इस संसार के मनुष्यों का हित करने वाले हैं जय असुरारी, तो वो प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि प्रारंभ में मैं धन्यवाद करूं द्वारा जयंती का कि हम अलग अलग तीर्थों का बैठे हुए स्क्रीन पर या अपने घरों में बैठे हुए दर्शन कर पा रहे हैं, और इस दृश्य का दर्शन करके जिस प्रकार देवताओं ने भगवान कृष्ण के जन्म से पहले प्रार्थना की थी, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, मुझे लगता है उस आराधना को आज पूरे दिन बैठ करके आप जीएनटी लगा करके अपने घर में रखिए। यदि अपने घर को क्लीन करना चाहते हैं, अपने घर का ऑरा अपने घर की एनर्जी क्लीन करना चाहते हैं, अपने हृदय की एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में घर में जीएनटी लगा करके रखिए। और लगा करके कोई भी काम, घर की महिलाएं माताएं बहनों में निवेदन कर रहा हूं, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो कार्य करते हुए बस भगवान को बुलाना है, और वो बहुत श्रद्धा से स्वागत

0: पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस प्रकार से दोनों चीजें भगवान का, आज ही से मुझे लगता है हमेशा भगवान का स्वागत करना चाहिए। मथुरा कुछ और नहीं है, मथुरा हमारा आपका शरीर है, हमारी आपकी आत्मा है, और इस आत्मा के अंदर अगर भगवान को बुला लिया जाए तो मैं निश्चित कह सकता हूं कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर पाए। क्योंकि कहा गया जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, भगवान का प्राकट्य घर में हो जाए, हृदय में हो जाए, तो सब अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। और उसका तरीका वही वाला है जो देवताओं ने अपनाया था द्वापर युग के अंतर्गत, वही तरीका अपनाते हुए पूरा दिन सिर्फ कुछ भी करते हुए, कैसे भी करते हुए, उठते बैठते कार्य करते, सिर्फ एक शब्द स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हे प्रभु आपका स्वागत है, मुझे अपनी शरणागति प्राप्त कीजिए, प्रदान कीजिए, मैं पूरी तरह से सरेंडर हूं, मैं पूरी तरह से आपके शरण में हूं, ये प्रार्थना करते हुए ये गाते रहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये गाते रहिए। जब भी समय मिले मैं निवेदन करूंगा परिवार के साथ बैठिए, रामायण के बालकांड का दोहा नंबर 185 से 186 खोल लीजिए, वहां पर वो प्रार्थना है जो देवताओं ने भगवान से अवतरण के लिए किया था, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता, श्रद्धा से उसको बैठ करके घर में कीजिए। और पूरा दिन मैं दोबारा कहूंगा, मत लगाइए कोई चैनल घर के अंदर, मेरे ये पर्सनल व्यू है, क्योंकि हमें अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी चाहिए इन दो दिन के अंदर। भगवान का अवतरण, भगवान का प्राकट्य तभी घर में हो सकता है, तभी जीवन में हो सकता है जब घर का माहौल क्लीन हो, घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो, लोगों की ऊर्जा पॉजिटिव हो, ऐसे परिस्थिति के अंदर
1: श्री कृष्ण का नाम जपा जाए तो घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। राजी आपके पास लौटेंगे, कुछ लीलाओं के बारे में भी समझेंगे कृष्ण जी की। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: खूबसूरत लाइटों से जगमग हुआ दिल्ली का इस्कॉन मंदिर, कल देश भर में मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। मुंबई में जन्माष्टमी पर गोविंदाओं की मंडली का धमाल देखने को मिला, दही हांडी फोड़ने की जबरदस्त तैयारी, इस बार 5 सितंबर को होगा आयोजन। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक, नई डिजाइन की पोशाकें, बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे खरीदारी, मिट्टी के मटकों की भी यहां पर भारी डिमांड। पटना में जन्माष्टमी से पहले कृष्णोत्सव का भव्य आगाज, भोपाल में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय रासलीला समारोह। अकोला में गणेशोत्सव से पहले बप्पा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, जमकर की आतिशबाजी। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग।

0: नमस्कार, लंच टाइम में स्वागत है आप सभी का। तो कृष्ण जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा देश भर में, लेकिन जीएनटी पर ये खास पेशकश आज ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के रंग तो पूरे देश में बिखरे हुए हैं, लेकिन उससे पहले देश भर के हिस्सों में किस प्रकार की रौनक है, वो सारी रौनक दिखाने के लिए हमने आपके लिए स्टूडियो में ही खास इंतजाम कर दिया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पौरमिता जी हमारे साथ हैं, शंभु सुमित हमारे साथ हैं, आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: बहुत स्वागत है आप सभी का। आज कृष्ण जन्मोत्सव के रंग देखने वाले हैं, खास कार्यक्रम अभी जारी है। मथुरा से लेकर मुंबई तक कान्हा के स्वागत में पूरा देश कृष्णमय हो गया है। खास तौर पर मथुरा में जन्माष्टमी की रौनक देखते ही बन रही है। ब्रजधाम दुल्हन की तरह सज चुका है। मंदिरों से लेकर गलियों तक बस कान्हा के आगमन का इंतजार है। काशी से कान्हा के लिए खास उपहार भेजे गए हैं, तो झांसी में भव्य झांकियों के जरिए युवाओं को कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जा रहा है। भोपाल में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कृष्ण लीला का मंचन हुआ। कृष्ण जन्म से लेकर उनकी लीलाओं तक हर दृश्य ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया।
0: और देखिए, जन्माष्टमी के मौके पर मुरादाबाद समेत देश भर के बाजार लड्डू गोपाल की मनमोहक मूर्तियों से भरे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु लड्डू गोपाल और पालना समेत उनके सुंदर परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं। पूरे देश में तकरीबन ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। कृष्ण भक्तों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, इंतजार है तो बस नंदलाल के आने का। तो ऐसी ही तस्वीरें लगातार आपको जीएनटी पर हम कल से दिखा रहे हैं। बाजारों में रौनक है, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त निकल पड़े हैं। अपने अपने तरीके से अपने आराध्य के आगमन का इंतजार करते हुए ये तमाम श्रद्धालु उनके लिए लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बाजार गुलजार है, मंदिर गुलजार है, और किस प्रकार की रौनक है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण की लीलाओं के बारे में भी आपको लगातार हम जीएनटी पर जानकारी दे रहे हैं।
1: देखिए, देश भर में खासा उत्साह, उमंग, उल्लास देखने को मिल रहा है। देश भर में लोग भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जो भावों को प्रकट करेंगे, किस तरह की भक्ति लोगों के मन में है ये जाहिर करेंगे। पौरमिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पौरमिता जी, अगर बात करें श्री कृष्ण की लीलाओं की, तो कौन से सुर आपके मन में आते हैं, किस तरह से आप इस भाव को प्रकट करेंगी?
2: जी, मेरे गुरुजी पंडित जसराज जी के एक गाना है, भजन है, श्री गोविंद दामोदर माधवेदी। अभी जैसे पंडित जी ने भी बोला तो वही गाती हूँ मैं।

0: देखिए पारमिता जी, मन तो नहीं कर रहा हम दोनों का कि आपको बीच में हम रोकें, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि और भी तस्वीरें देश भर के हिस्सों से लगातार सामने आ रही हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास मुंबई। मुंबई में इस वक्त कैसी रौनक है क्योंकि कान्हा आ रहे हैं। धर्मेंद्र दिखाइए इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कैसी तस्वीरें?
1: देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मुंबई के चूहू, जहां पर दुनिया भर के सेलिब्रिटी रहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब का भी बंगला बगल में ही है, और उसके बगल में ही जू इस्कॉन, एक बहुत बड़ी मंदिर, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएं। अभी तो फिलहाल श्री कृष्ण और राधे जी का जो मुख्य द्वार है उसे बंद किया गया है, 15 मिनट पहले ही बंद किया गया है, क्योंकि 12:30 बजे फिर एक बार खोला जाएगा, आरती होगी। लेकिन थोड़ा सा मंदिर परिसर के भी तस्वीरें देखें, किस तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया है चीजें। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी श्री कृष्ण जी का दरबार खुले और उनके दर्शन हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो भी इतने प्रभु हैं यहाँ पर, वो सभी भजन कीर्तन कर रहे हैं, और भजन कीर्तन के साथ यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं पूरी तरह से लीन हो गए हैं। अब थोड़ा सा तस्वीरें देखें कि कैसे फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से जुहू के इस इस्कॉन मंदिर को सजाया गया है। जहां भी आपकी नजरें जाएं, एक से बढ़कर एक फूल हार तो देखने को मिल ही रहे हैं। इसके अलावा लाइटिंग भी देखने को मिल रही है, एक दल वहां बैठा था, एक ग्रुप यहां भी बैठा हुआ है। देखिए प्रसन्नता है सभी के चेहरे पर, और सभी चाह रहे हैं कि कितने जल्दी श्री कृष्ण जी का दरबार खुले और उनका आशीर्वाद यहां पर ले लिया जाए। थोड़ी सी तस्वीरें बाहर की भी दिखाएं कि यहां तक ही ये सीमित नहीं है मामला। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां भी चीजें सजा कर रखी गई हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के एक अच्छी तगड़ी तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। हमेशा ही अमूनन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन जब बात कृष्ण जन्माष्टमी की आती है तो माहौल कुछ और ही होता है। हमारे साथ यहाँ पर जो इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, जो प्रभु के रूप में हैं। सर प्लीज पधारिए। राधे कृष्णा।
2: हरे कृष्णा।
1: तो थोड़ा सा बताएं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से जो इस्कॉन की तरफ से होनी है?
2: हरे कृष्णा। तो हम अभी इस्कॉन जुहू मुंबई मंदिर के प्रांगण में हैं। आपको थोड़ी देर में ठाकुर जी का दर्शन होगा, श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर का। तो इस्कॉन जुहू का जो जन्माष्टमी प्रोग्राम होता है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। कल जन्माष्टमी 10 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, और रात को 2 बजे तक दर्शन होगा। मतलब भगवान का बर्थडे है और भगवान ओवर टाइम करने वाले हैं, वो रात भर दर्शन देंगे। और आप देख रहे हैं मंदिर में बहुत अच्छा फूलों का सजावट है, भगवान कृष्ण को फूल बहुत पसंद है, उनको कल नया पोशाक देंगे, नए गहने देंगे, अच्छा फूल माला होगा, 56 भोग तो पूरा दिन लगा रहेगा। और जो विजिटर्स आते हैं 10 लाख, उनके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। मंदिर के बाहर क्यू लगता है, भारी चप्पल का स्टैंड है ताकि वो चप्पल उतार सकें, लेकिन अभी धूप भी कभी कभी होता है या कीचड़ होता है, तो हमने पूरे रोड पे दरी बिछाया है कि भक्त लोगों के पैरों को तकलीफ नहीं हो। और क्यू में प्यास लगता है तो पानी दिया जाता है, और क्यू के द्वारा वो अंदर आते हैं, जिसको चाहिए उनको फूल फल मिठाई तुलसी का भोग दिया जाता है, वो आकर भगवान को अपने हाथ से भोग दे सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। फिर दर्शन के बाद उनको मिठाई या प्रसाद हलवा दिया जाता है, पूरा भोजन दिया जाता है।
1: भोजन भी बड़ा प्यारा होता है यहाँ पर, एकदम प्योर घी वगैरह का खाने में भी मजा आता है, और मुझे लगता है मसाले भी बहुत ज्यादा नहीं होते, अगले की तरह का एक प्रसाद होता है।
2: हाँ, हमारा जो प्रसाद होता है वो एकदम सात्विक होता है और सबके लिए फ्री होता है। तो कल जन्माष्टमी प्रोग्राम में आप सब लोग जरूर आइए। देखिए हमें ये भी जानना है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, वो कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता, जो बुराई है उसको हटाने के लिए और जो अच्छाई है उसको बचाने के लिए। अभी कोई कहेगा आज के ज़माने में तो वो राक्षस, वो असुर, वो रावण, वो हिरण्यकश्यप, वो कंस नहीं है, पहले भी थे, अभी भी है, अभी वो शर्ट पैंट में है, 3-पीस सूट में है, अभी वो हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में भी बुराई है। जैसे रोज हम अपने शरीर का
0: धर्म देखिए, कृष्ण की लीलाओं को अगर समझना है तो हमें अपने भीतर भी एक बार झांकना होगा। अच्छाई और बुराई का मेल अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार आपको खुद को भी खंगालना होगा। बिल्कुल ठीक कहा, और जिस तरह से अभी पंडित जी ने ये भी बताया था, राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य, उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होते हैं हमारे मन के भाव। हम किस तरह से अपने भाव को जाहिर करते हैं, किस तरह के भाव इस दिन रखते हैं, वो बेहद जरूरी होता है। पंडित जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे जाना चाहूंगी, विधि विधान के बारे में भी एक बार आप बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर किस तरह से विधि से पूजा की जाए।
2: महामंत्र हम हमेशा गाते हैं, आप भी हमारे पीछे गाइए, हरे कृष्ण।
0: राज जी, राज जी आपको आवाज आ रही है? चलिए राज जी तक आवाज नहीं वो पहुंच पा रही है। इसी बीच हमारे साथ पौरोमिता जी जुड़ी हुई हैं। पौरोमिता जी, अब आपके मन में कौन सा गीत, कौन सा भजन आ रहा है?
3: वही भजन गाऊंगी, आधा में
0: आप कंप्लीट करना चाह रही थी, ठीक है
3: उसी को ही गा लें।
0: बिल्कुल,
3: गोविंद दामोदर माधव थे।

0: खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, हमने एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर रखी है और पौरोमित्र जी को आज तो हम जाने नहीं देंगे, हमने ऐसा प्रॉमिस लिया है इनसे। चलिए, राज जी के पास वापस आना चाहूंगी। राज जी, सवाल आपसे ये है, कृष्ण भगवान की जितनी भी लीलाओं के बारे में हम जिक्र करते हैं ना, क्या संदेश छुपा है? मुझे लगता है कि अगला जन्म शायद लेना पड़ जाएगा कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में हम व्याख्या यहाँ पर करने लग जाएं, अगर उनको समझने लग जाएं, क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण के, परमात्मा के एक्चुअल में लीला को समझने के लिए मानव का एक जीवन तो बहुत नहीं हो सकता है। उनके एक एक दृश्य को, अगर एक एक लीला को एक्चुअली में अगर समझना शुरू करें तो समाज को मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को उनसे प्राप्त हो जाएगा। भगवान को अहंकार नहीं प्रिय है। आप लोग बहुत सारी जगह पर इस प्रकार देखते हैं परमात्मा ने किनको अपनाया है। मैं एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण भगवान का देना चाहूंगा। माता यशोदा प्रतिदिन भगवान के साथ क्या करती थी, उनको बहुत सुंदर, क्योंकि जो नंद बाबा थे उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो माता यशोदा उनका बड़ा सुंदर श्रृंगार करती थी, उनको सुंदर हार पहनाती थी, उनको सुंदर पग पहनाती थी, उनका सुंदर श्रृंगार करके और बिल्कुल तैयार करती थी कि मेरा जब लाला जाएगा, मेरा पुत्र जाएगा गौ इत्यादि चराने के लिए, तो सबसे सुंदर लगना चाहिए। लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं कि भगवान ने कभी भी उन जो उनके आभूषण थे उसको स्वीकार ही नहीं किया परमात्मा ने। परमात्मा ने इवन पैर के अंदर, जब तक भगवान रहे गोकुल के अंदर, भगवान ने पैर के अंदर चप्पल वास्तविकता में नहीं धारण किया और ये समाज को बताया। और इसलिए नहीं धारण किया, इसलिए वो श्रृंगार धारण करके नहीं जाते थे कि मेरे मित्रों को कहीं ऐसा ना लगे कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि मधुमंगल हैं, सुदामा श्रीदामा हैं, उनके बहुत सारे इस प्रकार के जो मित्र मंडली वहां पर रहती थी, सुमंगल इत्यादि, मधुमंगल इत्यादि, जिनके पास शायद इस प्रकार का विपन्नता थी कि कहीं खाने के लिए प्रॉपर नहीं था, रोज जो आता था उसी में भोजन इत्यादि होता था, तो उनको कहीं ऐसा ना फील हो कि वो छोटे हैं मैं बड़ा हूं। इसलिए परमात्मा ने पैरों के अंतर्गत चप्पल नहीं पहना और वो चीजें स्वीकार नहीं की जो उनको एक अलग दिखा सकती थी उनके मित्रों से। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार मित्रता का वर्णन किया है कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा और संतत गाहि मित्र गुण एहा, मित्रता कैसी होनी चाहिए भगवान ने बाकायदा सिखाया। शायद सब लोगों ने वो अघासुर की वो कथा सुनी होगी, जब अघासुर अपना मुख खोल करके अजगर का स्वरूप लेकर के और बैठा रहता है, उसको लगता है कि एक बार कान्हा आ जाए तो मैं अपने मुख को दबा दूंगा। कंस ने भेजा था मारने के लिए। अब क्या होता है कि भगवान तो वहां नहीं जाते हैं, लेकिन भगवान के मित्र अंदर चले जाते हैं और भगवान ये जानते हैं बाल स्वरूप में कि ये अघासुर है, जैसे ही यहां पर मैं प्रवेश करूंगा ये अपने मुख को दबा देगा, लेकिन मार डालने के लिए मुझे यहां पर बैठा है। मित्र घुस गए, भगवान चाहते तो नहीं जाते, लेकिन जब भगवान को दिखा कि मेरे मित्र वहां चले गए हैं, बिना मित्र का मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, तो भगवान भी अघासुर के उस मुख में प्रवेश करते हैं और जाकर के उसका उद्धार करते हैं, उसका वध करते हैं और अपने मित्रों को बचाते हैं। तो जितनी भी चीजें भगवान से वास्तविकता में सीखा जाए, मुझे लगता है वो बहुत कम होगा। उद्धव जी के उस अहंकार की चर्चा अगर की जाए तो मुझे लगता है बड़ा, उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार था। बृहस्पति के उद्धव जी शिष्य हैं, तो उनको यह था कि मुझसे ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण ने उनको गोपियों के पास भेजा और गोपियों से ज्ञान लेने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उद्धव, मैं जानता हूं तुम परम विद्वान हो, लेकिन एक बार जाओ उन गोपियों को आत्मतत्व समझाओ। एक्चुअल में आत्मतत्व समझाने के लिए नहीं भेज रहे थे, बल्कि उद्धव जी को यह सिखाना चाहते थे कि इस दुनिया में प्रेम सर्वोपरि है। ज्ञानीवान अगर प्रेमी ना हो, विनम्र ना हो, तो उस परिस्थिति में उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है। और उद्धव जी को जब गोपियों के पास भेजा और गोपियों को जाकर के उद्धव जी ज्ञान देना शुरू करते हैं कि किस कृष्ण की तुम बात कर रही हो, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनका ऐसे आराधना करनी चाहिए, वैसे आराधना करनी चाहिए, तो शायद गोपियों ने वो सुंदर शब्द कहा था, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहां प्रेम, प्रेम को सर्वोपरि किस प्रकार होना चाहिए वो गोपियों ने उद्धव जी को सिखाया और वो फिर अपने ज्ञान के जो अहंकार था उसको नीचे आकर के प्रेम की परिस्थिति में आए। तो भगवान कृष्ण के लिए अगर त्याग को लेकर के चर्चा की जाए, उनका अगर गौ सेवा को लेकर के चर्चा की जाए, गौ प्रेम को लेकर के चर्चा की जाए, मुझे लगता है सब कुछ वर्णन करने में कई जन्म लग जाएंगे। जी
0: बहुत सुंदर शब्दों में आपने बताया आचार्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ धर्मेंद्र मुंबई से बने हुए हैं। धर्मेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे, जरा एक बार फिर से बताइएगा क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं। उससे पहले हम आपको दिल्ली लिए चलेंगे, दिल्ली की तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे, जहां पर मनीषा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर सजावट, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, तस्वीरें दिखाइए।
2: बिल्कुल दीपाली, मेरी इस वक्त मौजूदगी है ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में, और सबसे पहले तो मैं मंदिर की ही तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कल यानी 4 सितंबर की तैयारी जो है, कृष्ण जन्मोत्सव की जो तैयारी है वो यहां पर पूरी तरीके से आपको पूरी नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हूं। सामने मेन ऑल्टर है जहां पर जो है भगवान राधा रानी और कृष्ण भगवान जी की जो है मूर्ति है, लेकिन अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो ऑल्टर को जो है बंद कर दिया गया है। लेकिन आप तैयारियां देख सकते कि ये एक अंतिम रूप देते हुए आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि लोग यहीं से जाएंगे तो उनके लिए ये रोज बनाई गई है और उसी को अब जो है रंग बिरंगे कपड़ों से जो है सजाया जा रहा है। ये पूरा प्रमाइसिस जो है, ये पूरा मंदिर परिसर जो है, चाहे फिर वो मंदिर के बाहर की बात करें या मंदिर के अंदर ऑल्टर की बात करें, इसको इसी तरीके से रंगारंग कपड़ों से जो है वो सजाया जा रहा है, ताकि वो खूबसूरती जो है रात के समय में अलग से ही निकल कर आए। लाइट्स के साथ ये मंदिर जिस तरीके से जगमगाएगा, वाकई में लगेगा कि ये सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं है बल्कि बड़ा एक सब है जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश में जो है इस वक्त मनने वाला है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारी आपको महिलाएं नजर आ जाएगी जो इस वक्त आपको गोपी लुक में तैयार हुई भी नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे राधा रानी जो है, राधा रानी और गोपियां जो है जिस तरीके से मेकअप करती थी, आपको उसी मेकअप में ये लड़कियां भी नजर आ जाएगी, और यही इस उत्सव की खूबसूरती है। जब तक आप इस तरीके का मेकअप नहीं कर लेते, जब तक आप इस तरीके के वस्त्र नहीं पहन लेते, जन्मोत्सव जो है थोड़ा सा अधूरा जो है वो लगता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़कियां जो है वो बिल्कुल आपको गोपियां ही नजर आएगी, चाहे छोटी बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, हर कोई इसी मेकअप के साथ नजर आएगा। तो बच्चों से ही मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी। किसने किया आपका ये मेकअप पहले बताइए?
3: मेरी मम्मा ने।
2: मम्मा ने मेकअप किया, बहुत सुंदर लग रहे हो। जन्मोत्सव है तो उसके लिए भी आप पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हो। कुछ आपने भी खास किया है कि कल आप कुछ करने वाले हो, डांस करोगे कुछ?
3: डांस करेंगे।
2: डांस करोगे? आप बताइए, मेकअप आपने करा है तो हर साल ऐसे ही रहता है कि भाई कृष्ण जन्मोत्सव बिना मेकअप के अधूरा है?
4: बिना मेकअप के तो मैम अधूरा है जन्मोत्सव तो। और ये मैंने अपनी बेटी का लुक किया है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। मैं भी, तो मैंने अपनी बेटी का लुक किया है। ये पूरी टीम है हमारी।
2: अच्छा, ये पूरी जो है आप लोगों की टीम है, आप ये सब देख रहे हैं, तो ये सभी मेकअप आर्टिस्ट है जिन्होंने ये मेकअप कर आए। अच्छा, किसी को अगर मेकअप करवाना है तो आप लोग कर दोगे यहाँ पे?
5: हाँ जी बिल्कुल।
2: यहीं पर सेटअप है आपका या नहीं है?
5: यहाँ पे नहीं, बट ग्रेटर नोएडा हमारा है।
2: अच्छा, ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, लंबा रास्ता सफर जो है तय करना पड़ेगा, लेकिन आप ये खूबसूरती देख सकते हैं दीपाली शगुप्ता कि किस तरीके से आपको यहाँ पर लड़कियां जो है बेहद ही खूबसूरत तरीके से श्रृंगार में जो है वो नजर आएगी, और ये वाकई में इस जन्मोत्सव की खूबसूरती है। चाहे आप कृष्ण भगवान जी का लुक देख लीजिए, चाहे आप राधा रानी का लुक देख लीजिए, इसी तरीके से आपको खूबसूरत वस्त्र में जो है रंग बिरंगे जो वस्त्र है वो पहने हुए नजर आएंगे। तो वाकई में हर कोई जो है 4 तारीख के लिए उत्साहित है कि किस तरीके से जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाएगा धूमधाम से, और आज ही उसकी जो तैयारियां है, हालांकि अंतिम रूप में है, एकदम जो छोटे छोटे काम रहे हैं वो आपको जो है नजर आने वाले हैं, लेकिन जो अहम चीजें थी, चाहे फिर वो वस्त्र की बात हो, कृष्ण जी के श्रृंगार की जितनी भी चीजें होती उनकी बात हो, भोग की बात हो, वो लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंदिर के बाहर की अगर मैं आपको तस्वीरें अभी दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं अभी वहीं बाहर से आई हूँ, मंदिर वाकई में इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वृंदावन की जो झलक है वो दिल्ली में भी आपको जो है देखने को मिल रही है। और वाकई में ये अभी दिन का समय है, लेकिन जब रात होगी, जब लाइटें ऑन होगी, तो ये मंदिर पूरी तरीके से जगमगाएगा, चाहे वो ईस्ट ऑफ कैलाश द्वारका स्थित इस्कॉन हो या फिर कहीं पर भी हो, मतलब हर कोई मंदिर जो है इसी तरीके से उसकी खूबसूरती जो है नजर आने वाली है। तो एक बार वापस से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये तो मैं मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से रंग बिरंगे कपड़ों से उसको सजाया गया है, लेकिन इसी तरीके से विशाल पंडाल भी जो है तैयार किए गए हैं, और यहाँ पर इसी तरीके से हर कोई जो है वो नजर आने वाला है कि हर किसी को इंतजार है। बस आज मंदिर खाली है इसलिए लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चाहे ऑल्टर बंद ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर लोग जो है नजर आ जाएंगे।
0: तैयारियां देखिए मनीषा, जैसे आप दिखा रही हैं अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज का ही दिन बाकी है, कल तो कृष्ण भगवान जो है पधारेंगे, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। कल की तैयारियां भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। मनीषा लौटती हूँ आपके पास, बहुत सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई हैं। एक बार फिर से धर्मेंद्र का रुख करना चाहेंगे, मुंबई का। धर्मेंद्र, एक बार मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि पैन कर दे जरा, क्योंकि मंदिर परिसर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है जहां तक मेरी नजर जा पा रही है। और अगर आपके लिए संभव है तो कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए, वो कितने उत्साहित हैं।
6: बिल्कुल, देखिए मात्र एक दो मिनट बचा है और सीधे दरवाजा जो है श्री कृष्ण जी का खुल गया है। ये देखिए, ये तीन मुख्य द्वार हैं और किस तरीके से बेसब्री से जितने भी श्रद्धालु और भक्त हैं वो इंतजार कर रहे थे सिर्फ इस घड़ी का कि सिर्फ एक बार जो मेन डोर है वो श्री कृष्ण राधे जी का खुल जाए और लोग इंतजार करें। 12:30 बजे का समय होता है और पूरे देश भर में जितने भी इस्कॉन मंदिर है वो इन्हें फॉलो करते हैं। थोड़ी सी तस्वीरें देखें, जब तक पर्दा नहीं खुल रहा उससे पहले किस तरीके से लोग आतुर हुए हैं, सब्र हुए हैं कि कहीं ना कहीं इंतजार जो

0: जाएगी। जब तक पर्दा नहीं खुल रहा तब तक आप थोड़ा देखें, एक बहुत बड़ा सा झूमर, ये देखिए फाइनली पर्दा जो है वो हट चुका है और हम सभी मिलकर के इस समय राधे माँ का दर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ श्री कृष्ण जी का दर्शन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कतार यहाँ पर लगा करके लोग पहुंच रहे हैं और इसी घड़ी का हर किसी को इंतजार होता है। कृष्ण जन्माष्टमी भले ही कल हो लेकिन तस्वीरें मुंबई की आज से ही देखने लायक बन रही हैं। आपको बताएं कि पूरे मुंबई में इस्कॉन मंदिर जो है, लगभग 5 इस्कॉन मंदिर है लेकिन जुहू बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा पुराना है। आसपास काफी सैलेस भी यहाँ रहते हैं, एक अच्छे घरों से अच्छे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जो दिल से श्री कृष्ण और राधे जी को चाहते हैं। खास बात यह है कि दर्शन के बाद यहाँ पे जो फूलों से सज्जा सजावट करी गई है वो सभी पक्षी हैं, सभी वो पक्षी हैं जो श्री कृष्ण और राधे जी को बहुत ज्यादा पसंद है। खास बात ये भी है कि दोनों समय का यहाँ पर भंडारा भी चलता है और जो पूरी तरह से ऑयल फ्री होता है। देखिए किस तरीके से भजन कीर्तन में जो यहाँ पर मौजूद प्रभु हैं वो लिपटे हुए हैं। आपको बताएं कि ये सभी कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी में है, लेकिन जैसे ही इन्हें समय मिलता है तो प्रभु की भक्ति में कुछ इस तरीके से लीन हो जाते हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के जुहू इस्कॉन मंदिर की, तैयारी लगातार चलती है।
1: धर्मेंद्र, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से लोग भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें, बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर लीन नजर आ रहे हैं और जो श्री कृष्ण की झलक आपने दिखाई उसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं एक झलक को पाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम अभी जारी है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, खूबसूरत लाइटों से जगमग हुआ दिल्ली का इस्कॉन मंदिर। कल देश भर में मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। मुंबई में जन्माष्टमी पर गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने की जबरदस्त तैयारी। इस बार 5 सितंबर को होगा आयोजन।

0: देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक। नई डिजाइन की पोशाकें, बांसुरी, झूलों की लोग कर रहे खरीदारी। मिट्टी के मटकों की भी भारी डिमांड।
1: पटना में जन्माष्टमी से पहले कृष्णोत्सव का भव्य आगाज। भोपाल में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय रासलीला समारोह का आयोजन।
0: अकोला में गणेशोत्सव से पहले बप्पा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, जमकर की आतिशबाजी।
1: केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 7 सितंबर से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग।

0: चलिए परमिता जी के पास ये भजन सुनने के लिए दोबारा से फिर से आते हैं, लेकिन सीधी तस्वीरें आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त मुंबई से, सामने सीधा मुंबई लिए चलते हैं आपको। धर्मेंद्र वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, कैसी रौनक है, दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर।
1: बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर के श्री कृष्ण और राधे जी का दर्शन करने के लिए देखिए किस तरीके से लोग आतुर हुए थे और फाइनली वो घड़ी आ गई, अब लोग दर्शन कर भी रहे हैं। आपको बताएं कि बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत ज्यादा मानते हैं लोग, और अच्छे खासे जो एजुकेटेड लोग हैं और स्पेशली युवा पीढ़ी जिस कदर ईश्वर के भक्ति में लीन हो रही है वो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखें ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बकायदा सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। जो इस्कॉन मंदिर का ये दृश्य है, तस्वीरें हैं। खास बात ये है कि फूलों से सजाया गया है इस पूरे मंदिर को, एक जोरदार लाइटिंग भी यहाँ लगाई गई है। अभी तो हमारा कैमरा जहाँ तक तस्वीरें दिखा पा रहा है हम वही दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि जब भी जैसे ही मैंने गेट से एंट्री ली है बकायदा रेड कार्पेट यहाँ पर बिछाया गया है और जहाँ पर भंडारा यानी कि प्रसाद लोगों को दिया जाएगा उसकी भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले वाइस प्रेसिडेंट जुहू इस्कॉन के हमारे साथ प्रभु जी बात कर रहे थे, आपको बताएं वो खुद भी पेशे से इंजीनियर हैं, आईटीआई में कार्यरत हैं, लेकिन जिस कदर से वो चाहते हैं ये देखिए यहाँ पर इस समय आप दिया भी देख पा रही हैं जो आरती हो रही है यहाँ पर, और बकायदा श्री कृष्ण और राधे जी को भोग लगाने के बाद में अब यहाँ भी भोग लगाने की प्रक्रिया लगातार शुरू है। वहीं दूसरी तरफ भजन कीर्तन भी लगातार शुरू है। खास बात यह है कि जो भजन गा पा रहा है वो तो यहाँ पर पहुँचता ही है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो मुंबई कर हैं और जो श्री कृष्ण और राधे जी को लेकर कई भजन गाते हैं, उन्हें भी यहाँ मौका मिलता है कि बड़े कायदे, बड़े प्यार, बड़े आराम से वो जो है यहाँ पर भजन कीर्तन कर सकते हैं। खास बात ये भी है इस मंदिर की, थोड़ा सा मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि श्री कृष्ण की जो भी लीला है उससे भी जो संबंधित चलचित्र है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और जब लोग कतार लगाते हैं, ये वही जगह है जहाँ से कतार लाइन लगा करके लोग जो है श्री कृष्ण तक पहुंच पाते हैं, लेकिन आप देखें आसपास श्री कृष्ण की जितनी भी माया है, जो कुछ भी उन्होंने करा है, जो बहुत ही ज्यादा चर्चित और पौराणिक कथाएं हैं वो सारे दृश्य तस्वीरें चलचित्र के माध्यम से बनाया गया है। और थोड़ा सा एक तस्वीर, ये नजारा सिर्फ इधर ही तक खत्म नहीं होता है, जबकि आपको बताएं कि मंदिर के चारों परिसर में भी कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा प्रांगण है ये जुहू इस्कॉन का, देखिए कितने बढ़िया तरीके से सजाया गया है। जो कुछ भी प्रभु हैं वो यहाँ पर आकर के अपने तरह की आरती जो है श्री कृष्ण जी को लेकर करेंगे। देखिए बहुत ही भव्य तरीके से फूल हार बकायदा जो कुछ हो सका है जिससे खूबसूरती साफ तौर से नजर आए वो चीजें यहाँ बनाई गई है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये देखिए एक पक्षी फूलों द्वारा बनाया गया है और जितने भी यहाँ खंभे लगे हुए हैं इस मंदिर में प्रांगण में उन सभी जगहों पर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की जो चीजें हैं वो बना करके बकायदा रखे गए हैं। ये तो मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें हैं और सामने एक गेट है जहां से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु सीधे प्रसाद लेने की तरफ चले जाएंगे, जहां 24 घंटे भंडारा रहता है और बड़े ही शुद्ध तरीके से बनाया जाता है, जिसकी अपनी ही एक यहां पर मांग है, और लोग उस तरफ जाकर के प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगा हुआ है, श्री कृष्ण राधे जी से रिलेटेड किताबें यहाँ बेची जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देख करके वाकई में सिस्टमैटिक
0: तरीके से मंदिर को अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा गया है। एक हिस्सा है जहाँ पर आप मंदिर परिसर की तस्वीरें देख पा रहे हैं, दूसरा हिस्सा है जहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, तीसरे हिस्से को बांटा गया है जहाँ पर श्रद्धालु खरीदारी भी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीरें,
2: बहुत व्यवस्थित यहाँ पर तरीके से बनाया गया है, सजावट की गई है, और यही है जो इस्कॉन मंदिर की भव्यता को दिखाता है। आप बने रहिए धर्मेंद्र हमारे साथ, दिल्ली में हमारी संवाददाता मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं वो तो आप लगातार दिखाई रही हैं, इसके अलावा ये भी बताइए कि इस बार जो महासंयोग बन रहा है उसके लिए पूजा का सही समय क्या है, पूजा की शुरुआत मंदिर में कब से होने वाली है।
3: पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो कल ये मंदिर जो है सुबह 4 बजे जो है वो मंदिर जो है मंदिर परिसर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा सुबह 4 बजे से, और उसके बाद ही भक्तों का तांता आपको इस मंदिर में जो है वो दिखने वाला है। तो अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूरा दिन ही लोगों के लिए कल शुभ रहने वाला है। लोग सुबह से ही जो है दर्शन करने आएंगे और रात को 9 बजे के बाद से ही जो है अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को जो है अलग अलग फलों के रसों से जो है अलग अलग ड्राई फ्रूट से जो है उनका अभिषेक जो है किया जाएगा। तो हम कोई एक समय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कल 9 बजे के बाद से जो है जलाभिषेक शुरू कर दिया जाएगा। उनके अभिषेक की हर एक प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और उससे पहले हर कोई भक्त जो है यहाँ पर आकर जो है उनके विशेष दर्शन करेगा। मंदिर की तस्वीरें भी एक बार दिखा दी थी क्योंकि ऑल्टर अभी थोड़ी देर पहले खुला है, तो मैं दर्शन करवा दूँ कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ जो है राधा रानी और श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया है। और भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपको अच्छी खासी भीड़ जो है भक्तों की नजर आ जाएगी। हर कोई बस उनके दर्शन के लिए आतुर है कि हम एक झलक आज उनकी जरूर पा लें, क्योंकि कल तो आएंगे आएंगे लेकिन कल काफी ज्यादा भीड़ मिलने वाली है। लेकिन अभी वो तसल्ली से जो है अपने प्रभु को जो है देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाऊंगी तो यहाँ पर लगातार जो है भजन मंडली बैठी हुई है, वो लगातार जो है अपने भजन जो है अपने प्रिय को सुना रही है और उसी में झूमते हुए जो भक्त है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वाकई में इस वक्त मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में खास हो चुकी है। और अगर हम सिर्फ जन्माष्टमी की बात करें ना दीपाली, तो ये एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि ये श्री कृष्ण के जीवन और उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको याद करने का भी अवसर है। और पूरे साल जो है हर कोई इंतजार करता है कि कब जन्माष्टमी आएगी और उसके बाद जो है हर कोई उनके जन्मोत्सव में जो है शामिल होगा, मंदिरों का रुख करेंगे और इसी तरीके से जो है अलग अलग तरीके से तैयार होकर जो है सुंदर वस्त्र पहनकर श्रृंगार कर भजन में जो है वो लीन होंगे, नृत्य करेंगे और वाकई में उनके आने का जो है
0: आज के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। मनीषा लौटती हूँ आपके पास। राज जी, आपके पास आते हुए, राज जी जब भी हम पहले भी जब शोज कर चुके हैं या आज के वक्त का जब भी हम जिक्र करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आजकल ना प्यार की बड़ी कमी है, लोगों में द्वेष बहुत है, ईर्ष्या बहुत है। तो श्री कृष्ण की लीलाओं को अगर जोड़ के देखा जाए, हम राधा कृष्ण के प्यार की लीला को अगर समझना चाहें, तो वो कैसे रेजोनेट करेगी आज के वक्त के साथ और आज की युवा पीढ़ी के साथ?
4: मुझे लगता है वो एक बड़ा सुंदर भाव था। खैर, प्रेम को लेकर के जब बात किया जाता है, मुझे लगता है मैं भगवान कृष्ण के प्रेम को और राधिका जी के जब प्रेम को लेकर के बात करता हूँ, मुझे लगता है वही एक्चुअल में प्रेम है। और भगवान प्रेम को ही पसंद करते हैं। कहा जाता था प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रेम में आकर के अपने खुद के द्वारा तैयार किए गए नियम को ब्रेक कर देते हैं। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम के लिए किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि कभी रोती कभी हंसती कभी लगती शराबी सी, मोहब्बत जिनमें होती है वो आंखें और होती हैं। प्रेम के लिए किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि वो अगर मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, और मैं उसको खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। किसी ने राधिका जी से एक शब्द कहा, प्रेम की जब समर्पण को लेकर के बात आती है, भगवान कृष्ण और राधिका जी के समर्पण को लेकर के बात आती है, एक बड़ी सुंदर सी घटना है। एक बार भगवान कृष्ण का ना थोड़ा तबीयत खराब होता है, एक माया भगवान ने रचा कि तबीयत खराब है। अब ये सभी से कहा गया कि अगर कोई अपने पैरों की ना जो पैर के नीचे की धूल है वो अगर दे दे, गोपियां दे दें और भगवान को लग जाए तो भगवान का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। सभी गोपियों से पूछा गया, सभी गोपियों ने कहा मैं अपने पैर की धूल और भगवान के मस्तक पर लगवा दूं, मेरा तो जीवन नरक हो जाएगा, मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब राधिका जी के पास ये बात पहुंची कि अगर आपके पैर की धूल, अगर किसी गोपी के पैर की धूल भगवान के मस्तक पर लग जाए तो भगवान का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, तो राधिका जी ने कहा कि मैं जन्म जन्मांतर तक नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मेरा प्रिय, मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा, अगर मेरा प्रियतम ठीक हो जाता है तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मैं जन्म जन्मांतर नरक में रहने के लिए तैयार हूं। तो किसी ने कहा था कि प्रेम का लक्षण क्या है, तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षण। भगवान राधा और कृष्ण ने यह दिखाया कि प्रेम में एक दूसरे की प्रसन्नता को स्वीकार करना होता है, एक दूसरे की हैप्पीनेस को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। प्रेम में मैं अपने आप को कभी नहीं देखा जाता है, मेरा अपना कंफर्ट जोन क्या है वो देख करके प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए कि दूसरे का कंफर्ट जोन क्या है, दूसरे को हैप्पीनेस किसमें मिलती है, और भगवान ने इसी चीज को सदैव निर्धारित किया है, इसी चीज को सदैव देखा है। राधा और कृष्ण जी की अगर प्रेम की बात की जाए तो मुझे लगता है वास्तविक अगर कोई प्रेम की चर्चा हो सकती तो हो सकती है। किसी ने कहा कि मतलब आप भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान आपको छोड़ करके चले गए, तो राधिका जी ने जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो राधिका जी ने कहा क्या बात करते हो, भगवान हमें छोड़कर चले गए, अरे थोड़ी दूर पर आधे घंटे का रास्ता मथुरा है,
0: राज्य
4: चाहे तो जाकर।
0: राज्य माफ कीजिए बीच में काट रही हूँ, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा जो आपने जिक्र किया ना उसी में एड ऑन कर रही हूँ। हमने ना आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी सारी तस्वीरें देखी हैं और बहुत सारी स्टोरीज भी इनफैक्ट जीएनटी पर हमने चलाई हैं कि कुछ महिलाओं ने कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान लिया, ये लीला क्या है?
4: तो गुप्ता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में, मैं आपके क्वेश्चन को नहीं सुन पाया, दोबारा एक बार प्लीज दोहरा देंगे अगर
0: आवाज आ रही है मेरी अभी आपके पास, क्लियर है? जी मैं ये बोल रही हूँ राज जी, हमने आजकल ना बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं रिसेंटली जहां पर लड़कियों ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया, ये लीला क्या कहती है?
4: देखिए भगवान सबके पति हैं, इस बात को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये विषय हुआ था एक बार जब गोपियां पहुंचती हैं, जब भगवान का वो रास का समय आता है शरद पूर्णिमा को, जो जिसको रास पूर्णिमा कहा जाता है, जब भगवान अपने वेणु गोपाल से निनाद करते हैं और गोपियों को उनका नाम सुनाई देता है और वहां जाकर के वो पहुंचती हैं, तो गोपियों से भगवान कहते हैं कि अपने पतियों को छोड़ करके तुम आ गई हो, अपने परिवार को छोड़ करके तुम आ गई हो इतनी अंधेरी रात्रि में सिर्फ मेरी एक मुरली सुन करके, ये गलत है, आपको अपने घर जाना चाहिए, आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। तो वो गोपियां कहती हैं कि आत्मा का पति परमात्मा है, इसलिए मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर किसी ने पति के रूप में भगवान को स्वीकार किया है तो गलत नहीं है। जी सर गुप्ता जी,
2: बहुत जरूरी जानकारी आप दे रहे थे, बहुत सुंदर शब्दों में आपने इसका वर्णन भी किया है। हमारे साथ पौर्णिमा जी, हमारे साथ सुमित जी और शंभू जी जुड़े हुए हैं। पौर्णिमा जी मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी बात हो रही थी श्री कृष्ण के जिक्र तब तक पूरा नहीं होता है जब तक राधा का नाम ना आए, तो जब उनकी बात आती है तो उनसे जुड़ा हुआ कौन सा भजन, कौन सा गीत आपके मन में आता है?
5: अच्छा, राधा जुमो पे आज डरो, गुरु जी का सुर है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

और देखिए मथुरा वृंदावन की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां यहां पर चल रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इस अवसर पर विशेष रूप से ड्रोन शो का आयोजन किया जाने वाला है। आपको बताते हैं क्या क्या खास होने वाला है इस बार मथुरा में।

आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय, जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, देश भर में सज गए मंदिर और ठाकुर बाड़ी, राधा कृष्ण के रूप में दिखे बच्चे, कल मनाया जाएगा जन्मोत्सव। मुंबई में जन्माष्टमी पर गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने की जबरदस्त तैयारी, इस बार 5 सितंबर को होगा आयोजन। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक, नई डिजाइन की पोशाकें, बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे हैं खरीदारी, मिट्टी के मटकों की भी भारी डिमांड। अकोला में गणेशोत्सव से पहले बप्पा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, जमकर आतिशबाजी। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे जितेंद्र मिश्रा, लोगों ने किया भव्य स्वागत, कहा राष्ट्र सेवा के बाद अब राम सेवा का अवसर है। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर पूरा ब्रजधाम रोशन हुआ, तमाम मंदिरों के साथ साथ दुल्हन की तरह सज गया शहर। मथुरा में आज भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन, 250 कलाकार हो रहे हैं शामिल। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में मथुरा और वृंदावन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, इस बार 50 से 75 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। जन्माष्टमी पर्व के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा के लिए खास सौगात, लड्डू गोपाल के लिए भेजी गई विशेष उपहार सामग्री। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ मथुरा रवाना हुई विशेष उपहार सामग्री, 2024 में शुरू की गई थी ये खास परंपरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सजाया जा रहा है बद्रीनाथ मंदिर, मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर भी की गई सजावट। फूलों की जगह इस बार रंग बिरंगी लाइटों से की जा रही है मंदिर की सजावट, रास्तों पर भी की जा रही है सजावट। रंग बिरंगी लाइटों की सजावट से जगमग हुआ भगवान बद्री विशाल का धाम। रात के अंधेरे में दूर तक दिख रही है मंदिर की भव्यता। मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर भी की गई विशेष लाइटिंग। 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर रात में भी खुले रहते हैं भगवान बद्रीनाथ के कपाट। लड्डू गोपाल के जन्म के बाद भगवान बद्री विशाल को लगाया जाता है भोग, फिर की जाती है शयन आरती। भोपाल के रविंद्र भवन में 7 दिवसीय रासलीला समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने राधाकृष्ण का स्वरूप धारण किए कलाकारों की आरती उतारकर किया उनका वंदन। राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित है कार्यक्रम। पटना के मिलर ग्राउंड में आज से कृष्णोत्सव की शुरुआत। सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। हर हृदय में कृष्ण, हर पल में उत्सव, रखी गई कृष्णोत्सव की मुख्य थीम। कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति दी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भजनों और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित कार्यक्रमों ने बांधा समा। कल कार्यक्रम का समापन।

0: झांसी में देखिए कृष्ण भक्ति के अनोखे रंग, इस्कॉन के यूथ फेस्टिवल का शानदार आयोजन। कृष्ण भक्ति संस्कृति और प्रेरणा का अनूठा संगम देखने को मिला। फेस्टिवल में भक्ति रैप और रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुति। कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने पूरी तरह भक्तिमय बना दिया माहौल। कार्यक्रम में युवाओं की जबरदस्त मौजूदगी देखने को मिली। इस्कॉन परिसर में वृंदावन बाजार भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। बाजार में भगवान कृष्ण की तस्वीरों से लेकर आकर्षक पोशाक, पगड़ी और धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध। इस मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और युवा। हर तरफ जश्न का माहौल। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिर की सुंदर सजावट की गई। लाइटों के जरिए दर्शाई गई भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जन्माष्टमी पर सुबह 4 बजे से पूरे दिन मध्यरात्रि 12 बजे तक भक्तों के लिए खुलेगा मंदिर। भीड़ के प्रबंधन के लिए लगाए गए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी जारी। वृंदावन से मंगाए गए फूलों से की जा रही है मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों को भोग अर्पित करने की तैयारी। 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा है इंतजाम। 100 किलो का बनाया जा रहा है केक। राजस्थान के जैसलमेर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। जैसलमेर में स्थित दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों में जबरदस्त रौनक। मंदिर पैलेस में स्थित गिरधारी जी मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जारी। मंदिर में गाए जा रहे हैं श्री कृष्ण से जुड़े गीत। कान्हा के जन्मोत्सव से पहले मंदिरों में बढ़ी रौनक। मेवों से बने खूबसूरत हिंडोले में ठाकुर जी को झुला रहे हैं श्रद्धालु। कृष्णमय हुआ शहर का माहौल। मंदिर में भजन गाते हुए दिखे श्रद्धालु। आरती में शामिल हुई महिलाएं। मान्यता है कि अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी पर सुदर्शन चक्र से खोदा था कुआं। पाली में सज गए मंदिर और ठाकुर बाड़ी। अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां। राधा कृष्ण के रूप में सजे हुए नजर आए नन्हे बच्चे। कल धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज को सीएम योगी देंगे 977 करोड़ रुपए की सौगात। 57 परियोजनाओं का लोकार्पण और 167 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर। फिर शुरू हो रही है मॉनसून के दौरान सुरक्षा कारणों से बंद की गई केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर सेवाएं। द्वितीय चरण की यात्रा के तहत 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन। 7 सितंबर से श्रद्धालु कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। महाराष्ट्र के अकोला में दिखा बप्पा की भक्ति का रंग। जगह जगह पर मनाया जा रहा है गणपति उत्सव का जश्न। अकोला में निकाली गई भव्य शोभा यात्राएं। 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार के बप्पा बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। तीस फीट के उमरी के राजा का भी हुआ भव्य स्वागत। भक्तों ने आतिशबाजी और फायर शो से किया बप्पा का स्वागत। डीजे और बैंड की धुन पर जमकर नाचते और झूमते हुए नजर आए भक्त। हर तरफ गणपति बप्पा मौर्या का जय घोष। अपने लाडले पापा की एक झलक को पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े भक्त। गणपति के आने की खुशी में पूरा शहर जश्न के माहौल में डूबा। राम मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने अपने चयन पर ट्रस्ट समिति का जताया आभार, बोले राष्ट्र सेवा के बाद अब राम भक्तों की सेवा का अवसर है। राम मंदिर के नए महासचिव गोविंद देवगिरी महाराज ने पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की, पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सीईओ सहित नए नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप, बदलेगा मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नकद राशि की गिनती अब मशीनों से कराने की तैयारी, 2 बैंकों और आईआईटी के विशेषज्ञों से प्रस्ताव लिए गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखे स्थानीय संस्कृति के रंग, 15 साल बाद धूमधाम से निकाली जा रही है मां काली की देवरा यात्रा। केदार घाटी में गांव गांव पहुंचकर श्रद्धालुओं को आशीष दे रही है मां काली, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, यात्रा टोली पर की जा रही है पुष्प वर्षा। केदार घाटी में लोग पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं मां काली का स्वागत, महिलाएं गा रही हैं मंगल गीत, गांव गांव गूंज रहा है मां काली का जयकारा। केदार घाटी की शक्ति और करोड़ों भक्तों की आराध्य है मां काली, 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करेंगी मां काली। परंपरा के साथ साथ इलाके की सदियों पुरानी संस्कृति और लोक विश्वास का प्रतीक है ये यात्रा, मां काली की यात्रा को लेकर केदार घाटी में उत्सव का माहौल। काशी में कृष्ण जन्मोत्सव पर दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी तस्वीर, 6 पीढ़ियों से बांसुरी बनाने और बेचने का काम कर रहा है एक मुस्लिम परिवार। बांसुरी बनाने के साथ साथ देश विदेश से काशी आने वाले पर्यटकों को निशुल्क बांसुरी बजाना सिखाते हैं मुश्ताक, कई फिल्मों के लिए भी दे चुके हैं बांसुरी की धुन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हाईवे पर बन रहा उत्तरी भारत की पहली ओवरहेड एलिवेटेड रोटरी पठानकोट मंडी हाईवे प्रोजेक्ट के तहत रोटरी का निर्माण। इस रोटरी के माध्यम से आपस में मिलेंगे चंडीगढ़ मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे, मार्च 2027 में पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 48 स्कूली शिक्षकों, 21 उच्च शिक्षा के शिक्षकों और MoSDE के 13 शिक्षकों को मिलेगा अवार्ड। गोलाघाट के डेर गांव में स्थित लचित बर्फुकन पुलिस अकेडमी में पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जवानों ने दिखाया जोश। 32 पुलिस उपाधीक्षकों और 371 कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, बेहतरीन तालमेल का नजारा दिखा। असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने ली परेड की सलामी, सीएम के अलावा कई उच्च अधिकारी परेड में शामिल हुए। इस मौके पर ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को किया गया सम्मानित, सीएम बिस्वा ने बांटे पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर की है बर्फुकन पुलिस अकेडमी, जहां असम के अलावा गोवा और मणिपुर जैसे अन्य राज्यों के पुलिस बलों को भी दिया जाता है प्रशिक्षण।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की यात्रा है। इसमें हर मुश्किल के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कायम रहता है। इस बार अगस्त में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर मौसम ने श्रद्धालुओं की कई बार परीक्षा ली। रास्तों पर चुनौतियां आईं, लेकिन धामों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया कि चारधाम की ओर आस्था का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।

0: पहाड़ों की चढ़ाई, रास्ते की मुश्किलें और ऊपर से बदलता मौसम, कहीं बारिश तो कहीं भूस्खलन का खतरा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं रुकी।
1: जब भी बरसात की अलर्ट प्राप्त होता है या अत्यधिक बरसात हो रही होती है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों को कई बार यात्रा को रोकना पड़ता है और इसको कुछ देर के लिए रोका जाता है जब तक कि हालात सामान्य न हो जाएं।
0: जिस रास्ते पर कदम कदम पर मौसम परीक्षा ले रहा था, उसी रास्ते पर श्रद्धालुओं के कदम लगातार चार धाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसी आस्था और उत्साह की वजह से अब अगस्त में चार धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार साल में इस बार अगस्त का महीना चार धाम यात्रा के लिए सबसे खास रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त रौनक देखने को मिली। अगस्त में चारों धाम में रिकॉर्ड 2,31,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। इनमें सबसे ज्यादा भीड़ बद्रीनाथ धाम में रही, जहां 1,25,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।
2: केदारनाथ धाम में भी मौसम सुहावना बना हुआ है, हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रशासन के मुताबिक धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान तैनात हैं। इसके अलावा केदारनाथ, लिंचौली, भीमबली, गौरीकुंड सहित तमाम स्थानों पर स्वास्थ्य कैंपों की भी स्थापना की गई है।
0: खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार अगस्त में चार धाम यात्रा में 93,680 श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे, यानी मौसम की चुनौती आई लेकिन आस्था के कदम नहीं रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, देश भर में सज गए मंदिर और ठाकुर बाड़ी, राधा कृष्ण के रूप में दिखे बच्चे, कल मनाया जाएगा जन्मोत्सव। मुंबई में जन्माष्टमी पर गोविंदाओं की मंडली का धमाल देखने को मिला, दही हांडी फोड़ने की जबरदस्त तैयारी, इस बार 5 सितंबर को होगा आयोजन। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में दिखी रौनक, नई डिजाइन की पोशाकें, बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे हैं खरीदारी, मिट्टी के मटकों की भी भारी डिमांड। अकोला में गणेशोत्सव से पहले बप्पा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, जमकर आतिशबाजी। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे जितेंद्र मिश्रा, लोगों ने किया भव्य स्वागत, कहा राष्ट्र सेवा के बाद अब राम सेवा का अवसर है। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: दोस्तों, मैं हूं रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक यहां मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए आरंभी के घर में होगा तमाशा, विश्वास करेगा तली ड्रामा।

शुरू होगा राधा, दादी और करंट का गोलमाल। जानवी और निहाल की शादी में आएगा दुल्हन गायब होने का ट्विस्ट। याशिका पर हमला करेगा धैर्य, मन्नत होगी परेशान।

0: संजो की एंट्री।
1: लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं।
0: शुरू होगी वृंदा और संजो की नोकझोंक। होगी नयनिका और ईशान की शादी, क्या सुधर पाएंगे रिश्ते?
2: हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे।
0: और जन्माष्टमी के मौके पर लता सबरवाल जाएंगी मथुरा, करेंगी कान्हा जी के दर्शन, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में दादी और राध्या के बीच खींचतान चलती ही रहती है, क्योंकि दादी किसी ना किसी बहाने से राध्या को परेशान करने में लगी रहती हैं। ऐसे में अब राध्या के कंगन से कैसे लगा दादी को करंट, या फिर इस बार भी दादी कर रही हैं कोई नया ड्रामा। चलिए देखते हैं।
1: प्रथम से दूर रहो वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी।

0: दादी तो राध्या के पीछे हाथ धोकर पड़ गई।
1: ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, दूसरा को काम करो।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या तैयार हो रही है गजल नाइट जाने के लिए, क्योंकि प्रथम ने उसे वादा किया है। ऐसे में राध्या ने अपना साज श्रृंगार कर तो लिया है कि तभी वहाँ पर आ जाती है दादी, जो राध्या को देखकर नाराज होती है और तो और उस पर अपना गुस्सा भी उतारती है। राध्या ने दादी को समझाने की कोशिश की कि उसने प्रथम को मना किया है, लेकिन प्रथम मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में मजबूरन उसे जाना पड़ रहा है। बस फिर क्या, दादी बौखला गई और वो राध्या पर बरस पड़ी।
1: कैसी पत्नी हो, तुम्हें अपने पति की जान की परवाह नहीं है। भूल गई ना, भूल गई कि उसे तो तुम्हारे साथ से खतरा है। अरे पैर बुद्धि, अपनी सेहत का बहाना बना लो, घर के काम काजों का बहाना बना लो और चाहे तो अपने मायके चले जाओ, माफ करो। लेकिन प्रथम से दूर रहो, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी।

0: नजर।
1: दादी हर रोज एक नए पैंतरे के साथ आती है राधे को फंसाने के लिए। इस बार उसने एक करंट वाला कंगन राधे को पहनाया है, जिसके जरिए वो उसको लगता है कि अगर प्रथम उसको छुएगा या उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा तो प्रथम को भी करंट लगेगा और राधे को भी लगेगा। पर इस चक्कर में दादी खुद फंस जाती है। वो खुद ही राधे का हाथ पकड़ती है उसका हाथ मरोड़ने के लिए, और उसे भी करंट लग जाता है और राधे को भी करंट लग जाता है। और दोनों करंट में इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और भन्ना रहे हैं और छूट नहीं पा रहे हैं। और दादी को लगता है राधे ने हाथ पकड़ा है। दादी चिल्ला रही है कि हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़ो। कहती है मैंने तो पकड़ा ही नहीं है। और दादी को लगता है उसकी जान निकल जाएगी। बड़ी मुश्किल से ताना जानी छीना झपटी में वो दोनों जब एक दूसरे को छुड़ा करा रहे हैं, उसमें वो कंगन छुड़वा कर फेंक देती है। तो अल्टीमेटली राधे के हाथ से करंट वाला कंगन निकल जाता है।
2: अच्छी, इसी को तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। करंट प्रथम को लगना था लेकिन करंट दादी को लग गया। और देखिए कैसे दादी राधा के साथ अगल बगल घूमे जा रही हैं, चीखे जा रही हैं और बार बार राध्या को वो कड़ा उतारने के लिए कह रही हैं। ऐसे में राध्या कोशिश कर रही है पर राध्या नाकाम हो रही है। बस फिर क्या, दादी ने हिम्मत बांधी, जैसे तैसे कर कड़े को पकड़ा और उसे राध्या के हाथों से निकाल कर फेंक दिया और अपना हाथ देख कर बेचैन होने लगी। इससे पहले कि वो राध्या को कुछ और कहती, वहाँ पर आ जाता है प्रथम, जो दादी और राध्या दोनों का हाल देख कर हैरान है।
3: आप तो
4: राधे से हमारी कमर पे मसाज कर रही थी तो पता नहीं क्या हो गया, इसमें से करंट निकला है। बेटा इतनी जोर से करंट निकला कि हमारे हाथ से छूटा तो सारा सामान गिर गया, सारा कुछ गिर गया।
3: अच्छा दादी, वैसे आपकी कमर ठीक हो गया लग रहा है ना?
4: ठीक हो गई
2: भाई। दादी ने बहाना तो अच्छा मारा लेकिन उनका ये बहाना काम नहीं आया, क्योंकि प्रथम ने राध्या को तैयार होने के लिए और जल्द से जल्द उसके साथ गजल नाइट में जाने के लिए कह दिया। ऐसे में राध्या आनाकानी करने लगी लेकिन प्रथम ने उसे दादी की कसम दे दी। बस फिर क्या, अपनी ही कसम सुनकर दादी परेशान हो गई और ना चाहते हुए भी उन्होंने राध्या को जाने के लिए हाँ कह दी।
4: कसम दी है तो चली जाओ ना।
1: दादी को वो देखती है, दादी तो ऐसे उसको देख रही होती घूरियों से कि नहीं तुम तो नहीं जा सकती हो। प्रथम उसको दादी की कसम दे देता है, तुम्हें दादी की कसम है मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो इस चक्कर

0: में दादी भी कुछ बोल नहीं पाती, वो कहती है हाँ उसने कसम दी अब तुम जाओ। तो दोनों जाते हैं नाइट के लिए, लेकिन दादी बोलती है इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब कल जन्माष्टमी है, राध्य को उसकी औकात दिखा के रहूंगी। तो कोई नए पैंतरे के साथ वो जन्माष्टमी पे तैयारी करिए राध्या को नए तरीके से फंसाने की।
1: फिलहाल तो अभी दादी कुछ कर नहीं पाई और चिढ़ती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। जब राध्या जन्माष्टमी के लिए अपने हाथों से माखन बनाती है, प्रसाद के तौर पर वहाँ पर आ जाती है एकता माखन बनाने के लिए। ऐसे में राध्या उसे मना करती है क्योंकि एकता प्रेग्नेंट है, ऐसे में माखन बनाने के लिए उसे देर तक खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए वो खुद ही माखन बनाने लगती है। लेकिन एकता जिद पर आ जाती है और ये जिद उसी पर भारी पड़ जाती है। इससे पहले कि राध्या एकता को समझाती, वहाँ पर आ जाती है दादी अपना नया फैसला लेकर, और देखिए कैसे उन्होंने राध्या को कुछ और काम करने के लिए कह दिया और एकता को दे दी जिम्मेदारी कृष्ण के लिए भोग बनाने की।
0: एकता बेटा, भोग का प्रसाद तो तुम ही बनाओगी ना, तुम माँ बनने वाली हो और कृष्ण कन्हैया जी का आशीर्वाद तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी मिलेगा।
1: भाई बार बार बच्चे का नाम लेकर दादी राध्या का दिल दुखा रही है और बेचारी राध्या मुंह लटकाए वहाँ से चली गई। ऐसे में उसने कुछ और काम ढूंढ लिया और वो कान्हा का पालना सजाने लगी अपने हाथों से, ताकि कान्हा का आशीर्वाद उस पर बन जाए। लेकिन दादी वहाँ पर भी आ गई मुंह टेढ़ा करके, और देखिए कैसे वो राध्या से नाराज हो रही है, और तो और उन्होंने राध्या के हाथों से सजावट का सामान भी छीन लिया। भाई दादी तो एक के बाद एक राध्या को रोकने की कोशिश कर रही है कि राध्या जन्माष्टमी के त्योहार पर कोई भी काम ना कर पाए और कान्हा का उसे आशीर्वाद ना मिल पाए, लेकिन राध्या वो सच्चे मन से काम में लग गई है। देखना होगा कि कब राध्या गुड न्यूज देगी सभी घर वालों को। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल मन सुंदर में निहाल और जाह्नवी की शादी का दिन आ चुका है। ऐसे में शादी से ठीक पहले दुल्हन शादी के मंडप से गायब हो गई है। जाह्नवी जानबूझकर अपनी शादी से गायब हुई या फिर हुआ है उसका किडनैप, चलिए जानते हैं।
1: भाग गई जाह्नवी, मच गया बवाल।
3: जब तुझे पता था उसके मन में ऐसा कुछ चल रहा है, तू सही।
1: शादी पर उठे सवाल।
4: अगर जाह्नवी सच्ची में भाग गई तो
5: क्या?
1: क्या रुचिता बनेगी निहाल की दुल्हन?
6: मेरे निहाल के साथ
1: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में जाह्नवी की शादी निहाल संग होने वाली है। ऐसे में वो दुल्हन की तरह साज श्रृंगार कर मंडप की ओर जा रही है और साथ ही साथ घबरा भी रही है, और रुचिता उसको दिलासा दे रही है कि तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। पंखे के सामने रखा पाउडर हवा के चलते उड़कर जाह्नवी और रुचिता के मुंह पर लग जाता है, जिसके चलते रुचिता और जाह्नवी दोनों ही हैरान हैं।

0: हाय सो अभी जो सीन हो रहा था वो बेसिकली था कि जाह्नवी दी शादी से भाग जाती है कि उन्हें कोई किडनैप करता है कि क्या इट्स लाइक टू मच सस्पेंस. तो अभी तक हमें भी पता नहीं चला है कि उनके साथ एक्चुअली क्या होता है, बट शादी के मंडप तक तो वो पहुंच नहीं पाती. सो अब क्या हुआ है वो जानने के लिए आपको सीरियल देखनी पड़ेगी.
1: यहाँ जाह्नवी टचअप करने के लिए निकल गई तो वहाँ रुचिता भी शादी के मंडप की ओर निकल गई और दोनों ही इस बात से अनजान है कि घर में एक व्यक्ति है जो जाह्नवी पर नजर रखे हुए है और उसके हाथों में तो हथियार भी है. ऐसे में वो भी जाह्नवी के पीछे पीछे चला गया है. इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट. जिस कमरे में जाह्नवी तैयार होने के लिए गई थी उस कमरे में जाह्नवी है ही नहीं और ये देखकर जाह्नवी की नानी रुचिता और बाकी सब बेहद परेशान हो रहे हैं. इसी बीच रुचिता नानी को बताती है कि जाह्नवी शादी से भागना चाहती थी. बस फिर क्या, दादी ने रुचिता को डांटना शुरू कर दिया कि रुचिता ने पहले क्यों नहीं बताया. इसी बीच वहाँ पर हो जाती है एंट्री निहाल की दादी की, जो ये बात सुन लेती है और आते के साथ ही मचा देती है बवाल.
2: हमने जाह्नवी को तैयार होने के लिए यही कमरा दिया था. उस लिहाज से जाह्नवी को इसी कमरे में होना चाहिए.
3: वो असल में ना बात ये हुई कि जाह्नवी का जो मेकअप है वो खराब हो गया. अब ये कमरे में लाइट चली गई तो वो दूसरे कमरे में गई अपना मेकअप ठीक करने के लिए. बस हम उसे लेकर के आते हैं. हम चलिए
2: बातें मत बनाइए. आपका पूरा परिवार इस कमरे में एकजुट है और सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं. इसका क्या मतलब हुआ? नीचे शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और यहाँ जाने का कोई अता पता नहीं. इस सबका मतलब तो यही हुआ ना कि जाह्नवी भाग चुकी है.
1: भाई जाह्नवी की नानी तो सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है लेकिन सुमंत्रा वो बार बार नाराज हो रही है. इसी बीच हो जाती है निहाल की माँ की एंट्री भी, जिन्हें पता चल जाता है कि दुल्हन भाग चुकी है. बस फिर क्या, ये ड्रामा दुगना हो जाता है.
2: ये तो तभी संभव है ना पूनम जी, जब आपकी बेटी भाग गई हो.
3: क्या बोल रही है? सब लोग दुल्हन की राह देख रहे हैं. निहाल और बाबूजी का गुस्सा सातवें आसमान पर है और आप बोल रही है कि
2: जाह्नवी
3: भगवान ये क्या हो गया? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ईश्वरी खानदान का इतना बड़ा नाम रुतबा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और
1: भाई जाह्नवी के लापता होने पर सभी यहाँ परेशान हो ही रहे थे कि अचानक रुचिता की नजर टूटी चूड़ियों पर पड़ जाती है जो कि जाह्नवी की है. ऐसे में रुचिता और नानी दोनों ही हैरान हो जाती हैं और तो और नानी को तो लगता है कि जाह्नवी का किसी ने अपहरण कर लिया है. ऐसे में वो चाहती है कि पुलिस को बुलाया जाए लेकिन यहाँ पर निहाल की दादी मना कर देती है.
3: बहन जी, ये देख रही हैं आप, मेरी जाह्नवी की चूड़ी है, टूटी हुई चूड़ी. इसका मतलब जरूर उसकी जान खतरे में. एक प्रतीक के पापा, फोन लगाइए
4: बेटा. फोन
2: खबरदार,
4: पीछे रिश्ता,
2: किसी ने फोन लगाया था. इसी हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लगी हुई है. पुलिस आ गई तो हमारे खानदान का तमाशा बन जाएगा.
1: वही पुलिस के ना बुलाने पर पूनम परेशान हो जाती है और वो भड़कने लगती है। उनकी बातें सुनकर सुमंत्रा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और देखिए कैसे गुस्से में आकर वहाँ पर रखा सारा सामान उठाकर फेंक देती है। इतना ही नहीं, वो तो फैसला भी ले लेती है कि अब शादी होगी तो आज ही होगी। ऐसे में जाह्नवी की नानी सारी जिम्मेदारी रुचिता पर डाल देती है कि ये सब रुचिता की वजह से ही हुआ है।
4: ये रुचिता की गलती है, उसी के कारण।
2: जिसने गलती की है उसी को सजा भुगतनी पड़ेगी। जाह्नवी नहीं मिली तो मंडप पे रुचिता बैठेगी।
1: अब निहाल की दादी ने तो फैसला ले ही लिया है, लेकिन पूनम उनको ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसी बीच वहाँ पर रुचिता भी आ जाती है और ऐसे में वो शादी की रस्मों की शुरुआत कर देती है। रुचिता को बिठाकर दुल्हन की लाल चुनरी उसके सर पर उड़ा देती है। ये देखकर पूनम को आता है गुस्सा और देखिए कैसे वो जाकर रुचिता के सर पर उड़ी हुई चुनरी उठाकर फेंक देती है और रुचिता पर बरसने लगती है।
3: देखिए, जब आप हमारे घर में रिश्ता लेकर के आए थे तो जाह्नवी के लिए रिश्ता लेकर के आए थे, इसलिए अगर आपके निहाल की शादी होगी तो निहाल जी की शादी जाह्नवी के साथ ही होगी, रुचिता के साथ नहीं। क्या पता, क्या पता मेरी जाह्नवी के साथ क्या हुआ हो, कौन से हादसे का शिकार हो गई हमारी बच्ची। हमें उसे ढूंढना होगा, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं और जाह्नवी और निहाल जी की शादी करवाते हैं।
1: पूनम चाहे जितनी भी जिद पर आ जाए लेकिन निहाल की दादी ने फैसला ले लिया है। ऐसे में वो अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन दादी जाह्नवी के लिए बेचैन है और अब वो जाह्नवी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती है और यही आदेश उन्होंने रुचिता को भी दे दिया है। अब देखना होगा क्या रुचिता और रुचिता की नानी जाह्नवी को ढूंढ पाएंगी।
5: रुचिता, हमें किसी भी तरह जाह्नवी की शादी रोकनी होगी।
1: मुंबई से कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: मम्मी से कहा था एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे मम्मी पापा को हमसे छीना, तूने उसी का हाथ थाम लिया।
7: सीरियल तू ही रे में हो चुकी है नए किरदार की एंट्री, जिसका नाम है संजोग, और गलत फहमी के चलते हो गई है वृंदा और संजोग की बहस। अब ये बहस आगे जाकर क्या रंग दिखाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी।
8: दुनिया में लोगों ने
9: घर में हुई संजोग की एंट्री।
8: आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे।
9: वृंदा को हुई गलत फहमी।
10: मैं श्याम कुमार हूँ, मैं अमन हूँ, श्याम कुमार आप हैं।
11: मैं कहाँ से श्याम कुमार?
9: पहली मुलाकात में शुरू हुई दोनों की नोकझोंक। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में जल्द ही स्वाति और संजू की शादी होने वाली है और इसी शादी में शामिल होने के लिए आ गए हैं संजोग, जो है इस घर के बेटे। ऐसे में देखिए कैसे संजोग एंट्री करते हैं और इन साड़ियों को देखकर काफी खुश हो रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि स्वाति ये साड़ियाँ पहनेगी दुल्हन बनकर।

0: लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाती है वृंदा, जो संजोग को कोई और ही समझ लेती है। वो समझ लेती है संजोग को साड़ी बेचने वाला। ऐसे में पहले तो वो गंदे जूते संजोग के उतरवाती है। फिर खुद ही पोछा भी मारने लगती है। ऐसे में संजोग और वृंदा की बहसबाजी शुरू हो जाती है, गलतफहमी वाली, जहां वृंदा संजोग को साड़ी वाला समझती है और संजोग ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता है।
1: आपको किसने कहा कि मैं श्याम कुमार? श्याम कुमार ने कहा है फिलहाल तो
2: मैं श्याम कुमार आप हैं।
1: मैं कहाँ से श्याम कुमार?
2: आप साड़ी बेचने आए हो ना?
1: मैं तो साड़ी बेचने आऊंगा।
2: आपका काम है साड़ी बेचने का?
3: अरे चिल्लाइए मत, चिल्ला।
1: मैं कहा चिल्ला रहा हूँ?
3: अरे आपने चिल्ला रहे क्या? मैं चिल्ला रही हूँ।
1: हाँ कौन है? जी मैं श्याम कुमार।
4: अरे श्याम जी, आप हैं श्याम जी? आइए महाराज आइए।
5: हमें संजोग जी घुसाए हैं, जिन्हें मैं पहले राधे राधे श्याम बोलूँ, श्याम कुमार जी समझ लेती हूँ। और मुझे लगता है कि श्याम कुमार जी साड़ी वाले आने वाले हैं, और ये वही साड़ी वाले भैया जो घर में मिट्टी वाले जूते लेके घुस गए और कारपेट के ऊपर चढ़ गए। तो मैं एकदम से मतलब पिस्ड ऑफ हो जाती हूँ कि ये क्या, अभी मैंने साफ सफाई करी थी और कारपेट के ऊपर मिट्टी वाले जूते लेके कौन आता है? तो उन्हें भगा दिया, पहले कारपेट से हटी, हटी कारपेट से। तो वो हटते, मैं बोलती हूँ भैया, और वो ना कोई बैठा भी नहीं होता, सब खाली होते हैं, वो खुद पे साड़ी लगा लगा के कुछ तो बातें कर रहे होते हैं। बोलते हैं ऐसा कौन है साड़ी वाला भाई, अलग ही अपने उसमें वो। तो पूरे जूते गंदे हो जाते हैं, मैं खुद को शांत करती हूँ, मैं वापस साफ सफाई करने लगती हूँ। हमारे बीच में छोटा सा बैंटर होता है, जिसमें जैसे मैं बोलती हूँ, मेरा एक अलग तरीका है बोलने का, गुजराती हूँ जैसा, मैं को मी बोलती हूँ, शो को सर बोलती हूँ। तो वो भी बोलता है मैं नहीं, मी नहीं, मैं। तो उसमें हमारा एक छोटा सा बैंटर होता है।
6: एक्चुअली मैं आया तो संजय के घर में था, क्योंकि मैं उसकी सगाई में नहीं पहुंचा था एंड वो नाराज़ है। अब आके देखता हूं कि वो तो घर पे है नहीं, सो वृंदा से मेरी मुलाकात होती है। मेरे लिए वो एक नई लड़की है। मैं देखता हूं कौन है भाई, घर पे कोई भी नहीं है। सो ऐसी नोक झोंक वाला सीन है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी कर रहे हैं शूट, बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, आपको भी मज़ा आएगा।
0: फाइनली संजोग भी ये गलतफहमी वृंदा की दूर नहीं करता, और तभी वहाँ पर असली साड़ी बेचने वाले भी पहुँच जाते हैं। और देखिए कैसे संजोग खुद साड़ी लगा लगा कर वृंदा को साड़ियाँ दिखा रहा है।
2: ये बहुत बहुत खुशी हो रही है, उनके हाथ में सामान है, वो आपसे कितने बड़े हैं, अंदर तो कर लीजिए ना।
1: कोई बात नहीं मैडम, चलिए एक से एक बढ़िया साड़ी
2: दिखाएंगे। साड़ियाँ?
1: अरे नहीं नहीं, दुल्हन के लिए तो साड़ी मैं ही पसंद करता हूँ। क्यों ना कर?
2: हाँ
1: नहीं, मैं श्याम कुमार मेरा काम है ये देखिए, आपको
2: श्याम कुमार हो चाहे कोई भी कुमार हो, लेकिन आप ऐसी साड़ी पसंद नहीं कर सकते ना। आप तो दीजिए, वो क्या नाम अपना सब खुद पसंद करेंगे ना।
1: मैडम देख तो लीजिए, बहुत अच्छी है, ये डिजाइन देख के मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है।
0: तभी वहाँ पर दादा दादी पहुँच जाते हैं, जो संजोग को गले से लगाते हैं। तब वृंदा को समझ में आता है कि संजोग कोई साड़ी बेचने वाला नहीं, बल्कि इस घर का बेटा है। और ऐसे में देखिए कैसे वृंदा इन सब से माफी मांगती है।
7: गले लगो।
2: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,
7: अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ क्या?
1: यहाँ आके मैंने साड़ियाँ देखी तो मैं स्वाति के लिए साड़ी देख रहा, तो मैंने ऐसे घुमाया
5: मुझे ऐसा लगे कि संजोग नहीं है, संजू जी है, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि शिट मैं संजू जी से ऐसी बातें कर रही थी। और लव ट्रायंगल तो अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि लव ट्रायंगल या फिर लव स्क्वायर जो भी है, क्योंकि ग्रेजुअली हम किसी इंसान के किसी कैरेक्टर के मतलब फीलिंग्स दिखा रहे हैं, तो उसे बिल्ड करने में धीरे धीरे टाइम लगेगा और धीरे धीरे सब आपके सामने आएगा।
0: भाई अब संजोग तो घर आ गए हैं, अब इसी के साथ नई लव स्टोरी भी शुरू हो जाएगी जहां संजोग वृंदा को पसंद करेंगे। लेकिन इन लव स्टोरीज में भी काफी गोलमाल है, देखते रहना होगा कि कैसे ये रिश्ते एक दूसरे से जुड़ते हैं या फिर टूटते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: जन्माष्टमी के त्योहार को मथुरा में बहुत ही हर्षों उल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि यही वो भूमि थी जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज सास बहू और बेटियां संग अभिनेत्री लता सभरवाल पहुंच गई हैं मथुरा, जहां उन्होंने पूरे पारंपरिक अंदाज में मनाया ये त्योहार। आइए आपको लेकर चलते हैं मथुरा लता संग जन्माष्टमी।

0: मथुरा में नन्हे बाल गोपाल का अभिषेक और उनका जन्मदिन का महोत्सव, साथ में कृष्ण जन्मभूमि की खास है, चारों तरफ राधे राधे की गूंज, साथ में मथुरा का जायका, फिर चाहे वो यहाँ के गोकुल के छोले जलेबी या फिर हो मथुरा के पेड़े। सास बहु बेटियां लेकर आया है अपना जन्माष्टमी स्पेशल, जहाँ जन्माष्टमी के स्पेशल एपिसोड की खास मेहमान है अभिनेत्री लता सबरवाल। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि राजेश्वरी यानी अक्षरा की मम्मी जो पहुँच गई है मथुरा में सास बहु और बेटियां संग जन्माष्टमी मनाने। भाई जन्माष्टमी के लिए आज लता ने खास श्रृंगार किया है, वो जाएंगी कृष्ण जन्मभूमि, वहां पर मंदिर के दर्शन करेंगी, रंग जाएंगी राधा रानी के रंग में। भाई मौका है जन्माष्टमी यानी कृष्ण के जन्मोत्सव का, और वो भी मथुरा में मनाया जाए, उसी जगह जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इससे खास त्योहार हो सकता है कि भला। इसके अलावा वो यहां पर मथुरा के मशहूर सरोवर पोर्टिको में जन्माष्टमी की खास डिशेज का स्वाद भी चखेंगी, बनाएंगी यहाँ की मशहूर गोकुल कचौरी, यहाँ की मिठाइयों का टेस्ट करेंगी और साथ ही मथुरा वासियों के साथ झूम झूम कर नाच नाच कर कान्हा का स्वागत करेंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं लता सबरवाल के पास, जो मुंबई से फ्लाइट पकड़कर पहुंच गई हैं नोएडा एयरपोर्ट। जी हाँ, मथुरा के पास ही भारत का नवीनतम एयरपोर्ट खुला है, जिसे नोएडा एयरपोर्ट कहा जाता है, और यहाँ से मथुरा की दूरी बस 1 घंटा ही है।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत नया नया है, एक्चुअली ऐसा लग रहा है अभी नया घर खरीदा और पूरा बसा नहीं है। हमारा जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है उसकी भी कुछ ऐसी अभी एक कंडीशन है।
0: गाड़ी में सवार होकर लता पहुंच गई मथुरा, जहां पर सरोवर पोर्टिको की टीम ने उनका किया स्वागत।

अभी ऐसा लग रहा है मुझे इंडियन पहन के आना चाहिए था, फ्लाइट के चक्कर में मैंने ये पहन लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है ना, मथुरा आके सब राधे राधे बोल रहे हैं और इतना थोड़ा ऑथेंटिक सा फील आ रहा है, आई एम मिसिंग माय इंडियन आउटफिट।

0: बहुत अच्छी खुशबू आ रही है.
1: Lovely.
0: It's a totally, totally different feel. बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बार मथुरा आ रही हूँ. एक्चुअली इत्तेफाक की बात है. आना जाना तो आसपास होता रहता है लेकिन मथुरा नहीं आना हुआ. इस बार आना हो रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. वो कहते हैं ना बुलावे वाली बात होती है.
2: मथुरा में मची है जन्माष्टमी की धूम और देखिए होटल सरोवर पोर्टिको भी जन्माष्टमी के रंग में रंग गया है. और यहाँ पर पूरी टीम ने देखिए उनका कैसे वेलकम किया इस खास वेलकम ड्रिंक के साथ.
0: मुलाकात होनी है. अरे वाह, अंदर फ्रेश नींबू है, दिख रहे हैं ताजे ताजे नींबू भी पड़े हैं. ये सब चीजें कितनी नॉस्टैल्जिक लग रही हैं मुझे. खड़ा और इसको हम पता नहीं अब यहाँ क्या बोलते हैं कुछ है हम तो इसको नहीं ये जो जिससे निकाल रही हूँ डोई बोलते थे.
1: ओह,
0: इस बर्तन को हम जिससे निकालते हैं. सो नाइस, बड़ी रिफ्रेशिंग थी लेकिन मजा आ गया.
2: लता आई है मथुरा में खास जन्माष्टमी मनाने और इसलिए अब वो चेंज वेंज करके रेडी हैं क्योंकि वो जाएंगी कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने. और देखिए चेंज वेंज करके लता रेडी हैं कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए. आज उन्होंने इंडियन पहना है और खास श्रृंगार लिया है. और देखिए उन्होंने अपने होटल से ही कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए और साथ साथ अपने जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन को शुरू किया.
3: देख पा रहे हैं ब्राउन कलर का जो यहाँ से मंदिर जैसा नजर आ रहा है. अब पास जाएंगे तो डिटेल में हमें पता चलेगा वो है कृष्ण जन्मभूमि. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे ना गूजबम्स आ रहे हैं एकदम. मतलब एक अलग ही फीलिंग है मथुरा की, एक अलग ही वाइब है. और पहली बार जो आता है उसके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा है. मुझे सच में विश्वास नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं वहां जाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए. जय श्री कृष्ण, राधे राधे. यहाँ पे सब राधे राधे कहते हैं और ऐसा भी बताया गया है कि जैसे कोई भी लड़की या महिला जा रही हो तो उसे कुछ बोलना हो तो राधा ही बुला के एड्रेस किया जाता है. राधा तुम कहाँ जा रही हो, राधा क्या बात है, ऐसे कह के. इट इज सो ब्यूटिफुल, इजंट इट. आप लोग तो सब जानते हैं सारी मुझे कितनी पसंद है. मतलब मेरे हिसाब से तो सारी में, शायद लेडीज आप लोग अग्री करते हो, गर्ल्स तो जरूर बताइएगा, साड़ी में जितने हम अच्छे लगते हैं ना, ये जो आउटफिट ऐसी है कि मतलब इसमें सारी आउटफिट्स का कॉम्बिनेशन है. और आजकल तो लोग बहुत स्टाइलिश तरीके से भी पहनने लगे. मैं भी इनफैक्ट पहनती हूँ कभी बेल्टेड कभी क्या. सो आज लेकिन एकदम ट्रेडिशनल ढंग से पहना है क्योंकि आज हम थोड़ा जा रहे हैं कृष्ण की नगरी में बाहर घूमने, तो आपको भी साथ में लेके चलेंगे. और आज ये बड़ी ट्रेडिशनल मैसूर जॉर्जेट की साड़ी पहनी है मैंने. बिल्कुल साफ कहूँगी नई साड़ी नहीं है लेकिन कुछ साड़ी जो होती वो क्लासिक होती हैं. और आज हम बात कर रहे थे मुकेश के वर्क की जो इसके ऊपर हुआ भाई छोटा छोटा लखनऊ का. ये साड़ी तो मैसूर जॉर्जेट है लेकिन ये वर्क जो है मुकेश का मुझे बहुत पसंद है. वेरी ट्रेडिशनल ब्राइट पिंक कलर इस नगरी के हिसाब से ला होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता. लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज के दिन मैं राधा सही.
0: तो चलिए आ जाइए देखते हैं मथुरा में जन्माष्टमी की क्या बहार चल रही है.
4: मेरे तन मन में मेरे जीवन के हर.
2: तो अब लता तैयार है कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए जहां पर जन्माष्टमी के दिन दुनिया भर से लोग आते हैं उस जगह को देखने जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. तो सास बहू बेटिया संग लता सबरवाल भी पहुंची उस जगह जिसे कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है. यहाँ पर आज काफी भीड़ है, बारिश का मौसम है लेकिन खास इंतजाम किए गए हैं कि सभी भक्तों का दर्शन हो सके.
0: कृष्ण जन्मभूमि के रास्ते पे चल रहे हैं हम और बिल्कुल बहुत ही रौनक है यहाँ पे, बहुत रौनक है. और आज तो हम फिर भी जा पा रहे हैं. कहा जाता है कि इतनी भीड़ होती है कि चलना मुश्किल होता है.
2: लता किसी कृष्ण भक्त की तरह आज यहाँ पर दर्शन करने आई है लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे वो राधा रानी बन गई इस खास श्रृंगार से. जी हाँ, जब मथुरा में आए हैं तो राधा बनना ही पड़ेगा. और देखिए किस अनोखे अंदाज में वो बन गई राधा रानी.

0: पता नहीं, मैंने मुझे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग सब बोल रहे तो अच्छा ही, राधा रानी का रूप है तो अच्छा ही होगा।
1: इसके बाद लता ने मुख्य मंदिर के दर्शन किए और नन्हे बाल गोपाल को याद किया। मथुरा अपने पेड़ों के लिए जाना जाता है और देखिए यहाँ पर लता ने कैसे प्रसाद के रूप में इन पेड़ों को चखा।
0: मथुरा के पेड़ तो बहुत फेमस है और ये ब्राउन ब्राउन जो कलर के होते हैं ना, बहुत स्वाद होते हैं देखा जाए। चलिए स्वाद देखे मथुरा के पेड़ का। जो भुना हुआ टेस्ट है ना इसका, अमेजिंग भुना टेस्ट है, वो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पे आ रहे हैं। और कृष्ण जन्म पे तो खाने का मजा ही कुछ और है। पेड़ राधे राधे।
1: कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के आसपास ढेर सारे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं, तो लता ने भी बाजार का जायजा लिया, ढेर सारी चीजें चेक की और थोड़ी बहुत शॉपिंग की।

इसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो गई, जो बहुत ही अच्छा संगीत है। कहते हैं कि कृष्ण जी का जन्म बारिश के मौसम में ही हुआ था, और देखिए कैसे बारिश से बस्ती बचाती। लता सभरवाल ने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कुछ इस अंदाज में किए।

इसके बाद बारी थी जन्माष्टमी पूजा की। कृष्ण जन्मभूमि के प्रांगण में ही एक छोटे से मंदिर में लता ने अपनी पूजा संपन्न की। सर पर पल्ला लपेटकर यहां पर मथुरा की लेडीज के साथ उन्होंने बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में कृष्ण जी की पूजा की, जैसे आम मथुरा वासी करते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में भी लता कृष्ण भक्त है, उनको सारे के सारे भजन कंठस्थ है। और देखिए नन्हे कान्हा को अपने हाथों से कैसे सजा रही हैं, झूला झुला रही हैं और मना रही हैं उनका जन्मदिन।

0: बांके बिहारी लाल की जय जय।
1: कृष्ण पूजा करते हुए लता को याद आया ये रिश्ता क्या भोपाल, जहां वो पूरे माहेश्वरी परिवार को जोड़ा करती थी। जी हाँ, इसीलिए ये रिश्ता कहलाता है। उन्होंने कृष्ण के कई भजन भी गाए थे।

बाल गोपाल का श्रृंगार कर रही थी तो मुझे सबसे पहले हमारे ये रिश्ता के सेट पे जो बाल गोपाल है उनकी याद आई, और मैं बहुत ओवरवेल्म हो रही हूँ एक्चुअली इस टाइम, शायद इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है। तो मुझे याद आ रहा है कि अक्सर ऐसा हुआ करता था डे वन ऑफ द शूट से कि मेरे सीन बाल गोपाल के साथ बहुत होते थे। अक्सर ऐसा होता था कि मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, बैठी हूँ, श्रृंगार कर रही हूँ, या सारे परिवार के साथ हम लोग उनकी आरती गा रहे हैं। आप लोग ने सुनी होगी, दो लाइन चढ़ाती हूँ।

0: तो ये हम सब गाते थे साथ में। तो आज जब मैं इनका श्रृंगार कर रही थी, मुझे अपने सेट के बाल गोपाल की याद आई। और अक्सर ये अनुभव आप लोगों से शेयर करती हूँ, अगेन मैंने कभी बोला नहीं है इसके बारे में, कि कई बार ऐसा होता था हमारी एक रूटीन थी कि जब हम सुबह सब आते थे, सबसे पहले जाके उनके आगे हाथ जोड़ते थे, भले हमारे मेकअप रूम दूसरी जगह पे हो, लेकिन सबसे पहले जाते थे और कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ते थे। मुझे कितनी बार ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें जो है वो मूव कर रही हैं या देख रही हैं या कुछ कह रहे हैं। बहुत बार मैंने ऐसा अनुभव किया, लेकिन मैं आज पहली बार ये बात बोल रही हूँ, पता नहीं बोलनी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन आज जो इनका जन्मदिन है तो सोचा खुशी में बोल देती हूँ कि बहुत बार मैंने ऐसा महसूस किया कि वो देख रहे हैं। तो बस यही कहूंगी, इनकी लीला अद्भुत है, अपरंपार है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि यहाँ पर आपने इतने अच्छे से जो है मेरी पूजा करवा दी, और उसके साथ साथ आप सबका जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ कान्हा जी के पास। और इनका तो हर समय धन्यवाद है ही, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना है, बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं चाहते तो यहाँ आज मथुरा में बैठ के इस तरह से हम जन्माष्टमी नहीं मनाते। तो बहुत ही आज का दिन अच्छा है, शुभ है, और मैं आप सबके लिए पूजा करती हूँ, आप सबके लिए कामना करती हूँ कि आप सब, आपके पूरे परिवार हमेशा बहुत हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, खुशियां भरी रहे, बनी रहें हमेशा परिवार में। आप सबकी जो मनोकामना हो पूरी हो, और आप सब सही रास्ते पे चलें, अच्छे इंसान बनें।
1: इसके बाद था उत्सव मनाने का वक्त। तो आज देखिए मथुरा की सारी लेडीज एक साथ जमी हैं और लता के साथ देखिए कैसे कृष्ण लीला रचाई जा रही है। वही नाच के, भजन गा के ये सभी लेडीज ये कृष्ण जी का स्वागत कर रही हैं, क्योंकि आज नंद गोपाल का जन्म जो हुआ है।

0: 라데
1: कृष्ण जन्मभूमि जन्माष्टमी के उत्सव के बाद लता पहुंची अपने होटल धरोवर पोर्टिको, जहां पर आज वो शेफ अर्नब के साथ जन्माष्टमी की कुछ रेसिपी सीखने वाली हैं। पर ये कुछ गोकुल डिशेस हैं, जैसे गोकुल कचौरी, जलेबी, ठंडाई, जो आज लता शेफ से सीखेंगी और हाँ अपने हाथों से बनाएंगी। तो सीधा चलते हैं होटल सरोवर पोर्टिको मथुरा की रसोई में।
2: मथुरा में आए हैं और वो भी जन्माष्टमी के मौके पे, तो यहाँ का कुछ देसी खाना अगर नहीं खाया तो मजा नहीं आएगा। तो इस टाइम फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोवर पोर्टिको में मथुरा और हमारे साथ हैं शेफ अर्नब जी।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते। तो कुछ डिलिश सामने दिख रहा है मुझे। अच्छा ये बताइए, पहले अगर हमने व्रत नहीं रखा हो जन्माष्टमी का, तो उस मौके पे क्या खाया जाए?
3: जी, जो मथुरा का फेमस डिश है वो है कचौरी। कचौरी जो है, आप अगर यहाँ पे घूमोगे तो फिर जगह आपको दिखेगा 5 दुकान में से 4 दुकान जो है कचौरी की है।
2: इतनी कचौरी बिकती है यहाँ पे?
3: और अरे वाह, ऐसा नहीं है कि एक दुकान में भीड़ है, बाकी में भीड़ नहीं है,
2: सब में
3: भीड़।
2: कचौरी खानी पड़ेगी।
3: और ये कचौरी हम लोग दो टाइप का प्रेजेंट करते हैं। एक तो ड्राई करते हैं, जो इसके साथ में थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स डाल के, जैसे कर्ड हो गया, जैसे सौंठ की चटनी हो गया, मिर्च चटनी हो गया, चाट मसाला, टमाटो। और इसमें जो मैंने जो थीम रखा है, ड्यू टू दैट रीजन के जन्माष्टमी के टाइम में आप लोग आए हो, तो जन्माष्टमी के टाइम में ऑनियन गार्लिक नहीं खाते है। इस रीजन के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण के नाम पे हम लोगों ने इसलिए ऑनियन गार्लिक नहीं रखे,
2: और वैसे भी बहुत से लोग नहीं खाते।
3: और ये एक ड्राई वाला बनता है, और दूसरा वाला है गोकुल के छोले बोल के, एक
2: गोकुल के छोले
3: जी, एक यहाँ का फेमस डिश है, उसके साथ में कचौरी को डाल के फिर जाके उसका चाट भी बनाया गया।
2: ये वही व्हाइट वाले छोले है ना? लेकिन
3: हाँ हाँ, चना जो पिंडी चना जो बनते हैं, लेकिन काबुली चना जिसको
2: बना अलग स्टाइल से, गोकुल
3: गोकुल स्टाइल में।
2: क्या खास है इस स्टाइल में?
3: इसमें थोड़ा बहुत जो इंग्रेडिएंट्स है वो एकदम अलग है, जो मतलब पंजाब
2: शेयर करेंगे
3: जी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे थे कि ऑनियन गार्लिक यूज नहीं होता है, तो ऑनियन गार्लिक इसमें यूज नहीं होता
2: है। ओ, के बने में है। क्या बात है।
3: तो इसके एक जो ड्राई वाला कचौरी है, ये एक बना के आपको दिखाते हैं। एक तो पहले तो हम लोग कचौरी लेते हैं, ये मूंग दाल से बनती है, मूंग दाल उसके अंदर में स्टफिंग होता है।
2: अच्छा,
3: और
2: अच्छा।
3: उसके साथ में कचौरी बनता है, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत चीज वगैरह डालते हैं, जैसे कि टमाटो हो गया, उसके बाद जाके थोड़ा ग्रीन चिली डालते हैं इसमें।
2: अच्छा।
3: और थोड़ा बहुत
2: थोड़ी थोड़ी ग्रीन चिली, ये क्या है?
3: ये चाट मसाला।
2: अच्छा।
3: हो गया, और ये थोड़ा बहुत नमक और थोड़ा चिली पाउडर।
2: अच्छा।
3: और साथ में थोड़ा कोरिएंडर।
2: अच्छा।
3: और साथ में इसमें हम लोग कर्ड डालते हैं।
2: अच्छा अच्छा, ओके।
3: और सौंठ की चटनी डालते हैं।
2: हाँ हाँ, मीठी चटनी जो होती है ना सौंठ का, ओह बहुत टेस्टी लगती है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है ऑलरेडी। तो आपने डाला दही, मीठी चटनी, दैट इज सौंठ, और हरी चटनी, माउथ वाटरिंग।
3: और उसके ऊपर में थोड़ा सा गार्निश करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा कोरिएंडर, और थोड़ा सा
2: मैं सोच रही थी ये नहीं डली है
3: जी।
2: ओके,
3: ये हो गया आपका प्रेजेंट आपके लिए।
2: लेकिन इसको खाते कैसे हैं?
3: बस ऐसे ही हाथ से।
2: हाथ से खाते हैं?
3: बाइट करके
2: हाथ से तोड़ के खा सकते हैं?
3: जी जी,
2: सिक्का खराब हो जाए।
3: आपके लिए स्पून का अरेंजमेंट कर,
2: हाथ से तोड़ के खा लूंगी, कोई बात नहीं, देखती हूँ ट्राई किया जाए। ओके फ्रेंड्स, मतलब स्पून से खाएंगे तो थोड़ा इंसल्ट हो जाएगी, वैसे तो ये पूरी मुंह से खाई जाती है, लेकिन अभी हमें बाहर भी घूमने जाना है, और आप जानते हैं ना हम फीमेल्स कितने पर्टिकुलर होते हैं अपनी लिपस्टिक को लेके, तो इसे हम हाथ से खाएंगे। अंदर दाल देख रही है मुझे, इसमें कैसे है भरी हुई। अच्छा, ये येलो येलो नजर आ रही है अंदर से। ये कौन सी दाल है आपने?
3: ये मूंग दाल।
2: मूंग दाल, अच्छा। ओके, तो मैंने ये सारा मिक्स कर लिया, इसमें ले लिया इसका जो आपने डाला। एक और बाइट खानी पड़ेगी। जबरदस्त,
3: थैंक यू।
2: और ये कचौड़ी काफी सॉफ्ट है
3: जी,
2: वरना कभी कभी क्या होता है कोई कोई कचौड़ी थोड़ी सी टूटने में ऐसे टाइम लेती है, हार्ड होती है. दिस इज वेरी सॉफ्ट. कैन यू प्लीज एड लिटिल मीठी चटनी टू इट?
3: सर्टेन.
2: दिस इज अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. अब दूसरी में क्या करते हैं?
3: दूसरा जो होता है उसमें गोकुल के छोले डालते हैं हम लोग. जैसे सेम ये कचौरी लेते हैं हम लोग.
2: अच्छा.
3: उस कचौरी को तोड़ते हैं ऐसे, और उसके बाद जाके फिर उसमें गोकुल के छोले डालते हैं, जो छोले भी नो ऑनियन नो गार्लिक होता है.
2: अच्छा.
3: क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म स्थान है ये, आप लोगों को पता है.
2: अदरवाइज भी बिना इसको ऑनियन गार्लिक के बनाते कि खाली जन्माष्टमी के मौके?
3: नहीं, ऐसे में भी ये ऑनियन गार्लिक के बिना ही बनता है.
2: अच्छा.
3: गोकुल के छोले जो है ऑनियन गार्लिक नहीं होता है.
2: अच्छा, क्योंकि नाम ही है गोकुल के छोले इसलिए. ओके.
3: हाँ
2: राइट.
3: और उसमें थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, थोड़ा ग्रीन चिली डालेंगे,
2: थोड़ा हरी मिर्ची कम. थैंक यू.
3: और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल लेंगे, और फिर इसमें आप अपने हिसाब से मिंट चटनी, थोड़ा सौंठ की चटनी.
2: जो मेरी तरह मीठे की ज्यादा शौकीन है वो ज्यादा मीठी चटनी डाल सकते हैं. क्या लग रही है?
3: और थोड़ा कर्ड, और फिर जाके ऊपर से जो सेव है वो डाल के ये आपका दूसरा वाला.
2: जस्ट वाओ. इसको तो चम्मच से ही खाना पड़ेगा.
3: जी जी जरूर.
2: हाँ, आई वाज थिंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है ये. तो मथुरा में खा रहे हैं गोकुल के छोलों वाली कचौड़ी. क्या ये भी हाथ से काटनी पड़ेगी लगता है शायद?
3: जी.
2: है ना, देखा कचौड़ी की इंसल्ट कर रही थी मैं. चलिए इसको भी हाथ से तोड़ा जाएगा और छोले उसमें समेट लिए जाएंगे अंदर से, क्योंकि हमें छोले टेस्ट करने हैं कि गोकुल के छोले कैसे हैं. एक्चुअली सच बताऊं मुझे ऐसा लग रहा है इसको खाया जाएगा अच्छे से तब जब इसको ना पूरा तोड़ तोड़ के पीसेस कर लिए जाएंगे
3: जी.
2: और तब मजे से जो है ना खाया जाएगा. ऐसे एकदम गोकुल के छोले में मुझे क्या अलग लग रहा है? आपने बोला कि अनियन गार्लिक तो नहीं है, दैट्स डिफरेंट, बट थोड़ा सा बटर का या घी का फ्लेवर आ रहा है.
3: घी का फ्लेवर डेफिनेटली. घी के बिना मतलब आप मथुरा में आए हो तो
2: घी नहीं खाओगे, दही नहीं खाओगे. या सो वो जो एक छोलों की स्मूथनेस है ना, एक अलग सी स्मूथनेस है
3: जी. यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप सुबह के टाइम में भी ब्रेकफास्ट करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स में.
2: अच्छा.
3: तो अपने रेस्टोरेंट में एक मथुरा का स्वाद बोल के एक अलग सा जगह रहता है जिसमें आपको या तो छोले रहता है, जैसे कि आपका कचौरी रहता है, समोसा रहता है, और एक मक्खन मिश्री बोल के भी एक आइटम होता है जो एक टाइम में जब श्री कृष्ण
2: सुनते थे कि वो खाते थे. हाँ.
3: तो इस कारण के लिए हम लोग भी मक्खन मिश्री भी देते हैं गेस्ट को, कि अगर किसी को चाहिए मक्खन मिश्री खाना है तो वो अब डेफिनेटली हम लोग भी उसको बना के रखते हैं अपने होटल्स में.
2: वेरी वेरी नाइस, मस्ट ट्राई है ये तो, बिल्कुल मस्ट ट्राई है. एंड छोले यस डेफिनेटली डिफरेंट हैं, काफी क्रीमी और स्मूथ से लग रहे हैं घी की वजह से. थैंक यू सो मच, इट्स रियली डिलीशियस.
1: अब बारी है कुछ मीठा खाने की. जी हाँ, गोकुल की मिठाइयाँ भी खास है, जिसमें सबसे स्पेशल होती है यहाँ की जलेबी और साथ में रबड़ी और थोड़ी ठंडाई. तो आज लता ने शेफ अर्नव से ये गोकुल की मिठाइयों का स्वाद भी समझा.
3: जी, ये एक जलेबी है, जलेबी के साथ में रबड़ी और साथ में ठंडाई जो यहाँ का बहुत फेमस है.
2: ये जलेबी ना पतली वाली और ब्राउन वाली इतना माउथ वाटरिंग लग रही है, लेकिन रबड़ी और ठंडाई साथ में, मतलब ये चीजें ऐसे खाते हैं. जलेबी रबड़ी तो पता है मुझे,
3: जलेबी रबड़ी कहते हैं, और ये वेलकम ड्रिंक्स के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं. मतलब हम लोग अपने जो होटल्स है, इस होटल में भी हम लोग ठंडाई और हम लोगों का यहाँ पे शिकंजी, यही दोनों.
2: शिकंजी आज मैंने पी आपके होटल में, बड़ी रिफ्रेशिंग लगी. बाहर से आओ वैसे भी कुछ ऐसे रिफ्रेशिंग मन करता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है.
3: एक दिन शिकंजी रहता है, एक दिन ठंडाई रहता है, इसके बेसिस पे हम लोग अपने होटल्स में इसको प्रेजेंट करते हैं. पहले तो चार पीस जलेबी ले लीजिए जो बनाया हुआ है.
2: चार पीस जलेबी, वन टू, ब्राउन वाली लेती हूँ, मुझे ना ऐसी ब्राउन जलेबी ज्यादा पसंद है. थ्री एंड फोर,
3: उसमें थोड़ा रबड़ी डालिए ऊपर से।
2: आहा हा, क्या लग रही है रबड़ी, इसके ऊपर ही पूरी डाल दूं फैला के?
3: जी जी जी,
2: मजा आ गया। लाइफ हो तो ऐसी, खाना हो तो मथुरा जैसा, है कि नहीं? बस क्या ऑर्डर
3: जी। और उसके बाद जगह ड्राई फ्रूट्स,
2: ये पिस्ता और काजू है,
3: ये थोड़ा गार्निश के लिए ऊपर से।
2: नाइस,
3: ये हो गया,
2: तो लग रहा है अपने आप में ये अभी। थैंक यू सो मच शेफ अर्नब जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बताने के लिए, खिलाने के लिए इतनी स्वादिष्ट चीजें। और फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का मौका है और हमारे कृष्णा जी का जन्म होता है, तो आज के दिन आप सब बाल गोपाल को याद कीजिए और कुछ मुंह मीठा कीजिए, जैसे कि मैं आपका मुंह मीठा कराने जा रही हूँ। और जैसा कि मथुरा में सब कहते हैं राधे राधे, तो मैं भी कहूंगी राधे राधे।

0: चले। तो ऐसा रहा लता सभरवाल का गोकुल यानी मथुरा में जन्माष्टमी का त्योहार। लता ने शुक्रिया अदा किया होटल स्काइविंग सरोवर पोटिको की टीम का, जिन्होंने उनके लिए खास जन्माष्टमी का ये भोग आयोजित किया था।
1: सर हमारे साथ अमनदीप जी हैं, जो कि हमारे F&B मैनेजर हैं सरोवर पोटिको के। लवली एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक फूड।
2: थैंक यू। एनी सजेशन या एनीथिंग?
1: सजेशन मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, ऐसा है, सब अच्छा ही है बहुत। और ऑथेंटिक खाना मिल गया, वो ज्यादा मजा आया, क्योंकि हमने यहाँ के जो है कचौड़ी भी खाई, जलेबी रबड़ी खाई, साथ में ठंडाई भी है। और जब वेलकम ड्रिंक में हमें मिला था आपका शकंजी मिली थी, वो भी बड़ी रिफ्रेशिंग थी। और साथ में फुलके भी खाए हमने, जो हमने किसी को दिखाए नहीं।
2: तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम ओवर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी आर ऑलवेज मेंटेन लाइक दैट ओनली फॉर एवरीवन ओवर हियर।
1: नाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर सच
2: हॉस्पिटैलिटी। लव यू मैम ओवर हियर।
0: वैसे रियल लाइफ में भी लता सभरवाल का कृष्ण के साथ एक खास नाता है। उनके पहले सीरियल का नाम था गीता रहस्य, जहां पर वो द्रौपदी बनी थी, और उन्होंने लॉन्च किया था महाभारत के कृष्ण नीतीश भारद्वाज ने। और इसके अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें हमेशा वो कृष्ण भक्त करती हुई नजर आती थी।
3: मैं हमेशा से जो है कृष्ण भक्त रही हूँ बचपन से ही, और बहुत भजन वगैरह उनके गाती थी और बहुत अच्छा लगता था। जन्माष्टमी में हम जब लखनऊ में हुआ करते थे तो मैं अपने हाथ से पूरा उनका कारावास वगैरह सब कुछ बनाती थी। फिर वो झूला हम उस टाइम पे जो है कार्डबोर्ड की चीजें बनाते थे, मिट्टी लेके बनाते थे, तो पूरा ऐसे क्रिएट करती थी। और मुझे बहुत आज भी जन्माष्टमी बहुत पसंद है, भजन वगैरह सब करती हूँ आज भी। तो ये सब करते करते हम जिन दिनों महाभारत आता था, तो जब कृष्ण नीतीश भारद्वाज जी को देखते थे तो हमें बस ऐसा लगता था कि कृष्ण है तो यही है और कोई दूसरा नहीं है। और मेरी इस बात से शायद बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, है कि नहीं, कृष्ण है तो वही है। और जब मुंबई आना हुआ, खैर वो बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो सबसे पहले जब मैं ऑडिशन देने गई तो वो नीतीश भारद्वाज जी के यहाँ था। और मैं आपको एक मोमेंट डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं एक बिल्कुल आम सी लड़की वहां बैठी हुई, कुछ 22-23 साल के बीच की, 22 साल आई गेस, उनके ऑफिस में बैठी थी और वेट कर रहे थे कि कब आएंगे ऑडिशन लेने के लिए। खुशी बहुत थी कि नीतीश भारद्वाज जी को आज देखने को मिलेगा, कृष्ण को देखने को मिलेगा, मैं यही कहूंगी। और जब वो ऐसे गुजर के गए ना मेरे सामने से, वो एंटर किए और मैं थोड़ी देर के लिए एकदम शांत और चुप। उनका ऑरा इतना जबरदस्त था और मतलब मुझे ऐसा लगा ये भगवान, मैं सच में भगवान को देख रही हूँ, मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ उस समय। और जब उन्होंने अंदर ऑफिस में बुलाया और मुझे मेरा ऑडिशन लिया, हिंदी पढ़वाई मुझसे, मेरे बाल भी काफी लंबे थे उस टाइम, बातचीत की, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं इतना ओवरवेल्म हो रही थी उन्हें देख

0: रहे थे कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, शायद उन्हें नजर आ रहा था कि मैं कर पाऊंगी। तो मैं लास्ट सीन में बहुत रोई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब ये जो मैं कर रही हूं ना, ये आगे तक पहुंच जाए, ये भी एक इच्छा थी। और देन आई गॉट सेलेक्टेड एज द्रौपदी इन गीता रहस्य, जो कि सबसे पहला मेरा टेलीविजन शो था मुंबई में। ही इज स्टिल डेट माई मेंटर।
1: तो आप भी इस जन्माष्टमी अपने घर को गोकुल बनाइए और मनाइए ये त्योहार। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: डॉक्टर आरंभी पर लगाए विश्वास ने इल्जाम, घर में दिखा विश्वास का टल्ली तमाशा। लेकिन इस बार आरंभी को ध्रुव के साथ साथ अपने ससुर का भी मिला साथ। ऐसे में आरंभी ने कैसे दिया विश्वास के आरोपों का जवाब, चलिए देखते हैं। विश्वास का टल्ली तमाशा शुरू हुआ, नया ड्रामा। आरंभी पर फिर भड़का विश्वास का गुस्सा। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी अपने घर लौट आई है। ऐसे में देखिए कैसे ध्रुव और बाकी के घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, और ऐसे में आरंभी कर रही है सर्विंग, और डीसी यानी कि ध्रुव कर रहा है आरंभी की तारीफें। ये बात आरंभी की सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, लेकिन ध्रुव की हर बात को मान रहे हैं आरंभी के ससुर जी।
3: मेरा ना हिसाब थोड़ा उल्टा है, मुझे खाना देखते ही उसकी खुशबू आते ही बहुत ही जोरों शोरों की भूख लग जाती है। मैं भी ले लो।
4: आरंभी पर गुड जॉब। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ सुबह ऑफिस में आना थोड़ा हुआ ही, बहुत लंबी छुट्टी हो गई है, वापस आ जाओ। क्या याद नहीं है क्या हमारी बोलो, हमारे हॉस्पिटल में काम करती है, डॉक्टर है।
5: इतना सब होने के बाद भी आप अपनी बहू को हमारे हॉस्पिटल वापस बुला रहे हैं काम करने के लिए?
2: की बातें चल ही रही होती है कि तभी नशे की हालत में धुत आ जाता है विश्वास। भाई विश्वास काफी नशे में है, ऐसे में देखिए कैसे वो आरंभी पर भड़क रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है। ऐसे में डिंपल काफी परेशान हो गई है, लेकिन विश्वास कहाँ रुकने वाला है, उसने तो घर में बवाल शुरू कर दिया है।
3: आपको पता है राय, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के लिए नहीं बनी है, मुझे मुझे टक्कर देने के लिए बनी है। यही तो करती आ रही है इतने दिनों से, कभी डॉक्टर बन के, कभी घर की बहू बन के। सुबह उठ के बस एक ही एजेंडा होता है इसका, कैसे आज विश्वास की बदनाम।
6: विश्वास क्या कर रहे हो? विश्वास
7: क्या हाल बना लिया तुमने अपना?
3: इसने किया है ये मेरा हाल मॉम, इसने किया है ये मेरा हाल।
6: सबसे में धूत हो तुम, धूत होकर घर पे आए।
7: क्या मैं कर रहा था अपना?
6: विश्वास बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो?
3: क्योंकि आपने मुझे इसे डिवोर्स नहीं लेने दिया था।
6: हाँ नहीं दिया, डिवोर्स लेने भी नहीं दूंगा मैं। विश्वास तुमने डिवोर्स लेकर टंडन परिवार की बदनामी के अलावा क्या हासिल कर लेते?
3: बताओ मैं क्या करता हूं?

0: 죽을 때 조지 뼈한테 죽여라 싸운데 죽여라 뼈한테 라이고
1: विश्वास नशे में काफी कुछ कह रहा है और वो कुछ सच बोलने ही वाला होता है कि वो हो जाता है बेहोश। ऐसे में सभी घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
0: जैसे कौन?
1: भैयारम भी एक डॉक्टर है और इसके नाते देखिए कैसे वो विश्वास का इलाज करती है। और ऐसे में आरंभी के ससुर जी भी आरंभी का ही साथ देते हैं।
2: चुप रहो, मुझे सामने वाले कैसे हुआ है? पानी लेकर आओ कोई।
3: नहीं नहीं सर, ये अभी बेहोशी की हालत में।
2: चुप रहो
0: तुम। चुप रहो डिंपल, तुम डॉक्टर हो, वो डॉक्टर है, जानता है इसे कैसे हैंडल करते
3: हैं। आप आइए, पैर उठाएंगे जी, पैर को नीचे रखो, पैर थोड़ा ऊंचा करके रखने पड़ेंगे, हो जाएगा। ओआरएस है?
0: मैं ले आता हूं।
3: विश्वास, विश्वास।
1: इन सब के बाद आरंभी के ससुर जी आरंभी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं। ऐसे में डिंपल भड़क जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें तो अपने हॉस्पिटल को बचाना है।
0: उसमें आ जाए तो ORS भी पिला देंगे। इसकी शराब की वजह से हम हॉस्पिटल में लेट नहीं हो सकते।
2: क्या बोल रहे हैं? मेरे विश्वास को इस हालत में छोड़कर आप आरंभी को हॉस्पिटल चलने के लिए कह रहे हैं?
0: तुम हो ना घर में विश्वास का ध्यान रखने के लिए, जब तुम्हें भी किसी किटी पार्टी में जाना है एंजॉय करने के लिए, माँ हो ना उसकी। और आज तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है उसके बाद तुम अपनी शक्ल किसी को दिखाना ही नहीं चाहोगी। आई गेस
4: आई जस्ट होप आपके इस बेटे ने घर के बाहर तमाशा ना किया। आप जानते हैं लॉयर्स के साथ मीटिंग है, आप एक नया स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते।
3: शराब पी के नहीं आता है,
5: अभी अभी जो सीन हो रहा था उसमें विश्वास जो है वो बेहोश हो गया है। असल में वो नशे की हालत में धुत आया है और नशा उसने इसलिए किया है क्योंकि जितनी तकलीफ उसे लगता है आरंभी ने उसे दी है और अवंतिका से वो अलग हुआ है, तो शायद इस वजह से वो बहुत दुखी है और उसने शराब का सहारा लिया है। तो डिम्पल और सुनील और पूरे घर वाले बहुत शॉक्ड हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी आज तक विश्वास को इस हालत में नहीं देखा, और जिसकी वजह सामने आती भी है। सबको लगता है कि आरंभी की वजह से इसने ये किया है। वो चाहता भी है कि आरंभी से अलग हो जाए। वो अपने फादर से कहता भी है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, आपने मुझे डिवोर्स लेने नहीं दिया। लेकिन चूँकि टंडन परिवार में रिवाज ही नहीं है डिवोर्स का, इसलिए सुनील टंडन अग्री नहीं करता है। और इसी यही एक झगड़ा है जो आरंभी घर में वापस आ गई है और सुनील उसका साथ दे रहा है, और विश्वास और डिंपल बिल्कुल नहीं चाहते कि आरंभी इस घर में रहे। सो ये पूरा एक टेंशन भरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन था। इसमें डीसी भी आता है बिकॉज डीसी चूंकि इन्वेस्टर है न्योपल्स हॉस्पिटल में और एक ही इन्वेस्टर बचा है, तो वो जो भी कहता है सुनील टंडन और पूरे परिवार को मानना ही पड़ता है और वो फाइनली अपनी बात मनवा ही लेता है।
1: डिंपल को भी अपने पति की सारी बातें माननी पड़ रही हैं अस्पताल को बचाने के लिए, और ऐसे में अब आरंभी अस्पताल जाएगी और अपना फर्ज भी निभाएगी। लेकिन इन सब के साथ अब डिंपल और विश्वास मिलकर कौन सी नई चाल चलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
6: आरंभी ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है, आज के बाद इस घर में डिवोर्स सुनाई भी नहीं देना चाहिए।
7: डिवोर्स तो होगा मेरी मर्जी से।
1: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: नहीं जाऊंगी मैं, अपने विहान को साथ लेकर जाएगी उसकी माँ।
8: सीरियल मन्नत में एक तरफ जहां मन्नत और विक्रांत धैर्य का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं, वहीं धैर्य विक्रांत को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में कौन अपने इरादों में कामयाब होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।
1: खतरे में याशिका की जान, धैर्य के सर पर खून सवार।

मन्नत की परेशानी। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार, लेकिन इस त्योहार के रंग में खूनी रंग है, क्योंकि धैर्य को ये पता चल चुका है कि मन्नत और विक्रांत उसका सच जान चुके हैं और वो त्योहार के मौके पर करने वाले हैं धैर्य के सच का पर्दाफाश। और साथ ही धैर्य को ये भी पता चल चुका है कि याशिका भी मन्नत और विक्रांत के साथ मिली हुई है। ऐसे में देखिए कैसे याशिका को अकेला पाकर उसने कर दिया याशिका पर हमला।

याशिका गिड़गिड़ा रही है, अपनी जान की भीख मांग रही है, लेकिन धैर्य उसके सर पर तो खून सवार है। आज वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पहले उसके निशाने पर याशिका है और फिर विक्रांत, और देखिए कैसे वो याशिका पर हमला कर रहा है।

0: याशिका को मारने ही वाला होता है कि याशिका कर देती है पलटवार। अब देखना होगा कि याशिका भागने में कामयाब होती है या धैर्य उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत भी काफी परेशान है क्योंकि उसे विक्रांत कहीं मिल नहीं रहा है और उसे डर है कहीं धैर्य ने विक्रांत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। ऐसे में त्योहार छोड़ मन्नत बस विक्रांत को ढूंढने में लगी हुई है।
1: अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ गए। आप ठीक है ना?

0: रहे हो विक्रांत को हार्म करना चाहते हैं डेफिनेटली एज वी नो, क्योंकि उन्होंने वही पास्ट में भी किया है. एंड धैर्य अभी उनको पता चल गया कि यशिका इज हेल्पिंग अस, तो ही इज यू नो यशिका को रास्ते से हटा रहे हैं. एंड लाइक मनीत सर सेड, लाइक ऑल ऑफ अस बिलीव ये काल्पनिक है, दीज आर फिक्शनल स्टोरीज, नो बडी इंडोर्सेस इट. कोई ऐसे ये तरीका नहीं है अपनी महिलाओं को या किसी को भी ट्रीट करने का. वी आर अगेंस्ट वायलेंस, बट दे आर पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग बिकॉज दीज स्टोरीज रिफ्लेक्ट यू नो सर्टेन पार्ट्स ऑफ आर लाइव्स, सोसाइटी, नॉट आर लाइव्स बट सोसाइटी के कुछ संघ होते हैं. एंड हाउ यू ओवर पावर देम, हाउ यू सफर यू, बहुत दर्द मिलता है ज़िंदगी में, बहुत अपनों का धोखा मिलता है, बहुत कुछ होता है. जैसे यू नो और अपनों के अगेंस्ट लाइक मन्नत इज़ ड्राइविंग दिस फोर्स फ्रॉम कृष्ण जी का, जो उन्होंने अर्जुन को बोला था कि ये युद्ध तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो तुम्हारी फैमिली है ऑन द रिसीविंग एंड, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, गलत के खिलाफ है. तो ऐसे ही धैर्य फैमिली है, बट क्योंकि उन्होंने बहुत गलत कर दिया है तो अब उनके साथ भी ये होगा और बीच में अपनों पे खतरा आएगा. एंड यू स्टिल हैव टू फाइट फॉर द राइट, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो, बट इन द प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू हैपन.
1: तो भाई देखना होगा कि इस त्योहार के मौके पर क्या धैर्य का वाकई पर्दाफाश होता है या फिर एक बार खतरे में पड़ेगी विक्रांत की जान.
2: विक्रांत और मन्नत जी, आज तुम्हारा खेल खत्म.
3: इस बार ना धैर्य को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे. जीत हमारी होगी, हार उसकी.
4: आज के कॉम्पिटिशन.
1: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
5: सीरियल सैराब में ईशान और नैनिका जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ऐसे में ये दोनों सभी की रजामंदी से ये शादी करना चाहते हैं. अब क्या टिन्नी इस शादी को अपनी मंजूरी देगी, देखना होगा काफी दिलचस्प.
6: जिद्दी है हम नहीं मानेंगे.
1: सेट पर कभी क्रिकेट मस्ती हो रही है,

जीने हम। तो कभी नौनिका अपने पेट संग बिता रही है समय, सीन के बीच में मिला फन का टाइम, सास बहू और बेटियां पहुंच गया है स्टारप्लस के सीरियल सैराब के सेट पर, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहाइंड द सीन नज़ारे। तो चलिए सबसे पहले यही नज़ारे देखते हैं। मैं यहां पर नौनिका यानी कि मदिराक्षी के पेट्स का पैम्परिंग सेशन चल रहा है, जहां इन्हें नहलाया जा रहा है, साथ ही साथ इन्हें हेयर ड्रायर से ड्राई भी किया जा रहा है।

0: और देखिए कैसे नयनिका यानी मदिराक्षी अपने इन पेट संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है, वो भी शूटिंग से टाइम निकाल कर। तो भाई ये तो रही पेट्स की बात। इसके साथ ही इन्हें कुछ और समय मिला जहां पर मदिराक्षी और बाकी की टीम देखिए कैसे क्रिकेट खेलती नजर आई और इन पर चढ़ गया है क्रिकेट फीवर।
1: ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, पगली पगली सी नादानिया।
0: तो भाई ये तो रहे बिहाइंड द सीन नजारे। अब बात करते हैं सीन की। भाई जल्दी नयनिका और ईशान शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और इन्होंने ये फैसला कर लिया है। अब वो चाहते हैं कि पूरा परिवार एकजुट होकर नयनिका और ईशान की शादी में आए। ऐसे में देखिए कैसे बिशु दादा जिद पर अड़े हैं कि नयनिका की माँ को भी इस शादी में शामिल करना होगा, लेकिन ईशान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई है।
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक तो आप किसी दूसरे इंसान के लिए मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: तुम्हें पता चलेगा कि दूसरा इंसान मेरे कितने नजदीक है, सब समझ पाओगे।
2: समझाइए मुझे प्लीज, समझाइए कि वो दूसरा इंसान आपके इतना करीब कैसे हो गया कि आप उसके लिए मुझसे लड़ रहे हैं। प्लीज बताइए मुझे प्लीज।
3: हाँ जी बेटा, फिर किसी दिन बताऊंगा। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जो खुली आंखों से तुम देख रहे हो वो सब कुछ सच नहीं है। कभी सामने ऐसा कुछ होता है जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देता।
2: तुम शादी अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन इस सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने बशर्ते शादी के बाद चले जाएंगे।
3: हाँ तो वो यहाँ पर क्यों रुकेंगे? उनके पास रुकने की बहुत जगह है।
2: आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है विश्वनाथ?
3: अरे बुरा लगेगा ना, अगर तुम्हारे लिए भी कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। उसी तरह
2: किस तरह? आप कहना चाहते हैं वो इंसान जो है वो आपके लिए मेरे से ज्यादा जरूरी है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
3: हाँ, उससे भी ज्यादा।
0: ऐसे में नयनिका ईशान को मनाती है और कहती है कि ईशान को अपनी माँ को भी शादी में बुलाना चाहिए।
4: बाहर से देखकर हम कभी ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं। तुम खुद सोचो, हम सिर्फ एक दूसरे को तीन महीने से ही जानते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आती हूँ?
2: ये बात तो बिल्कुल भी पॉसिबल।
5: ईशान के मन में उसकी मदर को लेकर बहुत सारी चीज़ें बैठ गई हैं। बचपन से वो साथ में नहीं रही, उसे छोड़ना पड़ गया था, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें ईशान के मन में रह गई हैं। और जहाँ तक उसने जब कहानी बताई थी तो ये भी बताया था कि उसके फादर नहीं रहे तो उसकी मदर को दूसरी शादी करनी पड़ी। तो एज अ चाइल्ड उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें बैठ गई हैं। और उसके बाद बिकॉज नयनिका हॉस्पिटल में उसकी मदर से मिलती है, वो देखती है कि उसकी मदर के मन में आज भी ईशान के लिए बहुत प्यार है, कंसर्न है। तो दैट्स हाउ नयनिका कहती है कि बिशु दादा से बात करती, कि मैं एक बार ईशान से बात करती हूँ क्योंकि शादी का त्यौहार है और जो कि अभी शान और नानी का शादी करने वाले हैं, तो इस ऐसे वक्त में सभी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकी रजामंदी होती है, सब प्यार से आपको आशीर्वाद देते हैं, तो शादी फलती फूलती है, नहीं तो शादी का मायना कम हो जाता है। अगर आप खुद ही दो लोग मिलकर शादी कर लें तो उसका मायना कम हो जाता है। तो सबको अपनाने के बाद, सबको मनाने के बाद जब आप शादी करते हो तो वो एक सक्सेसफुल वेडिंग होती है। दैट्स हाउ शी वांट्स कि सबका आशीर्वाद रहे, तो आप अपनी मदर को बुला लो। तो ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट जब इंसान प्यार में होता है ना तो वो उसकी बात नहीं टालता, क्योंकि वो उसका मन नहीं दुखाना चाहता। तो दैट्स हाउ ईशान और निका की बात मान लेते हैं, क्योंकि किसी का सामने रहना और फिर बात नहीं करना एक तरह से इंसल्ट भी होता है, और वो माँ है, माँ से बड़ा औधा किसी का नहीं होता दुनिया में। तो इसीलिए नौनिका उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी हुआ उनकी लाइफ में वो आपको नहीं पता है कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है। हो सकता है उनकी मजबूरी होगी, वो भी एक औरत है, बहुत सारी चीज़ें लेकर चल रही है, तो आप एक मौका दीजिए, आप एक बार बात करो, हो सकता है कि आपकी जो गलत फहमियाँ हैं वो क्लियर हो जाए।
0: जहाँ नौनिका चाहती है कि ईशान का पूरा परिवार शादी में शामिल हो, तो वहीं ईशान भी यही चाहता है कि एटलीस्ट टिन्नी नौनिका को माफ कर शादी में शामिल हो जाए। इसीलिए तो देखिए कैसे ईशान टिन्नी को फोन कर रहा है। पहले तो टिन्नी फोन नहीं उठाती है, ऐसे में नौनिका ईशान को फोन करने से मना करती है और उसे समझाती है।
4: बार बार उसे फोन क्यों कर रहे हो ईशान, अपने आपको नीचा क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम?
2: अरे इतनी छोटी बच्ची है, अगर मेरा फोन नहीं उठाएगी इसमें मैं नीचे थोड़ी हो जाऊँ। पर वैसे भी देखो तुम उसकी माँ, तुम्हारे साथ इमोशनल है जो कि बहुत लाजमी है, मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। पर क्या पता मेरा फोन ही ना उठा, बट ये है कि मैं बार बार अगर उसको फोन करता रहूंगा तो वो परेशान होकर शायद उठा ले।
4: अगर उठा लेगी तो हो सकता है तुम्हें भला बुरा कह दे ईशान, फिर तुम क्या करोगे?
2: कितना ही भला बुरा कह देगी वो, और वैसे भी जो इंसान कड़वाहट से बात करता है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा दर्द होता है, सामने वाले को तो फर्क भी नहीं पड़ता।
4: मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं।
2: मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, आसान थोड़ी मुझे पता है, लेकिन मैं पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मेरे मन में ख्याल आएगा कि क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, और शायद फिर उस वक्त मेरे पास जवाब ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी पूरी अच्छे से कोशिश कर लूँ ताकि मेरे दिमाग में सवाल उठे ही ना। कॉल करूँ एक बार फिर से, कॉल करूँ। हेलो हेलो, हाय तिनी, मैं ईशान बोल रहा हूँ।
6: क्या हुआ, क्यों फोन किया मुझे?
2: क्यों मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? एंड आई नो तुम्हें मैं फिक्र हो रही होगी तुम्हारी मॉम की, उन्होंने तुम्हें बताया भी नहीं होगा कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद बता दूँ। तुम्हारी मॉम फिलहाल के लिए मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी।
6: ओह फिलहाल क्यों, मुझे लगा हमेशा के लिए गई है। अच्छा तब तक तुम लोग एक साथ रहोगे जब तक तुम्हारा ये अफेयर चलेगा।
2: चीप तरीके से बात मत करके अपनी जबान मत खराब करो, इतना मत गिरो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अगर ऐसी चीजें मुझे बोल रही हो कि तुम मुझे बुरा लगेगा? मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि हम रिश्तों में ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे की चीजें। क्या तुम्हारी माँ ने प्रिडिक्ट किया था तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले कि जब तुम 3 साल की होगी उसका परिवार टूट जाएगा? अभी तुम शीशु के साथ हो, तुम प्रिडिक्ट कर सकती हो कि तुम्हारी उससे शादी होगी, या अगर शादी होगी तो कितनी लंबी चलेगी? कर सकती हो तुम? नहीं ना। वैसे ही मेरा और नौनिका का रिश्ता जिंदगी भर रहे या ना रहे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं और नौनिका मिलकर तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छा और प्यारा रिश्ता बनाना चाहते हैं। तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम अपनी मॉम को मुझे एक मौका दे सकते हो?
6: तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए?
2: तिनी मुझे शर्म क्यों आएगी? हाँ मैं तुम्हारी माँ के साथ एक शादीशुदा जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं एक खूबसूरत संसार बसाना चाहता हूँ उनके साथ, मुझे शर्म क्यों आएगी तिनी? और मुझे समझ नहीं आता है क्या दोबारा शादी नहीं करी किसी और ने? मैं तुम्हारे पापा के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या प्यार को दूसरा मौका नहीं देते लोग? क्या लोगों के बीच में एज गैप नहीं होता है? प्लीज मेरी बात समझो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ की खुशी में शामिल हो, हम एक अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी प्लान कर लेंगे, पर हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा।
6: नो, मैं नहीं आऊंगी।
5: नहीं, एक्चुअली मुझे भी एक्चुअली इसका पता नहीं है कि क्या होगा, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि नोइनिका चाहती है कि ये शादी हो, क्योंकि उसके पेट में बेबी है, और जैसे तिन्नी को उसके पिता का प्यार नहीं मिल पाया, तो उसके मन में हमेशा ये चीज़ रह गई है कि एटलीस्ट अगर ये अब आ गया है, क्योंकि अपनी मर्जी से तो आया नहीं है, तो अगर ये आ गया है तो इसको कम से कम अगर नोइनिका के हाथ में, तो उसको उसके पिता का प्यार मिले।
0: कहीं ना कहीं नोइनिका को ये पता था कि टिन्नी ऐसा ही करेगी। खैर दोनों कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही ईशान और नोइनिका शादी के बंधन में बंधेंगे, और तब देखना होगा कि इनकी लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: आज बहू और बेटियां का मजेदार सफर आज यही खत्म होता है। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात, और आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन जगत के सुहाने सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके फेवरेट सीरियल्स, ओटीटी और सितारों से जुड़ी मजेदार न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत, और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, देश भर में सज गए मंदिर और ठाकुर बाड़ी, राधा कृष्ण के रूप में दिखे बच्चे, कल मनाया जाएगा जन्मोत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा इस्कॉन मंदिर, जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। मुंबई में जन्माष्टमी पर गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने की जबरदस्त तैयारी, इस बार 5 सितंबर को होगा आयोजन। केदारनाथ धाम से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग। हरियाणा की बेटी डॉक्टर आशा ने रचा इतिहास, यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की फतह, शिखर से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, अब तक 12,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू, 3,000 से ज्यादा पीड़ितों को होल्डिंग सेंटरों में रखा गया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी सुंदर सजावट, विशेष रूप से मोर थीम पर सजाया गया है पूरा मंदिर परिसर, सजावट के लिए विदेशों से मंगवाए गए हैं रंग बिरंगे फूल। जन्माष्टमी पर सुबह 4 बजे से पूरे दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक भक्तों के लिए खुलेगा मंदिर, भीड़ के प्रबंधन के लिए लगाए गए सैकड़ों CCTV कैमरे। गया के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाया गया पूरा मंदिर परिसर, 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना। जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि को होगा भगवान श्री कृष्ण का 108 जल से महाभिषेक, भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाएगा 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग। पाली में सज गए मंदिर और ठाकुरबाड़ी, अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, राधा कृष्ण के रूप में सजे नजर आए नन्हे बच्चे, कल धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सजे करनाल के मंदिर, रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और भव्य झांकियों से भव्य सजावट। मंदिर में श्री भगवद गीता की कथा समेत कई धार्मिक अनुष्ठान, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह। कल पूरा दिन दर्शनों के लिए खुले रहेंगे मंदिर, पूरे दिन चलेगी भगवान श्री कृष्ण की आराधना। झांसी में दिखे कृष्ण भक्ति के अनोखे रंग, इस्कॉन के यूथ फेस्टिवल का शानदार आयोजन।

0: कृष्ण भक्ति, संस्कृति और प्रेरणा का अनूठा संगम देखने को मिला। फेस्टिवल में भक्ति रैप और रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुति। कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने पूरी तरीके से भक्ति में बना दिया माहौल। कार्यक्रम में युवाओं की जबरदस्त मौजूदगी। इस्कॉन परिसर में वृंदावन बाजार भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। बाजार में भगवान कृष्ण की तस्वीरों से लेकर आकर्षक पोशाक, पगड़ी और धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध। इस मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु और युवा। हर तरफ जश्न का माहौल। भोपाल के रविन्द्र भवन में 7 दिवसीय रासलीला समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें शामिल। सीएम ने राधा कृष्ण का स्वरूप धारण किए, कलाकारों की आरती उतार कर किया उनका वंदन। राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम। पटना के मिलर ग्राउंड में आज से कृष्णोत्सव की शुरुआत। सीएम सम्राट ने किया इसका उद्घाटन। हर हृदय में कृष्ण, हर पल में उत्सव। रखी गई कृष्णोत्सव की मुख्य थीम, कलाकारों ने दी सुंदर प्रस्तुति। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भजनों और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित कार्यक्रमों ने बांधा समा। कल कार्यक्रम का होगा समापन। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर पूरा ब्रज धाम रोशन। तमाम मंदिरों के साथ साथ दुल्हन की तरह सज गया शहर। मथुरा में आज भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन। 250 कलाकार हो रहे हैं शामिल। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में मथुरा वृंदावन पहुंच रहे श्रद्धालु। इस बार 50 से 75 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। जन्माष्टमी पर्व के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा के लिए खास स्वागत। लड्डू गोपाल के लिए भेजी गई विशेष उपहार सामग्री। वैदिक मंत्रोच्चारों, पूजा अर्चना के साथ मथुरा रवाना हुई विशेष उपहार सामग्री। साल 2024 में शुरू की गई थी यह खास परंपरा। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जारी। वृंदावन से मंगवाए गए फूलों से की जा रही है मंदिर की खास सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के भोग अर्पित करने की तैयारी। 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा है इंतजाम। 100 किलो का बनाया जा रहा है केक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज को मुख्यमंत्री योगी देंगे 977 करोड़ रूपये की सौगात। 57 परियोजनाओं का लोकार्पण और 167 योजनाओं का शिलान्यास। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर आई सामने। फिर शुरू हो रही है मानसून के दौरान सुरक्षा कारणों से बंद की गई केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर सेवाएं। द्वितीय चरण की यात्रा के तहत 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन। 7 सितंबर से श्रद्धालु कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। महाराष्ट्र के अकोला में देखा बप्पा की भक्ति का रंग। जगह जगह मनाया जा रहा गणपति उत्सव का जश्न। अकोला में निकाली गई भव्य शोभा यात्राएं 20 फीट ऊंचे हैं। सिंधी कैंप के सरकार के बप्पा, बड़ी संख्या में भक्त हुए इसमें शामिल। 30 फीट के उम्र के राजा का भी हुआ भव्य स्वागत। भक्तों ने आतिशबाजी और फायर शो से किया बप्पा का स्वागत। डीजे और बैंड की धुन पर जमकर नाचते झूमते नजर आए भक्त। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष। अपने लाडले बप्पा की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े भक्त। गणपति के आने की खुशी में पूरा शहर जश्न में डूबा। राम मंदिर के नव नियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ उनका भव्य स्वागत। राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने अपने चयन पर ट्रस्ट समिति का आभार जताया। बोले राष्ट्र सेवा के बाद अब राम भक्तों की सेवा का अवसर। राम मंदिर के नए महासचिव गोविंद देवगिरी महाराज ने पूर्व महासचिव चंपत राय से की मुलाकात। पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा भी रहे मौजूद। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सीईओ सहित नई नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप। बदलेगा मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल। राम मंदिर में आने वाले छुड़ावे की नकद राशि की गिनती अब मशीनों से करने की तैयारी। 2 बैंकों और IIT के विशेषज्ञ से प्रस्ताव लिए गए।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरा पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, देश भर में सज गए मंदिर और ठाकुर बाड़ी, राधा कृष्ण के रूप में देखे बच्चे, कल मनाया जाएगा जन्मोत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाया गया इस्कॉन मंदिर, जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम।

0: your online booking. हरियाणा की बेटी डॉक्टर आशा ने रचा इतिहास, यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की फतह, शिखर से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, अब तक 12,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू, 3,000 से ज्यादा पीड़ितों को होल्डिंग सेंटरों में रखा गया।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। प्रतीक्षा हो रही है नंद के लाल की, राह देखी जा रही है बाल गोपाल की, हर कोई कृष्ण लला के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है, कान्हा को कैसे रिझाना है, जन्माष्टमी पर उनसे खुशियों का वरदान कैसे पाना है, कैसे माखन चोर का श्रृंगार करना है, कौन सी मूर्ति का चयन करना है, ये हम आपको आज बताएंगे। श्री कृष्ण की उपासना, भजन कीर्तन और व्रत करके आप वासुदेव कृष्ण की असीम कृपा पा सकते हैं। जन्माष्टमी से पहले कैसे करनी है कृष्ण उपासना की तैयारी, तो चलिए आपको बताते हैं और मनाते हैं कृष्ण कन्हैया को।

0: जन्माष्टमी पर खुलेंगे सौभाग्य के द्वार। कैसे करें यशोदा के लाल का सत्कार। देवकी नंदन करने आ रहे हैं सबका कल्याण। वासुदेव से मांग लीजिए खुशहाली और समृद्धि का वरदान। विधि विधान से करें नंदलाल के स्वागत की तैयारी। कान्हा के जन्म की शोभा है सबसे न्यारी और सबसे प्यारी। जन्माष्टमी का आगमन हो और ब्रजमंडल में धूम ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हर कोई कान्हा की मनमोहिनी सूरत पे रीझ जाना चाहता है, गोकुल के ग्वाले पर बार जाना चाहता है, लड्डू गोपाल की आगवानी में बिछ जाना चाहता है। हर कोई माँ यशोदा के गोपाल को मिश्री माखन का भोग लगाना चाहता है, राधा के कृष्ण को दुलार करना चाहता है, क्योंकि सबसे नटखट सबसे मनमोहक कान्हा जो पधार रहे हैं आपके द्वार। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। लेकिन कान्हा के जन्म में जीवन दर्शन सीख छुपी है। सुनिए क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत दशम स्कंद के तृतीय अध्याय में अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में बुधवार के दिन ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की वसुदेव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है कि अज्ञान से हमको दूर होना है। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण के पावन धाम मथुरा और वृंदावन समेत पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। इंतजार है कि कब कान्हा के नन्हे पांव इस जमीन पर पड़े और कब भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाए। आज हम आपको अपनी खास पेशकश में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी का विधान बताएंगे, क्योंकि जब कान्हा आपके घर पर आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करना है, उनकी मूर्ति को कैसे सजाना है, उनको क्या खिलाना है, ये सब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले समझिए जन्माष्टमी की महिमा। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखते हैं। इस अवसर पर उनके अलग अलग स्वरूपों की स्थापना की जाती है, कहीं शालिग्राम के रूप में, कहीं लड्डू गोपाल के रूप में।

0: कहीं राधा कृष्ण के रूप में। इस दिन व्रत और उपवास रखकर श्री कृष्ण से विशेष प्रार्थना की जाती है। श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ग्रहों नक्षत्रों की ये चाल विधाता के अवतार को खास बनाते हैं, लेकिन इस बार जन्माष्टमी की तिथि के निर्धारण पर क्या है ज्योतिषियों का मानना, ये भी जानिए।
1: सुवर्ष, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, जबकि रात्रि के 12 न अष्टमी रहेगी न रोहिणी रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष के प्रमाण के अनुसार कहा गया है, जा तिथि उदय आ गया सात तिथि सकला भवेत। जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि का मान दूसरे सूर्योदय मान किया जाता है, इसलिए सभी लोग 4 सितंबर शुक्रवार को ही रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी में जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे।
0: माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म वृष लग्न और वृष राशि में हुआ था। भादो कृष्ण अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का काल देखा जाता है, इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 3 सितंबर को रात 1:33 पर आरंभ होगी, समापन 4 सितंबर को रात 11:13 पर होगा। 3 सितंबर की रात 12:45 से रोहिणी नक्षत्र का आरंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र 4 सितंबर की रात 11:12 तक रहने वाला है। 4 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों है, इसीलिए उदया तिथि को देखते हुए 4 सितंबर को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का समय मध्य रात्रि 11:57 से 12:43 तक होगा। इसी अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ज्योतिष के जानकार बता रहे हैं कि सिंह राशि में सूर्य बुध और केतु का संचरण होने से त्रिग्रहीय योग का पुण्यकारी संयोग भी बन रहा है। पूरे विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी कान्हा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम इस खास पेशकश में जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करें ये आपको बता रहे हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि पर अलग अलग कामनाओं के लिए कान्हा की अलग तरह की छवि की उपासना होती है। अगर आप भी अपनी मनोकामना के मुताबिक श्री कृष्ण की मूर्ति लाकर उसकी उपासना करेंगे तो इस जन्माष्टमी पर निश्चित ही आपकी कामना पूरी करेंगे नंद के लाल। चलिए आपको बताते हैं कि कैसी हो कान्हा की मूर्ति।
1: भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप होता है बालम मुकुंदम, इनको बाल मुकुंद कहा गया है, तो 4 इंच से लेकर के 8 इंच की पंच धातु की, पीतल की या अष्ट धातु की भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति जो होती है वो सर्व कामना परक होती है। तो भगवान श्री कृष्ण की खड़ी मूर्ति जो होती है गाय चराते हुए या बैठकर दही की हाड़ी मक्खन खाते हुए, यह सब जो भगवान का यह स्वरूप की मूर्ति आप ले आते हैं तब भी आपके घर में मंगलमय वातावरण होगा।
0: सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहे स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की, संतान के लिए बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। सभी मनोकामनाओं के लिए बंसी वाले कृष्ण की स्थापना करें। तो आप भी आंखें बंद करके सोचिए और जो कामना सबसे ज्यादा प्रबल हो उसी के मुताबिक कान्हा की मूर्ति घर लाइए, क्योंकि विश्व को कर्म का पथ पढ़ाने वाले माखन के अनुरागी कान्हा का आगमन होने में बस कुछ ही घंटे शेष है। आगे हम आपको जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के विशेष श्रृंगार और प्रसाद के बारे में बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: भगवान श्री कृष्ण को मनाने, उनका आशीर्वाद पाने, उनकी उपासना में लीन हो जाने के लिए सबसे अद्भुत और कल्याणकारी दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये पर्व तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान लेकर आ रहा है और अगर जन्माष्टमी में आपने श्री कृष्ण को मना लिया तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आखिर जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग लगाएं, कैसे उनका श्रृंगार किया जाए, आइए हम आपको बताते हैं।

0: सजेगी बंसीधर की सांवली सूरत, भक्त करेंगे निहाल देखकर मोहनी मूरत, रंग बिरंगी पोशाक से करें कान्हा का श्रृंगार, माखन और मिश्री के भोग से है कान्हा को प्यार। आज हम अपनी खास पेशकश में जान रहे हैं कैसे करना है ठाकुर जी का श्रृंगार, कैसे करनी है लड्डू गोपाल की विधिवत आराधना। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कान्हा ने माता यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। माना जाता है कि धरती पर जितनी लीलाएं कृष्ण ने दिखाई उतनी किसी भी देव अवतार ने नहीं दिखाई होंगी। श्री कृष्ण का अवतार संपूर्ण जीवन दर्शन है, उनकी हर लीला में जीवन की सीख छुपी है। जन्माष्टमी की रौनक बाजारों में देखते ही बन रही है। भक्त अपने आराध्य के लिए साज सामग्री का सामान जमकर खरीद रहे हैं और कान्हा के श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं।
1: मन की अगर स्वच्छता नहीं है तो हम कितनी भी तैयारी कर लें, किसी देवता की पूजा करके उनको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। आप उस समय भगवान के झूलनोत्सव की व्यवस्था करें, भगवान के श्रृंगार की व्यवस्था करें, अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करवाएं, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो जो वस्तुएं हैं उन सब का संग्रह करें और संग्रह करके यह जो भगवान के जन्म का जो उत्सव मनाते हैं उस उत्सव मनावें। लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति, यह भाव हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए कि ईश्वर सब कुछ आपका है, हम आपको ही अर्पित कर रहे हैं।
0: आपको प्रेम के बंधन में बांधने के लिए शुरू होने वाला है कान्हा का सबसे बड़ा उत्सव। माना जाता है कि प्रभु की लीलाओं को और उनके स्वरूप का ध्यान करने का दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपने कान्हा का जन्मोत्सव उत्तम विधि से मनाया तो आपके जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देंगे भगवान कृष्ण। परंपरा है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की न केवल पूजा उपासना होती है बल्कि उनका विशेष श्रृंगार भी होता है और कान्हा को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। माना जाता है कि कान्हा का विशेष श्रृंगार करने से प्रसन्न होते हैं मुरलीधर, इसलिए आज हम आपको वृंदावन बिहारी लाल के विशेष श्रृंगार के बारे में बताने वाले हैं। गौर से देखिए।
1: अपने घर में श्रृंगार करें, भगवान के लिए झूला सजावें और झूला सजा के और जो भगवान के विविध नैवेद्य बताए गए हैं लेकिन साथ साथ माखन और मिश्री और पंजीरी भगवान के लिए रखें। छोटे छोटे बच्चे जो खिलौनों में बच्चों को खेलने के लिए होते हैं उनको भी ठाकुर जी के पास में रखें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, यह भाव ठाकुर जी से रखें।
0: श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग न करें। व्यजंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। माना जाता है कि कान्हा ने जो भी धारण किया वो अकारण नहीं था, उनके पीछे छिपी है मानव कल्याण की सीख। कहते हैं कान्हा को पीताम्बर वस्त्र और वैजयंती की माला खास तौर पर प्रिय है। माना जाता है कि ऐसा करने से ठाकुर जी की विशेष कृपा बरसती है।
1: मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ऐसा भाव है। जो श्याम वर्ण की ठाकुर जी की मूर्ति है उसको पीले रंग का वस्त्र पहनाना, गले में बैजंती या गुंजा की माला पहनाना, सुंदर से सुंदर वस्त्र आभूषण श्रृंगार की वस्तुएं माला ले आ करके और ठाकुर जी का प्राकट्य का जो उत्सव है उसको मनावे और अपने जीवन में मंगल प्राप्त करे।
0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि समूचे ब्रह्मांड में फैली है कान्हा की निशानियाँ। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के कारण पूरा वृंदावन उन पर मोहित रहता था, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को भोग अर्पित जब करें तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अलग अलग व्यंजनों के भोग से अति प्रसन्न हो उठते हैं कान्हा। जानिए जन्माष्टमी पर कैसा होना चाहिए श्री कृष्ण का प्रसाद। पंचामृत जरूर अर्पित करें। उसमें तुलसी दल भी जरूर डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं। कहीं कहीं धनिया की पंजरी भी अर्पित की जाती है। पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो, श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि कान्हा को 56 भोग अति प्रिय है। इससे जुड़ी है कान्हा संग देवराज इंद्र की कथा, आप भी जानिए।
1: जिस समय इंद्र के कोप से भगवान ने 7 दिन तक अपने कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, 7 दिनों तक, तो कान्हा ने 7 दिन तक हमारे भोग नहीं कुछ ग्रहण किया, तो 7 दिन का जोड़ करके माता ने 7 8 56 56 भोग की परंपरा वहीं शुरू हुई है गोवर्धन पूजा के बाद से। तो भगवान ने जो 7 दिन तक कोई आहार नहीं लिया, कुछ ग्रहण नहीं किया, यशोदा माता ने उस दिन उनको 56 तरह का भोग लगा करके अपने कान्हा को खिलाया।
0: सृष्टि के पालक विष्णु के पूर्व अवतार श्री कृष्ण, जगत पर कृपा बरसाने वाले तारनहार, पूरा ब्रह्मांड अब कृष्णमय हो गया है। तो आप भी जन्माष्टमी पर कान्हा के श्रृंगार और विशेष प्रसाद की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कान्हा आने वाले हैं और खुशियां लाने वाले हैं। आगे हम आपको जन्माष्टमी मनाने की उत्तम विधि बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की उपासना जीवन की हर समस्या को दूर कर सकती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से और शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। तो जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी है, चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं।

0: वो है योग योगेश्वर लीला थैरो। एक बार फिर आधी रात को प्रकट होंगे कला थैरो। होने वाला है माखन चोर का अवतरण, कान्हा करेंगे आपके कष्टों और दुखों का हरण। हर कोई कान्हा की मनमोहनी सूरत पर रिझ जाना चाहता है। सप्ताह भर पहले से ही मंदिरों घरों में तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। कान्हा के श्रृंगार से लेकर भोग तक का ध्यान भक्तों को जन्माष्टमी के विधान में रखना पड़ता है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको जन्माष्टमी की तैयारी का विधान बता रहे हैं। चलिए अब आपको जन्माष्टमी का पर्व मनाने की उत्तम पूजन विधि बताते हैं, ताकि आप भी कृष्णमय तिथि का पूरा लाभ ले सकें। सुबह स्नान करके व्रत या पूजा का संकल्प लें। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें, सात्विक रहें। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध, फिर दही से, इसके बाद शहद से, फिर शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। फिर कान्हा को जल से स्नान कराएं। श्री कृष्ण को पीताम्बरम, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित करें। पूजा करने वाला व्यक्ति इस दिन काले या सफेद वस्त्र धारण न करें। मनोकामना के अनुसार मंत्र जाप करें, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें।
1: जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की देखिए अर्ध रात्रि की जो उपासना है, हमारे यहाँ कहा गया है काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा। कालरात्रि दिवाली, महारात्रि शिवरात्रि और मोहरात्रि हमारे जन्माष्टमी में कहा गया कि इस दिन रात्रि को आदमी को शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मोहरात्रि यह जो रात्रि है यह रात्रि भगवान का घनघोर वर्षा के समय जन्म हुआ है। बिजली कड़क रही है लेकिन दरवाजे कारागार के खुल गए हैं। तो जो भगवान की भक्ति निर्मल मन से करता है उसके जीवन के जो बंद मार्ग हैं, जो उसके कार्य नहीं हो रहे हैं, वो सब खुल जाते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि पर संतान से जुड़े प्रयोग अमोघ माने गए हैं। माना जाता है कि इन्हें संतान दंपतियों की सुनी गोद एक ज्योतिषीय महाउपाय करने से भर सकती है। तो आप भी देखिए वो खास उपाय।
1: अगर जिसको संतान की कामना हो, जिनके घर में संतान न होती हो, अगर वह जन्माष्टमी के दिन अपने घर में बाल गोपाल की मूर्ति को ले आवे और पूजा करने के बाद उस गमले में एक मिट तुलसी का गमला ले आवे, उसमें गोपाल जी की लड्डू गोपाल की मूर्ति रख करके एक मंत्र है क्लीम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। वैजयंती की माला से जो भी स्त्री पुत्र की कामना रखती हो अगर यह जप करती है उसे संतान की शीघ्र प्राप्ति होती है।
0: जिसके घर में संतान ना होती हो वो अपने घर में बाल गोपाल की मूर्ति की स्थापना तुलसी के पौधे में करे और इसके साथ ही गोपाल मंत्र का जाप करे। ऐसा करने से उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की आभा ऐसी थी कि उनके प्रकट होते ही झूम उठी थी सृष्टि। हम सभी निश्चित ही जन्माष्टमी की तैयारियों में व्यस्त होंगे। कहते हैं अगर आपने कान्हा का जन्मोत्सव उत्तम विधि से मनाया तो आपके जीवन की हर मुश्किल को उत्सव में बदल देंगे वासुदेव कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। आप जैसी भावना अर्पित करेंगे वैसा ही फल आपको देंगे कान्हा।
2: और चलिए इसी के साथ प्रार्थना स्वीकार के इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अच्छी और बड़ी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।
2: बंदर भैया हैं कई सारे, लेकिन केला सिर्फ एक, वो भी गाड़ी के अंदर। बाहर बैठे बंदरों की नजर जैसे सिर्फ उसी केले पर टिकी है। कोई शीशे के पास आकर केला लेने की कोशिश कर रहा है तो कोई इंतजार में बैठा है, लेकिन केला है कि हाथ ही नहीं आ रहा। ये पूरा नजारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बैंक में काम करना हो, सामने सब कुछ दिखाई दे लेकिन अपना कुछ भी हाथ न लगे। बंदरों की ये मजेदार हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसा रही है। ये छोटी सी बच्ची सचमुच कमाल की है, चेहरे पर मासूमियत और दिल में जीत का जुनून। प्रतियोगिता में हिस्से लेने पहुंची ये बच्ची धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। हर कदम के साथ उसका हौसला बढ़ता जा रहा है। आसपास मौजूद लोग भी बच्ची का उत्साह बढ़ाने के लिए लगातार तालियां बजा रहे हैं। जैसे जैसे बच्ची जीत के करीब पहुंचती है, उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आता है। बच्ची की मेहनत और मासूम मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया। इस वीडियो को देखकर आपकी हंसी शायद ही रुक पाए, क्योंकि बाइक पर दूध के साथ सवारी भी खास है। बाइक चला रहा एक शख्स और पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति संभाल रहा है भैंस के बच्चे को। यानी सफर बाइक का है, लेकिन सवारी ऐसी कि देखकर हर कोई हैरान रह जाए। भैंस का बच्चा भी बड़े आराम से बाइक पर बैठा नजर आ रहा है। सड़क पर गुजरते इस अनोखे नजारे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर जमकर मजे ले रहे हैं। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि मदद के लिए उम्र नहीं, बस एक बड़ा दिल चाहिए। स्कूल के ये बच्चे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी एक साथ जमा कर रहे हैं। जिसके पास जितना है वो उतनी ही खुशी से मदद के बॉक्स में डाल रहा है। किसी ने थोड़े पैसे दिए तो किसी ने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा। बच्चों के चेहरों पर मदद करने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। इंसानियत और संवेदनशीलता से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। मासूमियत भरी ये तस्वीरें देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। रंग बिरंगे कपड़ों में सजी ये प्यारी सी बच्ची अपने आसपास मौजूद बकरी के बच्चों के साथ खूब खेल रही है। कभी उन्हें प्यार करती है तो कभी उनके साथ खिलखिलाकर हंसती नजर आती है। बकरी के बच्चे भी बच्ची के साथ ऐसे घुले मिले हैं जैसे दोनों की पुरानी दोस्ती हो। तिब्बती लड़की और उसके रोएदार बकरी के बच्चों के बीच का ये प्यारा रिश्ता लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो दिल जीत रहा है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे

0: क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, सज गए मंदिर और ठाकुरबाड़े। बच्चों ने राधा कृष्ण के वेश में किया श्रृंगार, कल देश भर में मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। जन्माष्टमी पर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजाम। जन्माष्टमी पर मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने की जबरदस्त तैयारी। इस बार 5 सितंबर को होगा आयोजन।

केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट। हरियाणा की बेटी डॉक्टर आशा ने रचा इतिहास, फतेह की यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी शिखर से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश।

की तलाश जारी, अब तक 12,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू। होल्डिंग सेंटर में रखे गए, रेस्क्यू किए गए 3,000 से ज्यादा लोग।

ये जन्माष्टमी द्वापर वाली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तैयारियां पूरी हो चुके हैं हर जगह से, तस्वीरें लगातार आ रही हैं किस तरीके से पूरे देश में जन्माष्टमी को मनाने की तैयारी हो रही है। रौनक है हर जगह, मंदिर सजाए गए, वो तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे क्योंकि कल है जन्माष्टमी का पर्व। ऐसे में ब्रज के तमाम मंदिरों में और साथ ही साथ कई शहरों में बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है, दुल्हन की तरह सजाए गए हैं मंदिर। जन्माष्टमी के लिए भक्तों के मथुरा पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही घंटों बाद जन्मोत्सव से जुड़े अनुष्ठानों का श्री गणेश होने जा रहा है, जिसके बाद पूरा ब्रजधाम कान्हा के जन्मोत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। तो वहां भी हम आपको लिए चलेंगे और साथ ही साथ बताएंगे जन्माष्टमी पर कौन से सात महासहयोग बन रहे हैं और कैसे करें कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी, किस विधि विधान से प्रसन्न होंगे लीलाधारी, इसी पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य मौजूद रहेंगे। तो कृष्ण जन्मोत्सव पर हमारा खास कार्यक्रम लगातार जारी है, मथुरा से लेकर मुंबई तक कान्हा के स्वागत की तैयारी है। देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही हैं। अगर हम मथुरा की इन तस्वीरों को देखें तो जन्माष्टमी की रौनक साफ दिखाई दे रही है। पूरा ब्रजधाम एक तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है, मंदिरों से लेकर गलियों तक बस कान्हा के आगमन का इंतजार है। काशी से कान्हा के लिए खास उपहार भेजे गए हैं, तो वहीं झांसी में भी भव्य झांकियों के जरिए युवाओं को कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जा रहा है। भोपाल में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कृष्ण लीला का मंचन हुआ। कृष्ण जन्म से लेकर उनकी लीलाओं तक हर दृश्य ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। जन्माष्टमी के मौके पर मुरादाबाद समेत देश भर के बाजार लड्डू गोपाल की मनमोहक मूर्तियों से भरे पड़े हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु लड्डू गोपाल और पालना समेत उनके सुंदर परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं। पूरे देश में तकरीबन ऐसा ही माहौल दिख रहा है। कृष्ण भक्तों में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, बस इंतजार है नंदलाल के आने का।

0: तो सबके कान्हा आ रहे हैं। इस बार शुक्रवार यानी कि कल जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है और ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आता है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 सितंबर को रात 2:25 से होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 5 सितंबर रात 12:13 पर होगा। अष्टमी तिथि और रात में रोहिणी नक्षत्र मिलन पर ये पर्व मनाया जाएगा। इस साल जन्माष्टमी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग बना हुआ है। अष्टमी पर वृषभ राशि में चंद्रमा है, द्वापर में। इसी ग्रह स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जन्माष्टमी द्वापर वाली। तो ऐसे में पूरे देश में जन्माष्टमी की रौनक है, धूम है। श्री कृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जाना है और इस मौके पर ब्रजभूमि में जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दे रही। पूरी मथुरा नगरी सज चुकी है। श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। मथुरा में शोभा यात्रा निकाली गई है। शाम में भी कई और कार्यक्रम होने वाले हैं। तो काशी से मथुरा विशेष उपहार भी भेजे गए हैं। भोपाल से भी श्री कृष्ण की लीलाओं का भव्य मंचन और उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में खास तैयारियां हैं और उधर देश भर के बाजार भी कृष्णमय हो चुके हैं, यानी कि हर ओर बस जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दे रही है।
1: ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर कल यानी 4 सितंबर के लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां हैं वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है, झूमा जा रहा है और बस यहीं पर लोग जो है बस अब कल के लिए रुकना चाहते हैं। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन नजदीक आ रहा है वैसी वैसे इनकी जो तैयारियां हैं वो भी आपको नजर आएगी कि किस तरीके से ये जल्दी जल्दी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। एक्साइटेड ये भी है क्योंकि ये दिन रात इसी तरीके से मेहनत करते हुए आपको दिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए ये बेहद खूबसूरती के साथ मंदिर का हर एक कोना जो है वो सजा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी भक्ति भाव के साथ जो है ये लोग इसी तरीके से काम यहाँ पर जो है लगातार कर रहे हैं, चाहे फिर वो मंदिर को सजाने का काम हो, पंडालों को सजाने का काम हो या फिर भक्तों के लिए किसी तरीके के इंतजाम करने का काम हो। तो अंतिम रूप होते हुए आपको ये तैयारियां दिख जाएगी कि किस तरीके से अंतिम रूप इन तैयारियों को जो है वो दिया जा रहा है और हर कोई जो है जन्मोत्सव के लिए बेहद ही उत्साहित है। कल के दिन इस यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होने वाली, तो कल के लिए कितना एक्साइटेड हो आप?
2: बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली हमारा कॉलेज यहीं पे, तो हम तो आते ही रहते हैं मंदिर।
1: कल आओगे?
2: होपफुली यस, पूरी कोशिश रहेगी कि आने की,
1: कोशिश रहेगी कल आने की। मना भीड़ है, भीड़ में लोग जो है फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश जरूर करेंगे कि वो यहाँ पर जो है वो आ सके। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुडनेस टुडे।
0: तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नितिशा मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, पंडित अरविंद शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, साथ ही साथ वाणी आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जिनके पास चलेंगे क्योंकि मंदिरों में रौनक कैसी है दिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अभी से ही भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में, कैसे सजावट की गई वो सब आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करेंगे। कहा जा रहा है कि ये जन्माष्टमी द्वापर वाली यानी वो ही ठीक वैसे ही संयोग बन रहे हैं, वैसे ही ग्रह दशा है, वैसे ही योग बन रहे हैं जैसे कि उस समय में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस वक्त बने थे।
3: ना जी बिल्कुल, जो कहा जाता है, जो शास्त्रोक्त वर्णन है कि योग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल, वास्तविकता में वो परिस्थिति थी। अगर मैं द्वापर की बात करता हूं तो भगवान कृष्ण का जब कुंडली उठा करके देखेंगे, एक्चुअल में वृष लग्न के अंतर्गत उनका जन्म हुआ, चंद्रमा लग्न के अंतर्गत विद्यमान है, रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और अगर कोई रात्रि 12 बजे की जन्माष्टमी की कल की कुंडली बना करके देखे तो चंद्रमा लग्न में विराजमान है, रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत विराजमान है, वृष लग्न वहां पर विद्यमान है। भगवान कृष्ण की जब मैं द्वापर की कुंडली देखता हूं तो सूर्य मुझे वहां फोर्थ हाउस के अंतर्गत अपने घर में दिखते हैं, और कल की जब मैं कुंडली बना करके देखता हूं तो भगवान सूर्य फोर्थ हाउस के अंतर्गत अपने घर में सिंह राशि के अंतर्गत विराजमान मिलेंगे। जब मैं भगवान कृष्ण की द्वापर वाली कुंडली उठा करके देखता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पर बृहस्पति स्वग्रही होकर के मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कल की कुंडली उठा करके देखता हूं तो बृहस्पति एग्जॉल्टेड होकर के कल गोचर कर रहे होंगे, अपने सबसे उच्चस्थ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। अगर मैं उस समय की कुंडली उठा करके देखूंगा द्वापर युग की, तो वहां पर क्योंकि अगर मैं शनि की परिस्थितियों को उठा करके देखूंगा तो शनि उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे थे, लेकिन अगर मैं कल की कुंडली उठा करके देखूंगा तो भी शनि मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो मेरे दृष्टि से अगर मैं कल की कुंडली जो जन्माष्टमी इस बार मनाई जा रही है और अगर मैं द्वापर युग की उस समय की जन्माष्टमी की बात करूंगा तो मुझे बहुत कुछ एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। ये बहुत मुश्किल होता है कि जब रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाए, अष्टमी तिथि भी मिल जाए, दोनों एक साथ मिल जाए, अगर इस प्रकार का संयोग प्राप्त हो जाता है तो वास्तविकता में इसका मतलब है कि ये द्वापर वाली जन्माष्टमी है और इस जन्माष्टमी में अपने घर भगवान को बुला ही लेना चाहिए। मैं दोबारा एक बार धन्यवाद करूं आपका और जीएनटी का कि जिस प्रकार हम लोग सुंदर दृश्य को अपने घरों में बैठे हुए दर्शन कर पा रहे हैं, तो मैं तो निवेदन करूंगा जितने लोग अपने घर में बैठे हुए हैं एक बार दो लाइन हम सभी लोग भगवान का स्वागत करना चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो। हम सब लोग अपने हृदय को मथुरा बना करके भगवान का स्मरण करें। अगर नवजोत जी 30 सेकंड है तो हम लोग एक बार
0: जी बिल्कुल बिल्कुल करते
3: तो सभी लोग अपने घर में बैठ करके मैं निवेदन करूंगा आज से लेकर के कल तक बस एक ही प्रार्थना करना है, एक ही चीज गाना है और वो क्या है, स्वागत।

0: कृष्णा। तो इस जन्माष्टमी पर इन लाइनों को गुनगुनाते रहिए कल तक। अगली लाइन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रद्धा पूर्वक इन लाइनों को गुनगुनाते रहिए। और मैं दोबारा इस बात को कहूं, मैंने सुबह भी आपके कार्यक्रम में यह शब्द कहा था कि घर में इन दो दिनों में एक ही कोशिश करना है कि आप जीएनटी लगा कर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य कि जो इस समय पर पॉजिटिविटी दे सकता है उस चैनल को लगा करके रखिए, और मेरे दृष्टि में वो एक ही चैनल है जीएनटी, जो आपको पॉजिटिविटी आपके घर में दे सकता है।
1: वैसे भी आप हमारे साथ रहेंगे, बताते रहेंगे हमारे दर्शकों को, तो ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। सही कहा आपने, गुड न्यूज में हर उत्सव को हम बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं। देखिए आज ही से शुरुआत हो चुकी है जन्माष्टमी मनाने की। माने जी, जब हम शुभ योगों की बात करते हैं तो कौन कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं?
2: थैंक यू सो मच नवजोत जी, जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बहुत सारे खास संयोग बन रहे हैं, जैसे कि नवजोत जी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये द्वापर वाली जन्माष्टमी, और अभी राज्य भी बता रहे थे, तो बहुत सारे खास संयोग बन रहे हैं। इस समय जो है गुरुदेव बृहस्पति भी जो है अपनी उच्चस्थ अवस्था में है, शनिदेव जो है मीन राशि और रेवती नक्षत्र में जो है गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव जो है वो अपनी स्वराशि जो है तुला राशि में है। इस टाइम पर जो है आपका सर्वार सिद्धि योग बना हुआ है, गज केसरी योग बना हुआ है, सूर्य देव अपनी सिंह राशि में है, तो बहुत सारे खास संयोग बन रहे हैं, बहुत सारे खास महासंयोग इस टाइम पर बने हुए हैं, और हम बहुत किस्मत वाले हैं। आई ऑलवेज से कि जीएनटी इज नॉट लेस देन अ टेंपल। जब आप इसे अपने घर में चलाते हैं तो आपके घर की जो वाइब्स होती हैं, आपके घर का जो ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो वैसे ही दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो मुझे लगता है जीएनटी चला के रखिए, आपके घर का ऑरा, एनवायरमेंट सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप बहुत खास है, और श्री कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि जब हम उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं वही हमारी लाइफ में सच्ची जन्माष्टमी होती है। तो आप व्रत रख सकते हैं तो आप जन्माष्टमी का व्रत जो है जरूर रखें, और एक खास चीज जो है आपको जरूर करनी है, भगवान श्री कृष्ण को जो है मोर पंख आप जरूर चढ़ाएं, आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए बांसुरी जरूर लानी है, और उसको जो है आप अगर अपने हाथों से डेकोरेट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उनका श्रृंगार पूरे मन से, दिल से, आत्मा से करें, और कल जो है आप पीला रंग जो है वो आप जरूर पहने, और जैसे श्री कृष्ण ने हमें जीवन में सिखाया था कि यमुना माँ की सेवा करनी चाहिए और जो है गौ माता की सेवा जो है करनी चाहिए, कल अगर आप जो है किसी गोकुल धाम और या फिर कोई गौशाला में जाकर अगर जो है गायों के लिए अगर आप कुछ भी चारा उन्हें खिलाते हैं तो वो भी, उससे भी श्री कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। एक और चीज जो हमेशा हमें श्री कृष्ण ने सिखाई है कि जब हम बहुत ज्यादा फल पर फोकस करते हैं तो हमारी लाइफ में हम कर्म ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कर्म कर, पर फल की इच्छा जो है जीवन में नहीं करनी है, और उनको जो है धनिये की पंजीरी का भोग कल आप जरूर लगाएं, और जो निश्चित काल का मुहूर्त है उस पर्टिकुलर 45 मिनट्स में, जो लगभग आपका 11:57 से शुरू होकर 12:43, फिर से बता रही हूँ, 11:57 PM से लेकर 12:43 AM तक ये जो मुहूर्त है, इसमें आपको अपने जीवन की जो भी विश मैनिफेस्ट करनी है ये सबसे बेस्ट समय है उनकी पूजा का, उनकी आरती का, उनके अभिषेक का, और उन्हें माखन मिश्री चढ़ाने का, झूला झुलाने का, और अपनी विशेष को मैनिफेस्ट।
1: बिल्कुल, दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में, अरविंद शुक्ला जी और डॉक्टर निदेशा भी हैं, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर से रिदम जैन है और दिल्ली स्कॉन से श्वेता जैन। श्वेता, आप ही के पास आना चाहूंगी, स्कॉन की तैयारियां दिखाइए जरा कैसी है, हालांकि पर्व तो कल है लेकिन भक्तों का तांता आज ही से लगना शुरू हो गया है।
3: बिल्कुल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जब आप इस कॉन में पहुंचते हैं जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस है, जिसका मूल मंत्र ही यही है कि कृष्ण को जानो, कृष्ण को याद करो और कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को लगा दो, वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ कृष्ण की और राधा रानी की। अभी अभी मंदिर के कपाट खुले हैं और आपको बता दें कि शाम की जो आरती है यहाँ पर वो अभी शुरू हुई है और धीरे धीरे भक्तों का शाम में आना शुरू हुआ है, लेकिन फिलहाल आज और कल में जो दर्शकों को फर्क देखने को मिलेगा वो मैं बता दूं, क्योंकि जैसा कि वानिया जी भी कह रही थी कि गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हर बार हमें मौका मिलता है, उन्हें मौका मिलता है, हमारे जितने भी मेहमान हैं, कि वो भगवान के इतने करीब आ सकें, चाहे जितने भी दूर मंदिर हो या फिर वो पवित्र धाम हो, हम उन्हें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से मैं यहां आती रही हूं जन्माष्टमी के मौके पर, और आज एक दिन पहले यहां आने का मौका मिला है। अपने कैमरामैन सुधीर को मैं बोलूंगी आप ये दिखाए, ये जो देखिए आप ऊपर का देख रहे हैं ये पूरा एरिया, ये जो आर्च बना हुआ है कल फूलों से सजा रहेगा, पूरा लद जाएगा ये। और ये सामने जो आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को आप देख रहे हैं, आज इन्होंने पीतांबर वस्त्र पहना है, जो वानिया जी भी कह रही है श्री कृष्ण का जो सबसे फेवरेट एक तरह से कह ले उनका जो कलर है वो पीतांबर है, जो आज इन्होंने धारण किया है। लेकिन इन वस्त्रों में भी कल बदलाव होगा, और जो विदेशों से फूल आए हैं पूरी तरह से यहाँ पर साज सज्जा उसकी आज हो जाएगी। तो आज और कल में जो फर्क है वो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा फर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि कल कई तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे गए हैं, कीर्तन मंडली लगातार यहाँ पर बनी हुई है जो कि कीर्तन करती रहेगी। आज थोड़ी बहुत तो सहूलियत हुई है हमें यहाँ तक आने में, लेकिन कल रूट डायवर्जन भी रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ मंदिर से ही जुड़े हुए हैं वीएन दास जी, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से कल का कार्यक्रम रहने वाला है। तो वीएन दास जी, स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी ये बताइए, सबसे पहले स्कॉन की तरफ से, हर बार स्कॉन जो ये कार्यक्रम जन्मोत्सव का, कृष्ण जन्मोत्सव का करता है, बेहद भव्य और दिव्य होता है, कल की विशेष तैयारी क्या?
4: आज रात भर तैयारी चलती रहेगी। अभी आप देख रहे हैं, कल जब आप दिखाएंगे इन सबको तो पूरे थाईलैंड से और बंगलोर से फूलों से पूरा मंदिर सजा रहेगा, पूरा एक अलग ही दृश्य रहेगा। और 4:30 बजे भगवान का पट खुल जाएगा, और उस समय ही करीब 4,000 से 5,000 लोग आएंगे सुबह 7 बजे दर्शन करने के लिए। और फिर प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होगी, दर्शन आरती के बाद फिर भगवान का 7:30 बजे वृंदावन से आए हुए वस्त्र और आभूषण से उनका जो श्रृंगार होगा वो रात भर चलता रहेगा।
3: तो वृंदावन से जो वस्त्र आए हुए हैं स्वामी जी, आज तो इन्होंने पीताम्बर वस्त्र पहना है, क्या कल के बारे में आज हम डिस्क्लोज कर सकते हैं कि कल वाला रंग कौन सा?
4: कल भगवान का जो सबसे प्रिय है कृष्ण का मोर, मयूर, तो पीकॉक थीम दिया गया है। तो कल का जो ड्रेस होगा बिल्कुल मयूर की के थीम पे सजावट किया, श्रृंगार किया जाएगा, एक अलग पहली बार ऐसा हो रहा है,
3: पहली बार ऐसा होने वाला है। साथ ही साथ स्वामी जी ये भी बता दे, देखिए शंखनाद यहाँ पर हो रहा है, शाम की आरती, जैसा कि मैंने आपको कहा ये वो पवित्र बेला है जब यहाँ पर इस तरह से शंखनाद हर रोज होता है, लेकिन आज का दिन चूंकि विशेष है, कल जन्माष्टमी है और पूरा देश कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव से सराबोर होगा, तो विशेष करके आज यहाँ पर जो है अब लोग आने शुरू हो गए, भक्त आने शुरू हो गए स्कॉन से, खास करके जो लोग यहाँ आते हैं स्वामी जी, और हर बार लोग ये जानना चाहते हैं यहाँ प्रसाद को लेकर, भोग को लेकर भी विशेष तैयारियां होती हैं।
4: बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे से प्रसाद बनना तैयार हो जाएगा और 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा ठाकुर जी को। और हमारा भारतवर्ष में इतनी वैरायटी है खाने की, गुजराती थाली है, महाराष्ट्रीय थाली है, साउथ इंडियन थाली, उड़िया की थाली है, हर स्टेट का अपना, इसलिए हर प्रकार के व्यंजन, विशेष का केक भी बनाया जाता है, और केक में कई साइज के केक होते हैं छोटे बड़े, जो हमारे रशियन डिवोटी हैं वो भी केक बनाते हैं।
3: तो यहाँ नवजोत आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम आप जैसे जब वहाँ भी हम साथ में कार्यक्रम करते हैं तो मैं कहती हूँ ना कि जिनके घर में भी ठाकुर जी रहते हैं वो ये मानते हैं कि वो परिवार का एक सदस्य है, तो परिवार के एक सदस्य का जब जन्म हो रहा है, जब हम किसी का बर्थडे मनाते हैं तो हम कहते हैं ना कि जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं और उस समय जो जो चीजें जिसे हम बहुत अच्छा मानते हैं, केक से लेकर तमाम तरह के व्यंजन वो बनाते हैं, तो उसी तरह से स्कॉन में भी श्री कृष्ण के लिए वो तमाम तरह के हर स्टेट के व्यंजन यहाँ पर लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि बेकरी के भी तमाम आइटम्स होते हैं, इसलिए 1008 व्यंजन की बात स्वामी जी ने कही।
1: लौटती हूँ आपके पास तस्वीरें, लेकिन हमें साथ ही साथ दिखाते रहिए, एक बार रिदम आपके पास आऊंगी, जयपुर में कैसी रौनक है जरा वो भी दिखाइए, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त?
5: बिल्कुल नवजोत, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में मैं मौजूद हूं, जहां पर आज की रौनक यहाँ पे बहुत अलग देखने को मिलेगी। रोजमर्रा में जो यहाँ पर क्राउड आता है, जो भक्त आते हैं, वो अक्सर पीछे मंदिर परिसर में यहाँ खड़े होते हैं, पर क्योंकि आज जन्माष्टमी की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं और कुछ ही समय में वो जन्माष्टमी का दिन आ जाएगा, तो इस वजह से जो तैयारियाँ हैं वो देखते हुए भक्तों के लिए जगह पीछे की ओर की है। सभी भक्त मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये समय है भगवान कृष्ण का, गोविंद देव जी का पट खुलने का। तो शाम 4:30 बजे ये पट खुलेंगे, उनकी आरती होगी जिसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार कीर्तन यहाँ पे चल रहा है और यही नज़ारा यहाँ पे हर शाम देखने को मिलता है, पर इसको खास बनाती है आज की शाम क्योंकि कल जन्माष्टमी का दिन है। चारों तरफ यहाँ पे सजावटें की गई हैं और जन्माष्टमी के लिए खास व्यवस्थाएँ जो हैं वो भी इस मंदिर में की गई है। ये जो झांकियाँ हैं ये लगातार देखने को मिलेंगी, जिसमें जन्माष्टमी के दिन 13 घंटे गोविंद देव जी दर्शन देंगे। सुबह 4 बजे मंगला आरती से वो दर्शन शुरू होंगे, जो रात को 10:30 बजे तक चलेंगे, जिसके बाद में 12 बजे उनका जन्मोत्सव 31 तोपों की आतिशबाजी के साथ मनाया जाएगा। प्रशासन पूरा इन्वॉल्व समय पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, डाइवर्जन्स जगह जगह किए हैं क्योंकि ये मंदिर जयपुर का सबसे भव्य सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ पे 4 दीवारी में डाइवर्जन्स किए गए हैं। पार्किंग एरिया इस मंदिर के आसपास नहीं पर एल्बर्ट हॉल की पार्किंग में अलॉट किया गया है, जहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जो भी भक्त गाड़ी लेके आ रहे हैं उनको तय करनी होगी, वो पैदल यात्रा करते हुए वो इस मंदिर में आएंगे। जगह जगह डाइवर्जन्स है, 3 अलग अलग लाइंस में डिवाइड किया है, जहाँ जिनके पास पासेस हैं वो अलग लाइन में आएंगे, जो बिना जूते चप्पल के हैं उनकी लाइन अलग है, और जो जूते चप्पल पहन के पीछे की ओर से दर्शन करना चाह रहे हैं उनके लिए एक लाइन अलग है। इस मंदिर में जूते और चप्पल के लिए जो स्थान है वो भी जन्माष्टमी के दिन बंद कर दिया गया है, और ये जो स्थान है ये हवा महल की ओर निःशुल्क जूता चप्पल घर जो है वो बनाया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे जगह जगह पे 4 दीवारी में नवजोत QR कोड्स लगाए गए हैं, जिससे किसी भी भक्त को कोई तकलीफ ना हो। आसपास सबसे क्लोजेस्ट पार्किंग कौन सी है, कहाँ से किस जगह से डाइवर्जन्स हैं, वो सब वो QR कोड स्कैन करके हर भक्त जान पाएगा। ये सभी जानकारी जो है वो उन सभी को मिलेगी। करीब 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात रहने वाले हैं, 3000 स्वयं सेवक यहाँ पे तैनात रहने वाले हैं, 150 स्काउट्स रहने वाले हैं। तैयारी बहुत भव्य है, अलग अलग झांकियों में पूरे 13 घंटे तक भगवान गोविंद देव जी दर्शन देंगे। यहाँ पर भी अभी तैयारी हो गई है आज की झांकी की, कुछ ही मिनट बचे हैं जब ये आज की जो दर्शन है, शाम के दर्शन है, वो भगवान गोविंद देव।
6: बिल्कुल रिदम, हम लौटेंगे, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम लौटेंगे जब ये यहाँ दर्शन करवाए जाएंगे, आपके पास लौटेंगे। दोनों हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन नितिशा जी, हर किसी का, जैसे श्वेता अगर इस्कॉन में मौजूद है, वहां पर श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनको वो उनका अलग तरीका है श्री कृष्ण को मानने का, लेकिन जहां पर रिदम मौजूद है, हर किसी का अपना अपना तरीका है श्री कृष्ण को मानने का, क्योंकि अगर हम बचपन से लेकर देखें तो श्री कृष्ण की हर एक लीला में कोई ना कोई संदेश जरूर छिपा हुआ है।
7: जी, थैंक यू नवजोत जी, और JNT के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो देखिए, बिल्कुल ये जो जन्माष्टमी है, हम लोग कहते हैं उन्होंने जन्म लिया लेकिन उनका प्राकट्य हुआ, परमात्मा प्राकट्य होते हैं, उनका जन्म नहीं होता, तो उनके प्राकट्य दिवस की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये सच में उनका प्राकट्य द्वापर जैसा है, क्योंकि हम लोग 6 तत्वों को देखते हैं। सबसे पहला जो तत्व है वो पद मास है, जो होना जरूरी है, वो हमें मिल रहा है, वो हमें हर बार मिलता है। उसके बाद अष्टमी तिथि हमें मिलती है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद निश्चित काल, जो रात्रि मध्यकालीन समय है 12 बजे का, वो भी बहुत ज्यादा विशेष है। इसके साथ चौथा जो हमें मिलता है वो रोहिणी नक्षत्र। जब प्रभु परमात्मा प्राकट्य होने वाले थे तो प्रभु राम जी आए थे सूर्यवंश में, इक्षाक्षु वंश में, और जो हमारे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, वो आए यदुवंश यानी चंद्रवंश में। चंद्रमा उस समय अपनी परम उच्च राशि, परम उच्च डिग्री में, और रोहिणी नक्षत्र जो उनकी प्रिय पत्नी है उसमें विराजमान थे। यानी 16 कलाओं का पूर्ण श्री कृष्ण का होना, उस वृषभ लग्न और वृषभ राशि में जो चंद्रमा थे उन्होंने तय कर दिया था, और इतने सारे शुभ संयोग द्वापर में बने और इस समय भी हर्षण योग, सर्वात सिद्ध योग और बहुत से योग इस समय भी बन रहे हैं। हंस नामक राजयोग, बुद्धादित्य राजयोग और जयंती योग, ऐसे बहुत से योग इस समय भी बन रहे हैं। और शुक्र का मूल त्रिकोण में होना इस समय यह भी बताता है कि वो आकर्षण, वो सुंदरता चारों तरफ बिखर रही है, मंदिर मंदिरों में बिखर रही है। तो जैसे कि हमने बात की इस्कॉन टेम्पल की और हमारे ब्रिज के मंदिर जयपुर के गोविंद देव जी की मंदिर की, देखिए गोविंद देव जी का मंदिर सच में बहुत सुंदर है और वहाँ पे वृक्षों की पूजा हम लोग करते हैं, वहाँ पे बंदर भी बहुत है, बहुत सुंदर मंदिर और बहुत अच्छा परिसर है मंदिर का। स्कॉन टेम्पल की बात करें, स्कॉन टेम्पल में मुझे लगता है कि मंत्र जाप ये सब चीज़ों के बारे में ना होकर के आप भक्ति में जो भक्ति में लीन है वो डांस के थ्रू, भजन के थ्रू, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो वैदिक मंदिर है वो ज्ञान को भी दिखाते हैं, अध्यात्म को भी दिखाते हैं, वो सत्संग में भजनों के थ्रू हमें पूरी नॉलेज भी दे जाते हैं, उनके भजनों में पूरा ज्ञान छुपा है, कृष्ण की हर लीला छुपी हुई है। तो जैसे कि उनको बांसुरी बहुत पसंद है, उनकी कथाओं को उन्होंने भजनों में संग्रहित किया हुआ है, उनको मोर पंख बहुत पसंद है, वो सब उन्होंने लीलाओं को उनकी एक एक भजनों में उन्होंने पिरोकर वो भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। तो दोनों में उसमें थोड़ा सा
6: अंतर है, लेकिन अंतर वही है। बात जिसका कि हर किसी का भगवान को मानने का तरीका अलग होता है। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगी, दो सवाल सर आपसे। पहली बात तो ये कि हम जब कृष्ण की अलग अलग लीलाओं की बात करते हैं, हर लीला का अपना संदेश है। दूसरा ये कि जब प्रसाद की बात की जाती है तो कल के दिन के लिए विशेष, क्योंकि आज जो लोग गुड न्यूज टुडे अभी देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से एक बार लोग जान लें कि कल की तैयारी उनको कैसे करनी है, पूजा की थाली किस तरीके से सजाई जाए, प्रसाद में कौन सी चीज बहुत अहम हो जाती है जिसके बिना आपकी पूजा बिल्कुल अधूरी होगी, तैयारी कैसे करें।
8: जी जी, दोनों प्रश्न आपके बड़े ही शारगर्वित हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि इस बार जो जन्माष्टमी के विषय में प्रायः दुविधा रहती थी कि आज भी है कल भी है, तो पूरी दुनिया में जन्माष्टमी 4 तारीख को है, दिन शुक्रवार को, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार का जो मुहूर्त और जो तिथि है वो ऐसे समय पर आई है कि पूरी दुनिया में 4 तारीख को मनाई जाएगी। एक तो ये, दूसरा ये कि भगवान श्री कृष्ण क्या हैं विशेष, जैसे कि अभी नितीशा जी बता रही थी, भगवान श्री कृष्ण जो है चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। 16 कलाएं कैसे हैं, जो आप जैसे चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर के आपकी अमावस्या तक जाता है, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक जाता है, तो प्रतिपदा से अमावस्या तक पंद्रमा हुई और जो पूर्णिमा को जोड़ देते हैं तो वो 16 हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कृष्णस्तु स्वयं भगवान, साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता कहती है। अब बात आती है कि आप प्रसाद किस चीज का लगाएं, तो देखिए प्रसाद ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण के पूजन की थाली में जैसे नॉर्मल आप पूजन करते हैं वो सब कुछ, जैसे अष्टगंधन, चंदन, रोली मोली, अगरबत्ती, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य, तांबूल, लेकिन विशेष क्या है, तो विशेष इनका प्रसाद है माखन मिश्री। माखन मिश्री अवश्य होना चाहिए। और किस मंत्र का जाप आपका होना चाहिए विशेष, वह मंत्र ये है कि आप यदि जो आपको निशीत काल का टाइम बताया गया है, दिव्य मुहूर्त बताया गया है, आपका जो मुहूर्त बताया गया है 45 मिनट का, उस 45 मिनट में आपको यानी 11:43 से लेकर के 12:13 के जो बीच का समय है ये आप अमृत काल वेला का समय है, और इसमें आपको पढ़ना है कृष्णाया वासुदेवाया हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को अनवरत आप जो है पढ़ते रहिए। और भगवान श्री कृष्ण देते क्या है, जिसके विषय में कहते हैं अचिंत्या व्यक्त रूपाया विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया, क्या देते हैं, तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। आपके जीवन के किसी भी प्रकार का ताप है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, उसका ये जो है समन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम ब्रजा अहम त्वाम सर्व पापिभ्यो मोक्षिष्यामि माम सुचा, सभी धर्मों को त्याग करके तुम मेरी शरणागत हो जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे हर तरह के पापों को नष्ट करके और तुमको मोक्ष को प्रदान करूंगा।
6: बिल्कुल, चलिए यहीं से

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: ये जन्माष्टमी द्वापर वाली तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से रिदम हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और दिखा रही वहां से कैसे वहां पर पट खुल चुके हैं, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। रिदम तस्वीरें दिखाइए, बिल्कुल तस्वीरें देख रहे हैं और आपको भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितनी रौनक यहाँ पर दिख रही है और कितनी संख्या में लोग आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
1: बिल्कुल मैं दिखाती हूँ रौनक, क्योंकि पीछे की तरफ है यहाँ पे, बीच में कल की तैयारियों की वजह से कुछ बैरिकेडिंग कर रखी है, पर पीछे की तरफ आज जितने भी भक्त हैं उनको दर्शन करने की जो जगह है, जो स्थान है वो दिया हुआ है। तो मैं वहाँ दिखाती हूँ कि भारी मात्रा में जो भक्त हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। गोविंद देव जी आज गुलाबी रंग की पोशाक में बहुत ही खूबसूरत रूप में उन्होंने अपने दर्शन दिए हैं। ये जो झांकी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है और कीर्तन जो है हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा का जो कीर्तन है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। पट खुलने से पहले से ही ये जो कीर्तन है ये चल रहा था। भक्ति भाव हर भक्त के चेहरे पे, हर श्रद्धालु के चेहरे पे नज़र आ रहा है और यही तैयारियां हैं जो जन्माष्टमी की यहाँ पे हो रही है, जो इस दिन को और भी ज़्यादा खास बनाती है। चारों ओर से ये जो मंदिर है ये बहुत ही खूबसूरत रंगों से सजा हुआ है और यहाँ की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही भव्य होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि कल के लिए जो तैयारियाँ हैं वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है, प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से इसमें जुड़ा हुआ है। करीब 1000 पुलिस कर्मी कल तैनात रहने वाले हैं, 3000 सेवागार भी यहाँ पे रहने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि जितने भी भक्त हैं जो पैदल यात्रा करेंगे उनके लिए QR तो लगा ही है, पर साथ ही में जगह जगह पर स्वयं सहायता केंद्र जो हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो फैसला लिया गया है इस बार प्रशासन के जरिए वो सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जिसको जो भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि चार दीवारी में कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैन कर दिया गया है, तो जिसको जो भी परेशानी आएगी वो सहायता केंद्र पे जा सकते हैं या फिर जो जगह जगह पे QR कोड्स लगाए हैं
0: जी
1: उनको वो स्कैन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कहाँ वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं या कहाँ से मंदिर में आने का और यहाँ से निकासी का रास्ता है, क्योंकि दोनों वैसे इस मंदिर में आने के 3 अलग अलग रास्ते हैं पर कल के लिए वो बंद कर दिए गए हैं।
0: बिल्कुल, तो यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई है, भक्तों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, भक्त आराम से दर्शन कर सके, इसलिए वहां पर पहले से व्यवस्था की गई। तस्वीरें रिदम दिखाते रहिए, एक बार श्वेता जहां आपके पास आना चाहूंगी, अभी दिखाइए वहां पर क्या चल रहा है, कितनी संख्या में भक्त वहां पहुंचे हैं और कल की तैयारी कैसी है, क्योंकि स्पेशली इस्कॉन की अगर हम बात करें वो कहीं भी किसी भी इलाके का हो, इनफैक्ट कृष्ण मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं रात के वक्त।
2: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस्कॉन में जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी तैयारी भव्य होने वाली है। हालांकि फूलों की सजावट आपको बता दें, चूंकि अभी जो है शाम की भी आरती होनी है और देर

0: सोने शयन आरती भी होनी बाकी है, इसीलिए लोग लगातार, सुधीर अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा भक्तों को दिखाइए, भक्तों का तांता किस तरह से यहाँ लगा हुआ है। सुधीर इस तरफ जरा दिखाइए किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो देखिए बाकायदा यहाँ पर बैरिकेड्स जो हैं अंदर इस तरह से लगा दिए गए हैं, अलग अलग रोज बना दिए गए हैं। आज आप फिर भी इन रोज में आ सकती हैं, लेकिन कल तो कहना ही क्या, हर एक रो में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अब धीरे धीरे लोग जो है अंदर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा रोका भी गया है लोगों को कि एक साथ बहुत सारे लोग अंदर ना आए और अंदर अव्यवस्था ना फैले। तो धीरे धीरे लोग अब मंदिर के अंदर आ रहे हैं और आरती का समय हो रहा है, यहाँ पर आरती होगी। लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें कि आज पूरी रात, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि आज पूरी रात यहाँ पर सजावट होने वाली है, और यहाँ देखिए शाम की जो आरती है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर हम खुद गुड न्यूज टुडे को के माध्यम से तमाम अपने जो दर्शक हैं उनको हम दिखाते हैं। ये देखिए शाम की आरती शुरू हो चुकी है, यहाँ प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जो है उन्हें ये आरती दिखाई जा रही है और मंत्रोच्चार यहाँ पर हो रहा है। और जैसे कि स्वामी जी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अभी शाम की आरती हो रही है, लेकिन आपने बताया कि आज के दिन विशेष करके 7:30 बजे बहुत भव्य यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होने वाला है, वो क्या है?
1: जन्मदिन के एक दिन पहले इसको आधिवास बोलते हैं, मंत्रों के द्वारा भगवान को आह्वान किया जाता है कि आपका जन्मदिन आ रहा है, उसकी तैयारी स्वागत के अब एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो नाना प्रकार के आइटम का भगवान को दिखाया जाता है। ठाकुर जी जो छोटे जीटी है इनको यहाँ लाया जाएगा और इस तरह से उनका मंत्रोच्चार द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। वो तो तैयारी होती है एक दिन पहले,
0: यानी प्राकट्य की तैयारी।
1: हाँ, अभी से शुरुआत हो जाएगी, आज से शुरुआत हो जाएगी और कल रहेगा।
0: और यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बताया कि तैयारी जो है वो पूरी हो रही है और शाम की मंदिर की जो पूजा है वो आरती यहाँ पर शुरू हो गई है। और श्री कृष्ण के बारे में जैसा कि वहाँ तमाम आपको जो हमारे मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य वो बता रहे हैं, तो मैं जो हमारा जीवन है जिसको हम वर्ल्डली लाइफ कहते हैं उसमें भी मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि आध्यात्मिक होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन से दूर चले जाएं। आध्यात्मिक होने का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन को, जो भी ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, उसे और अर्थपूर्ण और आनंदपूर्ण आप जिए,
2: मीनिंगफुल उसको बनाया जाए,
0: यही स्कॉट भी कहता है।
2: यही से बात को आगे बढ़ाइए राज मिश्रा जी। अगर हम देखें कि जीवन को जीना कैसे, उसको प्रैक्टिकली कैसे जीना है, वो हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। आचार्य राजमिश्रा,
3: मुझे नवजोत जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं पूरी तरीके से आपके प्रश्न को सुन नहीं पाया हूँ, अगर प्लीज पॉसिबल है तो दोबारा एक बार।
2: छोटा सा प्रश्न है, अगर हमें अपने जीवन को आज की तारीख में कलयुग में प्रैक्टिकली जीना है तो कैसे श्री कृष्ण से सीख ले?
3: क्षमा चाहूंगा, मुझे बिल्कुल।
2: चलिए लौटती हूँ बान्या जी आपसे सवाल।
4: जी तो जो जी आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है जो शायद बहुत लोगों की हेल्प करेगा। आज के लाइफ में जो है हमें श्री कृष्ण की अगर टीचिंग्स के अकॉर्डिंग कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, तो सबसे पहले जैसे हमेशा श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। आप हमेशा, ईश्वर कभी भी ये नहीं कहता कि हम, आप पूरा टाइम जो है आप पूजा पाठ कीजिए, जाप कीजिए, लेकिन साथ में कर्म करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में अपना ब्रेन अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोड पर खड़े हैं और सामने से एक ट्रक आ रहा है तो आप कहें कि ईश्वर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बट वहां पर भी आपको अपनी विजडम और ब्रेन तो हमेशा यूज करना पड़ेगा कि मुझे वहां से हटना है। तो आप अपने वर्क को करिए, अपनी कंटिन्यूटी को करिए। श्री कृष्ण ने हमें टीम वर्क सिखाया, जैसे दही हांडी के टाइम पर कैसे टीम वर्क होता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन कैसे होता है, ये भी हमें श्री कृष्ण ने सिखाया। श्री कृष्ण ने गीता में एक चीज और भी मेंशन करी कि जुल्म सहना भी पाप है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो वहां पर भी जो है आपको अपनी आवाज उठानी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। मुश्किल समय में भी कैसे श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जिस विधि राखे राम, जैसा ईश्वर हमेशा हमें रखता है वैसा ही हमें रहना चाहिए। हमें हमेशा सम स्वभाव का रहना चाहिए, ना हमें बहुत ज्यादा जीवन में खुश होना चाहिए ना हमें बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए अपने जीवन में। तो जब आप एक न्यूट्रल स्टेट में रहते हो, जब आप ईश्वर के ऑरा में हमेशा रहते हो, जब आप ईश्वर को हर चीज सरेंडर करते हो और आपको इतना ट्रस्ट होता है कि भगवान जो है वो आपकी टेक केयर कर लेगा। तो ये चीज भी हमें श्री कृष्ण ने सिखाई। श्री कृष्ण ने जो है हमें ये भी सिखाया कि गौ माता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो कहीं भी आपको जो भी पॉसिबल मोमेंट्स हो, जब भी आपको गायों की सेवा करने का मौका मिले तो वो आप अपने जीवन में जरूर कीजिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि लव को कैसे जिया जाता है, कैसे प्रेम को जिया जाता है, कैसे रिलेशनशिप्स को जो है लीड किया जाता है। ये भी हमें जो राधा रानी का जो हमने श्री कृष्ण का और उनका जो हमने एक रिलेशनशिप देखा जिसका पूरा वर्ल्ड एग्जाम्पल देता है, तो उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया कि कैसे हर रिलेशनशिप में एक लॉयल्टी, एक कमिटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।
2: बिल्कुल नितिशा जी, आपके पास आना चाहूंगी, एक तो इसी से कि क्या सीख सकते हैं, और दूसरा ये एक मोर पंख का जिक्र आप कर रही थी, उसके बिना आप बता रही थी कि पूजा अधूरी मानी जाती है।
5: जी नवजोत जी, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण करुणा के अवतार हैं, उनमें प्रेम भी है, उनमें वात्सल्य भी है, उन वो अच्छे योद्धा भी हैं और वो अच्छे सारथी भी है, वो अच्छे गुरु भी है, क्योंकि अर्जुन के उस रणभूमि में जो गुरु थे सारथी भी थे और गुरु भी थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो अच्छे बालक भी हैं और अच्छे प्रेमी भी हैं, अच्छे पति भी हैं और अच्छे राजा भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें उनकी, हमें मानव जीवन को जीने की हर एक कला का पता चलता है कि कैसे पूरी भूमिका उन्होंने महाभारत की तैयार की। वो दुर्योधन के पास पहले निवेदन भी करने गए कि 5 गांव दे दो, तो उन्होंने युद्ध से पहले युद्ध को रोकने की भी कोशिश की कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन उन्होंने मानव कल्याण के लिए मानव जीवन को ये सिखाना था कि युद्ध करने से दोनों ही तरफ कितने नुकसान हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें अपने मनुष्य जीवन की हर कला को सीखने का एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है और वो अच्छे टीचर हैं। और इस दिन जन्माष्टमी पे अगर हम उनके जीवन से कुछ सीख पाए तो हमारे जीवन में उद्धार होना हमारा तय है, इस आत्मा का परमात्मा से मिलना तय है। मोर पंखी की बात कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को अभी इस्कॉन टेम्पल के पुजारी जी भी, गोस्वामी जी भी बोल रहे थे कि हम उनको कल पोशाक जो पहनाएंगे वो मोर पंख पंखी जैसे होगी। मोर पंख में इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि वो निगेटिव एनर्जी को अपने साथ नहीं रख सकता। आप उसको कीचड़ में भी टच कराएंगे और उसको झाड़ेंगे तो कीचड़ नहीं लगता, आप कभी उस पर जाला लगा भी नहीं देखेंगे, यानी उस पर जो डस्ट के कण हैं वो टिक नहीं सकते हैं, निगेटिविटी टिक नहीं सकती है। यशोदा मैया, क्योंकि कान्हा जी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ, रोहिणी नक्षत्र लाइमलाइट का नक्षत्र है, सुंदरता का नक्षत्र है, आकर्षण का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें नजर, उनका अट्रैक्शन बहुत था, उनकी आंखें, उनकी लालिमा, उनकी पूरी सुंदरता देखने योग्य थी, मतलब भाव विभोर हो जाते थे भक्तगण। तो उनको बचाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा से उनके सर पर मोर मुकुट लगाया जाता था। और नवजोत जी, ये प्रभु राम जी की कथा से भी हमें मिलता है कि प्रभु राम जी को मार्गदर्शन, थोड़ा सा रास्ता दिखाया था मोर ने, तो उन्होंने उसको वरदान दिया था कि मैं जब अगले जन्म में आऊंगा तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारे पंखों को अपने मुकुट की तरह धारण करूंगा। तो इस जन्म में उस वरदान के तहत इन्होंने मोर पंख को अपने जीवन में सदा अपने मोर मुकुट की तरह रखा।
2: बिल्कुल अरविंद शुक्ला जी, इस दिन व्रत का क्या विधान रहता है?
6: देखिए, व्रत का तो ऐसा है कि लिखित है शास्त्रों में कि जो एकादशी, कहते हैं कि 1 करोड़ एकादशी सहस्त्र एकादशी का व्रत रह ले और 1 जन्माष्टमी का व्रत ले ले, तो उसको बराबर फल की प्राप्ति है। जो 1000 एकादशी व्रत से फल मिलता है उतना ही फल मात्र जन्माष्टमी के दिन, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रहने से मिलता है। और इस बार जो स्थिति संयोग बना हुआ है, यदि मान लीजिए आपसे नहीं सध रहा है तो आप 12:14-15 के बाद से लेकर के, मैं 5 सितंबर की बात कर रहा हूँ, 4 तारीख की रात्रि को, शुक्रवार की रात्रि को और 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को, तो उसके बाद भी आप व्रत में कुछ ले सकते हैं। वैसे उचित तो ये होगा कि आप 5 सितंबर को नहा धुल करके सूर्य अर्घ दे करके और फिर आप जो है व्रत का पारण करें, और व्रत अवश्य रहना चाहिए जन्माष्टमी का, अन्न से बिल्कुल बचें। और मान लीजिए पूर्णतः व्रत नहीं रह पाते हैं, देखिए व्रत का एक तो होता है लोग निराहार रहते हैं, एक होता है लोग फलाहार रहते हैं, आप निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार रहिए, कुछ खा करके रहिए, लेकिन अन्न का पूरी तरह से त्याग कीजिए। और ये मैं कहूंगा विशेष करके कि आप उस टाइम पे भगवान का नाम तो जप ही सकते हैं, भगवान का नाम जपने में कोई वो नहीं है, आप गीता का पाठ कर लीजिए, गर्भ गीता का पाठ कर लीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, आपको नहीं आता है तो आप ऑन नेट से जो है इन चीजों को ले लीजिए और सुन लीजिए, उससे भी आपको
2: बिल्कुल। चलिए जल्दी से, वक्त की कमी है, राजभूषण जी आपके पास आते हुए क्या सीख हम श्री कृष्ण से ले सकते हैं आज के दिन?
3: मुझे लगता है जितना कुछ भी सीखा से जा सकता है ना नवजोत जी, मुझे लगता है वो बहुत कम होगा। और आप सोचिए, हमारे जीवन में अगर छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाते हैं। मुझे कई बार दिखता है, आज हम जेंजी की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं जेंजी को एंजाइटी में और डिप्रेशन में देखता हूं, जिसके अंदर इतना उत्साह इतना ऊर्जा होना चाहिए। वो भगवान कृष्ण जिनके जन्म से उठा करके आप देख लीजिए उनकी पूरी परिस्थिति को, लेकिन भगवान कृष्ण को कभी भी आप उदास अशांत या परेशान नहीं देखेंगे। क्या जन्म कहां होता है भगवान का? जेल के अंदर होता है। जन्म कहीं और होता है, पालन पोषण कहीं और होता है। बड़े होते हैं जैसे ही थोड़ा, 10 साल 51 दिन के करीब उनकी उम्र थी जब उनको उन माता पिता जिन्होंने उनका पालन पोषण भरण पोषण किया उनसे भी उनका बिछड़ो हो जाता है, जो फ्रेंड्स हैं बचपन के उनसे भी वो दूर हो जाते हैं, और जाकर के कहां पर, मथुरा जाकर के कंस से युद्ध करना पड़ता है। कंस से जाकर के युद्ध करते हैं, उसके बाद उस वहां को भी मथुरा को बसा करके फिर उनको द्वारिका जाना पड़ता है। अगर उनके जीवन को आप उठा करके देखेंगे तो शायद एक दिन भी आप नहीं देख पाएंगे जो उनके लिए बहुत शांति वाला रहा हो, लेकिन फिर भी जो उत्साह रहा, जो ऊर्जा रही, वो बनी रही। कभी उन्होंने किसी परिस्थिति से हार नहीं माना। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट विषय है आज सीखने का, कि भगवान ने ये सिखाया कि आपको हार नहीं मानना चाहिए, अपने कार्य को पूरी तरीके से करना चाहिए, अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए नवजोत जी, ये भी भगवान के द्वारा सिखाया गया है। जब जरूरत पड़ा तो सारथी भी बन गए। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप बॉस हो करके, आप बड़े हो करके, और आप कहें कि नहीं साहब आज मैं किचन में चाय बना दूंगा, आप बॉस हैं, मैं एक गिलास पानी दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। बट अगर भगवान कृष्ण को उठा करके देखा जाए तो अर्जुन के सारथी बनने में भी उनको कोई गुरेज नहीं है।
2: तमाम विपरीत, राजीव वक्त अभी इतना ही है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे संयम रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत कुछ सीखा जा सकता है श्री कृष्ण से। फिलहाल आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है, आज से लेकर कल रात जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, तमाम तस्वीरें हर मंदिर से हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आया है तो इसकी रौनक हर तरफ दिखाई दे रही है। लोग धूमधाम से जन्मोत्सव मनाने में जुटे हुए हैं और इस खास मौके पर देश भर के बाजार भी सज चुके हैं, जहां लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे हैं।

0: आया जन्माष्टमी का पर्व तो सज गए देश भर के बाजार, धौलपुर से लेकर पाली तक, झांसी से लेकर औरैया और आगर मालवा तक। बाजारों की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। एक से बढ़कर एक मनोहारी लड्डू गोपाल के विग्रह दुकान पहुंचे ग्राहकों का मन मोह ले रहे हैं। इसके अलावा भगवान के श्रृंगार के लिए रंग बिरंगी पोशाक, मुकुट और माला, बांसुरी और मटकी, पालना और झूला भी बाजार में खूब बिक रहे हैं।
1: जन्माष्टमी को लेकर हर कोई उत्साहित है, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी है और हर कोई अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगारित करने के लिए, उन्हें अलग अलग तरह से तैयार करने के लिए खरीदारी में जुटा हुआ है। दुकानों पर भीड़ लगी है, खासकर महिलाएं तरह तरह के पोशाक खरीद रही हैं, बांसुरियां खरीद रही हैं, भगवान कृष्ण के हाथों में पहनाने के लिए कुछ अंगूठियां, कुछ कड़े और उनके सर पर साफे पहनाने के लिए भी विभिन्न तरह के साफों की खरीदारी में काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं।
2: इसे हम बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन हम माखन का भोग लगाते हैं, लड्डू जी को बहुत ही उत्साह से अच्छे से मनाते हैं। उनके लिए नए वस्त्र और बहुत सारी चीजें नई नई करते हैं उनके लिए और हमें बहुत खुशी मिलती है।
0: दुकानों पर लड्डू गोपाल की अलग अलग आकार और डिजाइन के विग्रह मौजूद हैं। दुकानदारों के अनुसार लाइट और मोतियों से सजे झूले ग्राहकों को खासा पसंद भी आ रहे हैं। इनकी कीमत 800 से 2000 रुपए तक है। वहीं लड्डू गोपाल की प्रतिमाएं 100 से 6000 रुपए तक की रेंज में मिल रही हैं। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें। इसके लिए लोग मौजूदा ट्रेंड और अपने बजट के हिसाब से खरीदारी में जुटे हैं।
3: बाहर मार्केट में भारी उत्साह है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर और हमारे पास काफी जो कस्टमर आ रहे हैं उनके प्रति हम नए नए कलेक्शन लेके आए। इस बार हमारे पास हैंडवर्क पोशाक है, स्टोन वर्क में, डायमंड वर्क में, जर्दोजी में, बुटीक में, कलाकारी में और भी खूब सारी वैरायटी है। अपन लड्डू गोपाल के गहने हैं, ज्वेलरी है, झूले है, सिंहासन है, पालने हैं और भारी उत्साह दिखने को मिल रहा है। और स्पेशल हमारे पास इस बार पोशाक है जो हैवी रेंज में है, जो 100 रुपए से लेकर 1000, 1200, 1500 रुपए की रेंज में मिल जाएगा आपको। अच्छी अच्छी वैरायटी मिलती है अपने पास में।
0: राजस्थान के धौलपुर की बनी भगवान की पोशाकों की देश के बाजारों में अच्छी खासी मांग है। यहाँ करीब 50 से अधिक कारखाने हैं जिनमें कारीगरों द्वारा कान्हा और दूसरे भगवानों की पोशाक तैयार होती है। कारीगर बताते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर तो कान्हा और राधा की पोशाकों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है।
4: इस समय जो है जन्माष्टमी का सारा ऑर्डर चल रहा है, त्योहार है तो हम सब लोग, पूरी हमारी टीम इसी में लगी हुई है और हमको तो जैसा मजदूरी मिलती है बाकी सारा तो मथुरा वृंदावन में ही जो भी है होलसेलर जो करते हैं और हमारी ड्रेसें जो हैं मथुरा के अलावा इंडिया से विदेश में भी जाती हैं।
0: बात यूपी के बाजारों की करें तो यहां भी दुकानों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इनमें कोई पालना और पोशाक खरीदने पहुंचा है, कोई श्रृंगार का सामान खरीदने आया है और कोई भगवान के लिए नया आसन खरीदने आया है। और तो और लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव पर भोग लगाने के लिए माखन, मिश्री, पंचामृत की सामग्री, मेवा और तुलसी दल की मांग भी बढ़ गई है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, धौलपुर से उमेश मिश्रा, पाली से भरत भूषण जोशी, झांसी से अजय झा और औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: त्योहारों की शुभ घड़ी आ चुकी है, मंदिर में जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और चाय पर चर्चा में स्वागत है आपका। तस्वीरें आपको दिखाएंगे मंदिरों में रौनक कैसी वो भी दिखाएंगे, साथ ही साथ सिनेमा में किस तरीके से भक्ति के रंग दिख रहे हैं, हनुमान अंश के चमत्कारी प्रदर्शन ने किस तरीके से सबको हैरान कर दिया है, ये तमाम तस्वीरें आगे होंगी आज चाय पर चर्चा में। नमस्कार, मैं हूं शिव गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात उस गायक की भी करेंगे जिसकी आवाज हनुमान अंश में गूंजने के बाद अब घर घर तक पहुंच चुकी है। कभी गांव की गलियों में तंबूरा बजाने वाले सुनील लोधी आज लोगों की जुबान पर हैं। आखिर कैसे उन्हें मिली है ये शोहरत, इसकी सुपर हिट कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, देश भर के साथ साथ दिल्ली NCR में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नोएडा से लेकर ईस्ट ऑफ कैलाश तक इस्कॉन मंदिरों में कान्हा के जन्मोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां हैं। देखिए, मंदिरों में सजावट से लेकर जन्मोत्सव तक की हर खास झलक आपको दिखाएंगे हमारे साथ श्वेता झा, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दें कि कान्हा जो है वो पधारने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। तो पटना, झांसी और भोपाल में कैसे सजी कृष्ण लीला की महफिल, इसकी खूबसूरत तस्वीरें भी आपके सामने होंगी चाय पर चर्चा में। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: देशभर में अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, सजाए जा रहे मंदिर और ठाकुर बाड़े, बच्चे राधा कृष्ण के वेश में कर रहे श्रृंगार, कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाए जा रहे इस्कॉन मंदिर, जन्माष्टमी पर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के भी इंतजाम। जन्माष्टमी पर मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने की जबरदस्त तैयारी, इस बार 5 सितंबर को होगा इसका आयोजन। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट। हरियाणा की बेटी डॉक्टर आशा ने रचा इतिहास, फतेह की यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, शिखर से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। नेपाल आपदा के बाद जिंदगी की तलाश जारी है, अब तक 12,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू, होल्डिंग सेंटर में रखे गए रेस्क्यू किए गए 3,000 से ज्यादा लोग।

0: तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए अभी से गुड न्यूज टुडे पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग चुका है, तो सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक बार श्वेता झा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। श्वेता क्या खबर है वहां से, दिखाइए कैसी रौनक वहां पर है।
1: बिल्कुल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। यहाँ जब आप पहुंचते हैं, यानी कि आप किसी भी देश नहीं विदेश में भी जब आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल में पहुंचेंगे तो आपको ये संकीर्तन हमेशा कानों में आपके सुनाई देगा, और आप जब पहुंचेंगे तो आप भी इसी के धुन में आप मगन हो जाएंगे। सबसे पहले चूंकि इस्कॉन में है, मंदिर में है, हम दर्शन करा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ठाकुर जी विराजमान है और साथ ही साथ राधा रानी है। आज का जो इनका श्रृंगार है, इनको तांबर वस्त्र पहनाया गया है, जो कहते हैं कि श्री कृष्ण का सबसे प्रिय रंग है वो आज इनको पहनाया गया है। लेकिन कल की छटा कुछ और ही होने वाली है। मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लगातार ये चैनल भी हमेशा हर साल इस चैनल की वजह से हम आ पाते हैं, और कहते हैं ना कि गुड न्यूज टुडे त्यौहार मतलब गुड न्यूज टुडे। कोई भी त्यौहार हो भारत में, उसको विविधता से, विशिष्टता से और बड़े पैमाने पर जो दिखाने का काम करता है वो गुड न्यूज टुडे करता है। तो हर साल हम यहाँ आते हैं, और आपको बता दें कि ये जो आप देख पा रही हैं अभी, ये फूलों से थोड़े समय बाद यहाँ पर डेकोरेशन का काम शुरू होगा। और जिस तरह से यहाँ पर स्वामी जी से बात हुई, ये पूरा मंदिर परिसर, ये पूरा प्रांगण और ये जो सामने आप आर्च देख पा रही हैं, ये फूलों से सुसज्जित हो जाएगा। थाईलैंड से, बैंगलोर से कई टन फूल सजाए मंगाए गए हैं, और पूरी रात जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के सेवक हैं, वो पूरी रात यहाँ पर उन फूलों को सजाने का काम करेंगे। जितने भी पिलर्स हैं यहाँ पर, उसे भी फूलों से सजा दिया जाएगा। अभी शाम की आरती एक हो चुकी है 4:15 बजे, उसके बाद एक शयन आरती होनी है, लेकिन साथ ही साथ संकीर्तन भी यहाँ पर चल रहा है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर रौनक जो है वो देखते ही बन रही है, चाहे दिल्ली हो या फिर मथुरा या फिर वृंदावन की जो खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ बात हो रही है हनुमान अंश की भी। हनुमान अंश को 51 साल पहले, एक अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक मूवी आई थी, एक फिल्म आई थी, जय संतोषी माँ, उसके साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब वो पिक्चर आई थी तो लोग पिक्चर हॉल में भी जाकर हाथ जोड़कर बकायदा मूवी देखते थे, और कई लोगों ने फ्राइडे का, शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया था उस पिक्चर को देखने के बाद। एक तरह से एक अलग ही क्रांति, एक अलग ही लहर आ गई थी, आध्यात्मिक लहर हमारे समाज में। ठीक उसी तरह से हनुमान अंश को भी लेकर जो वर्बल या फिर माउथ पॉपुलैरिटी हो रही है, लोग एक दूसरे को कह रहे हैं, और उस पॉपुलैरिटी से आज 50 करोड़ से ज्यादा का ये कमाई कर चुकी है हनुमान अंश। तो अध्यात्म किस तरह से लोगों के जहन में उतर रहा है धीरे धीरे, और उसका रंग हमें देखने को मिल रहा है। आइए दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में।

0: कहानी भक्ति की है, कृपा बाबा नीम करोली की है और बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ऐसा चमत्कार है जिसका हिसाब लगाते लगाते फिल्मी पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में कदम तो धीमे कदमों से रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते फिल्म की कमाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी, बॉलीवुड ट्रेड एनालिस्ट भी दंग रह गए। आलम यह है कि कहीं टिकट नहीं मिल रहा तो कहीं फिल्म देखने के बाद दर्शकों की आंखें नम है। थिएटर से बाहर निकल रहे लोग भावुक हैं और फिल्म की चर्चा अब जुबान से जुबान तक पहुंच रही है। हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का बड़ा खेल दिखाया है, उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से होने लगी है। 1975 में कम बजट में बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश भी कुछ ऐसा ही करिश्मा दोहराती नजर आ रही है।
1: जब हमने शुरू किया इस फिल्म का कैंपेन तो हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें कैंपेन शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे और हमारे दिमाग में बहुत बात क्लियर थी कि हमको महाराज जी के संदेश के अराउंड ही हमको कैंपेन नहीं करना है, मार्केटिंग कैंपेन नहीं करना है। हमारी फिल्म आ गई, आप लोग आके देखो क्योंकि हमने फिल्म बनाई। क्यों भाई? सबसे पहली बात है उस कोर के साथ में जुड़ना है जो उन्होंने संदेश देना चाहा। तो हमने बड़े मंगल शुरू हुए थे, 8 बड़े मंगल थे। हमने हर बड़े मंगल को एक भंडारा कराया जिसमें हमने जाके भोजन का वितरण किया और हमने यही सिर्फ लोगों को बताया कि महाराज जी का प्रमुख उद्देश्य ही लाइफ का ये था कि लोगों को आप भूखों को भोजन कराएं, भक्तों को प्रसाद कराएं और भूखों को भोजन कराएं। आप समझिए कि हमारा सारा काम उन 8 बड़े मंगल ने कर दिया। अपने आप लोगों को बिलीव ट्रस्ट आ गया हमारी फिल्म के ऊपर कि ये लोग कुछ तो जेन्युइन कर रहे हैं। हम अपने फिल्म के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भैया महाराज जी का संदेश ये था और ये कंबल ओढ़े और लोगों को खाना बांट रहे हैं
2: और भरी गर्मी में,
1: भरी गर्मी में
2: और गर्मी नहीं लगती थी।
3: कैसी लगी सब लोगों को फिल्म? म्यूजिक कैसा लगा?
0: अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालिए जो हनुमान अंश की कामयाबी की पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। रिलीज के 22वें दिन फिल्म ने करीब 6,25,00,000 रुपए कमाए, लेकिन 25वें दिन कमाई ने अचानक गियर बदल दिया और आंकड़ा 12,75,00,000 रुपए तक पहुंच गया। 27वें दिन भी कमाई का सिलसिला थमा नहीं, फिल्म ने 27वें दिन करीब 7,25,00,000 रुपए कमा डाले। इस तरह 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश का नेट कलेक्शन 61,38,00,000 रुपए पहुंच चुका है। यही नहीं, बुधवार को फिल्म को देश भर में 7,000 से ज्यादा शोज मिले और इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 72,32,00,000 रुपए का बताया जा रहा है। लेकिन हनुमान अंश की कहानी सिर्फ कमाई के आंकड़ों की कहानी नहीं, फिल्म को लेकर दर्शकों की दीवानगी अब बॉक्स ऑफिस से निकलकर सड़कों तक पहुंच रही है। आगरा में दर्शकों से मुलाकात के दौरान फिल्म के लेखक निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म के दूसरे हिस्से का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि पार्ट 2 पर काम शुरू हो चुका है। दूसरे हिस्से में बाबा नीम करोली के जीवन के उन महत्वपूर्ण अध्यायों को दिखाया जाएगा जो उनके जन्म स्थान फिरोजाबाद से जुड़े हैं। इसके बाद कहानी पहुंचेगी आगरा, मथुरा और दूसरे स्थानों तक, यानी बाबा की आध्यात्मिक यात्रा, उनके जीवन से जुड़े प्रसंग और उनकी लीलाओं की कहानी अब और बड़े कैनवस पर दिखाई देने वाली है।
4: सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं
1: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
4: हाँ,
1: गणपति रोल बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी पूरी
4: हनुमान चालीसा
1: करी, फिर हनुमान एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होता है।
4: हाँ, आराम से मस्ती में।
1: जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक
4: सब सॉल्व
1: फंसा ही पड़ा है,
4: तो क्या कर सकते हैं।
1: ये तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था वो कुछ ना कुछ वहाँ से
4: सोल्यूशन आ जाता था।
0: और जैसे जैसे हनुमान अंश की चर्चा बढ़ रही है वैसे वैसे फिल्म के मुरीदों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नीम करोली बाबा की तस्वीर शेयर की। कंगना ने हनुमान अंश को महज एक फिल्म नहीं बल्कि सत्संग बताया। कंगना ने लिखा कि हनुमान अंश एक फिल्म नहीं बल्कि सत्संग है जिसमें उन लोगों की छोटी छोटी कहानियों को बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है जिन्होंने नीम करोली बाबा के साक्षात दर्शन किए, उनके साथ प्रत्यक्ष अनुभव रहे। अपनी थेरेपी स्किप करो और जाकर इस फिल्म को देखो। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी हनुमान अंश की दिल खोलकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर सहवाग ने बाबा नीम करोली से जुड़े अपने अनुभवों का जिक्र किया। उन्होंने बाबा की लीलाओं को अद्भुत बताते हुए कहा कि उनमें एक अलग ही खिंचाव है। सहवाग ने फिल्म को बाबा नीम करोली के शानदार ट्रिब्यूट बताया।
5: भारत की महान संत परंपरा में ऐसे संत सदियों में आते हैं। महाराज जी को समझना तो संभव नहीं है, लेकिन उनकी एक झलक पाना जरूर संभव है। और हनुमान अंश उसी झलक को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। अगर आप महाराज जी को जानते हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए, और अगर नहीं जानते तो और भी जरूर देखिए। जय सीताराम।
0: कभी जय संतोषी माँ जैसी फिल्म ने कम बजट में बॉक्स ऑफिस का गणित ही बदल दिया था, और अब 51 साल बाद हनुमान अंश उसी इतिहास के पन्नों पर एक नई इबारत लिखती नजर आ रही है। हनुमान अंश की कमाई कहाँ जाकर रुकेगी कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि हनुमान अंश ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कम बजट में बड़ी कमाई का झंडा नहीं गाड़ा, बल्कि बॉलीवुड को ये भी बता दिया कि भक्ति, अध्यात्म और असली जिंदगी की कहानियों में भी बड़ा दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, आंखों में भले ही रोशनी नहीं है, लेकिन आवाज में ऐसा जादू है, ऐसी भक्ति है जिसने लाखों दिलों को रोशन कर दिया है। बुंदेलखंड की माटी से निकली ऐसी ही एक आवाज इन दिनों लोगों के दिलों को छू रही है। कभी गांवों की गलियों में भजन गाने वाले सुनील लोधी की आवाज आज हनुमान अंश में गूंज रही है।
7: तो देखिए, दिव्यांग लोक गायक सुनील लोधी के लिए शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी आवाज मायानगरी मुंबई तक पहुंचेगी, और फिर उसी आवाज को बॉलीवुड की एक फिल्म में सुनकर देश भर के लोग उन्हें खोजने लगेंगे।

0: जाने मोबाइल के हो गए भैया दीवाने।
1: बुंदेलखंड की माटी की सोंधी महक और पारंपरिक तमूरा की तान पर भक्ति गीत गाने वाले लोक गायक सुनील लोधी का सफर इन दिनों हर किसी को प्रेरित कर रहा है। कभी गांव देहात में तमूरा के साथ भजन गाने वाले दिव्यांग सुनील का सफर अब बॉलीवुड तक पहुंच गया है। उनकी आवाज फिल्म हनुमान अंश में सुनाई दे रही है और उनके भजन को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।
2: मेरे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद के जो दर्शकों ने मुझे बहुत आगे तक पहुंचाया है और पहुंचाने की कोशिश है। और मेरा बस दर्शकों से यही अनुमान है कि एक बार मेरी आवाज़ जुबिन नौटियाल तक पहुंचाएं, क्योंकि दरअसल पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है।
1: फिल्म हनुमान अंश का भजन मोरे संकट के कटैया जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इसके सिंगर की खोज शुरू कर दी। गूगल किया तो लोगों को पता चला कि ये भजन बुंदेलखंड के लोक गायक सुनील लोधी ने गाया है, जो सूरदास की तरह भक्ति में लीन रहते हैं।
0: ए दूल्हा बन के आगो ठेला है मोटर को ब्याव मोरे रैया ने मोरा।
1: मोरे संकट के कटैया वायरल भजन ने सुनील की आवाज को उन लोगों तक पहुंचाया जो उनसे अब तक अनजान थे।
0: ए भैया जनरेटर जी जाने भारी उजियारो करवाओ मोरे रैया ने।
1: उनकी आवाज म्यूजिक प्रोड्यूसर पंकज तक भी पहुंची। उन्होंने सुनील की रिकॉर्डिंग सुनी, भक्ति भाव से भरी आवाज से वो काफी प्रभावित हुए। पंकज ने बड़ी मशक्कत के बाद सुनील का फोन नंबर ढूंढा, उनसे बात की। पंकज के एक फोन कॉल ने सुनील लोधी की किस्मत बदल दी। पहली बार अपने गांव और आसपास के इलाके से बाहर निकलकर सुनील इंदौर पहुंचे। इसके बाद उनका सफर माया नगरी मुंबई तक जा पहुंचा।
3: देखो, सुनील का एक वीडियो था दूल्हा बन के आ गया ठेला। इसके पहले हमने गौरा सांची गवाओ, एक जो वासुदेव है उनको गवाया था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। फिर हमने सुनील की वीडियो देखी, फिर हम सुनील को गांव लेने के लिए गए। वो दूल्हा बन के आगे ठेला एक बार सुनना, उसमें ना इतना सुरीला गाया है सुनील ने, एकदम जो तानसेन बेजुबा वाला लोग गाते ना, एकदम सुरीला है। तो हम गए उसको गवाए दूल्हा बन के आगे जीजा। फिर धीरे धीरे और जन से बात होती रही इंदौर में, जिन जिन से बात हुई हमें गवाना है, तो बात करते करते सुनील को पहुंचाते गए। सुनील का सबसे ज्यादा गाना वायरल हुआ है मोरे संकट के कटैया हनुमान, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ।
1: म्यूजिक प्रोड्यूसर पंकज ने फिल्म हनुमान अंश में सुनील लोधी से गाना गवाने का फैसला किया। इस तरह सुनील के सपनों को नए पंख मिले। मुंबई में सुनील ने 8 गाने रिकॉर्ड किए। इनमें नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना भी है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। सुनील को देश भर से बधाई के फोन भी आ रहे हैं। इस कामयाबी से वो बेहद खुश हैं।

0: सागर में नैया डारे दई।
1: सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर सुनील लोधी के भजन से जुड़े रील्स भी वायरल हैं। सुनील को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी ये कहानी उनकी कमी की नहीं, उनके हुनर की है।
2: सुनील फोक गा रहा है गाना, अब धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत में उसको हम डालेंगे कि शास्त्रीय संगीत भी वो सीखे और संगीत की प्रॉपर समझ ले बढ़िया तरीके से, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की समझ बहुत जरूरी है। सुनील अभी जो गा रहा है और एक साल बाद जो गाएगा उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा।
1: सुनील अब अपनी इस सफलता से आगे बढ़कर संगीत की दुनिया में नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं। सुनील की ख्वाहिश है कि वो भविष्य में बॉलीवुड के दिग्गज गायकों के साथ सुर मिलाएं। बुंदेलखंड के सीधे साधे गायक का सफर ये साबित करता है कि अगर प्रतिभा सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता तलाश ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कौन कह सकता है कि ये देख नहीं सकते, इनकी आवाज तो लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रही है। देखिए, मथुरा से लेकर मुंबई तक कान्हा के स्वागत में पूरा देश कृष्णमय हो गया है। ब्रज धाम दुल्हन की तरह सज चुका है, मंदिरों से लेकर गलियां तक बस कान्हा के आगमन का इंतजार में है। और देखिए, खास बात यह है कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दुर्लभ जयंती योग भी बन रहा है। कहा जा रहा है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के समय ठीक यही संयोग बना था। और देखिए, मुंबई में दही हांडी को लेकर गोविंदा पथक की तैयारी भी जोरों पर है। गोविंदा रात में भी प्रैक्टिस करते हैं।
4: बिल्कुल। और श्वेता जहां हमारे साथ लगातार बनी हुई है, एक बार जल्दी से उन्हीं के पास चलते हैं इस्कॉन में। श्वेता,
5: बिल्कुल जिस तरह से वहां बताया जा रहा था, गोविंदा पथक को लेकर तैयारी चल रही है मुंबई में। लेकिन आपको बता दें कि जन्माष्टमी और गणेश जी को लेकर के जो अभी उनका फेस्टिवल आने वाला है उसको लेकर के आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र में और बाकी पूरे देश भर में जिस तरह से तैयारियां चल रही है वो अद्भुत है, देखने लायक है। एक बार फिर से तुरंत मैं इस्कॉन के में आपको प्रभु के दर्शन करवा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं दूर दूर से और प्रभु के यहाँ पर सीधे दर्शन कर रहे हैं। कई लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले वो यहाँ पर आ जाए ताकि वो दर्शन कर पाए, क्योंकि कल भीड़भाड़ थोड़ी ज्यादा होती। लेकिन कल की बात ही क्या है, आपको बता दें थोड़ी देर में यहाँ पर उनके प्राकट्य को लेकर एक तरह से तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसे अधिवास कहा जाता है। तो यहाँ अधिवास की तैयारी होगी, जिसमें कि कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं उनको आह्वान किया जाएगा, यहाँ बुलाया जाएगा। उसी तरह से मथुरा वृंदावन में भी कई झांकियां निकाली गई है, कई तैयारियां हो रही है और गणपति बप्पा के स्वागत के लिए महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश भर में किस तरह से तैयारी चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में इस्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। साथ ही साथ भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है।
1: तो इस्कॉन वालों ने इतना अच्छा यहाँ पर वृंदावन जैसा माहौल दिया है, मुझे आके यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने कान्हा जी की एक तस्वीर ली है, कान्हा जी का पगड़ी लिया है और ये माला भी लिया है उनका। ये देखिए कितना सुंदर सा पीले कलर का मैंने उनका पोशाक लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस्कॉन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ झांसी में ही पूरा पूरा वृंदावन का माहौल दे दिया है। हरे कृष्णा।
0: वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है।
2: बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया।
3: भगवान ने जहां एक बार अपने हाथ से कोई भी चीज को छोड़ा, दोबारा उससे कभी मोह नहीं रखा। भगवान ने अपने कदम बढ़ाए जब गोकुल वृंदावन से, तो दोबारा हम कभी किसी साहित्य में उनको माखन खाते नहीं देखते। भगवान के हाथ से बांसुरी जो गोकुल वृंदावन में राधा को हाथ में सुपुर्द की, दोबारा उनके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देखी गई। ऐसे कई सारी बातें हैं जीवन के अंदर, हम सब भी ऐसी कई चीजों से प्रेरणा पा सकते हैं।
0: वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कालिया मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए जैसे तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं पूरे देश से, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जहां एक तरफ हम मथुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर रौनक देखिए, मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यही अगर पर्व महाराष्ट्र में चला जाता है तो वहां पर दही हांडी की परंपरा है।
5: वो भी आने वाला है, बस उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन वो तस्वीरें बहुत खास होती है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस महीनों पहले शुरू हो जाती है।
4: छुट्टी होती है ना, शायद
5: छुट्टी भी होती है, लेकिन जिन लोगों की नहीं होती, क्योंकि मैंने लाइव देखा है, जिन लोगों की नहीं होती वो ऑफिस की शिफ्ट करके या फिर बॉस को बोल के कि हम जा सकते हैं, तो क्योंकि प्रैक्टिस में ना यंगस्टर्स चाहिए होते हैं, वो पिरामिड बनाने में आपको दमखम लगता है, लेकिन लोग शिफ्ट करके भी आते हैं और छुट्टी लेकर भी आते हैं।
6: मैं आपको बताऊं, इट वाज ईयर 2022, शादी का अगला साल था और मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी कि मुझे वृंदावन जाने का मौका मिला जन्माष्टमी के मौके पर, और ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस था ना, स्पेशली जो रात का समय होता है यानी 12 बजे के बाद, जिस तरीके से श्रृंगार किया जाता है, जिस तरीके से पंचामृत से उन्हें नहलाया जाता है, और भजनों का जो वो आभास होता है ना, उसे बता पाना इतना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि वो समय बीत गया है लेकिन वो एक्सपीरियंस मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ।
4: बिल्कुल, साल दर साल ऐसी रौनक में देखने को मिलती है। तो देखिए फिलहाल आपको मुंबई की गलियों में लिए चलते हैं। हलचल वहां है, रौनक वहां है, दही हांडी उत्सव की जबरदस्त तैयारी वहां पर हो रही है। और इस बार क्योंकि जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन हम प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, लेकिन अगर दही हांडी उत्सव की बात करें तो वो उसके अगले दिन यानी कि नवमी पर होता है। एक बार श्वेता के पास सीधा चलते हैं। श्वेता, जहां आप मौजूद है वहां की तस्वीरें तो आप हमें दिखा रही है, यहां पर जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन इस्कॉन में क्या दही हांडी उत्सव की भी कुछ तैयारी हो रही है, क्या वो भी यहाँ पर मनाया जाएगा?
7: नहीं नवजोत, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दही हांडी नहीं मनाई जाती है, यहाँ पर सिर्फ श्री कृष्ण को, उनके जीवन को एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और थोड़ी देर पहले जो आपके साथ मेहमान 4 बजे के शो में थे, वो जिस तरह से कह रहे थे कि स्कॉन में मूल रूप से आप कह लीजिए कि हम जीवन को सेलिब्रेट करते हैं और नाच कर, गा कर, संकीर्तन करके, और स्कॉन की जो अगर हम कह लें कि उसकी जो आत्मा है, स्कॉन की आत्मा वो यही है कि अपने जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से और कितने खूबसूरत तरीके से आप जी सकते हैं। और हमारे यहाँ तो भक्ति मार्ग जो कहा गया है उसमें तो कहा ही गया है कि भजन के माध्यम से आप किस तरह से प्रभु के नजदीक जा सकते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में तो इन सब चीजों का वर्णन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में अब यहाँ पर एक भव्य आरती होने वाली है जिसमें यहाँ पर ठाकुर जी को थोड़ा सा नजदीक लाया जाएगा, जो उनका चल विग्रह है नजदीक लाया जाएगा, और उसके बाद तमाम भोग यहाँ लगाए जाएंगे और आह्वान किया जाएगा उनका, आज से आह्वान किया जाएगा कि आप धरती पर आए और हमें दर्शन दे, हमारा कल्याण करे। और कल रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बजेंगे, उसके बाद शुभ मुहूर्त में उनका प्राकट्य होगा और हम सभी देशवासी जो है कृष्ण जन्मोत्सव के उस समय को सेलिब्रेट करेंगे और सेलिब्रेशन हम मनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको हम बता दें, अगर महाराष्ट्र की जो बात आप कर रही थी, उससे पहले एक बात सरगम जो कह रही थी मैं कहना चाहूंगी कि कृष्ण हमें ये भी बताते हैं, देखिए सोशल मीडिया ने हमें लाखों लोगों से जोड़ दिया है, लेकिन रियल कनेक्शन आज भी हमारे अगर देखे जाए तो गिनकर उंगलियों पे बताना मुश्किल होगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें रियल कनेक्शन क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, हम वो भी कृष्ण से जान सकते हैं। और अगर रियल कनेक्शन जानना है और कनेक्ट होना है लोगों से, तो आपको कृष्ण से बहुत सारी सीख लेनी होगी जो आज भी आज के जो जेंजी है वो ले सकते हैं। लेकिन चलिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर दही हांडी को लेकर के रात 9 बजे तक लोग काम करते हैं और उसके बाद वहां पर आकर रात 1 बजे तक प्रैक्टिस होती है दही हांडी की। और इससे एक साथ आना और साथ ही साथ एक प्रेरणा के तौर पर, एक साहसिक खेल के तौर पर महाराष्ट्र सरकार जो है वो भी इसे देखती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
8: पांच सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पतंग इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और किस तरह की व्यवस्था है थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी, बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है जहाँ तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग, आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं। लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
9: बली की जय।
8: अरे बोल बजरंग
9: बली की जय।
8: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
10: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
8: कैसे मिल सकता है टाइम आपको, आप काम पे भी जाते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा
10: सा? सब लोग देखो, सब अभी क्या है, सब हम लोग का एरिया रीडेवलपमेंट की वजह से टूट गया है बराबर, तो सब पनवेल नवी मुंबई उधर से प्रैक्टिस के लिए जमा होते, उसके बाद 12:30-1 बजे रात को घर पहुंचते, फिर सुबह 6 बजे काम के लिए निकलते, सब यही रूटीन चालू है, 2 महीना हो गया।
8: अरे वाह, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
11: 5th।
8: अच्छा, और कब से प्रैक्टिस कर रहे हो दही हांडी की?
11: प्रैक्टिस नहीं
8: कर रहे, आप देखने आए हो। हाँ। कैसा लगता है आपको दही हांडी?
11: बहुत अच्छा।
8: तो आपको ऐसा इच्छा नहीं होती कि मैं भी ग्रुप में शामिल हो जाऊं और ऊपर चढ़ करके हंडी को फोड़ूं?
11: हाँ।
8: इतना समय आपने निकाल लिया, 2-3 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी कितनी एनर्जी और कितना जी रहे हैं आप इस दही हंडी को?
12: ये एरिया ऐसा है ना, जहाँ ये मिडिल क्लास लोगों का एरिया है और हम लोग बचपन से ये एंजॉय कर रहे हैं, तो वो हमारे रगों रगों में बचपन से भरा हुआ है, इसलिए सुबह काम पे जाना, फिर शाम को आके वापस प्रैक्टिस करना, फिर 2 बजे घर पे जाना, फिर सुबह का वापस 6 बजे जॉब पे जाना, ये हमारा अभी रूटीन बन गया है।
8: हजारों की तादाद में दही हंडी के पतक जो है अपनी टीम लेकर के 5 सितंबर को माफ करिएगा इस महीने की 5 तारीख को जो है तमाम बड़ी बड़ी जो हंडियां ऊपर लटकाई जाएंगी उन्हें फोड़ने की ये पूरी तरह से कोशिश करेंगे। क्या मंडल का नाम है क्योंकि तमाम मंडल है?
10: न्यू परशुराम क्रीड़ा मंडल काला चौकी का राजा।
8: क्या बात है, काला चौकी के राजा से आप भी?
9: हाँ, काला चौकी राजा से हम लोग इस साल हम लोग 9 तर्क लगाएंगे और हम लोग का ये भाईकाला विधानसभा और सिवड़ी विधानसभा पूरा हम लोग काबिज करके हम लोग 9 तर लगाएंगे और सब
8: कुछ। कौन से थर पे खड़े रहते हो?
9: छठवे थर पे खड़ा रहता हूँ और 4 एक्का उछलने का मेरा को ये न्यू परशुराम क्रीड़ा मंडल ने हम लोग को ये दिया है।
8: बहुत बड़ा पिरामिड बनता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो अपनी टीम को लेकर के क्या कुछ सोच रखा है, क्या कुछ करा है?
13: जैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस निकाले जाते हैं और अलग अलग पार्टी की तरफ से भी इंश्योरेंस निकाले जाते हैं। मंडल का पहले ही ये रहता है कि जो अपने साथ गोविंदा में आते हैं लड़के लोग वो अगले साल सेफ रहे, सब कुछ रहे, उनकी पहला सुरक्षा का फर्स्ट प्रेफरेंस वही जाता है।
8: क्या बात है, बड़ी शांति। बोल बजरंग
14: बली की जय।
8: अरे बोल बजरंग
14: बली की जय।
8: बड़ी शानदार मूछे और दाढ़ी है आपकी। तो ये बताइए क्या काम करते हैं आप?
15: मैं नेटवर्क कंपनी में हूँ।
8: अच्छा, ये बताइए कि कैसे दही हंडी आपके दिल में बसा हुआ है, कितना टाइम निकालते हैं और डर नहीं लगता?
15: नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं डर लगता हम लोग का, क्योंकि बचपन से हम लोग ये करते आ रहे हैं और बचपन से हम लोग ये देखते आ रहे हैं।
8: बिल्कुल, देखिए आपको बताएं

0: नियत लोगों में, आम आदमी लोगों में पैर खींचने का काम हर त्योहार होता है, जिंदगी भर पैर खींचने का काम होता है। लेकिन खाली यही एक त्योहार है अपने हिंदू लोगों का कि उसको ऊपर सर पे चढ़ाते, यही एक मेरे ख्याल से इसकी खूबी है। ये खाली महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सज्जन कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही नए नए ख्वाब देखते हैं, नए नए विक्रम करते। आज यहाँ मेरे ही साथ बहुत दिन से मेरे नाता जुड़ा हुआ परशुराम मंडल, हमारे जिजामाता नगर का एक बहुत बड़ा सपना, वो लोग आज यहाँ आठ थर लगा के हमारी इस कामयाबी को ऊंची ऊपर उड़ान दे दिए। इसके लिए मैं इन लोग का भी बहुत शुक्रिया अदा हूँ, इनका ही रिश्ता।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नेपाल में चल रहे रेस्क्यू की ग्राउंड रिपोर्ट।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, सजाए जा रहे मंदिर और ठाकुर बाड़े, बच्चे राधा कृष्ण के वेश में कर रहे श्रृंगार, कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाए जा रहे इस्कॉन मंदिर, जन्माष्टमी पर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के भी इंतजाम। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। नेपाल में राहत और बचाव का महाअभियान जारी, और इस बीच कई हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। नदियों के किनारे ऐसे कई मकान लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं जो भीषण बाढ़ में बच गए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी ये मकान मजबूती से खड़े हैं, जिससे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे।
2: बिल्कुल, देखिए नेपाल में अब तक 11,900 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, टनल में फंसे लोगों की तलाश जारी है। भारत से नेपाल पहुंची एनडीआरएफ की टीम इस बचाव और राहत के महामिशन में नेपाली सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार काम कर रही है।
3: छब्बीस अगस्त को ग्लेशियर टूटने के बाद आई भयानक बाढ़ से निपटने के लिए भारत की तरफ से भेजी गई सहायता की पांचवी खेप नेपाल पहुंच चुकी है। इसमें बचाव विशेषज्ञ और उपकरणों के साथ जरूरी दवाइयां शामिल हैं। नेपाल में राहत बचाव अभियान में एनडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है।
4: नेपाल की राहत बचाव कार्य में भारतीय सेना के साथ साथ अब एनडीआरएफ की भी एक टुकड़ी यहां पहुंच चुकी है नुआकोट एयरबेस से। एनडीआरएफ की दक्षता दरअसल उन दुर्गम इलाकों में जाकर के रिस्टोरेशन, बचाव कार्य, लोगों को निकासी, ये सब में दक्षता है। तो सबसे पहले भारत की सेना जो आई थी उसे भेजा गया था, खासकर जो सुरंग है जहां पर वो लोग फंसे हुए उन टनल्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। अब के बाद एनडीआरएफ की कंपनी देखे यहाँ एयरबेस पर पहुंची हुई है अपने तकनीकी उपकरणों के साथ, साजो सामान के साथ, मेडिकल किट, इवैक्यूएशन, ड्रिलिंग, हर वो चीज जिसकी जरूरत पड़ सकती है, और अब इन्हें एयरलिफ्ट करके ऊपर ले जाने की तैयारी की जा रही है।
3: नेपाल से अब कई ऐसे घरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने के बावजूद सुरक्षित बच गए। फ्लैश फ्लड में इन घरों की छतों पर पहुंचकर कई लोगों ने अपनी जान बचाई, आज ऐसे घरों की खूब चर्चा है।
4: नेपाल में आपने उस मकान के बारे में सुना जो भटकोशी के प्रकोप को झेल गई, वो घर बच गया, परिवार को निकालना पड़ा, लेकिन ऐसे चमत्कार बहुत सारे घरों के साथ हुए जो नदी की धारा जो है अपने बीचों बीच इन मकानों के आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नुकसान

0: यहाँ नहीं पहुंचा। जहां पर आपने वो पहला घर देखा था उसके आगे देखे दो और मकान है। ये दो मकान में तीसरा मकान जो सबसे पीछे है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ मलबे में चला गया। लेकिन उसके ठीक पीछे यानी नदी के पानी के करीब जो कि धारा किनारे पर देखे मलबा 12 से 15 फीट है, इसके बावजूद भी वो जो दो मकान है बचे हुए हैं, लोग वहां पर छतों पर गए और चूंकि समय था तो समय रहते वो भागने में भी कामयाब हो गए। इसी के साथ देखिए कहते ना कि मिरेकल के आदाब, यहाँ पर देखिए कुछ होटल्स हैं। नीचे की मंजिल अगर आप देखेंगे पहली और दूसरे मंजिल वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, सब कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के पास भागने के लिए यहाँ भी समय था, वो भी अपने छतों पर चले। इन इमारतों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, पहाड़ों पर जो निर्माण कार्य था इतना मजबूत था कि वो इस प्रवाह को और उसकी ताकत को झेल गया। इसी तरह ढूंगे बाजार में देखिए पीछे भी इधर मकान है, ये एक दो पीछे तीन मंजिल और आगे कृषि भवन का जो ब्लॉक है, ये सारे मकान जो कि बिल्कुल धारा के बीचों बीच थे प्रवाह को, उसके बावजूद ये बचे रह गए।
1: नेपाल में बाढ़ से हाइड्रो पावर परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे मजदूरों के बचाव के लिए सिल्क्यारा रेस्क्यू में शामिल रेड माइनर्स ने मदद की पेशकश की है। नेपाल में करीब 900 मजदूर लापता हैं, जबकि लगभग 500 के सुरंगों में फंसे होने की आशंका है। बाढ़ से रसुआ और नुवाकोट जिलों में 12 हाइड्रो पावर परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें 4 निर्माणाधीन, 7 चालू और 1 परीक्षण चरण में थी। हाइड्रो पावर चैनल के कई हिस्से मिट्टी, बड़े पत्थरों और मलबे से बंद या ध्वस्त हो गए हैं। नेपाल सेना और वहां मौजूद भारतीय दल सहित दूसरे देशों की टीमें अब हाइड्रो पावर सुरंगों में खोज और बचाव अभियान को प्राथमिकता दे रही हैं। नेपाल से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: यूपी में चित्रकूट के रामघाट में बड़ामठ मंदिर में पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बहने लगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जलस्तर बढ़ने से रामघाट के मठ, मंदिर, दुकानें और घर पानी में डूब गए। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने हाथ जोड़कर पुजारी से बाहर निकलने की अपील की, लेकिन पुजारी भगवान को अकेला छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार नहीं हुए। फिलहाल चित्रकूट में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
3: उधर प्रयागराज में गंगा भी उफान पर है। हर साल माघ मेला, अर्धकुंभ, महाकुंभ मेला समाप्त होने के बाद करीब करीब सभी पंडाल हटा दिए जाते हैं और साधु संत अपने अपने स्थानों पर लौट जाते हैं, लेकिन झूसी पुल के नीचे बना मचान नुमा आश्रम साल भर मौजूद रहता। करीब 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी झोपड़ी नुमा संरचना और उसके ऊपर करीब 80 फीट ऊंचे लोहे के खंभे पर शीशे से सुरक्षित मंच में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। बाढ़ में पानी ने मचान के आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तेज धार और पानी के दबाव से पंडाल का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन जिस खंभे पर अखंड ज्योति स्थापित है वहां तक बाढ़ का पानी पहुंचने के बावजूद ज्योति लगातार जलती रही।
4: पूरे जगह बाढ़ का पानी ही पानी है, लेकिन अगर आप जिस जगह पे हम खड़े हैं ये प्रयागराज का शास्त्री ब्रिज कहते हैं और इस शास्त्री ब्रिज के नीचे वाला जो इलाका है जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है ये माघ मेला कुंभ मेला क्षेत्र है। हर साल माघ मेला और हर 6 साल पर अर्धकुंभ और 12 साल पर महाकुंभ लगता है और इसी पानी वाली जगह पर तंबुओं का शहर नजर आता है। मेला खत्म होते ही पूरा तंबू उखड़ जाता है, लेकिन अगर तंबुओं में एक पंडाल नहीं उखड़ता तो यह है देवराहा बाबा का पंडाल। आप देखेंगे देवराहा बाबा को कुटिया बाबा के नाम से कहा जाता है, कुटिया वाले बाबा, तो उनकी वो कुटिया है, तकरीबन 1-1.5 मंजिला मकान के ऊपर बनी है, इसलिए ऐसी बनाई गई है कि ये डूबे नहीं और हमेशा बनी रहे। और इसमें एक मंदिर भी स्थापित है जिसकी पूजा पाठ होती है। उसके जस्ट बगल में देखेंगे पीपा बना है, एक खंबे नुमा बना है, उस पर एक ज्योति रखी गई जिसे अखंड ज्योति का नाम दिया गया है। इस अखंड ज्योति को इसलिए बनाया गया है कि देश में शांति, सकुशल सब कुछ रहे, इसके लिए अखंड ज्योति जलती है और साल भर ये अखंड ज्योति जलती रहती है, इसे बुझने नहीं दिया जाता। ये स्थानीय लोग हैं, हर दिन इस पुल के रास्ते से गुजरते हैं और इस अखंड ज्योति पे हर किसी की निगाह होती है, इसलिए कि माघ मेला, कुंभ मेला, अर्धकुंभ लगता है, तंबुओं का शहर बसता है और मेला समाप्त होती है तंबुओं का शहर उखड़ जाता है। अगर यहाँ से नहीं हटता तो ये देवराहा बाबा का पंडाल। अब माघ मेले में बाढ़ के हालात है, पूरे जगह पानी ही पानी है, माघ मेला वाले क्षेत्र में भी पानी है, लेकिन आज भी देवराहा बाबा का ये पंडाल और उसकी अखंड ज्योति अभी भी बरकरार है और ये साल भर अखंड ज्योति जलती है। अखंड ज्योति इसलिए जलाई जाती है कि देश में सब कुछ सकुशल रहे, देश में सब कुछ अच्छा होता रहे, इस आशय से अखंड ज्योति जलाया गया है। बाढ़ के पानी के बीच में भी ये अखंड ज्योति अलग से नजर आती है। आनंद राज, प्रयागराज।
3: कभी कभी ना एक छोटी सी कोशिश किसी की पूरी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। बलिया की 7 साल की रागिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पैर के बावजूद पढ़ाई का सपना देखने वाली रागिनी के लिए अब स्कूल जाना आसान हो गया है।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर रागिनी की कहानी सामने आने के बाद प्रशासन ने तुरंत मदद की। डीएम खुद उसके घर पहुंचे और अब रागिनी को ट्राई साइकिल भी मिल गई है और अब रागिनी के सपनों को जैसे नए पंख मिल गए हों। स्कूल जाना अब पहले से उनके लिए आसान हो गया है।
1: रागिनी एक पैर के सहारे अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रही थी। 400 मीटर का वो रास्ता उसके हौसले का इम्तिहान ले रहा था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। रागिनी के सपनों को अब सहारा मिल गया है। रागिनी को ट्राई साइकिल मिल गई है। अब रागिनी के सपनों को जैसे नए पंख मिल गए हैं। उसका स्कूल तक का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।
5: रागिनी, अभी कौन कौन लोग आए हैं?
6: आपके कौन अंकल आए हैं?
5: ये अंकल आए हैं? क्या क्या लिया मिला है आपको?
7: कॉपी मिला है, साइकिल मिला है, मिठाई मिला है।
1: बलिया के डीएम ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 7 साल की रागिनी का वीडियो देखा और तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। डीएम सिर्फ मदद का भरोसा देने नहीं रुके, बल्कि खुद रागिनी के घर पहुंचे, उसकी परेशानी को समझा। उन्होंने रागिनी के इलाज से लेकर परिवार को आगे की जरूरतों में हर संभव सहायता का भरोसा दिया।
8: इस समय हम लोग रानीपुर गांव में खड़े हैं। रानीपुर गांव में कल एक बिटिया ने, छोटी सी बिटिया है जिसने बहुत भावुक अपील की थी, और वो जब भावुक अपील मैंने सुनी तो तुरंत इच्छा हुई उस बिटिया से मिलने के लिए। आज हम लोग उसी से मिलने यहाँ गांव में आए हुए हैं और एक भावुक अपील की थी कि हमें एक साइकिल चाहिए, तो आज हम लोग उसी के गांव में, उसी के घर पे उसके परिवार से मिलने आए हैं। बिटिया से भी मिले हैं। साइकिल तो एक औपचारिक है, ठीक है, साइकिल तो दिया ही हम लोगों ने, बट हम लोगों का प्रयास ये है कि बिटिया को और उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। जो जो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए वो सब हर संभव प्रयास करेंगे। इस गांव में स्कूल तक और गांव तक आने का रास्ता बना हुआ है, बट थोड़ा मरम्मत की आवश्यकता, उसको भी हम कराएंगे।
1: रागिनी का परिवार यूपी के बलिया के रानीपुर में रहता है। स्कूल आने जाने में हो रही परेशानी को लेकर रागिनी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी।
8: बिटिया टैलेंटेड है और इसको हम लोग एक पूरी किट दिए हैं जिससे बिटिया खेल कूद सके, पढ़ाई कर सके, और बिटिया की इच्छा है कि वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिटिया का पैर भी जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, मेडिकल चेकअप भी हम कल करा रहे हैं, क्योंकि पुराना केस है ये, 5-6 साल पुराना है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि बिटिया का अगर पैर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, दोनों पैरों पर चल सकती है, तो यहाँ लखनऊ जहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है हम लोग कराएंगे, ठीक हो जाए, और हमारी शुभकामनाएं, बिटिया पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपने पैरों से चल सके।
1: अब रागिनी के चेहरे पर ट्राई साइकिल मिलने की खुशी है, क्योंकि जो सफर रागिनी के लिए चुनौती था वो सरकारी मदद मिलने के बाद काफी आसान हो गया।
5: अच्छा अच्छा, रागिनी पढ़ने जाओगी ना?
7: हाँ।
5: क्या बनोगी?
7: डॉक्टर
5: बनना है। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए?
7: आप कुछ नहीं चाहिए।
1: ये सहारा रागिनी की पढ़ाई ही नहीं, उसके आगे के सपनों का रास्ता भी आसान करेगा। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चले कश्मीर की खूबसूरत वादियों का जिक्र भी कर लेते हैं। बात वूलर झील की, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। अब इको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण की एक नई कहानी लिख रही है वूलर को सवारने और इसकी खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी WCMA ने एक बड़ी पहल की है। झील के आसपास खूबसूरत पार्क तैयार किए जा रहे हैं, लोगों को लुभाने के लिए सेफ्टी पॉइंट्स बनाए गए हैं, पर्यटकों के लिए कई दूसरी सुविधाएं भी मौजूद हैं।
9: और देखिए, खास बात यह है कि इन सुविधाओं के बीच वूलर की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, यानी मकसद सिर्फ सैलानियों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसी पर्यटन व्यवस्था तैयार करना है जिसमें कुदरत भी सुरक्षित रहे और पर्यटन भी बढ़े। इसी पहल को करीब से समझने के लिए देश भर से 27 IFS अधिकारी वुलर झील पहुंचे। इन अधिकारियों ने न केवल झील की खूबसूरती को देखा बल्कि यहां चल रहे संरक्षण और इको टूरिज्म के कामों को करीब से समझा।
6: कश्मीर आने वाले पर्यटकों का आकर्षण अब कश्मीर में डल झील के साथ साथ वुलर झील भी बनता जा रहा है। दरअसल जिस अंदाज से और जिस तादाद में कश्मीर पर्यटक आते हैं उससे अब डल झील जो है वो पर्यटकों के लिए कम पड़ने लगा है। यही कारण है कि वुलर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वुलर में भी अब पर्यटकों के आकर्षण के लिए कई सारी सुविधाएँ रखी हैं जिसमें शिकारा राइड के साथ साथ कई सारी पार्कों का निर्माण भी किया गया है। वुलर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मानना है कि आने वाले सालों के दौरान डल झील की ही तर्ज पर वुलर झील भी कश्मीर में पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा। गुड न्यूज़ टुडे के लिए बांडीपोरा से सज्जाद सोफी के साथ अशरफ वानी।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भैंस का अनूठा बर्थडे सेलिब्रेशन।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: जन्मदिन के गुब्बारे और हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सब सुनते ही आपके जहन में किसी बच्चे या परिवार के सदस्य की तस्वीर जरूर आ रही होगी। लेकिन जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर जन्मदिन किसी भैंस का हो तो वो भी पूरे गांव की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ, तो नजारा कैसा होगा। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया से आई एक खबर है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पालतू भैंस बसंती का चौथा जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया कि पूरा गांव उस जश्न का गवाह बना।
2: बलिया के बड़गांव में जश्न का माहौल था, रंग बिरंगे गुब्बारों से सजावट की गई थी, टेबल पर एक नहीं बल्कि दो दो केक रखे हुए थे, भैंस के सर पर हैप्पी बर्थडे की कैप लगाई गई थी, फूलमाला पहनाई गई, पूरे गांव के लोगों की मौजूदगी में केक काटा गया, लोगों ने तालियां बजाकर हैप्पी बर्थडे बसंती के नारे भी लगाए और भैंस को बड़े प्यार से केक खिलाया। राजेश वर्मा का ये पशु प्रेम सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना। लोग न सिर्फ इस अनोखे जन्मदिन का वीडियो शेयर कर रहे हैं बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच के इस अटूट प्रेम की जमकर तारीफ भी हो रही है।
3: अमेरिका की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ के नेवाडा के सूखे और वीरान रेगिस्तान में इन दिनों एक ऐसी दुनिया बस गई है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। अमेरिका के ब्लैक रॉक डेजर्ट में शुरू हो चुका है मशहूर बर्निंग मैन फेस्टिवल। दूर दूर तक फैली रेत के बीच यहाँ एक पूरी अस्थायी सिटी तैयार की गई है, ब्लैक रॉक सिटी। करीब 70,000 लोग इस रेगिस्तानी शहर में जुटे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में रेगिस्तान के बीच तेजी से आकार लेती ये अनोखी बस्ती साफ नजर आ रही है। 30 अगस्त से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 7 सितंबर तक चलेगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए लोग यहाँ संगीत, कला और परफॉर्मेंस के जरिए एक अलग ही दुनिया रचते हैं।
1: बर्निंग मैन की सबसे खास बात यह है कि उसका अंदाज जो है वो बड़ा ही निराला है। रेगिस्तान में कहीं विशाल कलाकृतियां तो कहीं अजीबोगरीब वाहन, रंग बिरंगे कपड़ों में घूमते लोग और रात होते ही रोशनी से जगमगाते कैंप, यानी चारों तरफ नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। यहाँ हर चीज कुछ दिनों के लिए बनाई जाती है और फिर खत्म कर दी जाती है। फेस्टिवल के आखिरी दिनों में लकड़ी से बनी विशाल इंसानी आकृति द मैन को आग के हवाले कर दिया जाता है। 7 दिनों तक रेगिस्तान में चलने वाला ये जश्न इस साल और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि बर्निंग मैन फेस्टिवल अपने 40 साल पूरे कर रहा है।
2: रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आप देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां, तापमान -14 डिग्री और इस बेहद मुश्किल इलाके में कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा नजारा जिसने वन्य जीव विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। तस्वीरें चीन के सिचुआन प्रांत की हैं जहां पर एक नेचर रिजर्व में पहली बार एक साथ 4 स्नो लेपर्ड्स कैमरे में नजर आए हैं। दरअसल यहां लगे इंफ्रारेड कैमरे ने इन चारों दुर्लभ हिम तेंदुओं को एक ही फ्रेम में रिकॉर्ड किया। कैमरे में दिख रहा साफ नजर आ रहा है कि चारों स्नो लेपर्ड्स बर्फीली चट्टानों और बेहद कम वनस्पति वाले ऊंचाई वाले इलाके से गुजर रहे हैं।
3: और देखिए, ठंड इतनी ज्यादा थी कि रात के वक्त तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बावजूद चारों स्नो लेपर्ड पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत नजर आए। लेकिन इस तस्वीर की खास बात सिर्फ चार स्नो लेपर्ड का एक साथ दिखना नहीं, एक ही फ्रेम में चार स्नो लेपर्ड का नजर आना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि रिजर्व बनने के बाद यहां पहली बार स्नो लेपर्ड का इतना बड़ा समूह कैमरा में कैप्चर हुआ। एक्सपर्ट्स की माने तो स्नो लेपर्ड आमतौर पर बेहद शर्मीले और अकेले रहने वाले जानवर होते हैं, ऐसे में चार का एक साथ नजर आना बेहद दुर्लभ माना जाता है।
2: और चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश भर में जन्माष्टमी की रौनक है और उसकी तमाम तस्वीरें लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी रहेंगी। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, सजाए जा रहे मंदिर और ठाकुर बाड़े, बच्चे राधा कृष्ण के वेश में कर रहे श्रृंगार, कल देश भर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाए जा रहे इस्कॉन मंदिर, जन्माष्टमी पर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट। हरियाणा की बेटी डॉक्टर आशा ने रचा इतिहास, फतेह की यूरोप अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, शिखर से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है छोटे से बाल गोपाल की। भले ही श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में पले बढ़े, लेकिन अपने इस अवतार में उन्होंने बाल सुलभ लीलाओं का आनंद सारे संसार को दिया। वो भगवान हैं, नारायण के अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए वो वही नन्हे से बाल गोपाल हैं। गोकुल की गलियों में मस्ती करते माखन चुराते, गोकुल की गलियों में माखन चुराते बाल कृष्ण की कहानियां आज भी बेहद श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती हैं। दही हांडी का पर्व माखन चोर कन्हैया की उन्हीं कहानियों से जुड़ा है। देश में इस पर्व को लेकर युवाओं के बीच में जबरदस्त उत्साह रहता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दही हांडी प्रतियोगिताओं की तैयारियां काफी लंबे वक्त से पहले शुरू हो गई थी, तो चलिए आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी से पहले मुंबई में दही हांडी को लेकर कैसा उत्साह बना है।

5000 साल पहले द्वापर युग में गोकुल के घर गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। माखन की मटकी फूट रही है, कान्हा माखन चुरा रहे हैं, बाल सखा के साथ मनमोहन मन भर कर माखन खा रहे हैं। सनातन धर्म की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध बेहद पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कान्हा की भक्ति में लीन संसार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाता और त्योहार की तरह मनाता आ रहा है। द्वापर काल में ब्रज की महिलाओं ने कान्हा की शरारतों से तंग आकर मथे हुए माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया था ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक पहुंचे ना। लेकिन नटखट कान्हा की समझदारी के आगे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाती थी। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी पौराणिक कहानी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ।

0: बरसों से जन्माष्टमी के त्योहार पर देश के कई इलाकों में दही हांडी के आयोजन होते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले इन आयोजनों की ख्याति सारी दुनिया में फैली है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के कई दिनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों की ऊर्जा से भरी ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गोविंदा जोर शोर से मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
1: 5 सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पतंग इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बाकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी। बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग। आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं, लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: अरे बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
3: बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
1: क्या आपको बताया कि दही हंडी सिर्फ मेल यानी कि पुरुषों का ही एक बहुत बड़ा खेल नहीं है, बल्कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, मंच सजा हुआ है जहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनकी भी कोई टीम होगी और सबको उन्होंने चीयर्स करने के लिए यहाँ पर पहुंचे होंगे। आपको बताएं, दही हंडी महाराष्ट्र में यानी कि पिरामिड बनता है, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके 8 थर 9 थर लगा करके ऊंचे जहाँ पर एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही होती है उसे लटकाया जाता है। बाकायदा उसे सर से कोई फोड़ता है तो कोई नारियल से फोड़ता है, और कृष्ण जन्माष्टमी जो है मुंबई महाराष्ट्र अलग रूप में बनाया जाता है। लेकिन वाकई में बहुत ही एक तरह से खतरनाक खेल भी है, लेकिन बहुत साहसी खेल भी है।
0: वैसे तो जन्माष्टमी पर देश के कई इलाकों में दही हांडी उत्सव की रौनक दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का रंग कुछ और ही नजर आता है।

इस उत्सव के दौरान लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, जहां लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी की मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए 9 लेयर का पिरामिड बनाया जाता है। जो लड़का पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे लड़कों को हांडी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके मिलते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पूरे दही हांडी उत्सव के दौरान लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन जोर शोर से होने लगा था, लेकिन राज्य में इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा साल 2022 में दिया गया। महाराष्ट्र में इस उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया और इससे जुड़े कई नियम भी बना दिए। इन तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए आज भी जन्माष्टमी से पहले शहर भर में गोविंदा दही हांडी की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। अब के साल दही हांडी उत्सव में महिला गोविंदाओं का भी धमाल है। मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स के बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही है। जन्माष्टमी से पहले दही हांडी के लिए नारी शक्ति पूरी तरह तैयार दिख रही है।

0: कर करके ऊपर जाके, जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते जा, ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दहेंडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना ज़रूरी है।
1: पर्व के जश्न में सराबोर ये लड़कियां निर्भया महिला गोविंदा पथक की सदस्य हैं, जो इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही।

0: हम लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया, हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है, हम लोग चार थर लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दहीहंडी में।
1: पिछले 2 महीनों से यहाँ मौजूद छोटी बड़ी लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस और आपसी तालमेल पर फोकस कर प्रैक्टिस कर रही है।

0: की जो सेफ्टी है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसे भी है चीज़ें. और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सकें हम एक दूसरे को. उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं.
1: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गली गली दही हांडी के रंग बिखरे हैं. उत्सव की उमंग और रौनक से सारी मुंबई सराबोर है. गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गोविंदाओं की टोलियां निकल पड़ी हैं दही हांडी फोड़ने के लिए. कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाना शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ इस पर्व की आस्था और परंपरा का कलेवर बदला. उत्सव में जोश और रोमांच का रंग और गहरा हुआ, जिनके रंगों में आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश रंगा नजर आता है. मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.

4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है और इससे पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। इसी कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हुए हैं। जन्माष्टमी से पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच गए। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। अब की बार जन्माष्टमी के मौके पर वो कान्हा की नगरी में मौजूद रहेंगे। जन्माष्टमी से पहले सीएम मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुन्हे बाल गोपाल से हो गई। एक कार्यक्रम में सीएम योगी को श्री कृष्ण की पोशाक में सजा ये प्यारा सा बच्चा दिखा तो इसे गोद में लेने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाए। बाल कृष्ण भी सीएम की गोद में खेलकर खुश नजर आया। वैसे आपको बता दें, इस समय पूरे मथुरा में माहौल कृष्णमय हो चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। आज जन्मभूमि मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी से पहले कैसा है माहौल।

अनंत काल चक्र से घूमती आई धरती 5000 साल पहले द्वापर युग के इस एक लम्हे पर आकर थम गई थी, जब ब्रजमंडल के मथुरा में मौजूद एक कारागार में सनातन धर्म के सौभाग्य का चंद्र उदय हुआ था। कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की एक काल कोठरी में प्रकाश बनकर प्रकट हुए थे नारायण। माँ देवकी की कोख से अजन्मे का जन्म हुआ। काली अंधेरी रात में नए जीवन और उल्लास के उजाले से ब्रज की धरा गमक उठी। यूं तो श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में पढ़ा और सुना जा सकता है, लेकिन कृष्णावतार के प्राकट्य और उसके उल्लास को अपनी आँखों से देखना हो, महसूस करना हो, तो आप मथुरा वृंदावन चले जाइए।

0: द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नाचते गाते सैकड़ों कलाकार और हजारों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सज धज कर तैयार है। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा की जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस खास मौके पर सबकी नजर खास तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर रहेगी।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्म भूमि पर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस मौके पर करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ब्रज पहुंचने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बेहद खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास सौगात भेजी गई है। इनमें चांदी की चम्मच, पायजेब, मुरली और कंगन शामिल है। भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भी पहुंचा है। तो वही पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित पुष्प, वस्त्र, मेवा, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, मोर पंख और बांसुरी समेत अन्य मंगल सामग्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अयोध्या से मथुरा भेजी गई है। यानी काशी, उज्जैन, अयोध्या हो या फिर मथुरा, मंदिर हो या घर द्वार, यशोदा नंदन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर पूरी हैं। बस इंतजार है तो कान्हा के आने का। और इसी इंतजार के बीच गुड न्यूज टुडे भी निकल पड़ा है श्री कृष्ण के नगर की ओर, जहां शहर के प्रवेश द्वार से ही कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है। पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं। और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्य हम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है। जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं। रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ, करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं। यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है। और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है। स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, भजन कीर्तन भोग राग की तैयारियां चल रही हैं और उपवास की भी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको उसके नजदीक बैठना होगा, उपवास करना होगा। और उसी उपवास की तैयारियों के साथ एक उत्सव का वातावरण लगातार चल रहा है। ब्रजमंडल में आप दाखिल होंगे, उससे पहले आपको वहां के आनंद की खुशबू, आपको वहां के आनंद के झोंके, झकोरे आपको लिए चलते हैं अंदर, जहां ये जयघोष चल रहा है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बूढ़न को हाथी घोड़ा, जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आइए चलिए हमारे साथ और हम चलते हैं अब मथुरा और ब्रजमंडल के दिव्य यात्रा पर, वो भी जन्माष्टमी के पावन पर्व का उत्सव और आनंद मनाने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। मेरे साथ चलिए कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, मथुरा।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव भले ही कल मध्यरात्रि में मनाया जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी के सिलसिले में धार्मिक उत्सवों का सिलसिला देश भर में पहले से शुरू हो चुका है। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां यहाँ कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फूल मंगवाए गए। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग की गई। शाम होते ही मंदिर खूबसूरत लाइटिंग से जगमगा उठता है। वैसे दिल्ली ही क्या, ये नजारा देश भर में शहर शहर दिखाई देता है। जन्माष्टमी से पहले झांसी, भोपाल, पटना समेत कई शहरों में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं को कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में स्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो कहीं कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल दिन भर जीएनटी पर ऐसे ही तमाम तस्वीरें जन्माष्टमी से जुड़े हुए रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, सजाए जा रहे हैं मंदिर और ठाकुर बाड़े, बच्चे राधा कृष्ण के वेश में कर रहे हैं श्रृंगार, कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, जन्माष्टमी पर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के भी इंतजाम। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्न प्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चों को दुलार किया। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 15

0: यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। हरियाणा की बेटी डॉक्टर आशा ने रचा इतिहास। फतेह की यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी शिखर से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी सुंदर सजावट, विशेष रूप से मोर थीम पर सजाया गया पूरा मंदिर परिसर। सजावट के लिए विदेशों से मंगाए गए रंग बिरंगे फूल। जन्माष्टमी पर सुबह 4 बजे से पूरे दिन मध्यरात्रि 12 बजे तक भक्तों के लिए खुले रहेंगे मंदिर। भीड़ के प्रबंधन के लिए लगाए गए सैकड़ों सीसीटीवी। गया के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजा गया पूरा मंदिर परिसर। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि को होगा भगवान श्री कृष्ण का 108 जल से महाभिषेक। भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाएगा 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग। पाली में सज गए मंदिर और ठाकुरबाड़ी, अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां। राधा कृष्ण के रूप में सजे नजर आए नन्हे बच्चे। कल धूमधाम से मनाया जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सजे करनाल के मंदिर, रंग बिरंगी लाइटें, फूल और भव्य झांकियां। मंदिर में श्री भागवत गीता की कथा समेत कई धार्मिक अनुष्ठान। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह। कल पूरा दिन दर्शन करने के लिए खुले रहेंगे मंदिर। पूरे दिन चलेगी भगवान श्री कृष्ण की आराधना। झांसी में देखे कृष्ण भक्ति के अनोखे रंग। इस्कॉन के यूथ फेस्टिवल का शानदार आयोजन। कृष्ण भक्ति संस्कृति और प्रेरणा का अनूठा संगम देखने को मिला। फेस्टिवल में भक्ति रैप और रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुति। कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने पूरी तरह भक्तिमय बना दिया माहौल। कार्यक्रम में युवाओं की जबरदस्त मौजूदगी। इस्कॉन परिसर में वृंदावन बाजार भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। बाजार में भगवान कृष्ण की तस्वीरों को लेकर जबरदस्त उत्साह। इस मेगा फेस्टिवल में शहर की नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु युवा। हर तरफ जश्न। कल 4 सितंबर को मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दिल्ली का ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर। जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम। सुरक्षा भीड़ संभालने और भक्तों की सुविधा के लिए खास पहल। कल आधी रात श्री कृष्ण जन्म के साथ विशेष पूजा और भजन कीर्तन होगा। जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में भक्तों के बीच खास उत्साह। भक्तों के स्वागत को लेकर जबरदस्त तैयारियां। जन्माष्टमी पर भक्ति पथ पर होगा लोकार्पण। पत्थर पर उकेरी गई है पौराणिक कथाएं। भोपाल के रविंद्र भवन में 7 दिवसीय रासलीला समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने राधा कृष्ण का स्वरूप धारण किए, कलाकारों की आरती उतारकर उनका वंदन किया। राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम। पटना के मिलर ग्राउंड में आज से कृष्णोत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट ने उद्घाटन किया। हर हृदय में कृष्ण हर पल में उत्सव रखी गई कृष्णोत्सव की मुख्य थीम। कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति दी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं भजनों और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का आधारित कार्यक्रमों ने बांधा सभा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर पूरा ब्रज धाम में हुआ रोशन। तमाम मंदिरों के साथ साथ दुल्हन की तरह सज गया शहर। मथुरा में आज भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन। 250 कलाकार हो रहे हैं शामिल। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में मथुरा वृंदावन पहुंच रहे श्रद्धालु। इस बार 50 से 75 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जन्माष्टमी

पर्व के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा के लिए खास स्वागत, लड्डू गोपाल के लिए भेजी गई विशेष उपहार सामग्री। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ मथुरा रवाना हुई विशेष उपहार सामग्री, 2024 में शुरू की गई थी यह खास परंपरा। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जारी, वृंदावन से मंगाए गए फूलों से भव्य सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के भोग अर्पित करने की तैयारी, 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा है इंतजाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे 977 करोड़ की सौगात, 57 परियोजनाओं का लोकार्पण और 167 परियोजनाओं का शिलान्यास। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर, फिर से शुरू हो रही है मॉनसून के दौरान सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर सेवा। द्वितीय चरण की यात्रा के तहत 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन। महाराष्ट्र के अकोला में दिखा बापा की भक्ति का जबरदस्त रंग, जगह जगह मनाया जा रहा है गणपति उत्सव का जश्न। अकोला में निकाली गई भव्य शोभा यात्राएं 20 फीट ऊंचे हैं, सिंधी कैंप के सरकार के बापा बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। 30 फीट के उमरी के राजा का भी भव्य स्वागत हुआ, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। डीजे और बैंड की धुन पर जमकर नाचते गाते झूमते हुए नजर आए भक्त, हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष। अपने लाडले बप्पा की एक झलक पाने के लिए लालाहित नजर आए भक्त, गणपति के आनंद की खुशी में पूरा शहर जश्न। राम मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्र ने अपने चयन पर राष्ट्र समिति के जताया आभार, बोले राष्ट्र सेवा के बाद अब राम भक्तों की सेवा का अवसर। राम मंदिर के नए महासचिव गोविंद देवगिरी महाराज ने पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सीईओ सहित नई नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम होगा नया रूप। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नकद राशि की गिनती अब मशीनों के माध्यम से करने की तैयारी, 2 बैंकों और आईआईटी के विशेषज्ञों से प्रस्ताव लिए गए। रेवाड़ी की 48 साल की डॉक्टर आशा ने रच दिया इतिहास, 6 दिनों में यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियां फतह करके लहराया तिरंगा। माउंट एल्ब्रस के बाद डॉक्टर आशा ने किलिमंजारो पर भी जीत दर्ज की। में एवरेस्ट फतह कर चुकी आशा ने अब 2 महाद्वीपों में देश का मान बढ़ाया, पर्वतारोहण के अलावा एक कुशल एयर पिस्टल शूटर भी हैं डॉक्टर आशा। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्तर मध्य की विशेष तैयारियां, कृष्ण भक्तों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन। बिजनौर में शिकार के पीछे दौड़ा गुलदार, 30 फीट गहरे कुएं में गिरा। काशी में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त सौहार्द की रौनक देखने को मिली, 6 पीढ़ियों से बांसुरी बनाने के कार्य में जुटे मुस्लिम परिवार। बांसुरी बनाने के साथ देश विदेश से काशी आने वाले पर्यटकों को निःशुल्क बांसुरी बजाना सिखाते भी हैं। हिमाचल के मंडी जिले में हाईवे पर बन रहा उत्तरी भारत की पहली ओवरहेड एलिवेटेड रूट। इस रोटरी के माध्यम से आपस में मिलेंगे चंडीगढ़ मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 48 स्कूली शिक्षकों, 21 उच्च शिक्षा शिक्षकों और MOSDE के 13 शिक्षकों को मिलेगा अवार्ड। गोलाघाट के डेरगांव स्थित लाचित पर फुकन पुलिस अकेडमी में पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। 32 पुलिस उपाधीक्षकों और 371 कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ली परेड की सलामी, मुख्यमंत्री के अलावा कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को भी सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय स्तर की है बरफुकन पुलिस अकादमी, जहां पर असम के अलावा गोवा और मणिपुर जैसे अन्य राज्यों के पुलिस बल भी शामिल। 4 सितंबर को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च करेगा इसरो। आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा होगी बेहतर। USLV-F-17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक से बने लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल परीक्षण किया। लगभग 140 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से लक्ष्य को पूरी तरीके से सटीकता से ये बम बना सकता है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया परीक्षण। पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की नई पारी, अब प्राइवेट एयरलाइन FLY-91 से जुड़े अभिनंदन। फरुखाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करके हालत का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 96 बाढ़ पीड़ितों को 1.20 लाख का चेक अर्पित किया। गंगा की उफंती लहरों से पैदा हुए बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेयर और डीएम से बातचीत की। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप, सभी घाट जलमग्न। पटना के गौरीचक इलाके में उफान पर दो नदियां, बाढ़ जैसे हालात हैं।

0: चीन में रोबोट डॉग का फेयुयिन का दम देखकर लोग रह गए हैरान, इंसानों पर भारी पड़ा रोबोट, भारी सामान भी उठा सकता है रोबोट डॉग, 2.55 टन की कार तक खींच सकता है। चीन के पावर ग्रिड में अब रोबोट डॉग कर रहा है निगरानी, ये बिजली केंद्रों में जाकर खतरे और खराबी का पता लगाता है, मुश्किल जगहों पर भी आसानी से पहुंच सकता है रोबोट डॉग, रोबोट के साथ ड्रोन मिलकर बिजली लाइनों की करते हैं निगरानी। चीन में बना ये रोबोट बिजली के खतरनाक कामों में मदद करेगा, कंपनी के मुताबिक इससे इंसानों की जान जोखिम में डालने वाले काम घटेंगे। यूरोप ने दिखाए 15 हाईटेक एआई रोबोट, ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने हुआ प्रदर्शन, ये रोबोट घर के काम से लेकर फैक्ट्री तक इंसानों की कर सकते हैं मदद, यूरोप के रोबोट शानदार लेकिन रिसर्च करने के लिए पैसे भी कमी सबसे बड़ी चिंता। ETH ज्यूरिख का ट्रांसफॉर्मर रोबोट बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, घरेलू कामकाज में माहिर एआई रोबोट, 4 एआई रोबोट मिलकर किचन साफ कर दिया, रोबोट पहले फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ काम करेगा और फिर सर्विस सेक्टर और आखिर में घरों तक पहुंचेगा। ब्राजील के इगुआजू फॉल्स में उफान, भारी बारिश से पानी सामान्य से 5 गुना बढ़ा, इगुआजू फॉल्स का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, हालांकि अभी खुले हैं टूरिस्ट ट्रेल्स, भारी बारिश के साथ एल नियो को भी वजह माना जा रहा है, फॉल्स में पानी बेहद तेज रफ्तार से, ये झरना अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर स्थित है। इगुआजू फॉल्स दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक, भारी बारिश के बाद यहां पर पानी स्तर और बहाव दोनों काफी बढ़ गए। म्यूनस आयर्स के निकोलस शेल और नायर शिंक बने स्टेज टैंकों के वर्ल्ड चैंपियन, टैंगो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 47 देशों के डांसर भी पहुंचे। ब्यूनस आयर्स के ग्रान रैक्स थिएटर में हुआ शानदार फिनाले, चैंपियंस जोड़ी ने अपनी जीत का राज कनेक्शन और जज्बे को बताया। टैंगो सिर्फ डांस नहीं होता बल्कि अर्जेंटीना की खास पहचान मानी जाती है। चीन में पारंपरिक तिब्बती कालीन को नई तकनीक से बनाया जा रहा है, अब कालीन पर तस्वीरें भी उकेरी जा सकती हैं। 3D डिजिटल तकनीक से कालीन पर दिख रही हैं शानदार बारीकियां, इसके बाद कारीगर इसे हाथ से पूरा करते हैं। तिब्बती कालीन बुनाई चीन की सांस्कृतिक विरासत है, अब इसे तकनीक के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लानचांग मेकांग देशों के मेहमानों और कालीन बनाने के लिए प्रक्रिया देखी, उन्होंने कारीगरी और तकनीक की तारीफ की। नई तकनीक के खास तस्वीरों वाले कालीन बन रहे हैं और इससे पुरानी कला को नई पहचान मिल रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: अब खबर अयोध्या से, जहां पर श्रीराम मंदिर में नए सीईओ की नियुक्ति हो चुकी है। नए सीईओ जितेंद्र मिश्र आज जिम्मेदारी संभालने अयोध्या पहुंचे। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र भवन में ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की और आने वाले दिनों में किए जाने वाले कामों की जानकारी भी ली। जितेंद्र मिश्र के सामने जो है राम मंदिर परिसर से जुड़े प्रशासनिक और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। आपको बताते हैं कि जितेंद्र मिश्र हैं कौन और उनका बैकग्राउंड क्या है और उनके आने के बाद श्री राम मंदिर में क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

0: अयोध्या के नए श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और ऐतिहासिक पल आया है। देश के प्रमुख मंदिरों की ही तरह अब श्री राम मंदिर में भी CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। पहले रणक्षेत्र में देश की सेवा कर चुके भारतीय वायु सेना के पूर्व आला अधिकारी जितेंद्र मिश्र अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले CEO के रूप में धर्म क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं।
1: ये चयन समिति का धन्यवाद है, ट्रस्ट का धन्यवाद है और प्रभु श्री राम की कृपा है, उसके विषय में कुछ इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता।
0: जितेंद्र मिश्र उत्तर प्रदेश के ही देवरिया के रहने वाले हैं। वो भारतीय वायु सेना के रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाली थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया था। जितेंद्र मिश्र ने करीब 40 साल भारतीय वायु सेना में बिताए और अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। माना जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रणनीतियां बनाने में उनका खासा योगदान था। पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, तो उस समय पश्चिमी एयर कमान का नेतृत्व कर रहे जितेंद्र मिश्र ने ही उनका स्वागत किया था। जितेंद्र मिश्र को 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल, 2024 में अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2013 में विशिष्ट सेवा मेडल और शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अनुशासन, सख्त फैसले लेने की क्षमता और देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा को देखते हुए 5500 उम्मीदवारों में से जितेंद्र मिश्र को अब अयोध्या में राम मंदिर का प्रबंधन संभालने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1: My heart is full of gratitude and I consider myself the most fortunate person today to have been given this responsibility twice in my life. एक बार राष्ट्र सेवा के लिए और अभी श्री राम के मंदिर की और श्री राम भक्तों के लिए मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के।
0: जितेंद्र मिश्र के नेतृत्व में मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद पहली बार राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र मिश्र के कार्यभार संभालने के बाद मंदिर में कामकाज का पुराना सिस्टम बदल जाएगा। CEO के रूप में जितेंद्र मिश्र के कंधे पर कई अहम जिम्मेदारियां होंगी। सूत्रों के मुताबिक CEO मंदिर में दर्शन और वहां होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था देखेंगे। वो श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं, वित्तीय मामले और लेने देने, खरीद और टेंट की व्यवस्था देखेंगे। वो दान और चढ़ावे की व्यवस्था देखेंगे। पूजा पद्धति, धार्मिक परंपरा, अनुष्ठान और आध्यात्मिक विषय टेंट की धार्मिक समिति देखेगी। वहीं कर्मचारियों की तैनाती, सुविधाओं का संचालन, रोजमर्रा की प्रशासनिक व्यवस्था CEO के अधीन रहेगी। CEO सुरक्षा संबंधी तालमेल, IT और डिजिटल निगरानी के मामले देखेंगे। वो मंदिर से जुड़ी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी नजर रखेंगे। माना जा रहा है कि CEO की नियुक्ति से श्री राम मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल बदल जाएगा। अब तक ट्रस्ट पदाधिकारी, समितियां और अलग अलग अधिकारी मिलकर मंदिर की व्यवस्थाएं संभालते रहे हैं। CEO के आने के बाद नीतिगत मामलों और कामकाज के संचालन की व्यवस्था अलग अलग होगी। अब सभी कार्यों के लिए नए सिरे से जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए अब मंदिर में एक केंद्रीयकृत कार्यकारी व्यवस्था बनाई जाने की संभावना है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: नेपाल में सैलाब आया, सब कुछ बहा कर ले गया, तेज बहाव से बर्बादी का सबसे शॉकिंग वीडियो। डिलीवरी बॉय ने महिला को क्यों पीटा, छोटे डॉन की क्यूट मस्ती, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
7: क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: देश भर में अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, सजाए जा रहे हैं मंदिर और ठाकुर बाड़े, बच्चे राधा कृष्ण के वेश में कर रहे हैं श्रृंगार, कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, जन्माष्टमी पर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की भी इंतजाम। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्न प्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। हरियाणा की बेटी डॉक्टर आशा ने रचा इतिहास, फतेह की यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी शिखर से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। आज हम ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन में हैं। तो आज की 7 गुड न्यूज के बारे में यहां से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। मथुरा से लेकर गुजरात और दिल्ली से लेकर अयोध्या तक कृष्ण मंदिर कान्हा के रंग में रंगा हुआ, बेहद ही सुंदर तरीके से मथुरा नगरी धाम को सजाया गया है। ऐसे में हमारी आज की पहली गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो है कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिर सज धज कर तैयार। जी हाँ, आपको हम बता दें कि मथुरा से लेकर देश के अलग अलग शहरों तक जन्माष्टमी की रौनक है। ब्रज धाम दुल्हन की तरह सज चुका है। मंदिरों से लेकर गलियों तक बस कान्हा के आगमन का इंतजार है। काशी से कान्हा के लिए खास उपहार भेजे गए तो झांसी में भव्य झांकियों के जरिए युवाओं को कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जा रहा है। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कृष्ण लीला का मंचन हुआ। कृष्ण जन्म से लेकर उनकी लीलाओं तक हर दृश्य ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। पटना भी कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कलाकारों ने मंच पर कृष्ण की लीलाओं को जीवंत किया। भक्तिमय प्रस्तुतियों ने माहौल को अलग ऊर्जा से भर दिया। यानी शहर अलग लेकिन उत्साह एक, उमंग एक। सभी को इंतजार है सिर्फ नंदलाल के आने का। मैं अभी ईस्ट ऑफ कैलाश में हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया इस्कॉन मंदिर में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ भी आपको बता दें कि पूरी तैयारी, भव्य तैयारी हो चुकी है। पूरी रात मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा और कल सुबह से प्रार्थनाओं का दौर यहाँ पर शुरू होगा। 1008 तरह के भोग भगवान को लगाए जाएंगे। जन्माष्टमी के सिलसिले में धार्मिक उत्सवों का सिलसिला देश भर में पहले से ही शुरू हो चुका है। झांसी, भोपाल और पटना समेत तमाम शहरों में रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज की जो हमारी दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। अंतिम चरण में पहुंची कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में इस्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। साथ ही साथ भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है।
1: तो इस्कॉन वालों ने इतना अच्छा यहाँ पर वृंदावन जैसा माहौल दिया है, मुझे आके यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने कान्हा जी की एक तस्वीर ली है, कान्हा जी का पगड़ी लिया है और ये माला भी लिया है उनका। ये देखिए कितना सुंदर सा पीले कलर का मैंने उनका पोशाक लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस्कॉन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ झांसी में ही पूरा पूरा वृंदावन का माहौल दे दिया है। हरे कृष्णा।
0: वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है।
2: बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया।
3: भगवान ने जहां एक बार अपने हाथ से कोई भी चीज को छोड़ा, दोबारा उससे कभी मोह नहीं रखा। भगवान ने अपने कदम बढ़ाए जब गोकुल वृंदावन से, तो दोबारा हम कभी किसी साहित्य में उनको माखन खाते नहीं देखते। भगवान के हाथ से बांसुरी जो गोकुल वृंदावन में राधा को हाथ में सुपुर्द की, दोबारा उनके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देखी गई। ऐसे कई सारी बातें हैं जीवन के अंदर, हम सब भी ऐसी कई चीजों से प्रेरणा पा सकते हैं।
0: वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कालिया मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जैसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी नजदीक आती है, वैसे ही मुंबई के गलियों में और मैदानों में हलचल बढ़ जाती है। खासकर दही हांडी उत्सव के लिए होने वाली तैयारियां उत्साह और उमंग पैदा करती है। इस बार दही हांडी 5 सितंबर के दिन होने वाली है, जिसे लेकर गोविंदाओं की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है, दही हांडी के लिए गोविंदाओं का अभ्यास। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई के गोविंदा पथकों की टीम ने अपनी कमर कस ली है। तमाम टीमें जी जान से प्रैक्टिस में जुटी है। खास बात यह है कि ये सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि पेशेवर रूप से भी मजबूत है।
5: मुंबई की गलियों में इन दोनों दही हांडी का जोश सिर चढ़कर बोल रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले इस रोमांचक उत्सव के लिए गोविंदा दिन रात जमकर पसीना बहा रहे हैं। खास बात यह है कि इन गोविंदाओं के लिए दही हांडी सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जुनून और समर्पण है। ये तस्वीरें हैं न्यू परशुराम गोविंदा पथक टीम की, जो रोमांचक दही हांडी प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। पहले पूजा पाठ किया जा रहा है, उसके बाद सभी टीम के लोग भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रतियोगिता की तैयारी में जुटते हैं।
6: दही हंडी महाराष्ट्र में, यानी कि पिरामिड बनता है एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके, आठ थर नौ थर लगा करके ऊंचे जहां पर एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही होती है उसे लटकाया जाता है, बकायदा उसे सर से कोई फोड़ता है तो कोई नारियल से फोड़ता है। और कृष्ण जन्माष्टमी जो है मुंबई महाराष्ट्र अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन वाकई में बहुत ही एक तरह से खतरनाक खेल भी है लेकिन बहुत साहसी खेल भी है। थोड़ा सा मैं मतलब मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, तो कौन से थर पे खड़े रहते हो आप?
7: सीढ़ी है, सीढ़ी।
6: डर नहीं लगता आपको? प्रैक्टिस कितनी हुई है?
7: नहीं कुछ नहीं, डर नहीं लगता।
6: डर नहीं लगता, हर साल करते हो? अच्छा। आपको लगता है कि आपकी टीम से ज्यादा कोई दूसरी वाली टीम स्ट्रांग है?
7: ऐसा कुछ नहीं है,
6: ऐसा कुछ नहीं।
5: महाराष्ट्र में दही हांडी का एक अलग ही उत्साह होता है, ढोल नगाड़ों की गूंज, गोविंदाओं का जोश और आसमान छूती मानो पिरामिड। इस तरफ बस एक ही आवाज सुनाई देती है, गोविंदा आलारे। और खास बात है कि इस भव्य आयोजन के लिए गोविंद कई महीनों से तैयारी में लगे होते हैं।
6: ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग, आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं। लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
8: बली की जय।
6: अरे बोल बजरंग
8: बली की जय।
6: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
9: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
6: कैसे मिल सकता है टाइम आपको? आप काम पे भी जाते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा
9: सा? सब लोग देखो, सब अभी क्या है, सब हम लोग का एरिया रीडेवलपमेंट की वजह से टूट गया है बराबर, तो सब पनवेल नवी मुंबई उधर से प्रैक्टिस के लिए जमा होते, उसके बाद 12:30 रात को घर पहुँचते, फिर सुबह 6:00 काम के लिए निकलते, सब यही रूटीन चालू है, 2 महीना हो गया।
5: दिन भर अपनी ड्यूटी करने के बाद रात में सभी सदस्य एक जगह जुटते हैं और फिर शुरू होता है रोमांचक गेम, जिसमें कई गोविंदा कई वर्षों से जुड़े हैं तो कोई बचपन से इस प्रतियोगिता का हिस्सा है।
10: जैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस निकाले जाते हैं और अलग अलग पार्टी की तरफ से भी इंश्योरेंस निकाले जाते हैं, और मंडल का पहले ही ये रहता है कि जो अपने साथ गोविंदा में आते हैं लड़के लोग वो अगले साल सेफ रहे, सब कुछ रहे, उनकी पहला सुरक्षा का फर्स्ट प्रेफरेंस वही जाता है।
6: क्या बात है, बड़ी शांति। बोल बजरंग
8: बली की जय।
6: अरे बोल बजरंग
8: बली की जय।
6: बड़ी शानदार मूछें और दाढ़ी है आपकी। तो ये बताइए क्या काम करते हैं आप?
11: मैं नेटवर्क कंपनी में हूँ।
6: अच्छा ये बताइए कि कैसे दही हंडी आपके दिल में बसा हुआ है, कितना टाइम निकालते हैं और डर नहीं लगता?
11: नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं डर लगता हम लोग का, क्योंकि बचपन से हम लोग ये करते आ रहे हैं और बचपन से हम लोग ये देखते आ रहे हैं।
5: दही हांडी के पीछे सिर्फ उत्सव का उत्साह नहीं बल्कि महीनों की तैयारी, अनुशासन और टीम भावना भी छिपे है। जब गोविंदा पथक 7, 8 या 9 मंजिल ऊंची मानव पिरामिड बनाता है तो सबसे ऊपर पहुंचने वाला गोविंदा सिर्फ मटकी नहीं तोड़ता, वो डर की दीवार तोड़ता है और साहस, भरोसे और एकता की ताकत दिखाता है। इसी रोमांच और जोखिम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा दिया है। दरअसल दही हांडी का ये खेल जोखिम भरा होता है, बावजूद इसके इसमें लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लेते हैं, वो भी तय नियमों का पालन करते हुए। दही हांडी का ये खेल श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं पर आधारित एक उत्सव है, जिसे खास तौर पर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जहां दही हांडी के आयोजन में बड़े बड़े इनाम रखे जाते हैं। कई जगह राजनीतिक पार्टियां और सेलिब्रिटीज इसमें शामिल होते हैं। कई गोविंदाओं की टोलियां तो इस खेल की कई महीनों से तैयारी करती हैं, ताकि जन्माष्टमी के मौके पर उस खेल के विजेता बन सके। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी गणेशोत्सव में रौनक बिखरी हुई है। यहाँ के कई गणेश मंडल अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेशोत्सव मनाते हैं। उसी में से एक है सूरत का गणेश मंडल, जिसने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बाप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमा तैयार की है। ऐसे में आज की हमारी जो अगली यानी चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। पंडालों में पधारने लगे गणपति बप्पा। जी हाँ, आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सूरत में टिश्यू पेपर से गणेश प्रतिमा तैयार की गई है। इस प्रतिमा को बनाने में 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके है, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है। भले
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद लिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह लें। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा ले। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है, जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: केदार घाटी की शक्ति और करोड़ों भक्तों की आराध्य कालीमठ की मां काली इन दिनों देवरा यात्रा पर है। मां की दिव्य डोली केदार घाटी के गांव-गांव पहुंच रही है और घर घर जाकर भक्तों को अपना आशीष दे रही है। ऐसे में हमारे आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है भक्तों को दर्शन देने देवरा यात्रा पर मां काली। जी हाँ, जहां जहां मां की डोली पहुंच रही है वहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर रहे हैं और पूरा वातावरण मां काली के जयकारों से गूंज रहा है।

0: रुद्रप्रयाग के हर गांव में काली माँ का भव्य स्वागत हो रहा है। भक्त अपने घरों के द्वार पर माँ की डोली का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं देवरा यात्रा की, जो केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, संस्कृति और लोक विश्वास का जीवंत स्वरूप है। 15 वर्षों के लंबे समय के बाद एक बार फिर माँ काली देवरा यात्रा पर निकली है। माँ की डोली के गांव-गांव पहुँचने से केदार घाटी में उत्सव जैसा माहौल है।
1: ये बड़ा सुखद अवसर है कि आज माँ भगवती काली मठ की काली माई का जो द्वितीय चरण का देवरा श्री केदारनाथ धाम के लिए है, वो अपने जो हमारे आचार्य हैं, आचार्य के गांव देवशाल में है और आज हम माँ विंध्यवासिनी के इस प्रांगण में हैं। और ये जो दिव्य देवरा यात्रा है, ये लगभग 15 वर्षों के बाद चली हुई है और द्वितीय चरण में केदारनाथ के लिए हम लोग जा रहे हैं। लगभग 15 तारीख के आसपास या 15 से 20 के बीच हम केदारनाथ में पहुंचेंगे और बहुत सभी भक्तों से, माँ काली के सभी भक्तों से हमारा ये आग्रह है कि आप जरूर केदारनाथ में भी पहुंचे और केदारनाथ में भी माँ भगवती और शक्ति के रूप में माँ भगवती और शिव दोनों के को आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि वहां पर जो दिव्य ये मिलन है ये अलौकिक होगा।
0: माँ काली की ये दिव्य यात्रा आगे बढ़ते हुए 15 सितंबर को केदार धाम पहुंचेगी, जहां माँ काली बाबा केदार के दर्शन करेंगी। माँ और बाबा के इस दिव्य मिलन का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। माँ काली की देवरा यात्रा का रिश्ता सिर्फ इस यात्रा से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही एक पवित्र परंपरा से है। इससे पहले यात्रा के प्रथम चरण में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर माँ काली गंगा स्नान के लिए देवप्रयाग पहुंची थी और अब एक बार फिर माँ की डोली गांव की पगडंडियों और पहाड़ी रास्तों से होकर आगे बढ़ रही है। हर पड़ाव पर भक्तों की आंखों में श्रद्धा है, हृदय में विश्वास है और जुबान पर सिर्फ एक ही जयकारा, जय माँ काली, जय माँ काली। पंद्रह सितंबर को माँ काली की ये दिव्य देवरा यात्रा आखिरकार केदार घाटी पे पहुँचेगी और यहीं इस यात्रा का समापन होगा। माँ के बाबा केदार की नगरी पहुँचने को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। मौसम में थोड़े सुधार के बाद एक बार फिर केदार घाटी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदार के धाम पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट रहे हैं। और अब उन श्रद्धालुओं के लिए भी राहत भरी खबर है जो हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम पहुँच कर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। फिलहाल केदार घाटी में हेली सेवा रुकी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 15 सितंबर से एक बार फिर हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद है।
2: केदारनाथ धाम को जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हेली सेवाएं बंद हैं और जो संभावित तिथि है वो 15 सितंबर, जिससे हेली सेवाएं प्रारंभ होंगी और सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही संभवतः 7 तारीख को इसकी बुकिंग भी प्रारंभ हो जाएगी। और जो हेली ऑपरेशंस हैं वो मानसून और रेनफॉल की कंडीशंस के आधार पर ही डिसाइड होते हैं, उसी के आधार पर उनकी फ्लाइंग होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हेली सेवाएं हैं उसमें तीर्थयात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे दर्शन करने को मिलेंगे।
0: हेली सेवा शुरू होने के बाद बुजुर्गों, बच्चों और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के दर्शन की राह और आसान हो जाएगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में चयनित रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। अयोध्या पहुंचने के बाद जितेंद्र मिश्रा ने अपने चयन के लिए चयन समिति और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि देश की सेवा के बाद अब राम भक्तों की सेवा का उन्हें अवसर मिला है। जितेंद्र मिश्रा के मुताबिक ये उनके जीवन की बड़ी अनुभूति है कि एक बार राष्ट्र की सेवा करने के बाद उन्हें अब प्रभु श्री राम, राम भक्तों और राम मंदिर ट्रस्ट की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। सीईओ की जिम्मेदारी संभालने के बाद जितेंद्र मिश्रा की ये अयोध्या में महत्वपूर्ण पहली गतिविधियों में से एक है। इस दौरान उन्होंने तीर्थ क्षेत्र भवन में ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की और आगामी कार्यों को लेकर जानकारी ली। जितेंद्र मिश्रा के सामने राम मंदिर परिसर से जुड़े प्रशासनिक और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रेलवे स्टेशन जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, लेकिन इन्हीं स्टेशनों की भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए मध्य प्रदेश की जीआरपी ने कानून के साथ साथ इंसानियत का हाथ भी बढ़ाया है। जीआरपी ने एक महीने के विशेष अभियान ऑपरेशन हमदर्द में कई लोगों को अपनों तक पहुंचाया है। ऐसे में हमारी आज की सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है, ऑपरेशन हमदर्द से जरूरतमंद बेसहारा लोगों को मदद। जी हाँ, आपको बता दें कि इस अभियान ने कई बिछड़े बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाकर उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटाने में सफलता प्राप्त की है।

0: रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी की ड्यूटी आमतौर पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जोड़कर देखी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश जीआरपी ने इस जिम्मेदारी का एक मानवीय चेहरा भी पेश किया है। जीआरपी ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रेलवे स्टेशनों पर एक विशेष अभियान चलाया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन हमदर्द। इस ऑपरेशन में भोपाल, इंदौर और जबलपुर की रेल यूनिट्स ने स्टेशन परिसर में भटक रहे बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की पहचान की। कुल 2057 लोग इस अभियान के दायरे में आए। इनमें 1556 पुरुष, 404 महिलाएं, 39 बच्चियां, 56 लड़के और 2 ट्रांसजेंडर शामिल थे। कोई घर से बिछड़ा था, कोई मजबूरी में स्टेशन पर रहने को मजबूर था, तो कोई अपनों से दूर जिंदगी काट रहा था। ऑपरेशन हमदर्द के तहत पिछड़े लोगों को उनके परिवार तक पहुंचाया गया।
1: जिसको आमतौर पर लोग ये जानते हैं कि चलती ट्रेनों में अगर अपराध घटित होते हैं, चाहे किसी का बैग चोरी हो जाए, छेड़छाड़ हो जाए, कोई घटना हो जाए, उसके लिए जीआरपी है। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर के जीआरपी का एक मानवीय पहलू भी है। जीआरपी पिछड़े हुए लोगों को आपस में मिलाती है। जीआरपी जो वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी केयर करती है।
0: जीआरपी की कोशिशों से 159 लोगों को सकुशल उनके परिवार वालों तक पहुंचाया गया, खासकर वो बच्चे जो किसी वजह से अपनों से बिछड़ गए थे या जिनके अपहरण की शिकायतें थी, उन्हें जीआरपी ने सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके परिवारों तक पहुंचाया। परिवारों के लिए ये सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं थी, बल्कि महीनों या वर्षों से खोए अपने लोगों के वापस लौटने की खुशी थी। स्टेशन पर शुरू हुई तलाश घर की चौखट पर जाकर पूरी हुई। परिवार के लोग भी बच्चों को पाकर बेहद खुश हुए और जीआरपी स्टाफ को जी भर कर दुआएं दी।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: नेपाल में सैलाब आया, सब कुछ बहा कर ले गया। तेज बहाव से बर्बादी का सबसे शॉकिंग वीडियो। डिलीवरी बॉय ने महिला को क्यों पीटा? छोटे डॉन की क्यूट मस्ती। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देश भर में अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, सजाए जा रहे मंदिर और ठाकुरबाड़े, बच्चे राधा कृष्ण के वेश में कर रहे हैं श्रृंगार। कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाएगा इस्कॉन मंदिर। जन्माष्टमी पर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजाम। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में शामिल हुए, कान्हा बने बच्चे को दुलार किया। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 15 सितंबर से फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर

0: होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसे हाल ही में नेपाल में आए बाढ़ से जोड़कर बताया जा रहा है। इस सैलाब में लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह गए, लेकिन वीडियो का सच क्या है आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़।
0: वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक स्थान पर अचानक से बाढ़ आती है, वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह जाता है। इस वीडियो को नेपाल बाढ़ से जोड़ते हुए इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब वायरल वीडियो की का फैक्ट चेक किया गया क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। इसी से जोड़कर बाढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आती है और वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को नेपाल की त्रासदी का बताते हुए वायरल किया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि नेपाल से एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। लोग रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अचानक आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। प्रकृति के इस कहर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस आपदा में फंसे सभी लोगों की सुरक्षित तलाश हो और प्रभावित परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आ जाती है और फिर वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा है वो हैरान रह गया। सोशल मीडिया यूजर्स जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। वायरल वीडियो सही है या फिर इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है, जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखाई देता है कई बार वो सच नहीं होता है। इसके लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इस दौरान हमने वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी खंगाला, जहां पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI वीडियो बताया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ये भी लगा कि कुछ इसमें खामियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। जब बाढ़ का पानी घरों और गाड़ियों के ऊपर से गुजरता है तो फिर कुछ भी सामान्य नजर नहीं आता है। बाढ़ के पानी के गुजर जाने के कुछ सेकंड्स तक तो सब कुछ सामान्य दिखता है और फिर कुछ सेकंड बाद घर और पेड़ अजीब तरीके से गिरने लगते हैं। वीडियो में कुछ पेड़ और ढांचे तो अचानक से उभर आते हैं, कई लोग अपने आप गायब हो जाते हैं, कुछ चीजें अपने आप में बन जा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ इमारतों की बनावट भी अपने आप बदल जाती है और वीडियो में दिख रही कई बाइक्स का साइज भी सामान्य से बड़ा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं वीडियो के असली होने पर संदेह पैदा करता है। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही था कि पानी के इस तेज बहाव में कुछ घर बह गए पर कुछ पेड़ और घर एकदम बाढ़ से पहले जैसी स्थिति में ही कैसे रह गए। दूसरा सवाल ये कि जिस ओर से पानी, बाढ़ का पानी आ रहा है, लोग उस ओर कैसे भाग सकते हैं। और तीसरा एक और सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में जानिए सच्चाई क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियो की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में ये सभी फेक साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को सर्च किया। हाइव के एनालिसिस में वायरल वीडियो के AI से बने होने के करीब 70% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार वीडियो को सिडांस 2 की

0: मदद से बनाया गया है। हमने दूसरे टूल ह्यूमन मीटर की मदद से वीडियो को सर्च किया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के एआई से बने होने के करीब 72% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार इमारतें अपने आप अपनी बनावट को बदल रही हैं और कई कारे पानी में बदल जा रही हैं। ये सभी वीडियो के एआई से बने होने के संकेत हैं। इसके बाद हमने वीडियो के की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च करने के लिए साइट इंजन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने की फ्रेम के एआई से बने होने की करीब 98% संभावना जताई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो फर्जी साबित हुआ। इस वीडियो को एआई की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
0: डिलीवरी बॉय द्वारा महिला की पिटाई का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कुछ सामान देने के लिए एक महिला के पास पहुंचता है। इसी बीच महिला और व्यक्ति के बीच बहस होने लगती है। इस दौरान पहले दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। इसी बीच कथित डिलीवरी बॉय महिला को बुरी तरह से नीचे गिराकर मारना शुरू कर देता है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक डिलीवरी बॉय पार्सल लाता है, कस्टमर पार्सल लेने बाहर आती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय पार्सल महिला को देता है तो वो उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे महिला कस्टमर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट शुरू कर देती है। गुस्से में डिलीवरी बॉय भी महिला को मारना शुरू करता है। गलती महिला की थी, लेकिन डिलीवरी बॉय को भी इतना नहीं करना चाहिए था। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक फ्लैट में एक डिलीवरी बॉय सामान देने को पहुंचा, वो फोन करता है, तभी एक महिला दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तभी सामान लेने के दौरान डिलीवरी बॉय के हाथ से सामान गिर जाता है, जिसके बाद महिला और डिलीवरी बॉय के बीच पहले कहासुनी होती है। उसके बाद महिला डिलीवरी बॉय को धक्का दे देती है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय पलट वार करते हुए एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने सामान देने के दौरान एक महिला के साथ हाथापाई की। दावा यही है या गलत है, ये जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए पूरे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे वायरल दावे पर हमें शक हुआ। जिस तरह वीडियो के जरिए कहानी को पेश किया जा रहा है, उस पर हमें संदेह हुआ। महिला और डिलीवरी बॉय के बीच में हाथापाई हो रही है, तो जाहिर है कि शोर भी मचेगा और इस शोर को सुनकर आसपास रहने वाले लोग भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तयशुदा कहानी के तहत इसको शूट किया गया है। ना वहां पर लोग पहुंचते हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, यह हमें काफी अटपटा लगा। लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही था कि सोसाइटी के एक फ्लैट के बाहर डिलीवरी बॉय और महिला के बीच मारपीट होने के बावजूद लोग क्यों इकट्ठा नहीं हुए। दूसरा सवाल कि वीडियो किसी सोसाइटी का लग रहा है, जाहिर है कि वहां पर सुरक्षा गार्ड भी होंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि महिला पिटती रही और वहां सुरक्षा गार्ड पहुंचा ही नहीं। जिस एंगल से ये पूरा वीडियो शूट हुआ है, उसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब ये कि सामने कैमरा लगाया गया। इसके लिए तीसरा सवाल यही कि महिला और लड़के ने जानबूझकर वीडियो बनाने के लिए ये ड्रामा तो नहीं किया है। सच्चाई इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त को एक फेसबुक यूजर के अकाउंट से पोस्ट किया गया ये वीडियो मिला। 2:33 के इस वीडियो में वायरल क्लिप मौजूद है। वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। पड़ताल के दौरान हमें यही वीडियो इसी यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिला, जहां इसे स्क्रिप्टेड बताया गया है। इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट को खंगालने पर हमें वहां ऐसे कई और वीडियो भी मिले, जिनमें पुरुष और महिला आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इन सभी वीडियो के कैप्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो के जरिए झूठा दावा किया जा रहा है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे। वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
6: और फैक्ट चेक में अब वक्त हो चला है वायरल वीडियोस को देखने का, आपको लिए चलते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
7: खुद तो पढ़ना नहीं है तो भला बड़ी बहन को क्यों पढ़ने दूं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये भाई बहन का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी बहन पढ़ रही है, अभी वह छोटा भाई पहुंच जाता है और बहन को परेशान करने लगता है, तरह तरह के हरकतें करके बहन को पढ़ने से रोकने लगता है। चंद सेकंड का ये वीडियो भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बखूबी बयां कर रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार उतार रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बच्चा अपनी मैम के लिए गाना गाता नजर आ रहा है। बच्चे की प्यारी आवाज और मासूम अंदाज देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।
8: जोर से सुनाओ।
7: गाना गाते हुए बच्चे के चेहरे पर खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है। उसकी मासूमियत ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू लिया है। यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्चे की खूब तारीफ कर रहे हैं।
8: अरे गाओ ना यार।
9: ये पकड़ लिया।
10: पी छोटो पापा पी छोटो
7: बेटियां पापा की क्यों लाज दुलारी होती हैं, वो इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पापा और बेटियों के बीच पकड़ने और छोड़ने का ये प्यारा पल लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
9: ये पकड़ो मिया।
10: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
7: यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
9: ये ओके मा।
10: पापा पी छोटो। मैं मामा मारूंगा। नहीं मामा मारूंगा।
11: A night ago, I messaged my father that I'm remembering you. And the next morning, I opened my door. And there he was with a backpack.
7: कहा जाता है कि बेटियां पापा की परी होती हैं और इस बात को एक पिता ने सच साबित कर दिया है। सिर्फ एक छोटे से मैसेज पर बिना किसी बड़ी इमरजेंसी के पिता ने मीलों का सफर तय कर अपनी बिटिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी।
11: My favorites and before leaving he just said whatever you do just be happy।
7: एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस दिल को छू लेने वाले पल को शेयर किया है। वीडियो में उस चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है जिसमें बेटी ने एक रात पहले अपने पिता को मैसेज किया था, आई मिस यू पापा।
11: एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ओपेंड माय डोर एंड देयर ही वाज विद अ बैग।
7: बेटी का ये मैसेज देखते ही पिता का दिल बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह वह सचमुच बेटी के दरवाजे पर खड़े थे। पापा और बेटी के इस खूबसूरत मिलन के पीछे का समर्पण हर किसी को भावुक कर रहा है।
11: Took me out, fed my favorites, and before leaving, he just said.
7: इस छोटी सी मुलाकात के लिए पिता ने सिर्फ बेटी से मिलने के लिए 14 घंटे का सफर तय किया। करीब 8 घंटे साथ बिताए और फिर वापस 14 घंटे का सफर किया। थकने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ आराम किया बल्कि बेटी के घर के कामों में हाथ बटाया और उसके साथ शहर घूमने भी निकले। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भावनाएं नहीं रोक पा रहे हैं। कोई अपने पापा को याद कर रहा है तो कोई इस अनमोल रिश्ते की तुलना किसी और से ना करने की सलाह दे रहा है। इस शख्स ने साइकिल के पैडल से कपड़े धोने का गजब तरीका ढूंढ निकाला है। इस जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने जमीन पर प्लास्टिक का टब रखा है जिसमें पानी और कपड़े भरे हुए हैं। टब के ठीक ऊपर उसने एक साइकिल को उल्टा करके व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद वह टब में वॉशिंग पाउडर डालता है और साइकिल के पैडल को हाथ से तेजी से घुमाना शुरू करता है। जैसे जैसे पैडल घूमता है साइकिल की चैन और पहिए से जुड़ी ग्रिप टब के पानी में वॉशिंग मशीन के पल्सेटर की तरह काम करने लगती है। पानी में झाग बनने लगता है और कपड़े ठीक उसी तरह घूमने लगते हैं जैसे किसी वॉशिंग मशीन में घूमते हैं। इस जुगाड़ की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही किसी महंगे रखरखाव की। ये पूरी तरह से जीरो कास्ट और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीका है। वीडियो को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए हैं। वीडियो में एक गांव की सड़क पर लड़का स्टंट करता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में वह साइकिल को अपने हाथों से उठाता है और फिर उसे सीधे अपने ठुड्डी पर संतुलित कर लेता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइकिल पूरी तरह हवा में टिकी होती है और लड़का बिना हाथों का सहारा लिए बड़े आराम से हाथ फैलाकर पोज देता है। वीडियो में लड़के की एकाग्रता और संतुलन का स्तर देखने लायक है। साइकिल का वजन और उसका आकार ऐसा होता है जिसे मुंह या चेहरे के सहारे रोकना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस लड़के ने इसे इतनी आसानी से किया जैसे ये उसके रोज का काम हो। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। लोग लड़के की कला और मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाल टी शर्ट पहने युवक भीड़ भाड़ वाले मार्केट एरिया में खड़ा है। इसके पास एक स्प्लेंडर बाइक है, लेकिन वह उस पर सवार होकर चलने के बजाय बाइक को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है। वह पूरी सहजता से भारी भरकम बाइक को उठाए घूमता है, मानो उसने कोई हल्का बैग उठा रखा हो। सड़क और बाजार में मौजूद लोग इस आधुनिक बाहुबली को देखकर हैरान रह जाते हैं। कई लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं, तो कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दबंग 2 का मशहूर सॉन्ग दगाबाज रे हाय दगाबाज रे आप सब ने सुना ही होगा। अब उसका ये वर्जन सुनिए। वीडियो में एक परिवार जन्मदिन मनाते हुए दिख रहा है। इस दौरान एक शख्स दगाबाज रे सॉन्ग के धुन का इस्तेमाल करके हैप्पी बर्थडे टू यू का ये वर्जन गाने लगता है।

0: लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला

0: चीजों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सुंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। देशभर में जन्माष्टमी की रौनक, कान्हा के प्राकृतिक उत्सव की रौनक आगे आपको दिखाएंगे। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में दही हांडी की प्रैक्टिस पूरी, गोविंदाओं की टोली है संकट हरने वाली हांडी तक पहुंचने के लिए तैयार। और श्रद्धा और भक्ति में डूबने लगी मुंबई, गणेश चतुर्थी से पहले बप्पा का आगमन। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
0: चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, सजाए जा रहे हैं मंदिर और ठाकुर बाड़े, बच्चे राधा कृष्ण के वेश में कर रहे हैं श्रृंगार, कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चों को दुलार किया। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु के लिए गुड न्यूज, 15 सितंबर से फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट्स। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई में सिंधुदुर्ग के लिए नई ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। हरियाणा की बेटी डॉक्टर आशा ने रचा इतिहास, फतेह की यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, शिखर से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात जन्माष्टमी की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। अब बस इंतजार है शुक्रवार का, जब जय कन्हैया लाल की जयकारे से पूरा वातावरण गूंजता रहेगा। ब्रज से लेकर जगह जगह कान्हा के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली से बिहार तक गजब की रौनक छाई हुई है।

0: कान्हा आने वाले हैं। स्वागत में भक्त पलक पावड़े बिछाए हैं। ब्रज से लेकर देश भर में मंदिर भव्य रूप से सजे हुए हैं। रोशनी से कोना कोना जगमगा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कहीं तैयारी पूरी हो चुकी है तो कहीं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा वातावरण नंदलाल की भक्ति के रंग में रंग चुका है। अब प्रतीक्षा है तो बस उनके आने का। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस मंदिर की दिव्यता से आंखें हटने का नाम नहीं लेती हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की दिव्य सजावट और भव्य झांकियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर निकाली गई इस शोभा यात्रा की छटा देखिए। इसी तरह पूरा ब्रजमंडल लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर भव्य रूप से सजा हुआ है और उत्सव के खूबसूरत रंग भी बिखर रहे हैं।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है। पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। ये भक्ति पथ है जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्य वसाम्यहम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है। जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं। रंग मंचों पर कहीं रास लीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है।
0: दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की छटा भी देखने लायक है। मंदिर समेत पूरा परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को भी यहां दर्शाया गया है।
2: यहां पर जन्माष्टमी उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहां पर तैयारियां की गई है। यहां पर शुक्रवार को सुबह 4 बजे से आयोजन शुरू होगा जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, अच्छे से सजावट की गई है और भक्तों में खूब उत्साह दिख रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले से ही और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है।
0: एक तरफ मंदिर के बाहर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ मंदिर के अंदर राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो रहे हैं।
3: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां है वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कृष्ण मंदिरों में जो है तैयारियां जोरों पर है और ईस्ट ऑफ कैलाश का ये इस्कॉन मंदिर कल होने वाले भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर में चाहे सजावट की बात हो, भोग की बात हो, भक्तों की व्यवस्था की बात हो, हर तरीके से मंदिर जो है इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
0: हरियाणा के करनाल में भी बाल गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों की दिव्य सजावट हो चुकी है। श्री सनातन धर्म मंदिर को भी रंग बिरंगी लाइट से बहुत ही आकर्षक रूप से सजाया गया है।
4: आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर सजावट है। अभी एक हफ्ते पहले से भागवत कथा भी चल रही थी तो कल उसका जो है समापन हुआ है। आज भगवान के सुंदर दिव्य झांकियां यहाँ बनाई जा रही हैं। जन्माष्टमी की तिथि भी और नक्षत्र भी कल है, रोहिणी नाम का नक्षत्र, तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया पर्व है। लोग व्रत भी रखेंगे।
0: मंदिरों में अभी से कृष्ण भक्तों की चहल पहल नजर आ रही है। बाल गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर कई जगह आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। जन्माष्टमी को लेकर झांसी का क्राफ्ट मेला मैदान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंग चुका है। यहां इस्कॉन मंदिर की ओर से 3 दिवसीय मेगा फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो चुका है। कहीं भगवत गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश दिया जा रहा है तो कहीं भक्ति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लोग आनंद उठाते दिख रहे हैं। जन्माष्टमी महोत्सव के तहत आयोजित प्रेरणा युवा महोत्सव में भक्ति रैप और रॉक बैंड ने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं कृष्ण लीला की मनोरम प्रस्तुति भी दी गई। 3 दिवसीय इस उत्सव का पहला दिन युवाओं के नाम रहा।
5: युवाओं को प्रेरणा देने के लिए भगवद गीता आदि में जो बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं मन पर संयमित रखने के लिए, तो इन्हीं के उद्देश्य से बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सुंदर शिक्षाएं रॉक बैंड आदि का कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव का आयोजन होगा।
0: बिहार के गया जी में भी जन्माष्टमी की भव्य तैयारी की गई है। यहाँ इस्कॉन मंदिर को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है, उसके लिए बड़ी मात्रा में शानदार फूल मंगवाए गए हैं, कन्हैया के लिए झूले लगाए गए हैं, भजन कीर्तन के लिए 4 अलग अलग स्टेज बनवाए गए हैं।
6: फूलों का तो सजावट हो चुका है, कुछ बाकी है, बस 20% के करीब बाकी है, और लाइट भी हो चुका है। सबसे मुख्य है कि लगभग 1,00,000 लोग आएंगे, तो उनका सुरक्षा को लेकर हमने प्रॉपर एकदम इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग किए हैं। प्रॉपर जो है वो एंट्री एक्सिट बना हुआ है। दिन भर तो हमारा जो कीर्तन जारी रहेगा, रात को 9 बजे होगा महाभिषेक, जो कि भगवान जी को 108 कलश से पंचगव्य, पंचामृत, जूस और कई प्रकार के तीर्थ जल, ये सब से भगवान जी का अभिषेक किया जाएगा। 11:30 बजे 108 भोग लगेगा और 12 बजे जो है वो महाआरती है, और फिर 12:30 बजे जो भी लोग उपस्थित रहेंगे उनको उनके लिए भंडारा है।
0: कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को लेकर उनकी सुविधा और सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि इस अवसर पर किसी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मथुरा से संजय शर्मा, करनाल से कमलजीत संधु, झांसी से अजय झा, दिल्ली से आशुतोष कुमार और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद अब गणेश चतुर्थी की बात करते हैं। मुंबई के मशहूर दही हांडी उत्सव का जिक्र उससे पहले, जिसकी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। कान्हा के जन्मोत्सव के ठीक एक दिन बाद दही हांडी का उत्सव मनाने की परंपरा है। करीब 1 सदी पुरानी ये परंपरा है और इस उत्सव के दौरान 20 फीट की ऊंचाई तक रस्सी के सहारे लटकने वाली दही हांडी तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाने की प्रथा है।

0: एक दूसरे का सहारा लेकर आकाश छूने की प्रैक्टिस कर रहे ये लोग गोविंदा पथक हैं, जिन्हें कान्हा के आने का इंतजार है। जन्मोत्सव के बाद भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े प्रसंगों को जीवंत करने की तैयारी चल रही है। मुंबई कई हफ्तों से दही हांडी के उत्सव और उमंग में रंगी हुई है। ढोल नगाड़ों की थाप, गोविंदा आलारे के जयकारों और डीजे म्यूजिक की धुन की वजह से पूरा माहौल भक्तिमय और ऊर्जा से संचारित है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी तो नवमी तिथि को दही हांडी का उत्सव मनाने की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है। जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का उत्सव पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कई हफ्तों पहले से गोविंदा जोश और उत्साह से भर जाते हैं। करीब एक महीने पहले से दो मंजिला इमारत की ऊंचाई पर बंधी रस्सी और उससे बंधी मटकी को तोड़ने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। मानव पिरामिड बनाने के लिए आपसी तालमेल, शारीरिक बल और सामूहिक सहयोग की जरूरत होती है। पिरामिड के सबसे नीचे मजबूत कदकाठी और भारी भरकम गोविंदा खड़े किए जाते हैं, जिन पर पिरामिड का भार उठाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। अनुशासन के साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़कर करीब 20 फीट की ऊंचाई तक पिरामिड की संरचना तैयार की जाती है। पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंचने वाला सबसे छोटा गोविंदा रस्सी के सहारे दूध, दही, मक्खन से भरी हांडी को हाथ में पकड़े नारियल, बांसुरी या डंडे से वार करके फोड़ता है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में और यहां के लोग, यहां के रहवासी किस तरीके से दही हंडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरह की प्रथा है ये, एक तरह की संस्कृति है जो मुंबई और महाराष्ट्र को पेश करती है, उन्हें बताती है। एक के साथ एक लोग कंधे जोड़ते हैं और इस तरह से एक के ऊपर एक थर बनाते हैं, कंधे पर एक दूसरे का वजन लेकर के धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा ऊंचे जाकर के हंडी लटकाई होती है जो मिट्टी की होती है, जिसमें दही रखी गई होती है और कोई अपने माथे से तो कोई फिर अपने नारियल से फोड़ता है उस दही हंडी को और उसके बाद एक के ऊपर एक विश्वास करते हुए कुछ इस तरीके से लोग थर बनाते भी हैं और नीचे उतर भी जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें मुंबई के हर उस गली नुक्कड़ पर देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं आने वाले इस तारीख की 5 को दही हंडी में लीन हो जाने वाले हैं।
0: दही हांडी उत्सव का आकर्षण गोविंदाओं की टोली है, जिनका मकसद दही से भरी मटकी फोड़ना होता है। ऐसा करने पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सम्मान और इनाम मिलता है। हर साल होने वाले इस धार्मिक आयोजन में अलग अलग तरह के क्षेत्र में करियर के लिहाज से स्थापित हो गए गोविंदा भी शामिल होते हैं। मुंबई के काला चौकीचा इलाके के मशहूर न्यू परशुराम क्रीड़ा मंडल में शामिल गोविंदा भी पिछले 2 महीने से दही हांडी उत्सव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी दिन रात का हिसाब रखना भूल चुके हैं।
1: कैसी चल रही है तैयारी?
2: बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
1: कैसे मिल सकता है टाइम आपको? आप काम पे भी जाते हैं उसके बाद यहाँ पर
2: थोड़ा सा? सब लोग देखो, सब अभी क्या है, सब हम लोग का एरिया रीडेवलपमेंट की वजह से टूट गया है बराबर, तो सब पनवेल, नवी मुंबई उधर से प्रैक्टिस के लिए जमा होते, उसके बाद 12:30-1 बजे रात को घर पहुंचते, फिर सुबह 6 बजे काम के लिए निकलते। सब यही रूटीन चालू है, 2 महीना हो गया।
1: कितनी एनर्जी और कितना जी रहे हैं आप इस दही हंडी को?
3: ये एरिया ऐसा है ना जहाँ ये मिडिल क्लास लोगों का एरिया है और हम लोग बचपन से ये एंजॉय कर रहे हैं, तो वो हमारे रगों रगों में बचपन से भरा हुआ है। इसलिए सुबह काम पे जाना, फिर शाम को आके वापस प्रैक्टिस करना, फिर 2 बजे घर पे जाना, फिर सुबह का वापस 6 बजे जॉब पे जाना, ये हमारा अभी रूटीन बन गया है।
0: महाराष्ट्र खासकर मुंबई के कई इलाकों में पहले मटकी तोड़ने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा जो अक्सर सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी सामूहिक रूप से दान कर दिया जाता है। मान्यता ये है कि माखन चोरी के लिए मटकी फोड़ने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात गणेशोत्सव की, महाराष्ट्र में तो भक्तों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल ही रहा है। देश के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो उत्सव की भव्य तैयारी है। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्ति में भक्त सराबोर है तो गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा तक आकर्षक इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई गई हैं।

0: अब से कुछ ही दिन बाद जगह जगह बप्पा विराजमान होंगे। 14 सितंबर से 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी तैयारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कहीं बप्पा की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, तो कहीं मूर्तियों को तेजी से अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के लिए भव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बप्पा की मूर्तियों को ले जाने आए भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे वातावरण को बप्पा की जय घोष से गुंजायमान करते नजर आए। प्रतिमा को ले जाने के दौरान पूरा शहर डीजे की गूंज के बीच आतिशबाजी से रोशन नजर आया। 30 फीट के ओमरी के राजा से लेकर 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार को ले जाते गणेश भक्त उमंग में डूबे नजर आए। बप्पा की 20 फीट ऊंची सिंधी कैंप के सरकार की प्रतिमा के सिंधी कैंप चौक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई, आतिशबाजी के बीच ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। इसी तरह का उत्साह 30 फीट के उमरी के राजा को लेकर भी सामने आया।
1: फायर शो है, जीबी बैंड है, मतलब जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, बाकी तो बापा है ही हमारे साथ।
0: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सूरत में मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। यहां पश्चिम बंगाल के कारीगर छोटी बड़ी सभी तरह की डिजाइनर गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं में पारंपरिक कलाकारी और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। सूरत में ही एक ऐसी गणपति प्रतिमा भी है जो विशेष रूप से बनाई गई है। सिटी लाइट इलाके में सरकार ग्रुप की ओर से इस वर्ष ये 17 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई गई है।
2: कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा टिश्यू से बनाई गई है। इसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।
3: नया तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं। ये स्पेशल राजेश मैकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर की इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके। हम इसमें जो एंगल पे मूर्ति खड़ी है वो भी हमने लास्ट ईयर जो मूर्ति बनाई थी उससे उसका ही यूज किया है, मतलब वो भी हमने रिसाइकल किया है।
0: बप्पा की इस प्रतिमा को बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इस इको फ्रेंडली प्रतिमा को आकार दिया है। विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा जब तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों और बप्पा के जयकारों के साथ खुशी मनाई। उनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
4: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए। बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: गुजरात के वडोदरा में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ श्री गणेश युवक मंडल की टीम नाडा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का उपयोग कर अनोखी इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 युवाओं का ये गणेश मंडल दल यहाँ ऐसी प्रतिमा तैयार करता है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हो।
5: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का ये गणेश मंडल इस वर्ष अपना 11वां साल मना रहा है और पिछले 10 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया।
6: आज मैं कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नालाचरी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है। वहीं पे इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये मंडल के युवा पर्यावरण के हित में ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं और ऐसी प्रतिमाएं बना के जल संरक्षण और पर्यावरण बचाओ की जो अपील है उसको कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। हालांकि ये मूर्ति का विसर्जन आने वाले दिनों में गणेश महोत्सव खत्म होने के बाद ये लोग नहीं करने वाले हैं और यही मूर्ति को आने वाले साल में फिर से प्रस्थापित करके कुछ नया वडोदरा वासियों के लिए बनाने वाले हैं।
0: महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी गणेशोत्सव की तैयारी है। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जामनगर में भी मूर्तिकार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं तो कईयों पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय सांबले, सूरत से संजय सिंह राठौर, वडोदरा से तुषार पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की, इसके महिमा की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के

पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, यानी जन्म हुआ था अष्टमी को, इसीलिए इसको जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोग जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की विशेष पूजा कर सकते हैं और भगवान कृष्ण की विशेष पूजा से जीवन में लाभ पा सकते हैं। जन्माष्टमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन

मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जन्माष्टमी पर वैसे तो भगवान कृष्ण की उपासना मध्य रात्रि में की जाती है, लेकिन उसमें नक्षत्र का, लग्न का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा कब होगी? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था, इसीलिए जन्म का उत्सव वृषभ लग्न में मनाया जाता है। जन्मोत्सव का आरंभ वृषभ लग्न में किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 4 सितंबर को मध्य रात्रि में 12:13 तक रहेगी। इसी मध्य रात्रि के समय में वृषभ लग्न में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वृषभ लग्न 4 तारीख को लगभग 12:05 पर समाप्त हो जाएगा, यानी वृषभ लग्न के समाप्त होने के पहले 12:05 के पहले ही जन्मोत्सव की शुरुआत कर लेनी चाहिए। यानी वृष लग्न में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जन्माष्टमी पर पूजा विधान क्या होगा, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, खान पान में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो जन्माष्टमी मनाने का समय आपने जान लिया, अब किस प्रकार से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वो भी आपको बताते हैं। प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज व्रत रखूंगा या रखूंगी और आज मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगी या करूंगा। दिन भर जल और फल ग्रहण करके व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और अगर दवाई आदि खाते हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तो जो आहार ग्रहण करें वो सात्विक आहार होना चाहिए। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की मेटल की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें, उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान करवाइएगा। इसको पंचामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद जल से स्नान करवाइएगा। ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आप अर्पित करेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जल, ये शंख में डाल करके भगवान कृष्ण को अर्पित की जाएंगी। उसके बाद उनका शरीर पोंछिएगा और उन्हें पीले वस्त्र पहनाइएगा, पीतांबर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा। भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका पालन करना चाहिए और झूला झुलाकर प्रेम से अपनी कामना भगवान कृष्ण से कहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, इस सरल तरीके से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपको भगवान कृष्ण की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है,
रिश्तों के मामलों में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग हैं, करियर में धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को एक बांसुरी अर्पित करिएगा। बांसुरी अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं बड़ी आसानी से दूर होती जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। चार सितंबर शुक्रवार प्रातः काल भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगाइएगा, फिर वही तिलक अपने आप को अपने कंठ या माथे पर लगा लीजिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। देश भर में अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारी, सजाए जा रहे हैं मंदिर और ठाकुर बाड़े, बच्चे राधा कृष्ण के वेश में कर रहे हैं श्रृंगार, कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चों को दुलार किया। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।

जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु जिंगार ने बनाई कार को बनाया चलती फिरती आर्ट गैलरी। कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, न्यूज पथ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा फिल्म हनुमान अंश में गाना गाकर स्टार बने सिंगर सुनील लोधी की भी है।
2: हरियाणा के डॉक्टर आशा अपने संकल्प और साहस के लिए इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन्होंने सिर्फ 6 दिनों के भीतर यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियां फतह कर ली हैं। 21 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने के महज कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने अफ्रीका के सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो पर भी सफलतापूर्वक अपना परचम लहरा दिया। खास बात ये कि माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने न केवल तिरंगा लहराया बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण के बैनर और लोगों से दुनिया को संदेश भी दिया। हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली डॉक्टर आशा पिछले 27 सालों से राजस्थान सरकार में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। नौकरी के अलावा ये पर्वतारोहण और शूटिंग में दिलचस्पी रखती हैं और कई मेडल अपने नाम किए हैं। अनिश्चितता ही वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जिंदगी पल भर में क्या मोड़ ले ले किसी को नहीं पता। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया गार दी। फिल्म हनुमान अंश का ये गाना इन दिनों खूब वायरल है और गाने के साथ अब चर्चा इसके गायक की भी हो रही है क्योंकि इस गाने ने रातों रात उनके किस्मत बदल दी है और वो गायक है सुनील लोधी। सुनील मध्य प्रदेश के सागर में आगरा गाँव के रहने वाले है। अब तक उनकी पहचान एक लोक गायक के तौर पर थी लेकिन फिल्म हनुमान अंश की शानदार सफलता ने उसे भी रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म की सफलता के बाद सुनील पहली बार अपने जिले में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। सुनील की इस उपलब्धि का श्रेय सोशल मीडिया को भी जाता है जिसके जरिए ये आवाज फिल्मकार तक पहुंची। सत्ताईस भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के एक दल ने आज जम्मू कश्मीर के वुलर झील का दौरा किया। मकसद था WUCMA यानी वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे संरक्षण और इको टूरिज्म के कामों को करीब से देखना और समझना। असल में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में सस्टेनेबल इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। WUCMA ने वेटलैंड के इकोलॉजिकल महत्व को ध्यान में रखते हुए झील के आसपास कई इको टूरिज्म सुविधाएं विकसित की हैं जिनमें पार्क, गजेबो, सेल्फी पॉइंट और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं हैं। वाराणसी के मुश्ताक अहमद बांसुरी वादकों की बेच काफी लोकप्रिय हैं। इनका परिवार 6 पीढ़ियों से बांसुरी बनाने और बेचने का काम कर रहा है। काशी के 80 घाट पर बांसुरी की मधुर आवाज के साथ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले मुश्ताक अहमद का परिवार पीढ़ियों से इस हुनर को संजोए हुए है। खास बात यह है कि मुश्ताक सिर्फ बांसुरी बेचते ही नहीं बल्कि देश विदेश से काशी आने वाले पर्यटकों को बांसुरी बजाना निःशुल्क सिखाते भी हैं। यही वजह है कि घाट की बांसुरी उनके लिए रोजगार के साथ साथ काशी की गंगा जमुनी तहजीब का संदेश भी बन गई है। केदारनाथ में कैरी मी बैक अभियान रंग ला रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 10 टन से ज्यादा कचरा केदारनाथ धाम से वापस लाया गया है और इसे खुद तीर्थयात्री पहाड़ से नीचे लेकर आए हैं। कैरी मी बैक अभियान का संदेश बेहद सरल है, जो सामान आप पहाड़ पर लेकर आए हैं उसका कचरा भी अपने साथ वापस ले जाइए। इस मुहिम में 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और हर श्रद्धालु ने मंदिर से बेस तक 1 किलो कचरे का बैग वापस पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाई।
1: और अब बात कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की। कृष्ण जन्मोत्सव में अब कुछ ही घंटे बाकी है लेकिन उससे पहले पूरा देश कान्हा के रंग में रंग चुका है। मथुरा से लेकर दिल्ली और वाराणसी से लेकर झांसी तक मंदिर कान्हा के रंग में रंगे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिरों से लेकर गलियों तक कान्हा के आगमन और उनके स्वागत की तैयारियां। तो झांसी में भव्य झांकियों के जरिए युवाओं को कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जा रहा है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से कान्हा के लिए उपहार भेजे गए हैं।

0: जन्माष्टमी की पावन बेला नजदीक आ रही है। पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। ये चमक दमक और ये मनोहारी सजावट श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे ब्रज धाम में नजर आ रही है। क्या मंदिर और क्या शहर के चौक चौराहे और गलियां सब जन्मोत्सव के रंग में रंग गई हैं। इस खास मौके पर विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहने वाला है, इसलिए मंदिर के हर एक कोने को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण मंदिर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकाश व्यवस्था को करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखी है कि मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है अंदर भी और मंदिर के बाहरी परिसर में भी।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस खास मौके पर करीब 50,000 से 75,000 श्रद्धालु ब्रजभूमि पहुंचने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की लीलाओं की मनमोहक प्रस्तुति होगी और श्रद्धालुओं के लिए शानदार सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं।
2: ठाकुर जी की नगरी में जब कोई आए तो उसे चारों तरफ ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के चलचित्र, ये सारी चीज नजर आए। तो इस तरह के जो मंच हैं वो सभी चौक चौराहे पे बनाए जा रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला होगी, कहीं पर गायन होगा, कहीं पर मंचन लीला मंचन होगा। इस तरह के जो सेल्फी पॉइंट है वो यहाँ बनाए गए हैं। करीब 17 सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ श्रद्धालु आए और भगवान श्री कृष्ण की याद, जो जन्म उत्सव की याद है, उसको यहाँ से ले जाएं। इस तरह के होर्डिंग बैनर पूरे जो रास्ता श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ जाता है, श्री कृष्ण जन्म स्थान से हाईवे की तरफ जाता है, उस पर इस तरह के होर्डिंग बैनर पूरे में लगे हुए हैं। क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ 3 और 4 सितंबर को पहुंचे तो भगवान के चारों तरफ दर्शन नजर आए उसे और भगवान की नगरी में आकर भगवान को समर्पण हो जाए।
0: रंग बिरंगी रोशनी से जगमग ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर की है। कान्हा के स्वागत के लिए इस मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रोशनी में नहाया ये मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा है कि पलकें झपकती ही नहीं है। मंदिर की सजावट इतनी भव्य है कि सैकड़ों की संख्या में कान्हा भक्त इसे देखने पहुँच रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य उत्सव होता है। इसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, जिसको लेकर करीब 2 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। और इस बार भी ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं, जहां कल भव्य और दिव्य तरीके से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। झांसी के मुरली मनोहर मंदिर में भी कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की गई हैं। यहां भगवान कृष्ण के साथ एक ओर राधा रानी और दूसरी ओर उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। मंदिर के पुजारी पंडित वसंत विष्णु गोलवलकर बताते हैं कि पूरे भारत में ऐसा स्वरूप बहुत दुर्लभ है, जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी और रुक्मिणी दोनों एक साथ विराजमान हों।
3: इस मंदिर की स्थापना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सासुमा सखुबाई साहब ने सन 1780 में इसकी नींव रखी। सन 1785 में मंदिर बनकर तैयार हुआ और इसकी स्थापना हुई। स्थापना के समय उन्होंने भगवान कृष्ण के को रखकर एक साइड राधा रानी और एक तरफ रुक्मिणी रखी, जो शायद उत्तर भारत में पहला ऐसा मंदिर है जहां दोनों साथ में हैं।
0: मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार प्रतिमा की स्थापना के समय उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखा गया था। उत्तर भारत में राधा कृष्ण की भक्ति की विशेष परंपरा रही है, जबकि दक्षिण भारत में रुक्मिणी कृष्ण की आराधना का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसी भाव को ध्यान में रखकर यहां दोनों स्वरूपों को एक साथ स्थान दिए जाने की मान्यता है।
4: इसमें आप देखेंगे कि कृष्ण जी के साथ राधा जी और रुक्मिणी जी दोनों विराजमान हैं, तो उत्तर भारत में ऐसे राधा कृष्ण होते हैं, ऐसे दक्षिण भारत में विट्ठल रुक्मिणी होते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर उत्तर भारत और मध्य दक्षिण भारत का समावेश करके कृष्ण जी के साथ राधा जी और रुक्मिणी जी दोनों विराजमान है।
0: कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर भगवान के दरबार में पहुँचते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है।
5: इस मंदिर की ये खासियत है कि एक तो यहाँ पे जो भी मनोकामना कोई मांगता है तो उसकी अवश्य पूर्ण होती है जरूर। रानी तो हमें रोज ही आती थी इस मंदिर में।
0: अकोला में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के बाजारों में कान्हा की पोशाक से लेकर पालना, झूला, बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी सजावट सामग्री की दुकानें सज गई हैं। लेकिन जन्माष्टमी का उत्साह सिर्फ घरों और बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्माष्टमी के अगले दिन होने वाली दही हांडी को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। माखन चोर के लिए तैयार हो रही रंग बिरंगी मटकी तैयार की जा रही है। अकोला में इसी दही हांडी के लिए कुम्हार मटकी को नया रूप देने में जुटे हैं।
6: जन्माष्टमी आने वाली है और उसे कुछ ही घंटे बचे हैं, उसे पहले जो है यहाँ पर कृष्ण भगवान की बांसुरी हो, उनका झूला हो, उनके ड्रेस हो, इसकी खरीदारी के लिए जो है लोग आ रहे हैं, खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जन्माष्टमी के बाद जो है दूसरे दिन होता है वो माखन चोर जिसे कहा जाता है, वो माखन चोर भगवान कृष्ण के लिए दही हांडी होती है और महाराष्ट्र में इसकी बड़ी परंपरा है। दही हांडी को लगने वाली जो मटकियां जो है वो कुमार यहाँ पर जो है उसको डिजाइनिंग करते हैं, उसको सजाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये पूरी जो मटकियां है ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने सजाई है और इसका बहुत बड़ा महत्व इसलिए होता है कि माखन चोर जो है इसी में माखन डालकर स्कूल में हो या फिर घर घर में, घर चौराहे में जहाँ पर मटकी फोड़ी जाती है, उस मटकी की जो पूरी डिजाइनिंग है या उनको कलरिंग जो है वो यहाँ पर बड़े श्रद्धा के साथ कुमार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बहुत खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास उपहार भेजे गए हैं। इनमें चांदी के चम्मच, पाजेब, मुरली और कंगन शामिल हैं और भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भेजे गए हैं। इन उपहारों को मथुरा भेजने से पहले विश्वनाथ धाम में मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई, फिर इन्हें मथुरा रवाना किया गया।
7: मथुरा एवं काशी के मध्य जो सनातन नवाचारों का आदान प्रदान, सनातन उपहारों का आदान प्रदान, परंपराओं को जीवंत करने की परंपरा प्रारंभ हुई है, उसी के क्रम को अक्षुण रखते हुए, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में, जैसा हम सभी जानते हैं, दिनांक 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है, उससे ठीक पहले आज 2 सितंबर को, दो दिन पहले ही, श्री काशी विश्वनाथ धाम से महा लड्डू गोपाल के लिए, जो भगवान कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा, श्री कृष्ण जन्मस्थल न्यास के लिए उपहार सामग्री वाहन में एकत्र करके प्रेषित की गई है।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जन जन की आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रज समेत पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। झांसी से अजय झा, अकोला से धनंजय साबले, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ दिल्ली से आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे।
8: आज रात को इसरो के नए मिशन पर टिकी नजरें। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: केदारनाथ धाम जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। टिकट की ऑनलाइन बुकिंग 7 सितंबर से शुरू होगी। मॉनसून में सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी गई थी, अब मौसम में सुधार की उम्मीद के बाद इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। अयोध्या राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नकद राशि की गिनती अब मशीनों से कराने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में चढ़ावे की गणना व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए दो बैंकों और IIT के विशेषज्ञों से प्रस्ताव लिए गए हैं। ट्रस्ट का मानना है कि गणना प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप जितना कम होगा, पारदर्शिता उतनी ही बढ़ेगी। इसरो 4 सितंबर को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट US-05 लॉन्च करेगा। इससे आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा में मदद मिलेगी। इसे GSLV-F17 मिशन नाम दिया गया है। इस मिशन से पहले इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे और विधि विधान से पूजा कर सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की कामना की। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक से बने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खंगतक 243 का सफल परीक्षण किया। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और JSR डायनेमिक्स ने मिलकर तैयार किया है। ग्लाइड बम को विमान से छोड़े जाने के बाद वो पारंपरिक बम की तरह सीधे नीचे गिरने के बजाय ग्लाइड करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले सीएम योगी मथुरा पहुंचे हैं। यहां वो बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान वो कान्हा की तरह तैयार बच्चों को प्यार करते नजर आए। सीएम योगी के साथ मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी उनके साथ वहां मौजूद रहीं।
8: और अब बात गणेश उत्सव की। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी गणेश उत्सव की रौनक बिखरी हुई है। गणेश उत्सव में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मुंबई में उत्सव के रंग अभी से बिखरने लगे हैं। यहां के कई गणेश पंडालों में, मंडपों में गणपति बप्पा का आगमन बड़े धूमधाम से हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी कई गणेश मंडल हैं जो कि अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेशोत्सव मनाते आए हैं। गुजरात के गणेश मंडल ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार की है।

0: गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में बिखरी हुई है। बैलेंसिंग के राजा नाम से मशहूर मुंबई में परेल के महाराजा की गणपति की ऊंचाई 21 फीट है और इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। पहली खुद गणपति बाप्पा और दूसरी नारद मुनि की है। बाप्पा के आगमन पर उनके दर्शन के लिए लाखों की तादाद में भक्त सड़कों पर उमड़ पड़े और नाचते झूमते गाते बजाते हुए श्रद्धालु अपने महाराजा को पंडाल लेकर पहुंचे।
1: परेल के महाराजा के गणेश जी और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज के खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है, और नारद मुनि के क्या करतूत हैं, नारद मुनि किस तरीके से ईश्वरों के बीच में अपने आप को रखते थे, वो सारी कहानियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको बताया कि नीचे से ऊपर तक 22 फीट की ऊंचाई तकरीबन जानकारी के अनुसार हमें मिल पाई है। और फिर से एक बार जैसे ही गणपति अपने दरबार के लिए निकले, उनका आगमन हुआ, फिर से वीडियो के जरिए सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़े लेवल पर वायरल होने चीजें शुरू हो गई।
0: मुंबईकरों की तरफ से परेल के महाराजा को बैलेंसिंग का राजा का खिताब दिया गया है और वाकई में मूर्तिकार की कारीगरी भी देखने लायक है। यही वजह है कि हर किसी का ध्यान यहाँ के महाराज पर है।
2: पिछले साल जो महाराजा था 2023 और 2024 और 2025 तो महाराजा युद्ध के लिए निकला था, जो अपने दानव है उनका वध करने के लिए। तो जो वध करने के बाद जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन करने के लिए देवताओं के वो सेलिब्रेशन देवताओं में चालू है। वो सेलिब्रेशन के लिए नारद जी है वो खुद अपने कंधे पे बप्पा को बप्पा की सवारी लेके वो देव देवताओं में वो सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। ये कंसेप्ट है ये साल अब हमने दिखाया जो कि डबल बैलेंसिंग में है।
0: मुंबई की तरह ही नागपुर से गणपति पंडाल की एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल की तैयारियां अंतिम चरण में है। कारीगर पंडाल तैयार करने में रात दिन जुटे हुए हैं और तरह तरह की प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल में बद्री विशाल से लेकर महाकाल तक की प्रतिकृतियां बनाई जा रही हैं।
3: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नागपुर में इस समय हम हैं। गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे। उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है। इस समय हम एक नागपुर के सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल पर है जहां बद्रीनाथ धाम मंदिर की जो प्रतिकृति है जो बनाई जाने वाली है उसकी तैयारियां हम यहां देख सकते हैं। इस पंडाल में अंतिम चरण में तैयारियां जो है वो पहुंच चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नागपुर में सार्वजनिक पंडालों की बात करें तो अलग अलग पंडालों में अलग अलग मंदिरों की प्रतिकृति जो है वो तैयार की जा रही है। शहर में कहीं उज्जैन के महाकाल हो या फिर बद्रीधाम मंदिर हो या फिर तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, अलग अलग मंदिरों का जो प्रतिकृति है वो गणपति पंडाल जो है सार्वजनिक पंडाल बड़े पंडाल है वहां पर बनाई जाती है। इस समय हम देख सकते हैं यहाँ तैयारियां चल रही है। 14 सितंबर को गणपति बाप्पा घर और सार्वजनिक पंडालों में विराजमान होंगे।
0: पुणे में भी गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और दुकानों पर बेहद सुंदर मूर्तियां उपलब्ध हैं। छोटी बड़ी हर तरह की मूर्तियां रखी गई हैं। पुणे में इस साल कच्चे माल और मजदूरी की लागत बढ़ने के कारण गणेश मूर्तियां लगभग 20-30% तक महंगी हो गई हैं। लिहाजा पिछले साल के मुकाबले मूर्तियां थोड़ी महंगी हैं।
4: अगले हफ्ते गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है, इसी गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता कहा जा रहा है। लेकिन इस साल इसी विघ्नहर्ता को लाने के लिए गणेश भक्तों को काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस साल गणेश मूर्ति में कि जो दर है, जो प्राइस है, वो बढ़ गया है और 10-15% प्राइस बढ़ने की वजह से इसी गणपति बाप्पा को लाने के लिए गणेश भक्तों को कम से कम 200-300 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी गणपति बाप्पा के भक्तों में काफी ज्यादा जोश है और इसी वजह से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। तो गणपति की मूर्ति जो है पिछले साल कितने में मिलती थी और इस साल कितने में
5: जो गए साल में 1000 की मूर्ति रहती है, अभी इस साल में कम से कम 1200-1300 रुपए के आगे देना पड़ता है।
4: अच्छा, कितने फीट से लेके कितने फीट तक गणपति बप्पा हैं?
5: अपने इधर 12 इंच से 12 फीट तक मूर्ति में रहती है और ज्यादा से ज्यादा 20 या 2 फीट तक मूर्ति घर के लिए ज्यादा चलती है।
4: यहाँ पे चॉइस करने के लिए आए गणपति बप्पा की मूर्ति, तो क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद?
6: एक्चुअली मैंने बहुत जगह पे मूर्तियाँ देखी बट कहीं पे भी ऐसे अट्रैक्टिव नहीं लगी या फिर पसंद नहीं आ रही थी कुछ भी, तो यहाँ पे आई तो मुझे फर्स्ट ही मूर्ति तुरंत बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए अभी हम देख रहे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सभी मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर लगाई है, अभी कौन सी चॉइस करे वही बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन हुआ है।
0: सूरत में 17 फीट ऊंचे बाप्पा की आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहां भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
7: गणेश उत्सव को शुरू होने में अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन गणेश पंडालों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में सरकार गणेश उत्सव नाम के ग्रुप ने इस अनोखी गणेश प्रतिमा को अंजाम दिया है।
8: हमारे मूर्ति की सबसे ज्यादा बड़ी व्यवस्था ये है कि विशेषता ये है कि इको फ्रेंडली मूर्ति है, जो जहाँ विसर्जन हम करते हैं वो एक ही जगह पे 4-5 घंटे में खुद ही मेल्ट होके विसर्जन हो जाती है। उसका एक ही रीजन है कि ये 350 किलो टिश्यू पेपर है, कार्डबोर्ड है और इको फ्रेंडली जो भी चीजें हैं वो हम इसमें यूज करते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी विसर्जन हो जाए और समुन्द्र, तालाब या अन्य कोई भी जगह का नुकसान नहीं हो प्रकृति का।
0: जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेशोत्सव ने ढोल नगाड़ों और बाप्पा के जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बाप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद लिया, जिनमें सरकार गणेशोत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
9: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: बापा के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 14 सितंबर को पंडालों, मंदिरों और घरों में गजानन अलग अलग स्वरूपों में विराजमान होंगे, लिहाजा उनके आगमन की तैयारियों को लेकर अभी से रौनक दिखाई देने लगी है। बाधाओं और संकटों का नाश करने वाली विघ्नहर्ता गजानन के स्वागत के लिए हर ओर उत्सव का माहौल है। पुणे से कृष्ण पांचाल, नागपुर से योगेश पांडे और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ सूरत से संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे।
10: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होंगी जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होगा। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। गुरुवार 3 सितंबर को सेंसेक्स 417 अंक लुढ़क कर 76,153 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 41 अंक फिसला, यह गिरकर 23,873 पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख के कारण सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। गुरुवार को सोना 3400 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,59,500 रुपए हो गई। वहीं चांदी ने भी 5,000 रुपए की छलांग लगाई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,40,500 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। गुरुवार को रुपया 14 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94.59 रुपए हो गई।
10: फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़ रहा है जलवा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
11: पापा को सब बता दिया ना?
0: पिता और बेटे के रिश्ते, बरसों की नाराजगी और उसके पीछे छिपे प्यार की कहानी लेकर आ रही है फिल्म ओम का हरी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हरी व्यास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रघुवीर यादव पिता और अंशुमन झा बेटे के किरदार में नजर आएंगे। कहानी हरी की बीमारी से शुरू होती है जिसके बाद वो अपने आखिरी दिनों को वाराणसी में बिताने का फैसला करता है। उसके साथ जाता है उसका बेटा ओम। 18 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
12: काशी जी में ही निकलेंगे।
0: फिल्म मडगांव एक्सप्रेस के बाद कुणाल खेमू एक बार फिर डायरेक्टर की कुर्सी पर लौट आए हैं। उनकी अगली फिल्म वाइब का ट्रेलर रिलीज हो गया है। कुणाल खेमू ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में कुणाल के साथ प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर नजर आएंगे। ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को कुणाल खेमू और चिराग नेहलानी ने प्रोड्यूस किया है। वाइब 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश का जलवा बढ़ता जा रहा है। फिल्म दर्शकों की पसंद बनी हुई है और अब इसने ब्लॉकबस्टर का दर्जा भी हासिल कर लिया है। धुरंधर 2 के बाद इस साल ब्लॉकबस्टर बनने वाली ये दूसरी हिंदी फिल्म बताई जा रही है। खास बात यह है कि रिलीज के एक महीने के भीतर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 70 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। पहले दिन महज 8 लाख रुपए की शुरुआत करने वाली फिल्म का ये सफर वाकई शानदार रहा। डिस्काउंटेड टिकट ऑफर ने भी इसकी कमाई को रफ्तार दी।
13: खुद की बिल्डिंग को
0: आर माधवन की बायोपिक फिल्म GDN अब OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है। मशहूर आविष्कारक और उद्योगपति GD नायडू की जिंदगी पर बनी ये फिल्म 4 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। कृष्ण कुमार रामा कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म में माधवन ने GD नायडू का किरदार निभाया है। कहानी कोयम्बटूर से शुरू होकर एक साधारण इंसान के देश के बड़े इनोवेटर बनने के सफर को दिखाती है। GDN तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी।
10: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बरे बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु जांगिड ने बनाई कार को चलती फिरती आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3,500 किलोमीटर की यात्रा। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: टैलेंट किसी बड़े स्टेज का मोहताज नहीं होता, असली हुनर तो गांव की गलियों में भी खिलता है। इन बच्चों की जबरदस्त एनर्जी और चेहरे की प्यारी सी मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया। गाने की धुन पर सभी बच्चे एक साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं। हर स्टेप में गजब का तालमेल है। तो वहीं बच्चों का अंदाज और एटीट्यूड भी कमाल का है। लोग इस डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स का शानदार कमाल है। बच्चों ने साझा लोड और फोर्स के बैलेंस को कुछ इस अंदाज में समझाया कि देखने वाले भी हैरान रह गए। जिस तरह से बच्चों ने अपने शरीर का संतुलन बनाया वो वाकई कमाल है। वीडियो देखकर लग रहा है कि इन बच्चों ने फिजिक्स की क्लास सिर्फ सुनी नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह समझा भी है। पढ़ाई को इस तरह प्रैक्टिकल अंदाज में समझाना काफी दिलचस्प है। अन्याय देखकर गुस्सा आना तो लाजमी है, लेकिन इस चिड़िया की नाराजगी देखकर शायद आपको गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आएगी। दरअसल प्लेट में खाना कम मिला तो चिड़िया ने अपना अनोखा विरोध शुरू कर दिया। गुस्से में जमीन पर लेट गई और अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी। उसका ये अंदाज कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। वाकई खाना कम हो तो शिकायत तो बनती है। नया टेडी मिला तो इस छोटे से पपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरफ खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देख कर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गयी। असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बैठाया और हंसते हुए आगे बढ़ी। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आए। एक तरफ मुकाबले का जोश था तो दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यही जज्बा खेल को खास बनाता है, क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं।
10: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पब्लिक प्लेस पर गंदगी करने वालों के खिलाफ की गई सख्ती की। पश्चिम बंगाल में कहीं भी थूकना या फिर गंदगी फैलाना जेब पर भारी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्र पॉल के मुताबिक कोलकाता समेत राज्य के दूसरे शहरों में 1 सितंबर से पेनल्टी सिस्टम लागू हो गया है। इस नियम के तहत पब्लिक प्लेस पर थूकने, गंदगी फैलाने या फिर प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग फेंकने पर 100 रुपए से 200 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। नियम के मुताबिक सड़क पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि कचरा फेंकने पर 200 रुपए का फाइन।

0: दो सफाई कर्मचारी करेंगे। क्लीनिंग स्टाफ मौके पर तस्वीर लेंगे और नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल ऐप पर अपलोड करेंगे। इसके बाद एक QR कोड बनेगा और नियम तोड़ने वाले से जुर्माना डिजिटल पेमेंट के रूप में जुर्माना लिया जाएगा। बंगाल सरकार ने बाजार, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था करने की बात कही है, साथ ही पब्लिक टॉयलेट की संख्या भी बढ़ा रही है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सरकार रिहायशी इलाकों में डस्टबिन नहीं रखेगी क्योंकि इसमें लोग अपने घरों का कचरा डालेंगे। घरों का कचरा ले जाने का काम नगर निगम के कर्मचारियों का है और वे घरों से सूखे और गीले कचरे को इकट्ठा करेंगे। जाहिर है किसी भी शहर में सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में बंगाल सरकार के पेनाल्टी सिस्टम लागू करने के फैसले को लेकर हमने कोलकाता में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
1: पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तन होने के बाद इस वक्त कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जहां बताया जा रहा है कि यदि कोई रास्ते में थूके या कोई भी कूड़ा फेंके फिर उनकी जुर्माना होगी। थूकने से 100 रुपये जुर्माना और कूड़े फेंकने से 200 रुपये की जुर्माना। लोगों की क्या कहना है उसी को लेकर इस वक्त शहर कोलकाता की आसपास पहुंच गए हैं हम। शहर कोलकाता में लोग क्या सोच रहे हैं वो पूछेंगे। भाई ये बताइए कि शहर कोलकाता में एक कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बताया गया है कि कोई थूक नहीं सकता है और कूड़ा नहीं फेंक सकता, जैसे कुछ डस्टबिन प्लास्टिक फेंका हो वो नहीं फेंक सकते, फिर जुर्माना होगी। आपको क्या लगता है ये कितना आवश्यक था?
2: हाँ, ये रूल आवश्यक था क्योंकि हम लोग जहाँ भी स्पेस देखते हैं वहाँ थूक देखते हैं, मतलब हमारे घर का गार्बेज फेंक देते हैं, वो सब करना ठीक नहीं है। हम अपने देश को साफ सुथरा रखेंगे तो ही अच्छा है ना, तो ये जो किया है आई थिंक इट्स गुड।
1: और 100 रुपये देना पड़ेगा थूकने से और कूड़ा फेंकने से 200, तो क्या लगता है कि
2: थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इट्स वैलिड, मतलब वैलिड पॉइंट। जे हम तो लोग अब पहले से थोड़ा सतर्क रहेंगे तो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द चार्जेस।
3: एक्चुअली कोलकाता के रास्ते में ये हम ऑलवेज हम देखते हैं कि रास्ता गंदा रहता है, कोई क्लीनलीनेस नहीं है कोलकाता में, बट आई थिंक ये अगर इस मेजर्स को लागू किया गया इस शहर में देन कोलकाता विल बी अ वेरी क्लीन सिटी विच इज रिक्वायर्ड, बिकॉज कोलकाता वॉज वंस अपॉन अ टाइम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टिल 1911। सो कोलकाता को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बट आई डोंट नो ये जो फाइन सिस्टम है ये कितना मतलब मेंटेन कर सकता है ये चीज़, बट मेजर्स तो लेना चाहिए कोलकाता के लिए।
4: हम इसको बहुत ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि जब किसी के भी जेब से 100 रुपया भी जाएगा तो सिविक सेंस क्लिक करेगा। एक बार अगर किसी को जुर्माना भरना पड़ जाएगा फिर वो दोबारा फेंकने से पहले सोचेगा। लेकिन सरकार से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब ये स्टेटमेंट लागू कर रहे हो आपको डस्टबिन का व्यवस्था भी करना चाहिए, क्योंकि अगर डस्टबिन का व्यवस्था आप नहीं करोगे हर एक कम से कम 100 मीटर्स के अंदर में, तो फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम कचरा लेके कब तक घूमेंगे कि हमको डस्टबिन मिल जाए। तो ये भी आपको करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा। यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करते हो?
5: देखिए, आप जिस रास्ते पे अभी खड़े हो रहे हो, मतलब खड़े हो, आसपास देखने से आपको मालूम चलेगा कि कचरा कूड़ा सब लोग यहाँ वहाँ फेंक रहा है, तो एनवायरमेंट के लिए तो ये हार्मफुल है ही। ऊपर से कोई भी बीमार आदमी या फिर बुढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी ये अनहेल्दी एक एनवायरमेंट है, बच्चों के लिए अनहेल्दी एनवायरमेंट है। तो हाँ, ये मतलब जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है वो लाइक ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट बहुत आदमी हमारे देश में अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये 100 रुपये या फिर 50 रुपये देना मतलब लाइक चांद स्वरूप है उनके लिए, तो उनके लिए दिक्कत है। सबका इकोनॉमिक कंडीशन देखने के बाद ये फाइन या जुर्माना जो भी है ये लगाना चाहिए मेरे हिसाब से।
0: दिल्ली के द्वारका में नमिता मैम की क्लास चर्चा में है। असल में ये कोई स्कूल नहीं है बल्कि इसे ओपन पाठशाला कह सकते हैं। यहाँ बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका भी मिलता है। द्वारका के बालाजी पार्क में पिछले 12 सालों से नमिता चौधरी आर्थिक रूप से कमजोर और झुग्गी बस्तियों के बच्चों के लिए ये ओपन पाठशाला चला रही हैं, जिनमें अब दूसरी महिलाएं भी उनका सहयोग कर रही हैं।
6: 4 कमरों में चलती हुई क्लास के अंदर पढ़ाते हुए टीचर्स मास्टर्स आपने खूब देखे होंगे। आज हम आपको एक बिल्कुल अनोखी क्लासरूम में लेकर आए हैं। माफ कीजिएगा, ये सिर्फ क्लास है,

0: कोई रूम नहीं है। ये दिल्ली में डीडीए का एक पार्क है और यहाँ कोने कोने पर आपको अलग अलग क्लासेस चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कहीं पर किसी को ड्राइंग सिखाई जा रही है, कहीं पर किसी को अंग्रेज़ी में रोजमर्रा की जो भाषा है अंग्रेज़ी में उसे कैसे बात करें अंग्रेज़ी सिखाई जा रही है, तो कहीं पर बच्चों को दिन महीने तारीख रात दिन चांद तारे याद करवाए जा रहे हैं।
1: पढ़ाई जरूरी है और हुनरमंद होना भी, ताकि खुद पर भरोसा बना रहे, आत्मविश्वास बना रहे। इसी सोच के साथ नमिता ने ये ओपन पाठशाला चलाई है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे न सिर्फ शुरुआती शिक्षा ले रहे हैं बल्कि अपने हुनर को भी तलाश रहे हैं।
2: इसके बाद भी आएगा,
3: ये जब बच्चे हमारे पास आए और इनको हमने पढ़ाना शुरू किया, हमारे सारे वॉलंटियर ने जब इनको पढ़ाया, तो हमें ये समझ में आया कि हो सकता है ये एजुकेशन में वीक है। बिकॉज आप देख रहे होंगे, माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, स्लो लर्नर बोल सकते हैं, या इनको इस तरह का वातावरण नहीं मिला है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इनके अंदर हमने खोजा, सब ने, सारे सेंटरों ने, कि इनके अंदर कुछ एक स्किल है जो इनबिल्ट है, जिसको तराशने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको डांसर भी मिलेंगे, जिनको हम कभी डांस नहीं सिखाते हैं या प्रैक्टिस नहीं कराते हैं कि आज हमारा ये डे, इनको बोल दिया जाता है कि जन्माष्टमी है, तुम डांस प्रिपेयर करो, और वो इतना अच्छा प्रिपेयर करके आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वैसे ही ड्राइंग आपने देखा, इसकी खुद की सोच है इस बच्चे की और ये बना रहा है।
1: कहते हैं सपने देखने के लिए पैसे नहीं हौसले की जरूरत होती है, और यही हौसला दिल्ली के द्वारका में इस छोटे से पार्क में नजर आता है। इसे नमिता चौधरी चलाती है। नमिता का ये सफर लगभग 12 साल पहले शुरू हुआ था।
3: सर, इसको करते हुए 11 साल, यानी ऑन पेपर 11 साल हैं, पर ग्राउंड पर हम 12 सालों से काम कर रहे हैं। स्टार्ट जब एनजीओ हुई थी, तब हमारे पास प्रवासी मजदूरों के बच्चे थे, दीनदयाल कॉलेज बन रहा था, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पर आए। बट वही है कि प्रवासी हैं, तो कुछ समय के बाद वो चले गए। यहाँ जो बच्चे अब आप देख रहे हैं 11 सालों की जर्नी में, ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर क्लस्टर में रहते हैं। इनके फादर मदर जो हैं वो मेड का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आप बोल सकते हैं झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं ये।
1: 12 साल कम नहीं होते। नमिता के पढ़ाए कई बच्चे अब ग्रेजुएट हो चुके हैं और कई नौकरी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नमिता की तरह ही अपने जैसे बच्चों के सपनों को उड़ान दे रहे हैं, वॉलंटियर बनकर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नमिता के इस पहल को दूसरी महिलाओं का भी साथ मिल रहा है।
4: मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, मम्मी एज अ हेल्पर काम करती हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी, तब मैं क्लास 8 में थी और आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्टेड चाइल्ड। आई कुड नॉट स्पीक टू एनीबडी, आई यूज टू शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग टू एनीबडी, बट राइट नाउ आई हैव लर्नड टू स्पीक एंड टीच स्टूडेंट्स। राइट नाउ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स हियर।
5: मैं तो बहुत छोटी थी, 3rd क्लास में पढ़ती थी, तो मैं यहाँ पढ़ना शुरू करी थी। मैं जब से पढ़ती आई हूँ और अब मैं पढ़ाना शुरू करी हूँ।
1: दिल्ली जैसे शहर में जहाँ एक तरफ तेजी से बढ़ती इमारतें नजर आती हैं, वहीं इस पार्क में इन बच्चों के भविष्य की नींव तैयार हो रही है। ये बच्चे आज यहाँ सीख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ताकि कल अपने पैरों पर खड़े होकर समाज और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
6: नेपाल में सेना का पानी भरे हुए सुरंग में सर्च ऑपरेशन जारी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: यूरोपियन रिसर्चर्स ने ब्रुसेल्स में एआई पावर्ड एडवांस्ड रोबोट्स की ताकत दुनिया के सामने दिखाई। यूरोपियन पार्लियामेंट में 15 रोबोट्स का प्रदर्शन किया गया। इनमें घर के काम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक में मदद करने वाले रोबोट शामिल रहे। ईटीएच ज़ुरिक के ट्रांसफॉर्मर रोबोट ने हवा में उछलकर और अपना रूप बदलकर सबको हैरान किया। वहीं एआई से लैस रोबोट्स ने किचन में बर्तन साफ करने और सामान व्यवस्थित करने का डेमो भी दिया। हालांकि रिसर्चर्स ने यूरोप में फंडिंग की कमी पर चिंता जताई। चीन की जुहाई में एक रोबोट डॉग ने अपनी ताकत और तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। एशिया पैसिफिक मीडिया फोरम से पहले पहुंचे मीडिया मेहमानों ने 220 किलोवोल्ट किन्यून सबस्टेशन का दौरा किया। यहां उन्होंने फेयून नाम के इंटेलिजेंट रोबोटिक डॉग के साथ रस्साकशी की। ये रोबोट 2.55 टन वजन वाली गाड़ी खींचने में सक्षम है। एआई ड्रोन और रोबोट डॉग से लैस सिस्टम बिजली उपकरणों की जांच और खतरों का पता लगाने में मदद करता है। इससे जोखिम भरे काम मशीनों के जरिए किए जा रहे हैं। नेपाल में 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही के बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। 3 सितंबर को नेपाली सेना की टीम ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पानी से भरी सुरंग में फंसे लोगों की तलाश के लिए हवा भरने वाली नावों का इस्तेमाल किया। सेना के मुताबिक भारत, दक्षिण कोरिया और चीन के विशेषज्ञों की मदद से कम 900 लोगों की तलाश की जा रही है। ग्लेशियर टूटने से बर्फ, चट्टान और कीचड़ का सैलाब आया था, जिसने कई गांव और बस्तियों को तबाह कर दिया। चीन में टाइफून सॉडेल के असर से भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 3 सितंबर को फुजियान प्रांत के झांगझो में तूफान के तीसरी बार जमीन से टकराने के बाद बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। वहीं झेजियांग के वेंझो में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे एक स्कूल परिसर में 2,500 से ज्यादा शिक्षक और छात्र फंस गए। राहत कर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। फुजियान और ग्वांगडोंग में शुक्रवार तक भारी बारिश का अनुमान है।
6: ब्रेक प्लाजा में हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे खेल चक्कर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
6: एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा की जगह यशवीर सिंह को मिला मौका। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
7: इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अफवाहों को बीसीसीआई ने खारिज कर दिया है। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि वो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने शतक लगाया और क्या चाहते हैं। इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही थी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर वीवीएस लक्ष्मण इस महीने जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम के कोच होंगे। वहीं सुनील जोशी, ऋषिकेश कानितकर और शुभदीप घोष टीम के कोचिंग स्टाफ के तौर पर लक्ष्मण के साथ रहेंगे। लक्ष्मण ने 2023 में चीन के हांगझोउ में हुए एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम को कोचिंग दी थी, जहां टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स में क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी। चीन के शेंझेन एरिना में खेले जा रहे चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के अनुभवी खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को दूसरे दौर में श्रीकांत ने कनाडा के वर्ल्ड नंबर 9 विक्टर लाई को 21-18, 21-19 से हराकर उलटफेर किया। अब क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली चेउक यू से होगा। एशियाई खेल 2026 के लिए भारत के सबसे बड़े पदक दावेदारों में शामिल नीरज चोपड़ा इस बार नजर नहीं आएंगे। चोट के कारण वो एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर सिंह को टीम में शामिल किया है। एशियन गेम्स 2026 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे।
6: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।

क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा? क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान? जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्न प्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए कल से शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कान्हा के जन्मोत्सव की, जिसकी धूम ब्रज से लेकर द्वारका तक है, बद्रीनाथ धाम से लेकर मुंबई तक है, और कन्हैया के प्राकट्य का सभी को इंतजार है बेसब्री से। उनके स्वागत के लिए मंदिरों को रोशनी से सजा दिया गया है। आज आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर आज ठाकुर जी की दिव्य पोशाकी की शोभा यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा की झांकियां आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ मथुरा की भव्य सजावट भी आपको तमाम दिखाने जा रहे हैं। मथुरा की तरह द्वारका में भी जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको भगवान कृष्ण की द्वारका धाम की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे, इसके अलावा दिल्ली NCR में जन्मोत्सव की धूम जबरदस्त है वो भी दिखाएंगे, इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव पर क्या तैयारियां हैं और भगवान को कैसा भोग लगेगा, ये सब विस्तार से आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्म स्थान और बद्रीनाथ धाम की अद्भुत तस्वीरों के साथ। देखिए, दोनों मंदिरों की भव्य सजावट की गई है, ऐसा लगता है जैसे सितारों से मंदिर को सजा दिया गया हो। दो तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ में पहली बार इस तरह की लाइटिंग की गई है, रात में रंग बिरंगी रोशनी के बीच बद्रीनाथ मंदिर का ये दृश्य आनंद से भर देने वाला है। इसी तरीके से देखिए मथुरा में कान्हा का धाम इंद्रधनुषी रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ है, मंदिर के जगमगाते शिखर को दूर से ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। मथुरा में जन्मोत्सव से पहले आज भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई, सुबह करीब 9 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि से यात्रा शुरू हुई और पूरा माहौल जो है भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान होता, बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल हुए, बैंड बाजों और भक्ति संगीत की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए नजर आए, उनके हाथों में धार्मिक झंडे थे और वो लगातार भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे, पूरा रास्ता कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। इस शोभा यात्रा में मथुरा के स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भी हिस्सा लिया, इन कलाकारों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और ब्रज की संस्कृति की जीवंत कर दिया, उसको कई सुंदर झांकियां और कलाकारों के प्रदर्शन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव दे गए। तस्वीरें देखिए, देखिए ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक अपने चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है, मथुरा में कदम रखते ही भक्ति रंग और रोशनी का ऐसा संगम नजर आ रहा है मानो पूरी नगरी कान्हा के स्वागत में सज उठी हो। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर शहर की गलियों तक हर तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर द्वारका में भी जगत मंदिर जन्माष्टमी के लिए तैयार है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब आधी रात को दोनों धामों में कन्हैया के प्राकट्य के साथ जयकारों से आसमान गूंज उठेगा। रिपोर्ट देखिए।

0: बारह का इंतजार तो सभी को है, पर ब्रज की बात निराली। यहाँ तो कण कण में कृष्ण कन्हाई है, इसलिए जब जन्मोत्सव की घड़ी आई है, इस इलाके की भव्यता देखते बनती है। नगर में प्रवेश के साथ मथुरा की भव्यता मन मोह लेती है, और रही श्रद्धालुओं के स्वागत की बात, तो उसकी शुरुआत मथुरा से पहले ही भक्ति पथ पर शुरू हो जाती है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है, और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंभे हैं। इन खंभों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं, और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंभे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्यहम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं, और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है, और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है।
2: ना केवल सजावट हमने बनाया और डिजाइन भी किया इसको, और वाई दे आर 84, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 84 कोसी यात्रा और 84 लाख योनिया, उनको ध्यान में रखते हुए द कॉन्सेप्ट इज सच कि 84 ये खंभे हैं और 84 लाख योनियों को जब इंसान क्रॉस करता है तब हम लोग इस मनुष्य का जीवन पाते हैं। तो हर एक खंभा 1 लाख योनि को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर गायें हैं। आपने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं गायों के बीच में बसता हूँ, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ऊपर कदम कृष्ण कमल है, आप देखेंगे, मैं नीचे तो, और राधे राधे, क्योंकि पूरे वृंदावन मथुरा में कोई नमस्ते तो कहता नहीं है,
1: सब
2: राधे राधे कहते हैं, तो राधे राधे इज द वर्ड। देन ऊपर है माधव और राधा, जो यहाँ की भक्ति का, जो कृष्ण की भक्ति, ब्रज की भक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं,
1: निष्कपट भक्ति जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है।
2: जी जी, एब्सोल्युटली। और फिर हम देखते हैं सुदर्शन चक्र, ये कहता है कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश के लिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने जब भी सुदर्शन चक्र उठाया उसको रिप्रेजेंट करता है। देन वी सी मयूर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमेशा हमने मयूर पंख देखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीचे ब्रज के मोटिव्स हैं, कदम के फूल हैं, पारिजात के फूल हैं, ये सब फूल वो हैं, मोटिव्स वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ते हैं।
0: शाम ढलती है और मथुरा में एंट्री के साथ ही रंग और रोशनी का भव्य संसार नजर आता है। इंद्रधनुषी रंगों से गुलजार रास्ते, जगमगाते चौक चौराहे, फूलों से सजे मकान दुकान, हर जुबान पर राधे राधे और कृष्ण का नाम। स्वर्ग जैसी है कृष्ण जन्मभूमि की सजावट, रोशनी से जगमगाता मंदिर और दूर से दिखाई दे रहा शिखर, गजब की आभा है गिरधर गोपाल के धाम की। कुछ घंटे ही बाकी हैं जब मथुरा में जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। इस मंदिर के परिसर में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। आयोजन बड़ा है, इसलिए तैयारी भी अभूतपूर्व है।
3: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्मोत्सव भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी, एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को अपर शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकाश व्यवस्था को करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखी है कि मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है अंदर भी और मंदिर के बाहरी परिसर में भी।
4: सभी सौभाग्यशाली हैं कि कल हम लोगों के आराध्य सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का 5253वां जन्मदिन भगवान जी की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे ब्रज को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट करके तैयारी की गई है। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
0: कन्हैया सिनाता सिर्फ ब्रज का नहीं द्वारका का भी है और वहाँ जगत मंदिर में जन्मोत्सव की धूम देखते बनती है। न सिर्फ द्वारका बल्कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अंदाजा है कि जन्मोत्सव पर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ठाकुर जी से आस्था कैसे जुड़ी है इसे इन तस्वीरों से समझिए। जिसकी मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, जिसकी कृपा से जीवन समर जाता है, उसी गिरधर गोपाल का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए उनके धाम पर श्रद्धालुओं का रेला है।
5: पहली बार आई हूँ द्वारका जी के यहाँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर प्रतिमा थी उनकी, क्या ही बताए, नजर उतार दी हमने तो उनकी। उनका रूप और श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत था।
0: द्वारका के धाम में भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन होता है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुले में भगवान को स्नान कराया जाएगा और इसके बाद सुबह 9 बजे से आंतरिक पूजा संपन्न की जाएगी। रात में ठीक 12 बजे जगत मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आरती का आयोजन किया जाएगा। ब्रज हो या द्वारका, भगवान कृष्ण के नगरी में जन्मोत्सव की विशेष तैयारी है। प्रेम भक्ति और श्रद्धा के उत्सव को देखने उसमें डूब जाने के लिए कृष्ण भक्त भी तैयार हैं। मथुरा से संजय शर्मा और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए दिल्ली के स्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां हैं। फूलों से भव्य सजावट की गई है और रोशनी से मंदिर पूरी तरीके से जगमगा रहा है। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग स्कॉन मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान की भव्य आरती और विशेष भोग पर जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा।
7: इस वक्त पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और तैयारियां हर मंदिर में हर घर में हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ईस्ट ऑफ कैलाश स्कॉन में है, जहां पर सीधे आप देख सकते हैं ठाकुर जी को। श्री कृष्ण और राधा रानी आज पीतांबर वस्त्र इन्होंने पहना है, धारण किया हुआ है, लेकिन कल विशेष करके वृंदावन से इनके लिए वस्त्र आए हैं और उन वस्त्रों को ये धारण करेंगे जो विशेष करके मोर के रूप में पूरी तरह से उसे डेकोरेट किया गया है, उसकी डिटेलिंग की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण को मोर कितने प्रिय हैं। मोर पंख वो खुद अपने मुकुट में हमेशा लगाए रहते हैं, तो कल जो वस्त्र है उसकी डिजाइनिंग भी वैसी ही की गई है। भव्य साज सज्जा आज पूरी रात यहाँ पर चलने वाली है। भक्तों की कतार आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि आज जो भक्त हैं वो शाम की आरती में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कल की तैयारी किस तरह से होने वाली है।
8: भगवान का जब देशी विदेशी फूलों से पूरे प्रांगण को सजाया जाएगा और इसमें झांकियां बड़ी सुंदर हैं, भगवान की लीलाओं पर आधारित झांकियां हैं। लाइटिंग की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और फाउंटेन चल रहा है, पूरा आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये जो तैयारी है वास्तव में जितने श्रद्धालु आएंगे उनको आनंद देने वाला है।
6: कान्हा के जन्म का इंतजार अब बस कुछ घंटों का ही है। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिर कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। कहीं फूलों और रोशनी से भव्य सजावट हुई है तो कहीं पर भजन कीर्तन और कृष्ण लीला के जरिए भक्तों का उत्साह चरम पर है। ईस्ट ऑफ कैलाश का स्कॉन मंदिर जन्मोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर झांसी में बारिश के बावजूद युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। अब निगाहें उस खास घड़ी पर है जब आधी रात को बाल गोपाल का जन्म होगा और गूंजेगा जय कन्हैया लाल की। रिपोर्ट देखिए।

0: चारों ओर उमंग, एक ही पुकार, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जिनके शरण में सुकून है, अब उन्हीं नटखट नंदलाल के जन्म का इंतजार है। खास दिन है, खास घड़ी है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। साल भर के इंतजार के बाद वो घड़ी फिर से आने वाली है, जब आधी रात को सोहर गाए जाएंगे, बधाइयां होंगी और हर तरफ बस एक ही जय घोष सुनाई देगा, जय कन्हैया लाल की। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिरों की सजावट पूरी हो चुकी है, तैयारियां अंतिम दौर में है। कहीं फूलों से श्रृंगार हो रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी में कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो रही हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। रोशनी से जगमग पूरा मंदिर परिसर, अलग अलग रंगों की लाइट्स के बीच भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई दे रही है।
1: यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई है। यहाँ पर शुक्रवार को सुबह 4 बजे से आयोजन शुरू होगा, जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, अच्छे से सजावट की गई है और भक्तों में खूब उत्साह दिख रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले से ही, और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है।
0: मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर बेहिसाब खुशी है। कोई कान्हा के दर्शन की तैयारी में है तो कोई इस खूबसूरत सजावट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है, लिहाजा भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। दर्शन के लिए कतारों की व्यवस्था भी है, ताकि आस्था की इस भीड़ में हर भक्त को सहजता के साथ अपने आराध्य के दर्शन हो सके।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां हैं वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कृष्ण मंदिरों में जो है तैयारियां जोरों पर है, और ईस्ट ऑफ कैलाश का ये इस्कॉन मंदिर कल होने वाले भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर में चाहे सजावट की बात हो, भोग की बात हो, भक्तों की व्यवस्था की बात हो, हर तरीके से मंदिर जो है इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
0: इसी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाएगा। भक्तों के लिए कपाट सुबह करीब 4 बजे खुलेंगे। दिन भर पूजा पाठ, भजन और कीर्तन का सिलसिला चलेगा, और जब घड़ी की सुई मध्य रात्रि के करीब पहुंचेगी, आधी रात में बाल गोपाल का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, आरती उतारी जाएगी और जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाएंगी। बस अब इंतजार जन्माष्टमी के आधी रात का है, जब घड़ी 12 बजाएगी, मंदिरों में घंटियां गूंजेंगी, आरती के स्वर उठेंगे और भक्तों की आंखों के सामने बाल गोपाल का प्राकट्य होगा। क्योंकि ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, उस प्रेम का उत्सव है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। दिल्ली से मनीषा लद्दा, आशुतोष कुमार, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, भक्त अपने आराध्य को पालने में झुलाने के लिए भी खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आस्था ने बाजार में चांदी के खूबसूरत पालनों की मांग बढ़ा दी है। सूरत के बाजार में छोटे से लेकर लाखों रुपए तक के पालने तैयार किए जा रहे हैं। कहीं शुद्ध चांदी का पालना है तो कहीं पर लकड़ी पर चांदी की नक्काशी, आकर्षक का काम उसमें किया गया है। जन्माष्टमी पर कान्हा को पालना भेंट करने की परंपरा अब नए रंग रूप के साथ बाजार में नजर आ रही है।

0: कान्हा को पालने में झुलाने का सौभाग्य, उन्हें प्यार करने का सुख, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मैया यशोदा को द्वापर में मिला। भक्ति स्नेह अपनत्व की उसी डोर से कन्हैया आज भी पालने में झुलाए जाते हैं। कहते नंदगांव में यशोदा ने कन्हैया के लिए चंदन की लकड़ी का पालना बनवाया था, पर इस दौर पर चांदी का भी ऑप्शन था। वैसे तो चांदी इन दिनों आसमान चढ़ी है, पर जैसे शक्ति वैसी भक्ति, बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनके लिए कान्हा के आगे कीमत मायने नहीं रखती। उनकी डिमांड पर सूरत के इस शोरूम में भांति भांति के पालने तैयार हैं।
1: हर जन्माष्टमी पे हर कृष्ण भक्त तो ऐसा रहता है कि हम अपने कृष्ण भगवान को चांदी के पाना, चांदी के झूले में झुलावे और फिर उसका जन्मोत्सव मनाए। उसको देखते हुए कस्टमर हमारे पास में आते हैं और चांदी के झूले के बारे में पूछते हैं और लेके जाते हैं और चांदी के झूले का ऑर्डर भी देते हैं। ये टाइम पे हमने जो बनाया हुआ है, हमने एक वैरायटी रखा हुआ है कि हमने 20 ग्राम से छोटे से छोटा, एक जो मन में भाव रहता है उसके लिए छोटे से छोटा 20 ग्राम का भी बनाया हुआ है झूला, और हमने 2 किलो का झूला भी रेडी रखा हुआ है। साथ साथ में भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो भी 20 ग्राम से लेके 1 किलो तक की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रहती है, वो दोनों चीज हमने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये टाइम पे कस्टमर ने जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, क्योंकि चांदी का रेट हर साल पे बढ़ता रहता है, तो कस्टमर ने सोचा कि अगले साल पे अगर चांदी का रेट बढ़ जाता है तो ये साल पे लेना अच्छा है, तो कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी चांदी का झूला ये टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड रही। इस टाइम पे राखी और चांदी के झूले की डिमांड चांदी के रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रहा।
0: चांदी के पालने के साथ ही भावना तो जुड़ी ही है, पर चांदी के भाव देखते हुए इसे एक अच्छा निवेश भी माना जा रहा है। बजट नहीं है तो 10 ग्राम का पालना लीजिए, और पैसे हैं तो 2 किलो तक का विकल्प भी मौजूद है। कीमत 3,000 से 8 लाख रुपए तक है। हाँ, लेकिन जिस तरह चांदी की कीमतें बढ़ी, लग रहा था कि पालनों की खरीदारी में कमी आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जन्माष्टमी के मौके पर पालना खरीदने की होड़ लगी है। बेशक बजट के हिसाब से बाजार में नए नए अंदाज के पालने मौजूद हैं। लकड़ी के पालने पर चांदी की लेयरिंग और उस पर बेहतरीन नक्काशी, ऐसे लकड़ी और चांदी के मिले जुले पालने श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहे हैं।
2: जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है तो हम आज लड्डू गोपाल के लिए झूला देखने के लिए आए हैं, तो इस ज्वेलरी शॉप पे बहुत सारे सिल्वर के झूले बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं, तो आज हम वही देखने के लिए आए हैं। दिन ब दिन प्राइस तो बहुत बढ़ते जा रहा है, पिछले साल जो प्राइस था उस हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और हमको ऐसा लगता है प्रेडिक्शन ये कि आगे चल के फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी और त्योहार आ रहा है उसको देखते हुए भी आज हम सिल्वर का झूला तो जरूर खरीदेंगे। हम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, हमारे घर में हम सब कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक तरह से मेन त्योहार है, तो उसको हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, तो उसी के लिए हम झूला तो जरूर लेंगे।
0: चांदी के पालनों की डिमांड भी अलग अलग वजहों से है। किसी को घर के मंदिर में कान्हा को पालने में विराजमान करना है, तो कोई जन्माष्टमी पर अपने इष्टदेव को पालना भेंट करना चाहता है। इसी तरह लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भी जबरदस्त डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई ट्रेन सेवा की हो गई शुरुआत, रेल यात्रियों की भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के एक आर्टिस्ट सिमांशु जांगड़ ने कार को बनाया चलती फिरती आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मथुरा का जन्मभूमि परिसर दुल्हन की तरह सजकर तैयार, रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगाया। कान्हा के जन्मदिन में खुशी में मथुरा वृंदावन में जुटे रही है भारी भीड़, लाखों भक्त अपने लाडले बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए लालायत। जन्माष्टमी पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया है मजबूत इंतजाम, मंदिर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। भगवान श्री कृष्ण के लिए इस बार रेशमी पोशाक और खास जेवर तैयार किए गए। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्था की, भक्तों की दर्शन करने के लिए कोई दिक्कत ना हो उसके लिए व्यापक इंतजाम। जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में पहली बार रंग बिरंगी लाइटें रोशनी से नहाया मंदिर परिसर। पहाड़ों पर बादलों के बीच चमकता हुआ नजर आ रहा है बद्रीनाथ धाम का बहुत आकर्षक दृश्य। कान्हा के जन्मदिन के लिए बद्रीनाथ मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, छत से लेकर पूरे परिसर में चमकती लाइटों की धाम की सुंदरता बढ़ा रही है। मंदिर का यह नया और अनोखा रूप देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है, हर कोई इस भव्य और अलौकिक नजारे को कैद कर रहा है। सजावट का सारा काम हो चुका है, अब श्रद्धालुओं को बस कल रात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार है। तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 5253वीं जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां, जगत मंदिर में दर्शन और पूजा के समय में खास पता। जन्माष्टमी पर सुबह 6 बजे भगवान द्वारकाधीश की होगी शुभ आरती, इसके बाद अलग अलग समय पर श्रद्धालुओं के होंगे भगवान के दर्शन। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जगत मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा, शाम 5 बजे से फिर दर्शन शुरू होंगे और रात 9 बजे तक जारी रहेंगे। रात 12 बजे भगवान द्वारकाधीश का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा, मध्यरात्रि से सुबह 2:30 बजे के बीच श्रद्धालु विशेष दर्शन करेंगे। जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, पुलिस और मंदिर प्रशासन ने पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की खास व्यवस्था की है। जयपुर में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां, गोविंद देव जी मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इस दौरान 31 तोपों की सलामी दी जाएगी। श्रद्धालुओं की एंट्री सिर्फ जलेब चौक से बांदरपाल गेट से होगी। जन्माष्टमी पर मंदिर और आसपास के 12 सेक्टरों में सुरक्षा रहेगी, AI कैमरे, CCTV और फेस रिकॉग्निशन से भीड़ नजर रहेगी। ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो की भी सलाह, QR कोड से पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध। देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर बड़े स्तर पर की जा रही है तैयारियां। विशेष रूप से मोर थीम पर सजाया गया है इस्कॉन मंदिर। जन्माष्टमी पर सुबह 4 बजे से पूरे दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक भक्तों के लिए खुले रहेंगे मंदिर। गया के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाया गया है पूरा मंदिर परिसर। जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि को होगा भगवान श्री कृष्ण का 108

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सजे करनाल के मंदिर, मंदिर में श्री भगवत गीता की कथा समेत कई धार्मिक अनुष्ठान। कल पूरा दिन दर्शन करने के लिए खुले रहेंगे मंदिर, पूरे दिन चलेगी भगवान श्री कृष्ण की आराधना। कल 4 सितंबर को मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। दिल्ली का ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर। जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए गए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। कल आधी रात श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही विशेष पूजा और भजन कीर्तन का होगा सिलसिला शुरू। भक्तों के स्वागत को लेकर तैयार हैं जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन भक्ति पथ पर 84 कलात्मक स्तंभ तैयार। जन्माष्टमी पर भक्ति पथ का होगा लोकार्पण, पत्थर पर उकेरी गई है जबरदस्त प्रतिमा। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, वृंदावन से मंगाए गए फूलों से किया श्रृंगार। श्री कृष्ण को लेकर कई तरह के व्यंजनों की भोग अर्पित करने की है तैयारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे 977 करोड़ की सौगात। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर फिर शुरू हो रही है, मानसून के दौरान सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी हेलीकॉप्टर सेवाएं। द्वितीय चरण की यात्रा के तहत 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन। महाराष्ट्र के अकोला में दिखा बप्पा की भक्ति का रंग, जगह जगह मनाया गया गणपति उत्सव का जश्न। अकोला में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार के बप्पा। 30 फीट के उमरी के राजा का भी भव्य स्वागत हुआ, भक्तों ने आतिशबाजी की। डीजे और बैंड की धुन पर जमकर नाचते झूमते हुए नजर आए भक्त, हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष। अपने लाड़ले बप्पा की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लालाहित नजर आए भक्त। राम मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्र ने अपने चयन पर ट्रस्ट समिति का आभार जताया। राम मंदिर के नए महासचिव गोविंद देवगिरी महाराज ने पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सीईओ सहित नई नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नकद राशि गिनने के लिए मशीनों का होगा इस्तेमाल। स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज यात्रा की खास पहचान होगी एक अनोखी आर्ट कार। राजस्थान अब सिर्फ खेलों महलों से ही नहीं बल्कि अपने लोगों और लोक कलाओं से भी पहचाना जाएगा। स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज का पहला चैप्टर राजस्थान से शुरू होगा। 4 से 23 सितंबर तक राजस्थान में करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी। अभियान में राजस्थान के खानपान, पुरानी वास्तुकला और कहानियां भी शामिल। इस पहल का मकसद राजस्थान की जीवित संस्कृति की दुनिया के सामने इसको पेश करना, कहानी सिर्फ विरासत नहीं बल्कि उन लोगों की भी जो आज भी रखे हुए हैं जिंदा। रेवाड़ी की 48 साल की डॉक्टर आशा ने रच दिया इतिहास, 6 दिनों में यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियां फतह की। माउंट एल्ब्रुस के बाद डॉक्टर आशा ने किलिमंजारो पर भी जीत दर्ज की। 2017 में एवरेस्ट फतह कर चुकी आशा ने अब 2 महाद्वीपों में देश का मान बढ़ाया। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्तर मध्य रेलवे की विशेष तैयारियों, कृष्ण भक्तों के लिए चलेंगी कई स्पेशल ट्रेन्स। बिजनौर में शिकार के पीछे दौड़ा गुलदार, 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, वन विभाग ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। काशी में कृष्ण जन्मोत्सव प्रति के सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, 6 पीढ़ियों से बांसुरी का कर रहे हैं निर्माण मुस्लिम परिवार। बांसुरी बनाने के साथ देश विदेश से काशी आने वाले पर्यटकों को निःशुल्क बांसुरी बजाना सिखाते भी हैं। हिमाचल के मंडी जिले में हाईवे पर बन रहा उत्तरी भारत का पहला ओवरहेड एलिवेटेड रोड। इस रोटरी के माध्यम से आपस में मिलेंगे चंडीगढ़ मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे।

0: 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 48 स्कूली शिक्षकों के उच्च शिक्षा शिक्षकों और MOSDE के 13 शिक्षक शामिल। फर्रुखाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 96 बाढ़ पीड़ितों को दिया 1.20 लाख का चेक। गंगे की पंथी लहरों से पैदा हुए बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेयर और डीएम से मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप, सभी घाट जलमग्न। चेक गणराज्य के आसमान में गुरुवार को नजर आए रंग बिरंगे गुब्बारे, जबरदस्त नजारा। चेक शहर में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हो गया शुरू, 4 दिन चलने वाले इस आयोजन में दूर दूर से पहुंच रहे लोग। सुबह होते हैं चेक शहर का आसमान गुब्बारों से भर गया, करीब 45 बैलून ने एक साथ उड़ान भरी। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का ये 8वां साल है, गर्मियों के आखिरी में होता है आयोजन। मध्यकालीन शहर प्रदातिकालुओ में बैलून शो ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। चीन में रोबोट डॉग का फेयून का दम देखकर लोग रह गए हैरान, इंसानों पर भारी पड़ा। भारी सामान भी उठा सकता है रोबोट डॉग, 2.55 टन की कार तक खींच देता है। चीन के पावर ग्रिड में अब रोबोट डॉग कर रही है निगरानी, ये बिजली केंद्रों में जाकर खतरे और खराबी का पता लगाता है। मुश्किल जगहों पर भी आसानी से पहुंच सकता है रोबोट, रोबोट के साथ ड्रोन मिलकर बिजली लाइनों की जरूरतें पूरी करेंगे। चीन में बना ये रोबोट बिजली के खतरनाक कामों में मदद करेगा, कंपनी के मुताबिक इससे इंसानों की जान जोखिम में नहीं डलेगी। यूरोप में दिखा है 15 हाईटेक AI रोबोट, ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने पेश। रोबोट घर के काम से लेकर फैक्ट्री तक इंसानों की कर सकते हैं मदद। ETH ज्यूरिख का ट्रांसफॉर्मर रोबोट बनाकर श्रम का मुख्य केंद्र, ये रोबोट 4 पहियों से 2 पहियों पर खुद पहुंच जाता है। घरेलू कामकाज में माहिर AI रोबोट, 4 AI रोबोट ने मिलकर किचन साफ किया, बर्तन उठाए और डिशवॉशर में भी डाले। रोबोट पहले फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ करेंगे काम, फिर सर्विस सेक्टर और आखिर में घरों तक पहुंचेंगे रोबोट। ब्राजील के इगुआजू फॉल्स में उफान, भारी बारिश से पानी सामान्य से 5 गुना बढ़ा। इगुआजू फॉल्स का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, हालांकि अभी खुले हैं टूरिस्ट ट्रेल्स। भारी बारिश के साथ अलनीनो को भी वजह माना जा रहा है इसका, फॉल्स में पानी बहुत तेज रफ्तार से गिर रहा है। ये झरना अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर स्थित है, यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए रोमांचकारी पल होता है। इगुआजू फॉल्स दुनिया के साथ प्राकृतिक अजूबों में से एक माना जाता है। यूरस आयर्स के निकोलस शेल और नायर शिंग का बने स्टेज टैंगो के वर्ल्ड चैंपियन। टैंगो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 47 देशों के डांसर पहुंचे थे फाइनल में, अर्जेंटीना की जोड़ी ने सबको पछाड़ दिया। यूनस आयर्स ने क्रान रैक्स थिएटर में हुआ ये शानदार फाइनल, खचाखच भरे थिएटर और ऑनलाइन दर्शकों ने देख लिया। चैंपियंस जोड़ी ने अपनी जीत का राज द कनेक्शन और जज्बे को बताया, कहा कि टेंगू में भावनाएं और अचानक किए गए मूव्स बहुत खास होते हैं। टेंगू सिर्फ डांस नहीं बल्कि अर्जेंटीना की खास पहचान रही है। यूनेस्को ने टेंगू को दुनिया की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। चीन में पारंपरिक तिब्बती कालीन को नई तकनीक से बनाया जा रहा है, अब कालीन पर तस्वीरें भी उकेरी जा रही हैं। डिजिटल तकनीक से कालीन पर दिख रही है बारीकियां, इसके बाद कारीगर इसे हाथ से पूरा करते हैं। तिब्बती कालीन बुनाई चीन की सांस्कृतिक विरासत है, अब इसे तकनीक के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लानचांग मेंगकांग देशों के मेहमानों ने कालीन बनाने की प्रक्रिया देखी, उन्होंने कारीगरी और तकनीक की तारीफ भी की। नई तकनीक से खास तस्वीरों वाले कालीन बन रहे हैं, इससे पुरानी कला को नई पहचान मिल रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: खबर अयोध्या से, जहां पर श्रीराम मंदिर में नए सीईओ की नियुक्ति हो चुकी है। नए सीईओ जितेंद्र मिश्र आज जिम्मेदारी संभालने अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीर्थ क्षेत्र भवन में ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की और आने वाले दिनों में किए जाने वाले कामों की जानकारी ली। जितेंद्र मिश्र के सामने राम मंदिर परिसर से जुड़े प्रशासनिक और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें, जितेंद्र मिश्र कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके आने के बाद श्री राम मंदिर में क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

0: अयोध्या के नए श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और ऐतिहासिक पल आया है। देश के प्रमुख मंदिरों की ही तरह अब श्री राम मंदिर में भी CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। पहले रण क्षेत्र में देश की सेवा कर चुके भारतीय वायु सेना के पूर्व आला अधिकारी जितेंद्र मिश्र अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले CEO के रूप में धर्म क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं।
1: ये चयन समिति का धन्यवाद है, ट्रस्ट का धन्यवाद है और प्रभु श्री राम की कृपा है, उसके विषय में कुछ इससे ज्यादा कहना नहीं चाहिए।
0: जितेंद्र मिश्र उत्तर प्रदेश के ही देवरिया के रहने वाले हैं। वो भारतीय वायु सेना के रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाली थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया था। जितेंद्र मिश्र ने करीब 40 साल भारतीय वायु सेना में बिताए और अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। माना जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रणनीतियां बनाने में उनका खासा योगदान था। पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, तो उस समय पश्चिमी एयर कमान का नेतृत्व कर रहे जितेंद्र मिश्र ने ही उनका स्वागत किया था। जितेंद्र मिश्र को 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल, 2024 में अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2013 में विशिष्ट सेवा मेडल और शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अनुशासन, सख्त फैसले लेने की क्षमता और देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा को देखते हुए 5500 उम्मीदवारों में से जितेंद्र मिश्र को अब अयोध्या में राम मंदिर का प्रबंधन संभालने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1: My heart is full of gratitude and I consider myself the most fortunate person today to have been given this responsibility twice in my life. एक बार राष्ट्र सेवा के लिए और अभी श्री राम के मंदिर की और श्री राम भक्तों के लिए मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के।
0: जितेंद्र मिश्र के नेतृत्व में मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद पहली बार राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र मिश्र के कार्यभार संभालने के बाद मंदिर में कामकाज का पुराना सिस्टम बदल जाएगा। CEO के रूप में जितेंद्र मिश्र के कंधे पर कई अहम जिम्मेदारियां होंगी। सूत्रों के मुताबिक CEO मंदिर में दर्शन और वहां होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था देखेंगे। वो श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं, वित्तीय मामले और लेने देने, खरीद और टेंट की व्यवस्था देखेंगे। वो दान और चढ़ावे की व्यवस्था देखेंगे। पूजा पद्धति, धार्मिक परंपरा, अनुष्ठान और आध्यात्मिक विषय टेंट की धार्मिक समिति देखेगी। वहीं कर्मचारियों की तैनाती, सुविधाओं का संचालन, रोजमर्रा की प्रशासनिक व्यवस्था CEO के अधीन रहेगी। CEO सुरक्षा संबंधी तालमेल, IT और डिजिटल निगरानी के मामले देखेंगे। वो मंदिर से जुड़ी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी नजर रखेंगे। माना जा रहा है कि CEO की नियुक्ति से श्री राम मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल बदल जाएगा। अब तक ट्रस्ट पदाधिकारी, समितियां और अलग अलग अधिकारी मिलकर मंदिर की व्यवस्थाएं संभालते रहे हैं। CEO के आने के बाद नीतिगत मामलों और कामकाज के संचालन की व्यवस्था अलग अलग होगी। अब सभी कार्यों के लिए नए सिरे से जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए अब मंदिर में एक केंद्रीयकृत कार्यकारी व्यवस्था बनाई जाने की संभावना है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा? क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान? जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्न प्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए कल से शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार या उत्सव नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को किस तरीके से आप मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसकी क्या महिमा है, उसके बारे में विस्तार से पंडित जी से जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।

0: तपस्या से परेशान हैं तो जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी और पीला वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा। अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण को बांसुरी और पीला वस्त्र अर्पित करके प्रार्थना करें, संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी।
1: तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 4 सितंबर 2026 यानी दिन शुक्रवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 11:04 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जन्माष्टमी का महत्व क्या है, क्योंकि सबके हृदय में प्रेम भरने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ था, लेकिन असल मायने जन्माष्टमी के क्या है?
0: जी, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है और इसका अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होने की वजह से इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। जन्म की अष्टमी भगवान कृष्ण की है, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की कृपा से हर बाधा दूर हो जाती है। अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वो लोग अगर जन्माष्टमी पर विशेष पूजा करें तो उनको लाभ हो सकता है, चंद्रमा से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती हैं।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष राशि और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, करियर में आपके उन्नति की संभावनाएं बन रही हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा कब होगी, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आइए पंडित जी से इसके बारे में जान लेते हैं।
0: देखिए, जन्माष्टमी का जब पर्व मनाते हैं तो लग्न का समय का बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा कब होगी? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में, इसीलिए वृष लग्न का जब समय होता है उसी समय में उत्सव की शुरुआत की जाती है। इस बार अष्टमी तिथि 4 सितंबर को मध्य रात्रि 12:13 तक रहेगी। इसी मध्य रात्रि के समय में वृषभ लग्न में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वृषभ लग्न रात में लगभग 10:20 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि में 12:05 पर समाप्त हो जाएगा। तो आपको जो जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत करनी है वो 12:05 के पहले शुरू कर लीजिएगा। जन्मोत्सव की शुरुआत वृषभ लग्न में ही कर लेना बेहतर होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का ये जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रखें, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न अनुराग अवस्थी जी ने हमें लिखा है और अनुराग जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1982। जन्म का समय सुबह के 7:10। जन्म स्थान है कानपुर। अनुराग जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, आगे मुझे नौकरी कब तक मिलेगी, क्या मुझे किसी व्यापार की तरफ जाना चाहिए। अनुराग जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी की तरफ ही रहना चाहिए और नौकरी आपको अभी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो। व्यापार के लिए अभी विचार करना उचित नहीं है, अभी नौकरी में ही बने रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए उत्तम होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और अक्सर आपके जहन में ये सवाल आता है कि सवाल पूछना है, कैसे पूछे, तो आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। करना बस आपको इतना है कि इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल लिख करके हमें भेज देने हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए पंडित जी अगला सवाल किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: अगला प्रश्न ऋचा ने हमें लिखा है और ऋचा हमें मेल लिखती है मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1992। जन्म का समय रात में 9:15। जन्म स्थान है आगरा। ऋचा कह रही हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। ऋचा आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का समय चल रहा है, आपका विवाह किसी भी समय तय हो सकता है। ज्यादा संभावना बनती है कि साल 2027 के मध्य में आपका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए पंडित जी से आज जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जन्माष्टमी का पर्व आखिरकार किस तरीके से मनाएं।
0: अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी पर किस प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, किस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिएगा। दिन भर जल और फल ग्रहण करिएगा, सात्विक रहिएगा। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की मेटल की प्रतिमा को किसी पात्र में, किसी बड़े बर्तन में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद, फिर शर्करा और अंत में घी से स्नान कराइएगा। इसको पंचामृत स्नान कहा जाता है और इसके बाद जल से स्नान कराइएगा। ध्यान रखिएगा, जो भगवान कृष्ण को आप अर्पित करेंगे वो शंख में रख करके चीजें भगवान कृष्ण को अर्पित की जाएंगी। जल से नहलाने के बाद उनका शरीर पोंछिए, उनको पीले वस्त्र यानी पीतांबर पहनाइए, फूल और प्रसाद अर्पित करिएगा और इसके बाद भगवान को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा। झूला झुलाना एक विशेष प्रक्रिया है, इसलिए झूला झुलाकर प्रेम से अपनी कामना कहिएगा, अपनी मनोकामना भगवान कृष्ण से कहिएगा। इस सरल तरीके से आप जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक को धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखें, सेहत बिगड़ सकती है। ऑफिस में शांति बनाए रखें, खान पान में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: जन्माष्टमी के मौके पर किन मंत्रों और स्तुतियों से भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, इस खास दिन आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी पर जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा तो आप कौन से मंत्र पढ़ेंगे, कौन सी स्तुतियों से भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः, जो दुनिया को सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, आप उनके नाम का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी आप जन्माष्टमी पर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ जन्माष्टमी पर करना चाहिए और श्री कृष्ण को गुरु के रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ करें। गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करिएगा और अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का एक बड़ा ताकतवर मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जप भी करना बड़ा अनुकूल है और नहीं तो कृष्ण नाम की या हरे कृष्ण महामंत्र की माला आप जप सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, संपत्ति का लाभ हो सकता है, रिश्तों के मामलों में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग हैं, करियर में धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, जन्माष्टमी का मौका है, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज का तीसरा सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी लें।
0: जी, अगला प्रश्न सीता देवी ने हमें लिखा है और सीता देवी हमें मेल लिखती हैं बिहार से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 26 फरवरी 1984, जन्म का समय रात में 11:10, जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की पहले एक शादी हुई थी, वो शादी टूट चुकी है, डिवोर्स हो गया है, तो क्या आगे मेरे बेटे की दूसरी शादी होगी और उसका जीवन आगे कैसा रहेगा। सीता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से साल 2027 के आरंभ में इनके दूसरे विवाह का योग बन रहा है। इस समय इनकी दूसरी शादी होगी और इनका विवाह इस बार इनकी अपनी इच्छा से होगा और दूसरा विवाह कुल मिला जुला के सफल रहेगा। एक अपने बेटे को आप माणिक्य पहना दीजिएगा, लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करवाइए और अपने बेटे को कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं याद दिला देती हूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना बस इतना है कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, अपनी बर्थ डिटेल्स और साथ ही में अपना प्रश्न इस ईमेल आईडी पर आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। पंडित जी आपके सवालों का जवाब हमेशा की तरह जरूर देंगे। तो चलिए, आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न हीरा लाल जी ने हमें लिखा है और हीरा लाल जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1961, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म स्थान है कानपुर। हीरा लाल जी कह रहे हैं कि मेरे व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, थोड़े बहुत कर्जे भी मेरे ऊपर चढ़ गए हैं, तो मेरे व्यापार की स्थिति कब तक बेहतर होगी और कब तक मुझे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हीरा लाल जी, आपके व्यापार की स्थिति अप्रैल 2027 के बाद बेहतर होती दिखाई दे रही है। अप्रैल 2027 के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और आने वाले समय में साल 2027 और 28 में आप काफी हद तक अपने कर्जे चुका लेंगे। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। जन्माष्टमी का मौका है, भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह भी है, लेकिन हमारे मन में तमाम तरीके की इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, तो जन्माष्टमी के दिन आखिरकार किस तरीके से पूजा उपासना कर सकते हैं भगवान कृष्ण की वो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, और साथ ही में कौन सी मनोकामनाएं होती हैं जो विशेष तौर पर इस खास मौके पर पूरी होती हैं?
0: जी, शंकराचार्य जी ने कहा, एते चांस कला पुंसह श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दुनिया में जितने भी अवतार हैं वो अंशावतार हैं, कलावतार हैं, लेकिन परिपूर्ण भगवान अगर कोई है तो वो भगवान कृष्ण हैं। वैसे तो जन्माष्टमी पर आप उनकी स्तुति करके कोई भी वरदान पा सकते हैं, लेकिन एक बात आपको जाननी चाहिए कि अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है या संतान होने में असुविधा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको संतान गोपाल मंत्र का जप जन्माष्टमी की रात में करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। और ये मंत्र पढ़कर संतान प्राप्ति की कामना करें, प्रार्थना करें, तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्मदिन 4 सितंबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 4 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल जप करिएगा, ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
0: देखिए, भगवान को जो फूल माला आप अर्पित करते हैं वो विशेष ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। इनको सूख जाने के बाद बिल्कुल भी इधर उधर या कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। इनको या तो जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। पूजा के फूल और पूजा की माला को इधर उधर फेंकना उचित नहीं होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 4 सितंबर 2026 यानी कि दिन शुक्रवार का शुभ पहर यानी कि अच्छा पहर काम करने के लिए कौन सा है।
0: दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में श्री कृष्ण के मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 सितंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सी मेटल बेहतर होती है। आज की गुडलक राशि है वृषभ राशि। जीवन में सफलता पाने के लिए, संघर्ष घटाने के लिए आपको चांदी धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन का उतार चढ़ाव और बेवजह का संघर्ष बंद हो जाएगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
0: जी अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या करके जाएं कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो। घर से निकलते समय भगवान के चरणों में कुछ धन रख दीजिएगा।

0: यात्रा में किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी।
1: पंडित जी, हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: मथुरा में जन्मोत्सव से पहले आज भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 9 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि से यात्रा शुरू हुई और पूरा माहौल जो है भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान उठा। बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों और भक्ति संगीत की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए नजर आए। उनके हाथों में धार्मिक झंडे थे और वो लगातार भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। पूरा रास्ता कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। इस शोभा यात्रा में मथुरा के स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इन कलाकारों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और ब्रज की संस्कृति की जीवंत कर दिया उसको। कई सुंदर झांकियां और कलाकारों के प्रदर्शन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव दे गए। तस्वीरें देखिए। देखिए ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक अपने चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है। मथुरा में कदम रखते ही भक्ति रंग और रोशनी का ऐसा संगम नजर आ रहा है मानो पूरी नगरी कान्हा के स्वागत में सज उठी हो। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर शहर की गलियों तक हर तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर द्वारका में भी जगत मंदिर जन्माष्टमी के लिए तैयार है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब आधी रात को दोनों धामों में कन्हैया के प्राकट्य के साथ जयकारों से आसमान गूंज उठेगा। रिपोर्ट देखिए।

0: बारह का इंतजार तो सभी को है, पर ब्रज की बात निराली। यहाँ तो कण कण में कृष्ण कन्हाई है, इसलिए जब जन्मोत्सव की घड़ी आई है, इस इलाके की भव्यता देखते बनती है। नगर में प्रवेश के साथ मथुरा की भव्यता मन मोह लेती है, और रही श्रद्धालुओं के स्वागत की बात, तो उसकी शुरुआत मथुरा से पहले ही भक्ति पथ पर शुरू हो जाती है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है, और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंभे हैं। इन खंभों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं, और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंभे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्यहम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गायों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंगमंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं, और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद हर तरह का हो सकता है।

0: एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद, और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है, और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है।
1: ना केवल सजावट हमने बनाया और डिजाइन भी किया इसको, और वाई दे आर 84, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 84 कोसी यात्रा और 84 लाख योनिया, उनको ध्यान में रखते हुए द कॉन्सेप्ट इज सच कि 84 ये खम्भे हैं और 84 लाख योनियों को जब इंसान क्रॉस करता है तब हम लोग इस मनुष्य का जीवन पाते हैं। तो हर एक खम्भा 1 लाख योनी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर गायें हैं। आपने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं गायों के बीच में बसता हूँ, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ऊपर कदम कृष्ण कमल है, आप देखेंगे, मैं नीचे तो, और राधे राधे, क्योंकि पूरे वृंदावन मथुरा में कोई नमस्ते तो कहता नहीं है,
0: सब
1: राधे राधे, राधे कहते हैं, तो राधे राधे इज द वर्ड। देन ऊपर है माधव और राधा, जो यहाँ की भक्ति का, जो कृष्ण की भक्ति, ब्रज की भक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं,
0: निष्कपट भक्ति जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है।
1: जी एब्सोल्युटली। और फिर हम देखते हैं सुदर्शन चक्र, ये कहता है कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश के लिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने जब भी सुदर्शन चक्र उठाया उसको रिप्रेजेंट करता है। देन वी सी मयूर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमेशा हमने मयूर पंख देखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीचे ब्रज के मोटिव्स हैं, कदम के फूल हैं, पारिजात के फूल हैं, ये सब फूल वो हैं, मोटिव वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ते हैं।
2: शाम ढलती है और मथुरा में एंट्री के साथ ही रंग और रोशनी का भव्य संसार नजर आता है। इंद्रधनुषी रंगों से गुलजार रास्ते, जगमगाते चौक चौराहे, फूलों से सजे मकान दुकान, हर जुबां पर राधे राधे और कृष्ण का नाम। स्वर्ग जैसी है कृष्ण जन्मभूमि की सजावट, रोशनी से जगमगाता मंदिर और दूर से दिखाई दे रहा शिखर, गजब की आभा है गिरधर गोपाल के धाम की। कुछ घंटे ही बाकी हैं जब मथुरा में जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। इस मंदिर के परिसर में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। आयोजन बड़ा है इसलिए तैयारी भी अभूतपूर्व है।
3: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण मंदिर भगवान का प्राकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकाश व्यवस्था को करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखी है कि मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है अंदर भी और मंदिर के बाहरी परिसर में भी।
4: सभी सौभाग्यशाली हैं कि कल हम लोगों के आराध्य, सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का 5253वां जन्मदिन, भगवान जी की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे ब्रज को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट करके तैयारी की गई है। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
2: कन्हैया सिनाता सिर्फ ब्रज का नहीं द्वारका का भी है और वहाँ जगत मंदिर में जन्मोत्सव की धूम देखते बनती है। न सिर्फ द्वारका बल्कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अंदाजा है कि जन्मोत्सव पर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ठाकुर जी से आस्था कैसे जुड़ी है इसे इन तस्वीरों से समझिए। जिसकी मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, जिसकी कृपा से जीवन समर जाता है, उसी गिरधर गोपाल का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए उनके धाम पर श्रद्धालुओं का रीला है।
5: पहली बार आई हूँ द्वारका जी के यहाँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर प्रतिमा थी उनकी, क्या ही बताया, नजर उतार दी हमने तो उनकी। उनका रूप और श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत था।
2: द्वारका के धाम में भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन होता है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुले में भगवान को स्नान कराया जाएगा और इसके बाद सुबह 9 बजे से आंतरिक पूजा संपन्न की जाएगी। रात में ठीक 12 बजे जगत मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आरती का आयोजन किया जाएगा। ब्रज हो या द्वारका, भगवान कृष्ण के नगरी में जन्मोत्सव की विशेष तैयारी है। प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के इस उत्सव को देखने, उसमें डूब जाने के लिए कृष्ण भक्त भी तैयार हैं। मथुरा से संजय शर्मा और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: कान्हा के जन्म का इंतजार अब बस कुछ घंटों का ही है। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिर कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। कहीं फूलों और रोशनी से भव्य सजावट हुई है तो कहीं पर भजन कीर्तन और कृष्ण लीला के जरिए भक्तों का उत्साह चरम पर है। ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन मंदिर जन्मोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर झांसी में बारिश के बावजूद युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। अब निगाहें उस खास घड़ी पर हैं जब आधी रात को बाल गोपाल का जन्म होगा और गूंजेगा जय कन्हैया लाल की। रिपोर्ट देखिए।

0: चारों ओर उमंग, एक ही पुकार, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जिनकी शरण में सुकून है, अब उन्हीं नटखट नंदलाल के जन्म का इंतजार है। खास दिन है, खास घड़ी है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। साल भर के इंतजार के बाद वो घड़ी फिर से आने वाली है, जब आधी रात को सोहर गाए जाएंगे, बधाइयां होंगी और हर तरफ बस एक ही जय घोष सुनाई देगा, जय कन्हैया लाल की। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिरों की सजावट पूरी हो चुकी है, तैयारियां अंतिम दौर में है। कहीं फूलों से श्रृंगार हो रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी में कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो रही हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। रोशनी से जगमग पूरा मंदिर परिसर, अलग अलग रंगों की लाइट्स के बीच भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई दे रही है।
1: यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई है। यहाँ पर शुक्रवार को सुबह 4 बजे से आयोजन शुरू होगा, जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, अच्छे से सजावट की गई है और भक्तों में खूब उत्साह दिख रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले से ही, और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है।
0: मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर बेहिसाब खुशी है। कोई कान्हा के दर्शन की तैयारी में है तो कोई इस खूबसूरत सजावट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है, लिहाजा भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। दर्शन के लिए कतारों की व्यवस्था भी है, ताकि आस्था की इस भीड़ में हर भक्त को सहजता के साथ अपने आराध्य के दर्शन हो सके।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां है वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कृष्ण मंदिरों में जो है तैयारियां जोरों पर है, और ईस्ट ऑफ कैलाश का ये इस्कॉन मंदिर कल होने वाले भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर में चाहे सजावट की बात हो, भोग की बात हो, भक्तों की व्यवस्था की बात हो, हर तरीके से मंदिर जो है इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
0: इसी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाएगा। भक्तों के लिए कपाट सुबह करीब 4 बजे खुलेंगे। दिन भर पूजा पाठ, भजन और कीर्तन का सिलसिला चलेगा, और जब घड़ी की सुई मध्य रात्रि के करीब पहुंचेगी, आधी रात में बाल गोपाल का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, आरती उतारी जाएगी और जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाएंगी। बस अब इंतजार जन्माष्टमी के आधी रात का है, जब घड़ी 12 बजाएगी, मंदिरों में घंटियां गूंजेंगी, आरती के स्वर उठेंगे और भक्तों की आंखों के सामने बाल गोपाल का प्राकट्य होगा। क्योंकि ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, उस प्रेम का उत्सव है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, आशुतोष कुमार, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, भक्त अपने आराध्य को पाले में झुलाने के लिए भी खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आस्थानी बाजार में चांदी के खूबसूरत पालनों की मांग बढ़ा दी है। सूरत के बाजार में छोटे से लेकर लाखों रुपए तक के पालने तैयार किए जा रहे हैं। कहीं शुद्ध चांदी का पालना है तो कहीं पर लकड़ी पर चांदी की नक्काशी, आकर्षक का काम उसमें किया गया है। जन्माष्टमी पर कान्हा को पालना भेंट करने की परंपरा अब नए रंग रूप के साथ बाजार में नजर आ रही है।

0: कान्हा को पालने में झुलाने का सौभाग्य है उन्हें प्यार करने का सुख, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मैया यशोदा को द्वापर में मिला। भक्ति स्नेह अपनत्व की उसी डोर से कन्हैया आज भी पालने में झुलाए जाते हैं। कहते नंदगांव में यशोदा ने कन्हैया के लिए चंदन की लकड़ी का पालना बनवाया था, पर इस दौर पर चांदी का भी ऑप्शन था। वैसे तो चांदी इन दिनों आसमान चढ़ी है, पर जैसे शक्ति वैसी भक्ति। बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनके लिए कान्हा के आगे कीमत मायने नहीं रखती। उनकी डिमांड पर सूरत के इस शोरूम में भांति भांति के पालने तैयार हैं।
1: हर जन्माष्टमी पे हर कृष्ण भक्त तो ऐसा रहता है कि हम अपने कृष्ण भगवान को चांदी के पाना, चांदी के झूले में झुलावे और फिर उसका जन्मोत्सव मनाए। उसको देखते हुए कस्टमर हमारे पास में आते हैं और चांदी के झूले के बारे में पूछते हैं और लेके जाते हैं और चांदी के झूले का ऑर्डर भी देते हैं। ये टाइम पे हमने जो बनाया हुआ है, हमने एक वैरायटी रखा हुआ है कि हमने 20 ग्राम से छोटे से छोटा, एक जो मन में भाव रहता है उसके लिए छोटे से छोटा 20 ग्राम का भी बनाया हुआ है झूला, और हमने 2 किलो का झूला भी रेडी रखा हुआ है। साथ साथ में भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो भी 20 ग्राम से लेके 1 किलो तक की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रहती है, वो दोनों चीज हमने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये टाइम पे कस्टमर ने जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि चांदी का रेट हर साल पे बढ़ता रहता है, तो कस्टमर ने सोचा कि अगले साल पे अगर चांदी का रेट बढ़ जाता है तो ये साल पे लेना अच्छा है। तो कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी चांदी का झूला ये टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड रही। इस टाइम पे राखी और चांदी के झूले की डिमांड चांदी के रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रहा।
0: चांदी के पालने के साथ ही भावना तो जुड़ी ही है, पर चांदी के भाव देखते हुए इसे एक अच्छा निवेश भी माना जा रहा है। बजट नहीं है तो 10 ग्राम का पालना लीजिए, और पैसे हैं तो 2 किलो तक का विकल्प भी मौजूद है। कीमत 3,000 से 8 लाख रुपए तक है। हाँ, लेकिन जिस तरह चांदी की कीमतें बढ़ी, लग रहा था कि पालनों की खरीदारी में कमी आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जन्माष्टमी के मौके पर पालना खरीदने की होड़ लगी है। बेशक बजट के हिसाब से बाजार में नए नए अंदाज के पालने मौजूद हैं। लकड़ी के पालने पर चांदी की लेयरिंग और उस पर बेहतरीन नक्काशी, ऐसे लकड़ी और चांदी के मिले जुले पालने श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहे हैं।
2: जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है तो हम आज लड्डू गोपाल के लिए झूला देखने के लिए आए हैं। तो इस ज्वेलरी शॉप पे बहुत सारे सिल्वर के झूले बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं, तो आज हम वही देखने के लिए आए हैं। दिन ब दिन प्राइस तो बहुत बढ़ते जा रहा है। पिछले साल जो प्राइस था उस हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और हमको ऐसा लगता है प्रेडिक्शन ये कि आगे चल के फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी और त्योहार आ रहा है उसको देखते हुए भी आज हम सिल्वर का झूला तो जरूर खरीदेंगे। हम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, हमारे घर में हम सब कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक तरह से मेन त्योहार है, तो उसको हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, तो उसी के लिए हम झूला तो जरूर लेंगे।
0: चांदी के पालनों की डिमांड भी अलग अलग वजहों से है। किसी को घर के मंदिर में कान्हा को पालने में विराजमान करना है, तो कोई जन्माष्टमी पर अपने इष्टदेव को पालना भेंट करना चाहता है। इसी तरह लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भी जबरदस्त डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के एक आर्टिस्ट हिमांशु ने गार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है छोटे से बाल गोपाल की। भले ही श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में पले बढ़े, लेकिन अपने इस अवतार में उन्होंने बाल सुलभ लीलाओं का आनंद सारे संसार को दिया। वो भगवान हैं, नारायण के अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए वो वही नन्हे से बाल गोपाल हैं। गोकुल की गलियों में मस्ती करते माखन चुराते, गोकुल की गलियों में माखन चुराते बाल कृष्ण की कहानियां आज भी बेहद श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती हैं। दही हांडी का पर्व माखन चोर कन्हैया की उन्हीं कहानियों से जुड़ा है। देश में इस पर्व को लेकर युवाओं के बीच में जबरदस्त उत्साह रहता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दही हांडी प्रतियोगिताओं की तैयारियां काफी लंबे वक्त से पहले शुरू हो गई थी, तो चलिए आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी से पहले मुंबई में दही हांडी को लेकर कैसा उत्साह बना है।

5000 साल पहले द्वापर युग में गोकुल के घर गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। माखन की मटकी फूट रही है, कान्हा माखन चुरा रहे हैं, बाल सखा के साथ मनमोहन मन भर कर माखन खा रहे हैं। सनातन धर्म की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध बेहद पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कान्हा की भक्ति में लीन संसार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाता और त्योहार की तरह मनाता आ रहा है। द्वापर काल में ब्रज की महिलाओं ने कान्हा की शरारतों से तंग आकर मथे हुए माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया था ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक पहुंचे ना। लेकिन नटखट कान्हा की समझदारी के आगे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाती थी। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी पौराणिक कहानी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ।

0: बरसों से जन्माष्टमी के त्योहार पर देश के कई इलाकों में दही हांडी के आयोजन होते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले इन आयोजनों की ख्याति सारी दुनिया में फैली। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के कई दिनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों की ऊर्जा से भरी ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गोविंदा जोर शोर से मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
1: 5 सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पथक इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे। और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बाकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी। बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य यहां पर बनाया गया है, जहां तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग। आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं, लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: अरे बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
3: बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
1: क्या आपको बताया कि दही हंडी सिर्फ मेल यानी कि पुरुषों का ही एक बहुत बड़ा खेल नहीं है, बल्कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, मंच सजा हुआ है, जहां पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनकी भी कोई टीम होगी और सबको उन्होंने चीयर्स करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। आपको बताएं, दही हंडी महाराष्ट्र में यानी कि पिरामिड बनता है, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके 8 थर 9 थर लगा करके ऊंचे जहां पर एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही होती है, उसे लटकाया जाता है। बाकायदा उसे सर से कोई फोड़ता है तो कोई नारियल से फोड़ता है। और कृष्ण जन्माष्टमी जो है मुंबई महाराष्ट्र अलग रूप में बनाया जाता है, लेकिन वाकई में बहुत ही एक तरह से खतरनाक खेल भी है, लेकिन बहुत साहसी खेल भी है।
0: वैसे तो जन्माष्टमी पर देश के कई इलाकों में दही हांडी उत्सव की रौनक दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का रंग कुछ और ही नजर आता है।

इस उत्सव के दौरान लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, जहां लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी की मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए 9 लेयर का पिरामिड बनाया जाता है। जो लड़का पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे लड़कों को हांडी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके मिलते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पूरे दही हांडी उत्सव के दौरान लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन जोर शोर से होने लगा था, लेकिन राज्य में इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा साल 2022 में दिया गया। महाराष्ट्र में इस उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया और इससे जुड़े कई नियम भी बना दिए। इन तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए आज भी जन्माष्टमी से पहले शहर भर में गोविंदा दही हांडी की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। अब के साल दही हांडी उत्सव में महिला गोविंदाओं का भी धमाल है। मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स के बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही है। जन्माष्टमी से पहले दही हांडी के लिए नारी शक्ति पूरी तरह तैयार दिख रही है।

0: कर करके ऊपर जाके, जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दहेंडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना ज़रूरी है।
1: पर्व के जश्न में सराबोर ये लड़कियां निर्भया महिला गोविंदा पथक की सदस्य हैं, जो इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं।

0: लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया। हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है। हम लोग चार थर लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दहीहंडी में।
1: पिछले 2 महीनों से यहाँ मौजूद छोटी बड़ी लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस और आपसी तालमेल पर फोकस कर प्रैक्टिस कर रही है।

0: होती है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसे भी है चीज़ें. और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सके हम एक दूसरे को. उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं.
1: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गली गली दही हांडी के रंग बिखरे हैं. उत्सव की उमंग और रौनक से सारी मुंबई सराबोर है. गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गोविंदाओं की टोलियां निकल पड़ी हैं दही हांडी फोड़ने के लिए. कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाना शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ इस पर्व की आस्था और परंपरा का कलेवर बदला. उत्सव में जोश और रोमांच का रंग और गहरा हुआ, जिनके रंगों में आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश रंगा नजर आता है. मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे.

4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है और इससे पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। इसी कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हुए हैं। जन्माष्टमी से पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच गए। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। अब की बार जन्माष्टमी के मौके पर वो कान्हा की नगरी में मौजूद रहेंगे। जन्माष्टमी से पहले सीएम मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुन्हे बाल गोपाल से हो गई। एक कार्यक्रम में सीएम योगी को श्री कृष्ण की पोशाक में सजा ये प्यारा सा बच्चा दिखा तो इसे गोद में लेने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाए। बाल कृष्ण भी सीएम की गोद में खेलकर खुश नजर आया। वैसे आपको बता दें, इस समय पूरे मथुरा में माहौल कृष्णमय हो चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। आज जन्मभूमि मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी से पहले कैसा है माहौल।

अनंत काल चक्र से घूमती आई धरती 5000 साल पहले द्वापर युग के इस एक लम्हे पर आकर थम गई थी, जब ब्रजमंडल के मथुरा में मौजूद एक कारागार में सनातन धर्म के सौभाग्य का चंद्र उदय हुआ था। कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की एक काल कोठरी में प्रकाश बनकर प्रकट हुए थे नारायण। माँ देवकी की कोख से अजन्मे का जन्म हुआ। काली अंधेरी रात में नए जीवन और उल्लास के उजाले से ब्रज की धरा गमक उठी। यूं तो श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में पढ़ा और सुना जा सकता है, लेकिन कृष्णावतार के प्राकट्य और उसके उल्लास को अपनी आँखों से देखना हो, महसूस करना हो, तो आप मथुरा वृंदावन चले जाइए।

0: द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में जीवंत होगी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नाचते गाते सैकड़ों कलाकार और हजारों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सज धज कर तैयारी। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा की जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस खास मौके पर सबकी नजर खास तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर रहेगी।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्म मंदिर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस मौके पर करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ब्रज पहुंचने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बेहद खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास सौगात भेजी गई है। इनमें चांदी की चम्मच, पायजेब, मुरली और कंगन शामिल है और भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भी पहुंचा है। तो वहीं पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित पुष्प, वस्त्र, मेवा, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, मोर पंख और बांसुरी समेत अन्य मंगल सामग्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अयोध्या से मथुरा भेजी गई है। यानी काशी, उज्जैन, अयोध्या हो या फिर मथुरा, मंदिर हो या घर द्वार, यशोदा नंदन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर पूरी हैं। बस इंतजार है तो कान्हा के आने का। और इसी इंतजार के बीच गुड न्यूज टुडे भी निकल पड़ा है श्री कृष्ण के नगर की ओर, जहां शहर के प्रवेश द्वार से ही कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्य वसाम्य हम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंगमंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ, करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है। स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, भजन कीर्तन भोग राग की तैयारियां चल रही हैं और उपवास की भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको उसके नजदीक बैठना होगा, उपवास करना होगा। और उसी उपवास की तैयारियों के साथ एक उत्सव का वातावरण लगातार चल रहा है। ब्रजमंडल में आप दाखिल होंगे, उससे पहले आपको वहां के आनंद की खुशबू, आपको वहां के आनंद के झोंके, झकोरे आपको लिए चलते हैं अंदर, जहां ये जय घोष चल रहा है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बूढ़न को हाथी घोड़ा, ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आइए चलिए हमारे साथ और हम चलते हैं अब मथुरा और ब्रजमंडल के दिव्य यात्रा पर, वो भी जन्माष्टमी के पावन पर्व का उत्सव और आनंद मनाने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। मेरे साथ चलिए कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, मथुरा।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव भले ही कल मध्यरात्रि में मनाया जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी के सिलसिले में धार्मिक उत्सवों का सिलसिला देश भर में पहले से शुरू हो चुका है। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां यहाँ कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फूल मंगवाए गए। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग की गई। शाम होते ही मंदिर खूबसूरत लाइटिंग से जगमगा उठता है। वैसे दिल्ली ही क्या, ये नजारा देश भर में शहर शहर दिखाई देता है। जन्माष्टमी से पहले झांसी, भोपाल, पटना समेत कई शहरों में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं को कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में इस्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो कहीं कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है।
1: तो इस्कॉन वालों ने इतना अच्छा यहाँ पर वृंदावन जैसा माहौल दिया है, मुझे आके यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने कान्हा जी की एक तस्वीर ली है, कान्हा जी का पगड़ी लिया है और ये माला भी लिया है उनका। ये देखिए कितना सुंदर सा पीले कलर का मैंने उनका पोशाक लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस्कॉन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ झांसी में ही पूरा पूरा वृंदावन का माहौल दे दिया है। हरे कृष्णा।
0: वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया।
2: भगवान ने जहां एक बार अपने हाथ से कोई भी चीज को छोड़ा, दोबारा उससे कभी मोह नहीं रखा। भगवान ने अपने कदम बढ़ाए जब गोकुल वृंदावन से, तो दोबारा हम कभी किसी साहित्य में उनको माखन खाते नहीं देखते। भगवान के हाथ से बांसुरी जो गोकुल वृंदावन में राधा को हाथ में सुपुर्द की, दोबारा उनके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देखी गई। ऐसे कई सारी बातें हैं जीवन के अंदर, हम सब भी ऐसी कई चीजों से प्रेरणा पा सकते हैं।
0: वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कालिया मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल दिन भर जीएनटी पर ऐसे ही तमाम तस्वीरें जन्माष्टमी से जुड़े हुए रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं। नमस्कार।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा? क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान? जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राजपूत। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कान्हा के जन्मोत्सव की, जिसकी धूम ब्रज से लेकर द्वारका तक है, बद्रीनाथ धाम से लेकर मुंबई तक है, और कन्हैया के प्राकट्य का सभी को इंतजार है बेसब्री से। उनके स्वागत के लिए मंदिरों को रोशनी से सजा दिया गया है। आज आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर आज ठाकुर जी की दिव्य पोशाकी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की झांकियां आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ मथुरा की भव्य सजावट भी आपको तमाम दिखाने जा रहे हैं। मथुरा की तरह द्वारका में भी जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको भगवान कृष्ण की द्वारका धाम की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा दिल्ली NCR में जन्मोत्सव की धूम जबरदस्त है, वो भी दिखाएंगे। इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव पर क्या तैयारियां हैं और भगवान को कैसा भोग लगेगा, ये सब विस्तार से आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्म स्थान और बद्रीनाथ धाम की अद्भुत तस्वीरों के साथ। देखिए, दोनों मंदिरों की भव्य सजावट की गई है, ऐसा लगता है जैसे सितारों से मंदिर को सजा दिया गया हो। दो तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ में पहली बार इस तरह की लाइटिंग की गई है। रात में रंग बिरंगी रोशनी के बीच बद्रीनाथ मंदिर का ये दृश्य आनंद से भर देने वाला है। इसी तरीके से देखिए, मथुरा में कान्हा का धाम इंद्रधनुषी रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ है। मंदिर के जगमगाते शिखर को दूर से ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। मथुरा में जन्मोत्सव से पहले आज भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 9 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि से यात्रा शुरू हुई और पूरा माहौल जो है भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान उठा। बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों और भक्ति संगीत की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए नजर आए। उनके हाथों में धार्मिक झंडे थे और वो लगातार भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। पूरा रास्ता कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। इस शोभा यात्रा में मथुरा के स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इन कलाकारों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और ब्रज की संस्कृति की जीवंत कर दिया उसको। कई सुंदर झांकियां और कलाकारों के प्रदर्शन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव दे गए। तस्वीरें देखिए। देखिए, ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक अपने चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है। मथुरा में कदम रखते ही भक्ति रंग और रोशनी का ऐसा संगम नजर आ रहा है मानो पूरी नगरी कान्हा के स्वागत में सज उठी हो। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर शहर की गलियों तक हर तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर द्वारका में भी जगत मंदिर जन्माष्टमी के लिए तैयार है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब आधी रात को दोनों धामों में कन्हैया के प्राकट्य के साथ जयकारों से आसमान गूंज उठेगा। रिपोर्ट देखिए।

0: बारह का इंतजार तो सभी को है, पर ब्रज की बात निराली। यहाँ तो कण कण में कृष्ण कन्हाई है, इसलिए जब जन्मोत्सव की घड़ी आई है, इस इलाके की भव्यता देखते बनती है। नगर में प्रवेश के साथ मथुरा की भव्यता मन मोह लेती है, और रही श्रद्धालुओं के स्वागत की बात, तो उसकी शुरुआत मथुरा से पहले ही भक्ति पथ पर शुरू हो जाती है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है, और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंभे हैं। इन खंभों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं, और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंभे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्यहम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं, और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है, और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है।
2: ना केवल सजावट हमने बनाया और डिजाइन भी किया इसको, और वाई दे आर 84, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 84 कोसी यात्रा और 84 लाख योनियां, उनको ध्यान में रखते हुए द कॉन्सेप्ट इज सच कि 84 ये खंभे हैं और 84 लाख योनियों को जब इंसान क्रॉस करता है तब हम लोग जिस इस मनुष्य का जीवन पाते हैं। तो हर एक खंभा 1 लाख योनि को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर गायें हैं। आपने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं गायों के बीच में बसता हूँ, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ऊपर कदम कृष्ण कमल है, आप देखेंगे मैं नीचे तो, और राधे राधे, क्योंकि पूरे वृंदावन मथुरा में कोई नमस्ते तो कहता नहीं है,
1: सब
2: जैसे राधे राधे कहते हैं, तो राधे राधे इज द वर्ड। देन ऊपर है माधव और राधा, जो यहाँ की भक्ति का, जो कृष्ण की भक्ति, ब्रज की भक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
1: निष्कपट भक्ति जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है।
2: जी जी, एब्सोल्युटली। और फिर हम देखते हैं सुदर्शन चक्र, ये कहता है कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश के लिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने जब भी सुदर्शन चक्र उठाया उसको रिप्रेजेंट करता है। देन वी सी मयूर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमेशा हमने मयूर पंख देखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीचे ब्रज के मोटिव्स हैं, कदम के फूल हैं, पारिजात के फूल हैं, ये सब फूल वो हैं, मोटिव वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ते हैं।
0: शाम ढलती है और मथुरा में एंट्री के साथ ही रंग और रोशनी का भव्य संसार नजर आता है।

0: गजब की आभा है गिरधर गोपाल के धाम की। कुछ घंटे ही बाकी हैं, जब मथुरा में जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। इस मंदिर के परिसर में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। आयोजन बड़ा है, इसलिए तैयारी भी अभूतपूर्व है।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्म होकर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकाश व्यवस्था को करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखी है कि मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है अंदर भी और मंदिर के बाहरी परिसर में भी।
2: सभी सौभाग्यशाली हैं कि कल हम लोगों के आराध्य सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का 5253वां जन्मदिन भगवान जी की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे ब्रज को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट करके तैयारी की गई है। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
0: कन्हई न सिर्फ द्वारका बल्कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अंदाजा है कि जन्मोत्सव पर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ठाकुर जी से आस्था कैसे जुड़ी है इसे इन तस्वीरों से समझिए। जिसकी मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, जिसकी कृपा से जीवन संवर जाता है, उसी गिरधर गोपाल का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए उनके धाम पर श्रद्धालुओं का रेला है।
3: पहली बार आई हूँ द्वारका जी के यहाँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर प्रतिमा थी उनकी, क्या ही बताएं, हम नजर उतार दी हमने तो उनकी। उनका रूप और श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत था।
0: द्वारका के धाम में भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन होता है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुले में भगवान को स्नान कराया जाएगा और इसके बाद सुबह 9 बजे से आंतरिक पूजा संपन्न की जाएगी। रात में ठीक 12 बजे जगत मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आरती का आयोजन किया जाएगा। ब्रज हो या द्वारका, भगवान कृष्ण के नगरी में जन्मोत्सव की विशेष तैयारी है। प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के उत्सव को देखने, उसमें डूब जाने के लिए कृष्ण भक्त भी तैयार हैं। मथुरा से संजय शर्मा और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, दिल्ली के स्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां हैं। फूलों से भव्य सजावट की गई है और रोशनी से मंदिर पूरी तरीके से जगमगा रहा है। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग स्कॉन मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान की भव्य आरती और विशेष भोग पर जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता श्वेता झा।
5: इस वक्त पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और तैयारियां हर मंदिर में, हर घर में हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ईस्ट ऑफ कैलाश स्कॉन में है, जहां पर सीधे आप देख सकते हैं ठाकुर जी को। श्री कृष्ण और राधा रानी आज पीतांबर वस्त्र इन्होंने पहना है, धारण किया हुआ है, लेकिन कल विशेष करके वृंदावन से इनके लिए वस्त्र आए हैं और उन वस्त्रों को ये धारण करेंगे, जो विशेष करके मोर के रूप में पूरी तरह से उसे डेकोरेट किया गया है, उसकी डिटेलिंग की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण को मोर कितने प्रिय हैं, मोर पंख वो खुद अपने मुकुट में हमेशा लगाए रहते हैं, तो कल जो वस्त्र है उसकी डिजाइनिंग भी वैसी ही की गई है। भव्य साज सज्जा आज पूरी रात यहाँ पर चलने वाली है। भक्तों की कतार आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि आज जो भक्त हैं वो शाम की आरती में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कल की तैयारी किस तरह से होने वाली है।
6: भगवान का जब देशी विदेशी फूलों से पूरे प्रांगण को सजाया जाएगा और इसमें झांकियां बड़ी सुंदर हैं, भगवान की लीलाओं पर आधारित झांकियां हैं। लाइटिंग की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और फाउंटेन चल रहा है, पूरा आनंद ही आनंद रहेगा।

0: ये जो तैयारी है वास्तव में जितने श्रद्धालु आएंगे उनको आनंद देने वाला है।
1: कान्हा के जन्म का इंतजार अब बस कुछ घंटों का ही है। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिर कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। कहीं फूलों और रोशनी से भव्य सजावट हुई है तो कहीं पर भजन कीर्तन और कृष्ण लीला के जरिए भक्तों का उत्साह चरम पर है। ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन मंदिर जन्मोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर झांसी में बारिश के बावजूद युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। अब निगाहें उस खास घड़ी पर है जब आधी रात को बाल गोपाल का जन्म होगा और गूंजेगा जय कन्हैया लाल की। रिपोर्ट देखिए।

0: चारों ओर उमंग, एक ही पुकार, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जिनके शरण में सुकून है, अब उन्हीं नटखट नंदलाल के जन्म का इंतजार है। खास दिन है, खास घड़ी है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। साल भर के इंतजार के बाद वो घड़ी फिर से आने वाली है, जब आधी रात को सोहर गाए जाएंगे, बधाइयां होंगी और हर तरफ बस एक ही जय घोष सुनाई देगा, जय कन्हैया लाल की। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिरों की सजावट पूरी हो चुकी है, तैयारियां अंतिम दौर में है। कहीं फूलों से श्रृंगार हो रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी में कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो रही हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। रोशनी से जगमग पूरा मंदिर परिसर, अलग अलग रंगों की लाइट्स के बीच भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई दे रही है।
1: यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई है। यहाँ पर शुक्रवार को सुबह 4 बजे से आयोजन शुरू होगा, जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, अच्छे से सजावट की गई है और भक्तों में खूब उत्साह दिख रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले से ही, और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है।
0: मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर बेहिसाब खुशी है। कोई कान्हा के दर्शन की तैयारी में है तो कोई इस खूबसूरत सजावट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है, लिहाजा भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। दर्शन के लिए कतारों की व्यवस्था भी है, ताकि आस्था की इस भीड़ में हर भक्त को सहजता के साथ अपने आराध्य के दर्शन हो सके।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां हैं वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कृष्ण मंदिरों में जो है तैयारियां जोरों पर है और ईस्ट ऑफ कैलाश का ये इस्कॉन मंदिर कल होने वाले भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर में चाहे सजावट की बात हो, भोग की बात हो, भक्तों की व्यवस्था की बात हो, हर तरीके से मंदिर जो है इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
0: इसी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाएगा। भक्तों के लिए कपाट सुबह करीब 4 बजे खुलेंगे। दिन भर पूजा पाठ, भजन और कीर्तन का सिलसिला चलेगा और जब घड़ी की सुई मध्य रात्रि के करीब पहुंचेगी, आधी रात में बाल गोपाल का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, आरती उतारी जाएगी और जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाएंगी।
2: पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो कल ये मंदिर जो है सुबह 4 बजे जो है वो मंदिर जो है मंदिर परिसर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा सुबह 4 बजे से, और उसके बाद ही भक्तों का तांता आपको इस मंदिर में जो है वो दिखने वाला है। तो अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूरा दिन ही लोगों के लिए कल शुभ रहने वाला है। लोग सुबह से ही जो है दर्शन करने आएंगे और रात को 9 बजे के बाद से ही जो है अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को जो है अलग अलग फलों के रसों से जो है अलग अलग ड्राई फ्रूट से जो है उनका अभिषेक जो है किया जाएगा। तो हम कोई एक समय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कल 9 बजे के बाद से जो है जलाभिषेक शुरू कर दिया जाएगा, उनके अभिषेक की हर एक प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और उससे पहले हर कोई भक्त जो है यहाँ पर आकर जो है उनके विशेष दर्शन करेगा। मंदिर की तस्वीरें भी एक बार दिखा दी थी क्योंकि ऑल्टर अभी थोड़ी देर पहले खुला है, तो मैं दर्शन करवा दूं कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ जो है राधा रानी और श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया। और भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपको अच्छी खासी भीड़ जो है भक्तों की नजर आ जाएगी। हर कोई बस उनके दर्शन के लिए आतुर है कि हम एक झलक आज उनकी जरूर पा लें, क्योंकि कल तो आएंगे लेकिन कल काफी ज्यादा भीड़ मिलने वाली है, लेकिन अभी वो तसल्ली से जो है अपने प्रभु को जो है देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाऊंगी तो यहाँ पर लगातार जो है भजन मंडली बैठी हुई है, वो लगातार जो है अपने भजन जो है अपने प्रिय को सुना रही है और उसी में झूमते हुए जो भक्त है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो वाकई में इस वक्त मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें है वो वाकई में खास हो चुकी है। और अगर हम सिर्फ जन्माष्टमी की बात करें ना दीपाली, तो ये एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि ये श्री कृष्ण के जीवन और उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको याद करने का भी अवसर है। और पूरे साल जो है हर कोई इंतजार करता है कि कब जन्माष्टमी आएगी और उसके बाद जो है हर कोई उनके जन्मोत्सव में जो है शामिल होगा, मंदिरों का रुख करेंगे।
0: ये रौनक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि झांसी का क्राफ्ट मेला मैदान भी कृष्ण भक्ति में डूबा है। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मेगा फेस्टिवल में बारिश भी युवाओं के उत्साह को रोक नहीं पाई। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। किसी ने भक्ति गीतों पर सुर मिलाए, किसी ने रॉक बैंड के साथ तालियां बजाई, तो भक्ति रैप ने युवाओं को खास अंदाज में जोड़ दिया।
3: युवाओं को प्रेरणा देने के लिए भगवत गीता आदि में जो बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं मन पर संयमित रखने के लिए, तो इन्हीं के उद्देश्य से बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सुंदर शिक्षाएं, रॉक बैंड आदि का कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव का आयोजन होगा।
0: मंच पर हो रही कृष्ण लीला ने पूरा माहौल बदल दिया। देवकी वासुदेव से लेकर नंद के आंगन तक श्री कृष्ण के जन्म की कथा जैसे आंखों के सामने उतर आई हो। कान्हा के स्वरूप में कलाकारों का नृत्य, भावपूर्ण अभिनय और जन्म प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। कई आंखें नम हो गई तो कई चेहरे भक्ति में खिल उठे। और इसी परिसर में सजा है वृंदावन बाजार, जहां कान्हा की पोशाक, पगड़ी, माला, तस्वीरें, भगवत गीता और बच्चों के लिए गोपी ड्रेस तक मिल रही है। यानी झांसी में ही ब्रजधाम जैसा पूरा एहसास है। बस अब इंतजार जन्माष्टमी के आधी रात का है, जब घड़ी 12 बजाएगी, मंदिरों में घंटियां गूंजेंगी, आरती के स्वर उठेंगे और भक्तों की आंखों के सामने बाल गोपाल का प्राकट्य होगा। क्योंकि ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, उस प्रेम का उत्सव है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, आशुतोष कुमार, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, भक्त अपने आराध्य को पालने में झुलाने के लिए भी खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आस्थानी बाजार में चांदी के खूबसूरत पालनों की मांग बढ़ा दी है। सूरत के बाजार में छोटे से लेकर लाखों रुपए तक के पालने तैयार किए जा रहे हैं। कहीं शुद्ध चांदी का पालना है तो कहीं पर लकड़ी पर चांदी की नक्काशी, आकर्षक का काम उसमें किया गया है। जन्माष्टमी पर कान्हा को पालना भेंट करने की परंपरा अब नए रंग रूप के साथ बाजार में नजर आ रही है।

0: कान्हा को पालने में झुलाने का सौभाग्य, उन्हें प्यार करने का सुख, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मैया यशोदा को द्वापर में मिला। भक्ति स्नेह अपनत्व की उसी डोर से कन्हैया आज भी पालने में झुलाए जाते हैं। कहते नंदगांव में यशोदा ने कन्हैया के लिए चंदन की लकड़ी का पालना बनवाया था, पर इस दौर पर चांदी का भी ऑप्शन था। वैसे तो चांदी इन दिनों आसमान चढ़ी है, पर जैसे शक्ति वैसी भक्ति। बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनके लिए कान्हा के आगे कीमत मायने नहीं रखती। उनकी डिमांड पर सूरत के इस शोरूम में भांति भांति के पालने तैयार हैं।
1: हर जन्माष्टमी पे हर कृष्ण भक्त तो ऐसा रहता है कि हम अपने कृष्ण भगवान को चांदी के पाना, चांदी के झूले में झुलावे और फिर उसका जन्मोत्सव मनाए। उसको देखते हुए कस्टमर हमारे पास में आते हैं और चांदी के झूले के बारे में पूछते हैं और लेके जाते हैं और चांदी के झूले का ऑर्डर भी देते हैं। ये टाइम पे हमने जो बनाया हुआ है, हमने एक वैरायटी रखा हुआ है कि हमने 20 ग्राम से छोटा एक जो मन में भाव रहता है उसके लिए छोटे से छोटा 20 ग्राम का भी बनाया हुआ है झूला, और हमने 2 किलो का झूला भी रेडी रखा हुआ है। साथ साथ में भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो भी 20 ग्राम से लेके 1 किलो तक की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रहती है, वो दोनों चीज हमने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये टाइम पे कस्टमर ने जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, क्योंकि चांदी का रेट हर साल पे बढ़ता रहता है, तो कस्टमर ने सोचा कि अगले साल पे अगर चांदी का रेट बढ़ जाता है तो ये साल पे लेना अच्छा है। तो कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी चांदी का झूला ये टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड रही। इस टाइम पे राखी और चांदी के झूले की डिमांड चांदी के रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रहा।
0: चांदी के पालने के साथ ही भावना तो जुड़ी ही है, पर चांदी के भाव देखते हुए इसे एक अच्छा निवेश भी माना जा रहा है। बजट नहीं है तो 10 ग्राम का पालना लीजिए, और पैसे हैं तो 2 किलो तक का विकल्प भी मौजूद है। कीमत 3,000 से 8 लाख रुपए तक है। हाँ, लेकिन जिस तरह चांदी की कीमतें बढ़ी, लग रहा था कि पालनों की खरीदारी में कमी आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जन्माष्टमी के मौके पर पालना खरीदने की होड़ लगी है। बेशक बजट के हिसाब से बाजार में नए नए अंदाज के पालने मौजूद हैं। लकड़ी के पालने पर चांदी की लेयरिंग और उस पर बेहतरीन नक्काशी, ऐसे लकड़ी और चांदी के मिले जुले पालने श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहे हैं।
2: जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है तो हम आज लड्डू गोपाल के लिए झूला देखने के लिए आए हैं। तो इस ज्वेलरी शॉप पे बहुत सारे सिल्वर के झूले बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं, तो आज हम वही देखने के लिए आए हैं। दिन ब दिन प्राइस तो बहुत बढ़ते जा रहा है। पिछले साल जो प्राइस था उस हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और हमको ऐसा लगता है प्रेडिक्शन ये कि आगे चल के फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी और त्योहार आ रहा है उसको देखते हुए भी आज हम सिल्वर का झूला तो जरूर खरीदेंगे। हम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, हमारे घर में हम सब कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक तरह से मेन त्योहार है, तो उसको हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, तो उसी के लिए हम झूला तो जरूर लेंगे।
0: चांदी के पालनों की डिमांड भी अलग अलग वजहों से है। किसी को घर के मंदिर में कान्हा को पालने में विराजमान करना है, तो कोई जन्माष्टमी पर अपने इष्टदेव को पालना भेंट करना चाहता है। इसी तरह लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भी जबरदस्त डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है छोटे से बाल गोपाल की। भले ही श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में पले बढ़े, लेकिन अपने इस अवतार में उन्होंने बाल सुलभ लीलाओं का आनंद सारे संसार को दिया। वो भगवान हैं, नारायण के अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए वो वही नन्हे से बाल गोपाल हैं। गोकुल की गलियों में मस्ती करते माखन चुराते गोकुल की गलियों में माखन चुराते बाल कृष्ण की कहानियां आज भी बेहद श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती हैं। दही हांडी का पर्व माखन चोर कन्हैया की उन्हीं कहानियों से जुड़ा है। देश में इस पर्व को लेकर युवाओं के बीच में जबरदस्त उत्साह रहता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दही हांडी प्रतियोगिताओं की तैयारियां काफी लंबे वक्त से पहले शुरू हो गई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी से पहले मुंबई में दही हांडी को लेकर कैसा उत्साह बना है।

हजार साल पहले द्वापर युग में गोकुल के घर गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। माखन की मटकी फूट रही है, कान्हा माखन चुरा रहे हैं, बाल सखा के साथ मनमोहन मन भर कर माखन खा रहे हैं। सनातन धर्म की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध बेहद पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कान्हा की भक्ति में लीन संसार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाता और त्योहार की तरह मनाता आ रहा है। द्वापर काल में ब्रज की महिलाओं ने कान्हा की शरारतों से तंग आकर मथे हुए माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया था ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक पहुंचे ना। लेकिन नटखट कान्हा की समझदारी के आगे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाती थी। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी पौराणिक कहानी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ।

0: बरसों से जन्माष्टमी के त्योहार पर देश के कई इलाकों में दही हांडी के आयोजन होते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले इन आयोजनों की ख्याति सारी दुनिया में फैली। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के कई दिनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों की ऊर्जा से भरी ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गोविंदा जोर शोर से मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
1: 5 सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पतंग इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बाकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी, बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग, आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं। लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: अरे बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
3: बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
1: क्या आपको बताया कि दही हंडी सिर्फ मेल यानी कि पुरुषों का ही एक बहुत बड़ा खेल नहीं है, बल्कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, मंच सजा हुआ है जहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनकी भी कोई टीम होगी और सबको उन्होंने चीयर्स करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बताएं, दही हंडी महाराष्ट्र में यानी कि पिरामिड बनता है, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके 8 थर 9 थर लगा करके ऊंचे जहाँ पर एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही होती है उसे लटकाया जाता है। बाकायदा उसे सर से कोई फोड़ता है तो कोई नारियल से फोड़ता है, और कृष्ण जन्माष्टमी जो है मुंबई महाराष्ट्र अलग रूप में बनाया जाता है। लेकिन वाकई में बहुत ही एक तरह से खतरनाक खेल भी है, लेकिन बहुत साहसी खेल भी है।
0: वैसे तो जन्माष्टमी पर देश के कई इलाकों में दही हांडी उत्सव की रौनक दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का रंग कुछ और ही नजर आता है।

इस उत्सव के दौरान लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, जहां लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी की मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए 9 लेयर का पिरामिड बनाया जाता है। जो लड़का पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे लड़कों को हांडी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके मिलते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पूरे दही हांडी उत्सव के दौरान लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन जोर शोर से होने लगा था, लेकिन राज्य में इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा साल 2022 में दिया गया। महाराष्ट्र में इस उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया और इससे जुड़े कई नियम भी बना दिए। इन तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए आज भी जन्माष्टमी से पहले शहर भर में गोविंदा दही हांडी की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। अब के साल दही हांडी उत्सव में महिला गोविंदाओं का भी धमाल है। मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स के बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही है। जन्माष्टमी से पहले दही हांडी के लिए नारी शक्ति पूरी तरह तैयार दिख रही है।

0: कर करके ऊपर जाके जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दहेंडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना ज़रूरी है।
1: पर्व के जश्न में सराबोर ये लड़कियां निर्भया महिला गोविंदा पथक की सदस्य हैं, जो इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही।

0: हम लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया। हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है। हम लोग चार थोड़े लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दहीहंडी में।
1: पिछले 2 महीनों से यहाँ मौजूद छोटी बड़ी लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस और आपसी तालमेल पर फोकस कर प्रैक्टिस कर रही है।

0: भी जो सेफ्टी है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसी भी है चीज़ें. और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सके हम एक दूसरे को. उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं.
1: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गली गली दही हांडी के रंग बिखरे हैं. उत्सव की उमंग और रौनक से सारी मुंबई सराबोर है. गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गोविंदाओं की टोलियां निकल पड़ी हैं दही हांडी फोड़ने के लिए. कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाना शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ इस पर्व की आस्था और परंपरा का कलेवर बदला. उत्सव में जोश और रोमांच का रंग और गहरा हुआ, जिनके रंगों में आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश रंगा नजर आता है. मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.

4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है और इससे पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। इसी कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हुए हैं। जन्माष्टमी से पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच गए। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। अब की बार जन्माष्टमी के मौके पर वो कान्हा की नगरी में मौजूद रहेंगे। जन्माष्टमी से पहले सीएम मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुन्हे बाल गोपाल से हो गई। एक कार्यक्रम में सीएम योगी को श्री कृष्ण की पोशाक में सजा ये प्यारा सा बच्चा दिखा तो इसे गोद में लेने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाए। बाल कृष्ण भी सीएम की गोद में खेलकर खुश नजर आया। वैसे आपको बता दें, इस समय पूरे मथुरा में माहौल कृष्णमय हो चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। आज जन्मभूमि मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी से पहले कैसा है माहौल।

अनंत काल चक्र से घूमती आई धरती 5000 साल पहले द्वापर युग के इस एक लम्हे पर आकर थम गई थी, जब ब्रज मंडल के मथुरा में मौजूद एक कारागार में सनातन धर्म के सौभाग्य का चंद्र उदय हुआ था। कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की एक काल कोठरी में प्रकाश बनकर प्रकट हुए थे नारायण। माँ देवकी की कोख से अजन्मे का जन्म हुआ। काली अंधेरी रात में नए जीवन और उल्लास के उजाले से ब्रज की धरा गमक उठी। यूं तो श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में पढ़ा और सुना जा सकता है, लेकिन कृष्णावतार के प्राकट्य और उसके उल्लास को अपनी आँखों से देखना हो, महसूस करना हो, तो आप मथुरा वृंदावन चले जाइए।

0: द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नाचते गाते सैकड़ों कलाकार और हजारों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सज धज कर तैयारी। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस खास मौके पर सबकी नजर खास तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर रहेगी।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण मंदिर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर शोभायमान हो रहे हैं।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस मौके पर करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ब्रज पहुंचने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहाँ भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बेहद खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास सौगात भेजी गई है। इनमें चांदी की चम्मच, पायजेब, मुरली और कंगन शामिल है। भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भी पहुंचा है। तो वहीं पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित पुष्प, वस्त्र, मेवा, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, मोर पंख और बांसुरी समेत अन्य मंगल सामग्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अयोध्या से मथुरा भेजी गई है। यानी काशी, उज्जैन, अयोध्या हो या फिर मथुरा, मंदिर हो या घर द्वार, यशोदा नंदन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर पूरी हैं। बस इंतजार है तो कान्हा के आने का। और इसी इंतजार के बीच गुड न्यूज टुडे भी निकल पड़ा है श्री कृष्ण के नगर की ओर, जहां शहर के प्रवेश द्वार से ही कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है। पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं। और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्यहम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है। जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं। रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ, करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं। यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है। और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है। स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, भजन कीर्तन भोग राग की तैयारियां चल रही हैं और उपवास की भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको उसके नजदीक बैठना होगा, उपवास करना होगा। और उसी उपवास की तैयारियों के साथ एक उत्सव का वातावरण लगातार चल रहा है। ब्रजमंडल में आप दाखिल होंगे, उससे पहले आपको वहां के आनंद की खुशबू, आपको वहां के आनंद के झोंके, झकोरे आपको लिए चलते हैं अंदर, जहां ये जय घोष चल रहा है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बूढ़न को हाथी घोड़ा, जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आइए चलिए हमारे साथ और हम चलते हैं अब मथुरा और ब्रजमंडल के दिव्य यात्रा पर, वो भी जन्माष्टमी के पावन पर्व का उत्सव और आनंद मनाने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। मेरे साथ चलिए कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, मथुरा।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव भले ही कल मध्यरात्रि में मनाया जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी के सिलसिले में धार्मिक उत्सवों का सिलसिला देश भर में पहले से शुरू हो चुका है। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां यहाँ कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फूल मंगवाए गए। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग की गई। शाम होते ही मंदिर खूबसूरत लाइटिंग से जगमगा उठता है। वैसे दिल्ली ही क्या, ये नज़ारा देश भर में शहर शहर दिखाई देता है। जन्माष्टमी से पहले झांसी, भोपाल, पटना समेत कई शहरों में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं को कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में इस्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो कहीं कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है।
1: तो इस्कॉन वालों ने इतना अच्छा यहाँ पर वृंदावन जैसा माहौल दिया है, मुझे आके यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने कान्हा जी की एक तस्वीर ली है, कान्हा जी का पगड़ी लिया है और ये माला भी लिया है उनका। ये देखिए कितना सुंदर सा पीले कलर का मैंने उनका पोशाक लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस्कॉन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ झांसी में ही पूरा पूरा वृंदावन का माहौल दे दिया है। हरे कृष्णा।
0: वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है।
2: सरकार
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया।
3: भगवान ने जहां एक बार अपने हाथ से कोई भी चीज को छोड़ा, दोबारा उससे कभी मोह नहीं रखा। भगवान ने अपने कदम बढ़ाए जब गोकुल वृंदावन से, तो दोबारा हम कभी किसी साहित्य में उनको माखन खाते नहीं देखते। भगवान के हाथ से बांसुरी जो गोकुल वृंदावन में राधा को हाथ में सुपुर्द की, दोबारा उनके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देखी गई। ऐसे कई सारी बातें हैं जीवन के अंदर, हम सब भी ऐसी कई चीजों से प्रेरणा पा सकते हैं।
0: वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कालिया मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल दिन भर जीएनटी पर ऐसे ही तमाम तस्वीरें जन्माष्टमी से जुड़े हुए रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी है। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राजपुकार। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कान्हा के जन्मोत्सव की, जिसकी धूम ब्रज से लेकर द्वारका तक है, बद्रीनाथ धाम से लेकर मुंबई तक है, और कन्हैया के प्राकट्य का सभी को इंतजार है बेसब्री से। उनके स्वागत के लिए मंदिरों को रोशनी से सजा दिया गया है। आज आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर आज ठाकुर जी की दिव्य पोशाकी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की झांकियां आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ मथुरा की भव्य सजावट भी आपको तमाम दिखाने जा रहे हैं। मथुरा की तरह द्वारका में भी जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको भगवान कृष्ण की द्वारका धाम की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा दिल्ली NCR में जन्मोत्सव की धूम जबरदस्त है, वो भी दिखाएंगे। इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव पर क्या तैयारियां हैं और भगवान को कैसा भोग लगेगा, ये सब विस्तार से आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्म स्थान और बद्रीनाथ धाम की अद्भुत तस्वीरों के साथ। देखिए, दोनों मंदिरों की भव्य सजावट की गई है, ऐसा लगता है जैसे सितारों से मंदिर को सजा दिया गया हो। दो तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ में पहली बार इस तरह की लाइटिंग की गई है। रात में रंग बिरंगी रोशनी के बीच बद्रीनाथ मंदिर का ये दृश्य आनंद से भर देने वाला है। इसी तरीके से देखिए, मथुरा में कान्हा का धाम इंद्रधनुषी रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ है। मंदिर के जगमगाते शिखर को दूर से ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। मथुरा में जन्मोत्सव से पहले आज भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 9 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि से यात्रा शुरू हुई और पूरा माहौल जो है भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान होता। बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों और भक्ति संगीत की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए नजर आए। उनके हाथों में धार्मिक झंडे थे और वो लगातार भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। पूरा रास्ता कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। इस शोभा यात्रा में मथुरा के स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इन कलाकारों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और ब्रज की संस्कृति की जीवंत कर दिया उसको। कई सुंदर झांकियां और कलाकारों के प्रदर्शन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव दे गए। तस्वीरें देखिए।

में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक अपने चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है। मथुरा में कदम रखते ही भक्ति रंग और रोशनी का ऐसा संगम नजर आ रहा है मानो पूरी नगरी कान्हा के स्वागत में सज उठी हो। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर शहर की गलियों तक हर तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर द्वारका में भी जगत मंदिर जन्माष्टमी के लिए तैयार है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब आधी रात को दोनों धामों में कन्हैया के प्राकट्य के साथ जयकारों से आसमान गूंज उठेगा। रिपोर्ट देखिए।

0: बारह का इंतजार तो सभी को है, पर ब्रज की बात निराली। यहाँ तो कण कण में कृष्ण कन्हाई है, इसलिए जब जन्मोत्सव की घड़ी आई है, इस इलाके की भव्यता देखते बनती है। नगर में प्रवेश के साथ मथुरा की भव्यता मन मोह लेती है, और रही श्रद्धालुओं के स्वागत की बात, तो उसकी शुरुआत मथुरा से पहले ही भक्ति पथ पर शुरू हो जाती है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है, और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंभे हैं। इन खंभों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं, और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंभे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्यहम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं, और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है, और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है।
2: ना केवल सजावट हमने बनाया और डिजाइन भी किया इसको, और वाई दे आर 84, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 84 कोसी यात्रा और 84 लाख योनिया, उनको ध्यान में रखते हुए द कॉन्सेप्ट इज सच कि 84 ये खंभे हैं और 84 लाख योनियों को जब इंसान क्रॉस करता है तब हम लोग इस मनुष्य का जीवन पाते हैं। तो हर एक खंभा 1 लाख योनि को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर गायें हैं। आपने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं गायों के बीच में बसता हूँ, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ऊपर कदम कृष्ण कमल है, आप देखेंगे, मैं नीचे तो, और राधे राधे, क्योंकि पूरे वृंदावन मथुरा में कोई नमस्ते तो कहता नहीं है,
1: सब
2: जैसे राधे राधे कहते हैं, तो राधे राधे इज द वर्ड। देन ऊपर है माधव और राधा, जो यहाँ की भक्ति का, जो कृष्ण की भक्ति, ब्रज की भक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
1: निष्कपट भक्ति जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है।
2: जी जी, एब्सोल्युटली। और फिर हम देखते हैं सुदर्शन चक्र, ये कहता है कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश के लिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने जब भी सुदर्शन चक्र उठाया उसको रिप्रेजेंट करता है। देन वी सी मयूर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमेशा हमने मयूर पंख देखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीचे ब्रज के मोटिव्स हैं, कदम के फूल हैं, पारिजात के फूल हैं, ये सब फूल वो हैं, मोटिव वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ते हैं।
0: शाम ढलती है और मथुरा में एंट्री के साथ ही रंग और रोशनी का भव्य संसार नजर आता है। इंद्रधनुषी रंगों से गुलजार रास्ते, जगमगाते चौक चौराहे, फूलों से सजे मकान दुकान, हर जुबान पर राधे राधे और कृष्ण का नाम। स्वर्ग जैसी है कृष्ण जन्मभूमि की सजावट, रोशनी से जगमगाता मंदिर और दूर से दिखाई दे रहा शिखर, गजब की आभा है गिरधर गोपाल के धाम की। कुछ घंटे ही बाकी हैं जब मथुरा में जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। इस मंदिर के परिसर में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। आयोजन बड़ा है, इसलिए तैयारी भी अभूतपूर्व है।
3: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्मोत्सव भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी, एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया, उसी भाव

0: छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकाश व्यवस्था को करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखी है कि मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है अंदर भी और मंदिर के बाहरी परिसर में भी।
1: सभी सौभाग्यशाली हैं कि कल हम लोगों के आराध्य सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का 5253वां जन्मदिन भगवान जी की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे ब्रज को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट करके तैयारी की गई है। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
2: कन्हैया सिनाता सिर्फ ब्रज का नहीं द्वारका का भी है और वहाँ जगत मंदिर में जन्मोत्सव की धूम देखते बनती है। न सिर्फ द्वारका बल्कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अंदाजा है कि जन्मोत्सव पर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ठाकुर जी से आस्था कैसे जुड़ी है इसे इन तस्वीरों से समझिए। जिसकी मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, जिसकी कृपा से जीवन समर जाता है, उसी गिरधर गोपाल का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए उनके धाम पर श्रद्धालुओं का रेला है।
3: पहली बार आई हूँ द्वारका जी के यहाँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर प्रतिमा थी उनकी, क्या ही बताया, नजर उतार दी हमने तो उनकी। उनका रूप और श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत था।
2: द्वारका के धाम में भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन होता है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुले में भगवान को स्नान कराया जाएगा और इसके बाद सुबह 9 बजे से आंतरिक पूजा संपन्न की जाएगी। रात में ठीक 12 बजे जगत मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आरती का आयोजन किया जाएगा। ब्रज हो या द्वारका, भगवान कृष्ण के नगरी में जन्मोत्सव की विशेष तैयारी है। प्रेम भक्ति और श्रद्धा के उत्सव को देखने उसमें डूब जाने के लिए कृष्ण भक्त भी तैयार हैं। मथुरा से संजय शर्मा और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां हैं। फूलों से भव्य सजावट की गई है और रोशनी से मंदिर पूरी तरीके से जगमगा रहा है। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग इस्कॉन मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान की भव्य आरती और विशेष भोग पर जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा।
5: इस वक्त पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और तैयारियां हर मंदिर में हर घर में हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ईस्ट ऑफ कैलाश स्कॉन में है जहां पर सीधे आप देख सकते हैं ठाकुर जी को। श्री कृष्ण और राधा रानी आज पीतांबर वस्त्र इन्होंने पहना है, धारण किया हुआ है, लेकिन कल विशेष करके वृंदावन से इनके लिए वस्त्र आए हैं और उन वस्त्रों को ये धारण करेंगे जो विशेष करके मोर के रूप में पूरी तरह से उसे डेकोरेट किया गया है, उसकी डिटेलिंग की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण को मोर कितने प्रिय हैं। मोर पंख वो खुद अपने मुकुट में हमेशा लगाए रहते हैं, तो कल जो वस्त्र है उसकी डिजाइनिंग भी वैसी ही की गई है। भव्य साज सज्जा आज पूरी रात यहाँ पर चलने वाली है। भक्तों का की कतार आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि आज जो भक्त हैं वो शाम की आरती में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कल की तैयारी किस तरह से होने वाली है।
6: भगवान का जो देशी विदेशी फूलों से पूरे प्रांगण को सजाया जाएगा और इसमें झांकियां बड़ी सुंदर हैं। भगवान की लीलाओं पर आधारित झांकियां हैं, लाइटिंग की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और फाउंटेन चल रहा है, पूरा आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये जो तैयारी है वास्तव में जितने श्रद्धालु आएंगे उनको आनंद देने वाला है।
4: कान्हा के जन्म का इंतजार अब बस कुछ घंटों का ही है। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिर कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। कहीं फूलों और रोशनी से भव्य सजावट हुई है तो कहीं पर भजन कीर्तन और कृष्ण लीला के जरिए भक्तों का उत्साह चरम पर है। ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन मंदिर जन्मोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर झांसी में बारिश के बावजूद युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। अब निगाहें उस खास घड़ी पर हैं जब आधी रात को बाल गोपाल का जन्म होगा।

0: एक ही पुकार, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिनके शरण में सुकून है, अब उन्हीं नटखट नंदलाल के जन्म का इंतजार है। खास दिन है, खास घड़ी है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। साल भर के इंतजार के बाद वो घड़ी फिर से आने वाली है, जब आधी रात को सोहर गाए जाएंगे, बधाइयां होंगी और हर तरफ बस एक ही जय घोष सुनाई देगा, जय कन्हैया लाल की। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिरों की सजावट पूरी हो चुकी है, तैयारियां अंतिम दौर में है। कहीं फूलों से श्रृंगार हो रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी में कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो रही हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। रोशनी से जगमग पूरा मंदिर परिसर, अलग अलग रंगों की लाइट्स के बीच भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई दे रही है।
1: यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई है। यहाँ पर शुक्रवार को सुबह 4 बजे से आयोजन शुरू होगा, जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, अच्छे से सजावट की गई है और भक्तों में खूब उत्साह दिख रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले से ही, और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है।
0: मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर बेहिसाब खुशी है। कोई कान्हा के दर्शन की तैयारी में है तो कोई इस खूबसूरत सजावट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है, लिहाजा भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। दर्शन के लिए कतारों की व्यवस्था भी है, ताकि आस्था की इस भीड़ में हर भक्त को सहजता के साथ अपने आराध्य के दर्शन हो सके।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां है वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कृष्ण मंदिरों में जो है तैयारियां जोरों पर है, और ईस्ट ऑफ कैलाश का ये इस्कॉन मंदिर कल होने वाले भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर में चाहे सजावट की बात हो, भोग की बात हो, भक्तों की व्यवस्था की बात हो, हर तरीके से मंदिर जो है इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
0: इसी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाएगा। भक्तों के लिए कपाट सुबह करीब 4 बजे खुलेंगे। दिन भर पूजा पाठ, भजन और कीर्तन का सिलसिला चलेगा, और जब घड़ी की सुई मध्य रात्रि के करीब पहुंचेगी, आधी रात में बाल गोपाल का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, आरती उतारी जाएगी और जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाएंगी।
2: पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो कल ये मंदिर जो है सुबह 4 बजे जो है वो मंदिर जो है मंदिर परिसर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा सुबह 4 बजे से, और उसके बाद ही भक्तों का तांता आपको इस मंदिर में जो है वो दिखने वाला है। तो अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूरा दिन ही लोगों के लिए कल शुभ रहने वाला है। लोग सुबह से ही जो है दर्शन करने आएंगे और रात को 9 बजे के बाद से ही जो है अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को जो है अलग अलग फलों के रसों से जो है अलग अलग ड्राई फ्रूट से जो है उनका अभिषेक जो है किया जाएगा। तो हम कोई एक समय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कल 9 बजे के बाद से जो है जलाभिषेक शुरू कर दिया जाएगा, उनके अभिषेक की हर एक प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी, और उससे पहले हर कोई भक्त जो है यहाँ पर आकर जो है उनके विशेष दर्शन करेगा। मंदिर की तस्वीरें भी एक बार दिखा दी थी क्योंकि ऑल्टर अभी थोड़ी देर पहले खुला है, तो मैं दर्शन करवा दूं कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ जो है राधा रानी और श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया। और भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपको अच्छी खासी भीड़ जो है भक्तों की नजर आ जाएगी। हर कोई बस उनके दर्शन के लिए आतुर है कि हम एक झलक आज उनकी जरूर पा लें, क्योंकि कल तो आएंगे आएंगे लेकिन कल काफी ज्यादा भीड़ मिलने वाली है, लेकिन अभी वो तसल्ली से जो है अपने प्रभु को जो है देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाऊंगी तो यहाँ पर लगातार जो है भजन मंडली बैठी हुई है, वो लगातार जो है अपने भजन जो है अपने प्रिय को सुना रही है, और उसी में झूमते हुए जो भक्त है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो वाकई में इस वक्त मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें है वो वाकई में खास हो चुकी है। और अगर हम सिर्फ जन्माष्टमी की बात करें ना दीपाली, तो ये एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये श्री कृष्ण के जीवन और उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको याद करने का भी अवसर है। और पूरे साल जो है हर कोई इंतजार करता है कि कब जन्माष्टमी आएगी, और उसके बाद जो है हर कोई उनके जन्मोत्सव में जो है शामिल होगा, मंदिरों का रुख करेंगे।
0: ये रौनक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि झांसी का क्राफ्ट मेला मैदान भी कृष्ण भक्ति में डूबा है। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मेगा फेस्टिवल में बारिश भी युवाओं के उत्साह को रोक नहीं पाई। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे, किसी ने भक्ति गीतों पर सुर मिलाए, किसी ने रॉक बैंड के साथ तालियां बजाई, तो भक्ति रैप ने युवाओं को खास अंदाज में जोड़ दिया।
3: युवाओं को प्रेरणा देने के लिए भगवत गीता आदि में जो बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं मन पर संयमित रखने के लिए, तो इन्हीं के उद्देश्य से बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सुंदर शिक्षाएं, रॉक बैंड आदि का कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव का आयोजन होगा।
0: मंच पर हो रही कृष्ण लीला ने पूरा माहौल बदल दिया। देवकी वासुदेव से लेकर नंद के आंगन तक श्री कृष्ण के जन्म की कथा जैसे आंखों के सामने उतर आई हो। कान्हा के स्वरूप में कलाकारों का नृत्य, भावपूर्ण अभिनय और जन्म प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। कई आंखें नम हो गई तो कई चेहरे भक्ति में खिल उठे। और इसी परिसर में सजा है वृंदावन बाजार, जहां कान्हा की पोशाक, पगड़ी, माला, तस्वीरें, भगवत गीता और बच्चों के लिए गोपी ड्रेस तक मिल रही है। यानी झांसी में ही ब्रजधाम जैसा पूरा एहसास है। बस अब इंतजार जन्माष्टमी के आधी रात का है, जब घड़ी 12 बजाएगी, मंदिरों में घंटियां गूंजेंगी, आरती के स्वर उठेंगे और भक्तों की आंखों के सामने बाल गोपाल का प्राकट्य होगा। क्योंकि ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, उस प्रेम का उत्सव है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, आशुतोष कुमार, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, भक्त अपने आराध्य को पालने में झुलाने के लिए भी खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आस्थानी बाजार में चांदी के खूबसूरत पालनों की मांग बढ़ा दी है। सूरत के बाजार में छोटे से लेकर लाखों रुपए तक के पालने तैयार किए जा रहे हैं। कहीं शुद्ध चांदी का पालना है तो कहीं पर लकड़ी पर चांदी की नक्काशी, आकर्षक का काम उसमें किया गया है। जन्माष्टमी पर कान्हा को पालना भेंट करने की परंपरा अब नए रंग रूप के साथ बाजार में नजर आ रही है।

0: कान्हा को पालने में झुलाने का सौभाग्य, उन्हें प्यार करने का सुख, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मैया यशोदा को द्वापर में मिला। भक्ति स्नेह अपनत्व की उसी डोर से कन्हैया आज भी पालने में झुलाए जाते हैं। कहते नंदगांव में यशोदा ने कन्हैया के लिए चंदन की लकड़ी का पालना बनवाया था, पर इस द्वार पर चांदी का भी ऑप्शन था। वैसे तो चांदी इन दिनों आसमान चढ़ी है, पर जैसे शक्ति वैसी भक्ति। बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनके लिए कान्हा के आगे कीमत मायने नहीं रखती। उनकी डिमांड पर सूरत के इस शोरूम में भांति भांति के पालने तैयार हैं।
1: हर जन्माष्टमी पे हर कृष्ण भक्त ऐसा रहता है कि हम अपने कृष्ण भगवान को चांदी के पाना, चांदी के झूले में झुलावे और फिर उसका जन्मोत्सव मनाए। उसको देखते हुए कस्टमर हमारे पास में आते हैं और चांदी के झूले के बारे में पूछते हैं और लेके जाते हैं और चांदी के झूले का ऑर्डर भी देते हैं। ये टाइम पे हमने जो बनाया हुआ है, हमने एक वैरायटी रखा हुआ है कि हमने 20 ग्राम से छोटा एक जो मन में भाव रहता है उसके लिए छोटे से छोटा 20 ग्राम का भी बनाया हुआ है झूला, और हमने 2 किलो का झूला भी रेडी रखा हुआ है। साथ साथ में भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो भी 20 ग्राम से लेके 1 किलो तक की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रहती है, वो दोनों चीज हमने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये टाइम पे कस्टमर ने जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, क्योंकि चांदी का रेट हर साल पे बढ़ता रहता है, तो कस्टमर ने सोचा कि अगले साल पे अगर चांदी का रेट बढ़ जाता है तो ये साल पे लेना अच्छा है। तो कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी चांदी का झूला ये टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड रही। इस टाइम पे राखी और चांदी के झूले की डिमांड चांदी के रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रहा।
0: चांदी के पालने के साथ ही भावना तो जुड़ी ही है, पर चांदी के भाव देखते हुए इसे एक अच्छा निवेश भी माना जा रहा है। बजट नहीं है तो 10 ग्राम का पालना लीजिए, और पैसे हैं तो 2 किलो तक का विकल्प भी मौजूद है। कीमत 3000 से 8 लाख रुपए तक है। हाँ, लेकिन जिस तरह चांदी की कीमतें बढ़ी, लग रहा था कि पालनों की खरीदारी में कमी आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जन्माष्टमी के मौके पर पालना खरीदने की होड़ लगी है। बेशक बजट के हिसाब से बाजार में नए नए अंदाज के पालने मौजूद हैं, लकड़ी के पालने पर चांदी की लेयरिंग और उस पर बेहतरीन नकाशी, ऐसे लकड़ी और चांदी के मिले जुले पालने श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहे हैं।
2: जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है तो हम आज लड्डू गोपाल के लिए झूला देखने के लिए आए हैं। तो इस ज्वेलरी शॉप पे बहुत सारे सिल्वर के झूले बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं, तो आज हम वही देखने के लिए आए हैं। दिन ब दिन प्राइस तो बहुत बढ़ते जा रहा है। पिछले साल जो प्राइस था उस हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और हमको ऐसा लगता है प्रेडिक्शन ये कि आगे चल के फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी और त्यौहार आ रहा है उसको देखते हुए भी आज हम सिल्वर का झूला तो जरूर खरीदेंगे। हम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, हमारे घर में हम सब कृष्णा जी को बहुत मानते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक तरह से मेन त्योहार है, तो उसको हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, तो उसी के लिए हम झूला तो जरूर लेंगे।
0: चांदी के पालनों की डिमांड भी अलग अलग वजहों से है। किसी को घर के मंदिर में कान्हा को पालने में विराजमान करना है, तो कोई जन्माष्टमी पर अपने इष्टदेव को पालना भेंट करना चाहता है। इसी तरह लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भी जबरदस्त डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है छोटे से बाल गोपाल की। भले ही श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में पले बढ़े, लेकिन अपने इस अवतार में उन्होंने बाल सुलभ लीलाओं का आनंद सारे संसार को दिया। वो भगवान हैं, नारायण के अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए वो वही नन्हे से बाल गोपाल हैं। गोकुल की गलियों में मस्ती करते माखन चुराते गोकुल की गलियों में माखन चुराते बाल कृष्ण की कहानियां आज भी बेहद श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती हैं। दही हांडी का पर्व माखन चोर कन्हैया की उन्हीं कहानियों से जुड़ा है। देश में इस पर्व को लेकर युवाओं के बीच में जबरदस्त उत्साह रहता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दही हांडी प्रतियोगिताओं की तैयारियां काफी लंबे वक्त से पहले शुरू हो गई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी से पहले मुंबई में दही हांडी को लेकर कैसा उत्साह बना है।

5000 साल पहले द्वापर युग में गोकुल के घर गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। माखन की मटकी फूट रही है, कान्हा माखन चुरा रहे हैं, बाल सखा के साथ मनमोहन मन भर कर माखन खा रहे हैं। सनातन धर्म की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध बेहद पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कान्हा की भक्ति में लीन संसार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाता और त्योहार की तरह मनाता आ रहा है। द्वापर काल में ब्रज की महिलाओं ने कान्हा की शरारतों से तंग आकर मथे हुए माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया था ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक पहुंचे ना। लेकिन नटखट कान्हा की समझदारी के आगे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाती थी। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी पौराणिक कहानी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ।

0: बरसों से जन्माष्टमी के त्योहार पर देश के कई इलाकों में दही हांडी के आयोजन होते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले इन आयोजनों की ख्याति सारी दुनिया में फैली है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के कई दिनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों की ऊर्जा से भरी ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गोविंदा जोर शोर से मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
1: 5 सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पतंग इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बाकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी। बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग। आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं, लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: अरे बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
3: बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
1: क्या आपको बताया कि दही हंडी सिर्फ मेल यानी कि पुरुषों का ही एक बहुत बड़ा खेल नहीं है, बल्कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, मंच सजा हुआ है जहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनकी भी कोई टीम होगी और सबको उन्होंने चीयर्स करने के लिए यहाँ पर पहुंचे होंगे। आपको बताएं, दही हंडी महाराष्ट्र में यानी कि पिरामिड बनता है, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके 8 थर 9 थर लगा करके ऊंचे जहाँ पर एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही होती है, उसे लटकाया जाता है। बाकायदा उसे सर से कोई फोड़ता है तो कोई नारियल से फोड़ता है, और कृष्ण जन्माष्टमी जो है मुंबई महाराष्ट्र अलग रूप में बनाया जाता है। लेकिन वाकई में बहुत ही एक तरह से खतरनाक खेल भी है, लेकिन बहुत साहसी खेल भी है।
0: वैसे तो जन्माष्टमी पर देश के कई इलाकों में दही हांडी उत्सव की रौनक दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का रंग कुछ और ही नजर आता है।

इस उत्सव के दौरान लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, जहां लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी की मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए 9 लेयर का पिरामिड बनाया जाता है। जो लड़का पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे लड़कों को हांडी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके मिलते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पूरे दही हांडी उत्सव के दौरान लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन जोर शोर से होने लगा था, लेकिन राज्य में इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा साल 2022 में दिया गया। महाराष्ट्र में इस उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया और इससे जुड़े कई नियम भी बना दिए। इन तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए आज भी जन्माष्टमी से पहले शहर भर में गोविंदा दही हांडी की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। अब के साल दही हांडी उत्सव में महिला गोविंदाओं का भी धमाल है। मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स के बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही है। जन्माष्टमी से पहले दही हांडी के लिए नारी शक्ति पूरी तरह तैयार दिख रही है।

0: कर करके ऊपर जाके जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दहेंडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना ज़रूरी है।
1: पर्व के जश्न में सराबोर ये लड़कियां निर्भया महिला गोविंदा पथक की सदस्य हैं, जो इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं।

0: हम लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया, हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है, हम लोग चार थर लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दहीहंडी में।
1: पिछले 2 महीनों से यहाँ मौजूद छोटी बड़ी लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस और आपसी तालमेल पर फोकस कर प्रैक्टिस कर रही है।

0: भी जो सेफ्टी है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसे भी है चीज़ें. और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सके हम एक दूसरे को. उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं.
1: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गली गली दही हांडी के रंग बिखरे हैं. उत्सव की उमंग और रौनक से सारी मुंबई सराबोर है. गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गोविंदाओं की टोलियां निकल पड़ी हैं दही हांडी फोड़ने के लिए. कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाना शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ इस पर्व की आस्था और परंपरा का कलेवर बदला. उत्सव में जोश और रोमांच का रंग और गहरा हुआ, जिनके रंगों में आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश रंगा नजर आता है. मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.

4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है और इससे पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। इसे कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हुए हैं। जन्माष्टमी से पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच गए। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। अब की बार जन्माष्टमी के मौके पर वो कान्हा की नगरी में मौजूद रहेंगे। जन्माष्टमी से पहले सीएम मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुन्हे बाल गोपाल से हो गई। एक कार्यक्रम में सीएम योगी को श्री कृष्ण की पोशाक में सजा ये प्यारा सा बच्चा दिखा तो इसे गोद में लेने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाए। बाल कृष्ण भी सीएम की गोद में खेलकर खुश नजर आया। वैसे आपको बता दें, इस समय पूरे मथुरा में माहौल कृष्णमय हो चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। आज जन्मभूमि मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी से पहले कैसा है माहौल।

अनंत काल चक्र से घूमती आई धरती 5000 साल पहले द्वापर युग के इस एक लम्हे पर आकर थम गई थी, जब ब्रजमंडल के मथुरा में मौजूद एक कारागार में सनातन धर्म के सौभाग्य का चंद्र उदय हुआ था। कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की एक काल कोठरी में प्रकाश बनकर प्रकट हुए थे नारायण। माँ देवकी की कोख से अजन्मे का जन्म हुआ। काली अंधेरी रात में नए जीवन और उल्लास के उजाले से ब्रज की धरा गमक उठी। यूं तो श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में पढ़ा और सुना जा सकता है, लेकिन कृष्णावतार के प्राकट्य और उसके उल्लास को अपनी आँखों से देखना हो, महसूस करना हो, तो आप मथुरा वृंदावन चले जाइए

0: द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नाचते गाते सैकड़ों कलाकार और हजारों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सज धज कर तैयार है। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा की जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस खास मौके पर सबकी नजर खास तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर रहेगी।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्म भूमि पर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस मौके पर करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ब्रज पहुंचने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बेहद खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास सौगात भेजी गई है। इनमें चांदी की चम्मच, पायजेब, मुरली और कंगन शामिल है। भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भी पहुंचा है। तो वहीं पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित पुष्प, वस्त्र, मेवा, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, मोर पंख और बांसुरी समेत अन्य मंगल सामग्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अयोध्या से मथुरा भेजी गई है। यानी काशी, उज्जैन, अयोध्या हो या फिर मथुरा, मंदिर हो या घर द्वार, यशोदा नंदन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर पूरी हैं। बस इंतजार है तो कान्हा के आने का। और इसी इंतजार के बीच गुड न्यूज टुडे भी निकल पड़ा है श्री कृष्ण के नगर की ओर, जहां शहर के प्रवेश द्वार से ही कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है। पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं। और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्य हम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है। जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं। रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ, करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं। यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है। और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है। स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, भजन कीर्तन भोग राग की तैयारियां चल रही हैं और उपवास की भी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको उसके नजदीक बैठना होगा, उपवास करना होगा। और उसी उपवास की तैयारियों के साथ एक उत्सव का वातावरण लगातार चल रहा है। ब्रजमंडल में आप दाखिल होंगे, उससे पहले आपको वहां के आनंद की खुशबू, आपको वहां के आनंद के झोंके, झकोरे आपको लिए चलते हैं अंदर, जहां ये जयघोष चल रहा है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बूढ़न को हाथी घोड़ा, जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आइए चलिए हमारे साथ और हम चलते हैं अब मथुरा और ब्रजमंडल के दिव्य यात्रा पर, वो भी जन्माष्टमी के पावन पर्व का उत्सव और आनंद मनाने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। मेरे साथ चलिए कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, मथुरा।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव भले ही कल मध्यरात्रि में मनाया जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी के सिलसिले में धार्मिक उत्सवों का सिलसिला देश भर में पहले से शुरू हो चुका है। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां यहाँ कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फूल मंगवाए गए। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग की गई। शाम होते ही मंदिर खूबसूरत लाइटिंग से जगमगा उठता है। वैसे दिल्ली ही क्या, ये नज़ारा देश भर में शहर शहर दिखाई देता है। जन्माष्टमी से पहले झांसी, भोपाल, पटना समेत कई शहरों में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं को कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में इस्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कहीं कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। साथ ही साथ भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है।
1: तो इस्कॉन वालों ने इतना अच्छा यहाँ पर वृंदावन जैसा माहौल दिया है, मुझे आके यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने कान्हा जी की एक तस्वीर ली है, कान्हा जी का पगड़ी लिया है और ये माला भी लिया है उनका। ये देखिए कितना सुंदर सा पीले कलर का मैंने उनका पोशाक लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस्कॉन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ झांसी में ही पूरा पूरा वृंदावन का माहौल दे दिया। हरे कृष्णा।
0: वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया।
2: भगवान ने जहां एक बार अपने हाथ से कोई भी चीज को छोड़ा, दोबारा उससे कभी मोह नहीं रखा। भगवान ने अपने कदम बढ़ाए जब गोकुल वृंदावन से, तो दोबारा हम कभी किसी साहित्य में उनको माखन खाते नहीं देखते। भगवान के हाथ से बांसुरी जो गोकुल वृंदावन में राधा को हाथ में सुपुर्द की, दोबारा उनके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देखी गई। ऐसे कई सारी बातें हैं जीवन के अंदर, हम सब भी ऐसी कई चीजों से प्रेरणा पा सकते हैं।
0: वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल दिन भर जीएनटी पर ऐसे ही तमाम तस्वीरें जन्माष्टमी से जुड़े हुए रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी है। नमस्कार।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा? क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान? जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु ने गार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कान्हा के जन्मोत्सव की, जिसकी धूम ब्रज से लेकर द्वारका तक है, बद्रीनाथ धाम से लेकर मुंबई तक है, और कन्हैया के प्राकट्य का सभी को इंतजार है बेसब्री से। उनके स्वागत के लिए मंदिरों को रोशनी से सजा दिया गया है। आज आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर आज ठाकुर जी की दिव्य पोशाकी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की झांकियां आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ मथुरा की भव्य सजावट भी आपको तमाम दिखाने जा रहे हैं। मथुरा की तरह द्वारका में भी जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको भगवान कृष्ण की द्वारका धाम की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा दिल्ली NCR में जन्मोत्सव की धूम जबरदस्त है, वो भी दिखाएंगे। इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव पर क्या तैयारियां हैं और भगवान को कैसा भोग लगेगा, ये सब विस्तार से आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्म स्थान और बद्रीनाथ धाम की अद्भुत तस्वीरों के साथ। देखिए, दोनों मंदिरों की भव्य सजावट की गई है, ऐसा लगता है जैसे सितारों से मंदिर को सजा दिया गया हो। दो तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ में पहली बार इस तरह की लाइटिंग की गई है। रात में रंग बिरंगी रोशनी के बीच बद्रीनाथ मंदिर का ये दृश्य आनंद से भर देने वाला है। इसी तरीके से देखिए, मथुरा में कान्हा का धाम इंद्रधनुषी रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ है। मंदिर के जगमगाते शिखर को दूर से ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। मथुरा में जन्मोत्सव से पहले आज भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 9 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि से यात्रा शुरू हुई और पूरा माहौल जो है भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान होता। बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों और भक्ति संगीत की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए नजर आए। उनके हाथों में धार्मिक झंडे थे और वो लगातार भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। पूरा रास्ता कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। इस शोभा यात्रा में मथुरा के स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इन कलाकारों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और ब्रज की संस्कृति की जीवंत कर दिया उसको। कई सुंदर झांकियां और कलाकारों के प्रदर्शन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव दे गए। तस्वीरें देखिए। देखिए, ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक अपने चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है। मथुरा में कदम रखते ही भक्ति रंग और रोशनी का ऐसा संगम नजर आ रहा है मानो पूरी नगरी कान्हा के स्वागत में सज उठी हो। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर शहर की गलियों तक हर तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर द्वारका में भी जगत मंदिर जन्माष्टमी के लिए तैयार है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब आधी रात को दोनों धामों में कन्हैया के प्राकट्य के साथ जयकारों से आसमान गूंज उठेगा। रिपोर्ट देखिए।

0: कान्हा का इंतजार तो सभी को है, पर ब्रज की बात निराली। यहाँ तो कण कण में कृष्ण कन्हाई है, इसलिए जब जन्मोत्सव की घड़ी आई है, इस इलाके की भव्यता देखते बनती है। नगर में प्रवेश के साथ मथुरा की भव्यता मन मोह लेती है, और रही श्रद्धालुओं के स्वागत की बात, तो उसकी शुरुआत मथुरा से पहले ही भक्ति पथ पर शुरू हो जाती है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है, और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंभे हैं। इन खंभों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं, और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंभे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्य वसाम्य हम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं, और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है, और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है।
2: ना केवल सजावट हमने बनाया और डिजाइन भी किया इसको, और वाई दे आर 84, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 84 कोसी यात्रा और 84 लाख योनिया, उनको ध्यान में रखते हुए द कॉन्सेप्ट इज सच कि 84 ये खंभे हैं और 84 लाख योनियों को जब इंसान क्रॉस करता है तब हम लोग इस मनुष्य का जीवन पाते हैं। तो हर एक खंभा 1 लाख योनी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर गायें हैं। आपने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं गायों के बीच में बसता हूँ, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ऊपर कदम कृष्ण कमल है, आप देखेंगे मैं नीचे तो, और राधे राधे, क्योंकि पूरे वृंदावन मथुरा में कोई नमस्ते तो कहता नहीं है,
1: सब
2: राधे राधे, राधे कहते हैं, तो राधे राधे इज द वर्ड। देन ऊपर है माधव और राधा, जो यहाँ की भक्ति का, जो कृष्ण की भक्ति, ब्रज की भक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
1: निष्कपट भक्ति जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है।
2: जी जी, एब्सोल्युटली। और फिर हम देखते हैं सुदर्शन चक्र, ये कहता है कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश के लिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने जब भी सुदर्शन चक्र उठाया उसको रिप्रेजेंट करता है। देन वी सी मयूर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमेशा हमने मयूर पंख देखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीचे ब्रज के मोटिव्स हैं, कदम के फूल हैं, पारिजात के फूल हैं, ये सब फूल वो हैं, मोटिव वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ते हैं।
0: शाम ढलती है और मथुरा में एंट्री के साथ ही रंग और रोशनी का भव्य संसार नजर आता है। इंद्रधनुषी रंगों से गुलजार रास्ते, जगमगाते चौक चौराहे, फूलों से सजे मकान दुकान, हर जुबान पर राधे राधे और कृष्ण का नाम। स्वर्ग जैसी है कृष्ण जन्मभूमि की सजावट, रोशनी से जगमगाता मंदिर और दूर से दिखाई दे रहा शिखर, गजब की आभा है गिरधर गोपाल के धाम की। कुछ घंटे ही बाकी हैं जब मथुरा में जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। इस मंदिर के परिसर में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। आयोजन बड़ा है, इसलिए तैयारी भी अभूतपूर्व है।
3: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण मंदिर भगवान का प्राकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकाश व्यवस्था को करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखी है कि मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के

0: सभी सौभाग्यशाली हैं कि कल हम लोगों के आराध्य सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का 5253वां जन्मदिन भगवान जी की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे ब्रज को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट करके तैयारी की गई है। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
1: कन्हैया सिनाता सिर्फ ब्रज का नहीं द्वारका का भी है और वहाँ जगत मंदिर में जन्मोत्सव की धूम देखते बनती है। न सिर्फ द्वारका बल्कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अंदाजा है कि जन्मोत्सव पर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ठाकुर जी से आस्था कैसे जुड़ी है इसे इन तस्वीरों से समझिए। जिसकी मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, जिसकी कृपा से जीवन समर जाता है, उसी गिरधर गोपाल का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए उनके धाम पर श्रद्धालुओं का रेला है।
2: पहली बार आई हूँ द्वारका जी के यहाँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर प्रतिमा थी उनकी, क्या ही बताए, नजर उतार दी हमने तो उनकी। उनका रूप और श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत था।
1: द्वारका के धाम में भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन होता है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुले में भगवान को स्नान कराया जाएगा और इसके बाद सुबह 9 बजे से आंतरिक पूजा संपन्न की जाएगी। रात में ठीक 12 बजे जगत मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आरती का आयोजन किया जाएगा। ब्रज हो या द्वारका, भगवान कृष्ण के नगरी में जन्मोत्सव की विशेष तैयारी है। प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के इस उत्सव को देखने, उसमें डूब जाने के लिए कृष्ण भक्त भी तैयार हैं। मथुरा से संजय शर्मा और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां हैं। फूलों से भव्य सजावट की गई है और रोशनी से मंदिर पूरी तरीके से जगमगा रहा है। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग इस्कॉन मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान की भव्य आरती और विशेष भोग पर जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा।
4: इस वक्त पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और तैयारियां हर मंदिर में, हर घर में हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ईस्ट ऑफ कैलाश स्कॉन में है, जहां पर सीधे आप देख सकते हैं ठाकुर जी को। श्री कृष्ण और राधा रानी आज पीतांबर वस्त्र इन्होंने पहना है, धारण किया हुआ है, लेकिन कल विशेष करके वृंदावन से इनके लिए वस्त्र आए हैं और उन वस्त्रों को ये धारण करेंगे, जो विशेष करके मोर के रूप में पूरी तरह से उसे डेकोरेट किया गया है, उसकी डिटेलिंग की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण को मोर कितने प्रिय हैं, मोर पंख वो खुद अपने मुकुट में हमेशा लगाए रहते हैं, तो कल जो वस्त्र है उसकी डिजाइनिंग भी वैसी ही की गई है। भव्य साज सज्जा आज पूरी रात यहाँ पर चलने वाली है। भक्तों की कतार आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि आज जो भक्त हैं वो शाम की आरती में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कल की तैयारी किस तरह से होने वाली है।
5: भगवान का जब देशी विदेशी फूलों से पूरे प्रांगण को सजाया जाएगा और इसमें झांकियां बड़ी सुंदर हैं, भगवान की लीलाओं पर आधारित झांकियां हैं। लाइटिंग की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और फाउंटेन चल रहा है, पूरा आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये जो तैयारी है वास्तव में जितने श्रद्धालु आएंगे उनको आनंद देने वाला है।
3: कान्हा के जन्म का इंतजार अब बस कुछ घंटों का ही है। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिर कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। कहीं फूलों और रोशनी से भव्य सजावट हुई है तो कहीं पर भजन कीर्तन और कृष्ण लीला के जरिए भक्तों का उत्साह चरम पर है। ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन मंदिर जन्मोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर झांसी में बारिश के बावजूद युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। अब निगाहें उस खास घड़ी पर है जब आधी रात को बाल गोपाल का जन्म होगा और गूंजेगा जय कन्हैया लाल की। रिपोर्ट देखिए।

0: पर है। साल भर के इंतजार के बाद वो घड़ी फिर से आने वाली है जब आधी रात को सोहर गाए जाएंगे, बधाइयां होंगी और हर तरफ बस एक ही जय घोष सुनाई देगा, जय कन्हैया लाल की। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिरों की सजावट पूरी हो चुकी है, तैयारियां अंतिम दौर में है। कहीं फूलों से श्रृंगार हो रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी में कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो रही हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। रोशनी से जगमग पूरा मंदिर परिसर, अलग अलग रंगों की लाइट्स के बीच भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई दे रही है।
1: यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई है। यहाँ पर शुक्रवार को सुबह 4 बजे से आयोजन शुरू होगा जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा, और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, अच्छे से सजावट की गई है और भक्तों में खूब उत्साह दिख रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं पहले से ही, और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार भक्तों के यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है।
0: मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर बेहिसाब खुशी है। कोई कान्हा के दर्शन की तैयारी में है तो कोई इस खूबसूरत सजावट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है, लिहाजा भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। दर्शन के लिए कतारों की व्यवस्था भी है ताकि आस्था की इस भीड़ में हर भक्त को सहजता के साथ अपने आराध्य के दर्शन हो सके।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां है वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कृष्ण मंदिरों में जो है तैयारियां जोरों पर है, और ईस्ट ऑफ कैलाश का ये इस्कॉन मंदिर कल होने वाले भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर में चाहे सजावट की बात हो, भोग की बात हो, भक्तों की व्यवस्था की बात हो, हर तरीके से मंदिर जो है इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
0: इसी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाएगा। भक्तों के लिए कपाट सुबह करीब 4 बजे खुलेंगे। दिन भर पूजा पाठ, भजन और कीर्तन का सिलसिला चलेगा, और जब घड़ी की सुई मध्य रात्रि के करीब पहुंचेगी, आधी रात में बाल गोपाल का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, आरती उतारी जाएगी और जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाएंगी।
2: पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो कल ये मंदिर जो है सुबह 4 बजे जो है वो मंदिर जो है मंदिर परिसर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा सुबह 4 बजे से, और उसके बाद ही भक्तों का तांता आपको इस मंदिर में जो है वो दिखने वाला है। तो अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूरा दिन ही लोगों के लिए कल शुभ रहने वाला है। लोग सुबह से ही जो है दर्शन करने आएंगे और रात को 9 बजे के बाद से ही जो है अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को जो है अलग अलग फलों के रसों से जो है अलग अलग ड्राई फ्रूट से जो है उनका अभिषेक जो है किया जाएगा। तो हम कोई एक समय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कल 9 बजे के बाद से जो है जलाभिषेक शुरू कर दिया जाएगा, उनके अभिषेक की हर एक प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी, और उससे पहले हर कोई भक्त जो है यहाँ पर आकर जो है उनके विशेष दर्शन करेगा। मंदिर की तस्वीरें भी एक बार दिखा दी थी क्योंकि ऑल्टर अभी थोड़ी देर पहले खुला है, तो मैं दर्शन करवा दूँ कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ जो है राधा रानी और श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया, और भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपको अच्छी खासी भीड़ जो है भक्तों की नजर आ जाएगी। हर कोई बस उनके दर्शन के लिए आतुर है कि हम एक झलक आज उनकी जरूर पा लें, क्योंकि कल तो आएंगे आएंगे लेकिन कल काफी ज्यादा भीड़ मिलने वाली है, लेकिन अभी वो तसल्ली से जो है अपने प्रभु को जो है देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाऊंगी तो यहाँ पर लगातार जो है भजन मंडली बैठी हुई है, वो लगातार जो है अपने भजन जो है अपने प्रिय को सुना रही है, और उसी में झूमते हुए जो भक्त है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो वाकई में इस वक्त मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें है वो वाकई में खास हो चुकी है। और अगर हम सिर्फ जन्माष्टमी की बात करें ना दीपाली, तो ये एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि ये श्री कृष्ण के जीवन और उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको याद करने का भी अवसर है। और पूरे साल जो है हर कोई इंतजार करता है कि कब जन्माष्टमी आएगी, और उसके बाद जो है हर कोई उनके जन्मोत्सव में जो है शामिल होगा, मंदिरों का रुख करेंगे।
0: ये रौनक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि झांसी का क्राफ्ट मेला मैदान भी कृष्ण भक्ति में डूबा है। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मेगा फेस्टिवल में बारिश भी युवाओं के उत्साह को रोक नहीं पाई। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। किसी ने भक्ति गीतों पर सुर मिलाए, किसी ने रॉक बैंड के साथ तालियां बजाई, तो भक्ति रैप ने युवाओं को खास अंदाज में जोड़ दिया।

चारों ओर उमंग, एक ही पुकार, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जिनके शरण में सुकून है, अब उन्हीं नटखट नंदलाल के जन्म का इंतजार है। खास दिन है, खास घड़ी है और भक्तों का उत्साह चरम।

0: युवाओं को प्रेरणा देने के लिए भगवत गीता आदि में जो बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं मन पर संयमित रखने के लिए, तो इन्हीं के उद्देश्य से बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सुंदर शिक्षाएं रॉक बैंड आदि का कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव का आयोजन होगा।
1: मंच पर हो रही कृष्ण लीला ने पूरा माहौल बदल दिया। देवकी वासुदेव से लेकर नंद के आंगन तक श्री कृष्ण के जन्म की कथा जैसे आंखों के सामने उतर आई हो। कान्हा के स्वरूप में कलाकारों का नृत्य, भावपूर्ण अभिनय और जन्म प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। कई आंखें नम हो गई तो कई चेहरे भक्ति में खिल उठे। और इसी परिसर में सजा है वृंदावन बाजार, जहाँ कान्हा की पोशाक, पगड़ी, माला, तस्वीरें, भगवत गीता और बच्चों के लिए गोपी ड्रेस तक मिल रही है। यानी झांसी में ही ब्रजधाम जैसा पूरा एहसास है। बस अब इंतजार जन्माष्टमी के आधी रात का है, जब घड़ी 12 बजाएगी, मंदिरों में घंटियां गूंजेंगी, आरती के स्वर उठेंगे और भक्तों की आंखों के सामने बाल गोपाल का प्राकट्य होगा। क्योंकि ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, उस प्रेम का उत्सव है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। दिल्ली से मनीषा लद्दा, आशुतोष कुमार, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, भक्त अपने आराध्य को पालने में झुलाने के लिए भी खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आस्थानी बाजार में चांदी के खूबसूरत पालनों की मांग बढ़ा दी है। सूरत के बाजार में छोटे से लेकर लाखों रुपए तक के पालने तैयार किए जा रहे हैं। कहीं शुद्ध चांदी का पालना है तो कहीं पर लकड़ी पर चांदी की नक्काशी, आकर्षक का काम उसमें किया गया है। जन्माष्टमी पर कान्हा को पालना भेंट करने की परंपरा अब नए रंग रूप के साथ बाजार में नजर आ रही है।

0: कान्हा को पालने में झुलाने का सौभाग्य, उन्हें प्यार करने का सुख, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मैया यशोदा को द्वापर में मिला। भक्ति, स्नेह, अपनत्व की उसी डोर से कन्हैया आज भी पालने में झुलाए जाते हैं। कहते हैं नंदगांव में यशोदा ने कन्हैया के लिए चंदन की लकड़ी का पालना बनवाया था, पर इस दौर पर चांदी का भी ऑप्शन था। वैसे तो चांदी इन दिनों आसमान चढ़ी है, पर जैसे शक्ति वैसी भक्ति, बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनके लिए कान्हा के आगे कीमत मायने नहीं रखती। उनकी डिमांड पर सूरत के इस शोरूम में भांति भांति के पालने तैयार हैं।
1: हर जन्माष्टमी पे हर कृष्ण भक्त तो ऐसा रहता है कि हम अपने कृष्ण भगवान को चांदी के पाना, चांदी के झूले में झुलावे और फिर उसका जन्मोत्सव मनाए। उसको देखते हुए कस्टमर हमारे पास में आते हैं और चांदी के झूले के बारे में पूछते हैं और लेके जाते हैं और चांदी के झूले का ऑर्डर भी देते हैं। ये टाइम पे हमने जो बनाया हुआ है, हमने एक वैरायटी रखा हुआ है कि हमने 20 ग्राम से छोटे से छोटा, एक जो मन में भाव रहता है उसके लिए छोटे से छोटा 20 ग्राम का भी बनाया हुआ है झूला, और हमने 2 किलो का झूला भी रेडी रखा हुआ है। साथ साथ में भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो भी 20 ग्राम से लेके 1 किलो तक की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रहती है, वो दोनों चीज हमने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये टाइम पे कस्टमर ने जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, क्योंकि चांदी का रेट हर साल पे बढ़ता रहता है, तो कस्टमर ने सोचा कि अगले साल पे अगर चांदी का रेट बढ़ जाता है तो ये साल पे लेना अच्छा है। तो कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी चांदी का झूला ये टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड रही। इस टाइम पे राखी और चांदी के झूले की डिमांड चांदी के रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रहा।
0: चांदी के पालने के साथ ही भावना तो जुड़ी ही है, पर चांदी के भाव देखते हुए इसे एक अच्छा निवेश भी माना जा रहा है। बजट नहीं है तो 10 ग्राम का पालना लीजिए, और पैसे हैं तो 2 किलो तक का विकल्प भी मौजूद है। कीमत 3,000 से 8 लाख रुपए तक है। हाँ, लेकिन जिस तरह चांदी की कीमतें बढ़ी, लग रहा था कि पालनों की खरीदारी में कमी आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जन्माष्टमी के मौके पर पालना खरीदने की होड़ लगी है। बेशक बजट के हिसाब से बाजार में नए नए अंदाज के पालने मौजूद हैं। लकड़ी के पालने पर चांदी की लेयरिंग और उस पर बेहतरीन नकाशी, ऐसे लकड़ी और चांदी के मिले जुले पालने श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहे हैं।
2: जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है तो हम आज लड्डू गोपाल के लिए झूला देखने के लिए आए हैं। तो इस ज्वेलरी शॉप पे बहुत सारे सिल्वर के झूले बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं, तो आज हम वही देखने के लिए आए हैं। दिन ब दिन प्राइस तो बहुत बढ़ते जा रहा है। पिछले साल जो प्राइस था उस हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और हमको ऐसा लगता है प्रेडिक्शन ये कि आगे चल के फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी और त्यौहार आ रहा है उसको देखते हुए भी आज हम सिल्वर का झूला तो जरूर खरीदेंगे। हम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, हमारे घर में हम सब कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक तरह से मेन त्यौहार है, तो उसको हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, तो उसी के लिए हम झूला तो जरूर लेंगे।
0: चांदी के पालनों की डिमांड भी अलग अलग वजहों से है। किसी को घर के मंदिर में कान्हा को पालने में विराजमान करना है, तो कोई जन्माष्टमी पर अपने इष्टदेव को पालना भेंट करना चाहता है। इसी तरह लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भी जबरदस्त डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के एक आर्टिस्ट हिमांशु ने गार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है छोटे से बाल गोपाल की। भले ही श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में पले बढ़े, लेकिन अपने इस अवतार में उन्होंने बाल सुलभ लीलाओं का आनंद सारे संसार को दिया। वो भगवान हैं, नारायण के अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए वो वही नन्हे से बाल गोपाल हैं। गोकुल की गलियों में मस्ती करते माखन चुराते गोकुल की गलियों में माखन चुराते बाल कृष्ण की कहानियां आज भी बेहद श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती हैं। दही हांडी का पर्व माखन चोर कन्हैया की उन्हीं कहानियों से जुड़ा है। देश में इस पर्व को लेकर युवाओं के बीच में जबरदस्त उत्साह रहता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दही हांडी प्रतियोगिताओं की तैयारियां काफी लंबे वक्त से पहले शुरू हो गई थी, तो चलिए आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी से पहले मुंबई में दही हांडी को लेकर कैसा उत्साह बना है।

5000 साल पहले द्वापर युग में गोकुल के घर गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। माखन की मटकी फूट रही है, कान्हा माखन चुरा रहे हैं, बाल सखा के साथ मनमोहन मन भर कर माखन खा रहे हैं। सनातन धर्म की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध बेहद पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कान्हा की भक्ति में लीन संसार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाता और त्योहार की तरह मनाता आ रहा है। द्वापर काल में ब्रज की महिलाओं ने कान्हा की शरारतों से तंग आकर मथे हुए माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया था ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक पहुंचे ना। लेकिन नटखट कान्हा की समझदारी के आगे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाती थी। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी पौराणिक कहानी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ।

0: बरसों से जन्माष्टमी के त्योहार पर देश के कई इलाकों में दही हांडी के आयोजन होते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले इन आयोजनों की ख्याति सारी दुनिया में फैली। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के कई दिनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों की ऊर्जा से भरी ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गोविंदा जोर शोर से मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
1: 5 सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पतंग इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे। और किस तरह की व्यवस्था है, थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बाकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी। बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग। आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं, लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: अरे बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
3: बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
1: क्या आपको बताया कि दही हंडी सिर्फ मेल यानी कि पुरुषों का ही एक बहुत बड़ा खेल नहीं है, बल्कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, मंच सजा हुआ है, जहां पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनकी भी कोई टीम होगी और सबको उन्होंने चीयर्स करने के लिए यहां पर पहुंचे होंगे। आपको बताएं, दही हंडी महाराष्ट्र में यानी कि पिरामिड बनता है, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके 8 थर 9 थर लगा करके ऊंचे जहां पर एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही होती है, उसे लटकाया जाता है। बाकायदा उसे सर से कोई फोड़ता है तो कोई नारियल से फोड़ता है। और कृष्ण जन्माष्टमी जो है मुंबई महाराष्ट्र अलग रूप में बनाया जाता है, लेकिन वाकई में बहुत ही एक तरह से खतरनाक खेल भी है, लेकिन बहुत साहसी खेल भी है।
0: वैसे तो जन्माष्टमी पर देश के कई इलाकों में दही हांडी उत्सव की रौनक दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का रंग कुछ और ही नजर आता है।

इस उत्सव के दौरान लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, जहां लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी की मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए 9 लेयर का पिरामिड बनाया जाता है। जो लड़का पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे लड़कों को हांडी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके मिलते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पूरे दही हांडी उत्सव के दौरान लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन जोर शोर से होने लगा था, लेकिन राज्य में इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा साल 2022 में दिया गया। महाराष्ट्र में इस उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया और इससे जुड़े कई नियम भी बना दिए। इन तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए आज भी जन्माष्टमी से पहले शहर भर में गोविंदा दही हांडी की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। अब के साल दही हांडी उत्सव में महिला गोविंदाओं का भी धमाल है। मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स के बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही है। जन्माष्टमी से पहले दही हांडी के लिए नारी शक्ति पूरी तरह तैयार दिख रही है।

0: कर करके ऊपर जाके, जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दहेंडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना ज़रूरी है।
1: पर्व के जश्न में सराबोर ये लड़कियां निर्भया महिला गोविंदा पथक की सदस्य हैं, जो इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं।

0: लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया, हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है, हम लोग चार थोर लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दहीहंडी में।
1: पिछले 2 महीनों से यहाँ मौजूद छोटी बड़ी लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस और आपसी तालमेल पर फोकस कर प्रैक्टिस कर रही है।

0: होती है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसे भी है चीज़ें, और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सके हम एक दूसरे को. उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं.
1: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गली गली दही हांडी के रंग बिखरे हैं. उत्सव की उमंग और रौनक से सारी मुंबई सराबोर है. गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गोविंदाओं की टोलियां निकल पड़ी हैं दही हांडी फोड़ने के लिए. कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाना शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ इस पर्व की आस्था और परंपरा का कलेवर बदला. उत्सव में जोश और रोमांच का रंग और गहरा हुआ, जिनके रंगों में आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश रंगा नजर आता है. मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे.

4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है और इससे पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। इसी कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हुए हैं। जन्माष्टमी से पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच गए। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। अब की बार जन्माष्टमी के मौके पर वो कान्हा की नगरी में मौजूद रहेंगे। जन्माष्टमी से पहले सीएम मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुन्हे बाल गोपाल से हो गई। एक कार्यक्रम में सीएम योगी को श्री कृष्ण की पोशाक में सजा ये प्यारा सा बच्चा दिखा तो इसे गोद में लेने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाए। बाल कृष्ण भी सीएम की गोद में खेलकर खुश नजर आया। वैसे आपको बता दें, इस समय पूरे मथुरा में माहौल कृष्णमय हो चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। आज जन्मभूमि मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी से पहले कैसा है माहौल।

अनंत काल चक्र से घूमती आई धरती 5000 साल पहले द्वापर युग के इस एक लम्हे पर आकर थम गई थी, जब ब्रज मंडल के मथुरा में मौजूद एक कारागार में सनातन धर्म के सौभाग्य का चंद्र उदय हुआ था। कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की एक काल कोठरी में प्रकाश बनकर प्रकट हुए थे नारायण। माँ देवकी की कोख से अजन्मे का जन्म हुआ। काली अंधेरी रात में नए जीवन और उल्लास के उजाले से ब्रज की धरा गमक उठी। युद्ध श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में पढ़ा और सुना जा सकता है, लेकिन कृष्णावतार के प्राकट्य और उसके उल्लास को अपनी आँखों से देखना हो, महसूस करना हो, तो आप मथुरा वृंदावन चले जाइए।

0: द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नाचते गाते सैकड़ों कलाकार और हजारों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सज धज कर तैयारी। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा की जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस खास मौके पर सबकी नजर खास तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर रहेगी।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्म मंदिर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस मौके पर करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ब्रज पहुंचने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बेहद खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास सौगात भेजी गई है। इनमें चांदी की चम्मच, पायजेब, मुरली और कंगन शामिल है और भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भी पहुंचा है। तो वहीं पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित पुष्प, वस्त्र, मेवा, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, मोर पंख और बांसुरी समेत अन्य मंगल सामग्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अयोध्या से मथुरा भेजी गई है। यानी काशी, उज्जैन, अयोध्या हो या फिर मथुरा, मंदिर हो या घर द्वार, यशोदा नंदन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर पूरी हैं। बस इंतजार है तो कान्हा के आने का। और इसी इंतजार के बीच गुड न्यूज टुडे भी निकल पड़ा है श्री कृष्ण के नगर की ओर, जहां शहर के प्रवेश द्वार से ही कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्य वसाम्य हम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंग मंचों पर कहीं रास लीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ, करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव भले ही कल मध्यरात्रि में मनाया जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी के सिलसिले में धार्मिक उत्सवों का सिलसिला देश भर में पहले से शुरू हो चुका है।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में इस्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। साथ ही साथ भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है।
1: तो इस्कॉन वालों ने इतना अच्छा यहाँ पर वृंदावन जैसा माहौल दिया है, मुझे आके यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने कान्हा जी की एक तस्वीर ली है, कान्हा जी का पगड़ी लिया है और ये माला भी लिया है उनका। ये देखिए कितना सुंदर सा पीले कलर का मैंने उनका पोशाक लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस्कॉन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ झांसी में ही पूरा पूरा वृंदावन का माहौल दे दिया। हरे कृष्णा।
0: वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है।
2: सरकार
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया।
3: भगवान ने जहां एक बार अपने हाथ से कोई भी चीज को छोड़ा, दोबारा उससे कभी मोह नहीं रखा। भगवान ने अपने कदम बढ़ाए जब गोकुल वृंदावन से, तो दोबारा हम कभी किसी साहित्य में उनको माखन खाते नहीं देखते। भगवान के हाथ से बांसुरी जो गोकुल वृंदावन में राधा को हाथ में सुपुर्द की, दोबारा उनके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देखी गई। ऐसे कई सारी बातें जीवन के अंदर हम सब भी ऐसी कई चीजों से प्रेरणा पा सकते हैं।
0: वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कालिया मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल दिन भर जीएनटी पर ऐसे ही तमाम तस्वीरें जन्माष्टमी से जुड़े हुए रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं। नमस्कार।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राठौर का। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कान्हा के जन्मोत्सव की, जिसकी धूम ब्रज से लेकर द्वारका तक है, बद्रीनाथ धाम से लेकर मुंबई तक है, और कन्हैया के प्राकट्य का सभी को इंतजार है बेसब्री से। उनके स्वागत के लिए मंदिरों को रोशनी से सजा दिया गया है। आज आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर आज ठाकुर जी की दिव्य पोशाकी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की झांकियां आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ मथुरा की भव्य सजावट भी आपको तमाम दिखाने जा रहे हैं। मथुरा की तरह द्वारका में भी जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको भगवान कृष्ण के द्वारका धाम की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा दिल्ली NCR में जन्मोत्सव की धूम जबरदस्त है, वो भी दिखाएंगे। इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव पर क्या तैयारियां हैं और भगवान को कैसा भोग लगेगा, ये सब विस्तार से आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्म स्थान और बद्रीनाथ धाम की अद्भुत तस्वीरों के साथ। देखिए, दोनों मंदिरों की भव्य सजावट की गई है, ऐसा लगता है जैसे सितारों से मंदिर को सजा दिया गया हो। दो तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ में पहली बार इस तरह की लाइटिंग की गई है। रात में रंग बिरंगी रोशनी के बीच बद्रीनाथ मंदिर का ये दृश्य आनंद से भर देने वाला है। इसी तरीके से देखिए, मथुरा में कान्हा का धाम इंद्रधनुषी रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ है। मंदिर के जगमगाते शिखर को दूर से ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। मथुरा में जन्मोत्सव से पहले आज भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 9 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि से यात्रा शुरू हुई और पूरा माहौल जो है भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान उठा। बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों और भक्ति संगीत की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए नजर आए। उनके हाथों में धार्मिक झंडे थे और वो लगातार भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। पूरा रास्ता कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। इस शोभा यात्रा में मथुरा के स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इन कलाकारों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और ब्रज की संस्कृति की जीवंत कर दिया उसको। कई सुंदर झांकियां और कलाकारों के प्रदर्शन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव दे गए। तस्वीरें देखिए। देखिए, ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक अपने चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है। मथुरा में कदम रखते ही भक्ति रंग और रोशनी का ऐसा संगम नजर आ रहा है मानो पूरी नगरी कान्हा के स्वागत में सज उठी हो। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर शहर की गलियों तक हर तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर द्वारका में भी जगत मंदिर जन्माष्टमी के लिए तैयार है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब आधी रात को दोनों धामों में कन्हैया के प्राकट्य के साथ जयकारों से आसमान गूंज उठेगा। रिपोर्ट देखिए।

0: कान्हा का इंतजार तो सभी को है, पर ब्रज की बात निराली। यहाँ तो कण कण में कृष्ण कन्हाई है, इसलिए जब जन्मोत्सव की घड़ी आई है, इस इलाके की भव्यता देखते बनती है। नगर में प्रवेश के साथ मथुरा की भव्यता मन मोह लेती है, और रही श्रद्धालुओं के स्वागत की बात, तो उसकी शुरुआत मथुरा से पहले ही भक्ति पथ पर शुरू हो जाती है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है, और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं, और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्य वसाम्य हम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ, यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंगमंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं, और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है, और मथुरा में, वृंदावन में, या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है।
2: ना केवल सजावट हमने बनाया और डिजाइन भी किया इसको, और वाई दे आर 84, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 84 कोसी यात्रा और 84 लाख योनिया, उनको ध्यान में रखते हुए द कॉन्सेप्ट इज सच कि 84 ये खंबे हैं और 84 लाख योनियों को जब इंसान क्रॉस करता है, तब हम लोग जिस इस मनुष्य का जीवन पाते हैं। तो हर एक खंबा 1 लाख योनी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर गायें हैं। आपने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं गायों के बीच में बसता हूँ, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ऊपर कदम कृष्ण कमल है, आप देखेंगे, मैं नीचे तो, और राधे राधे, क्योंकि पूरे वृंदावन मथुरा में कोई नमस्ते तो कहता नहीं है,
1: सब
2: राधे राधे, राधे कहते हैं, तो राधे राधे इज द वर्ड। देन ऊपर है माधव और राधा, जो यहाँ की भक्ति का, जो कृष्ण की भक्ति, ब्रज की भक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
1: निष्कपट भक्ति जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है।
2: जी जी, एब्सोल्युटली। और फिर हम देखते हैं सुदर्शन चक्र, ये कहता है कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश के लिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने जब भी सुदर्शन चक्र उठाया उसको रिप्रेजेंट करता है। देन वी सी मयूर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमेशा हमने मयूर पंख देखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीचे ब्रज के मोटिव्स हैं, कदम के फूल हैं, पारिजात के फूल हैं, ये सब फूल वो हैं, मोटिव वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ते हैं।
0: शाम ढलती है और मथुरा में एंट्री के साथ ही रंग और रोशनी का भव्य संसार नजर आता है। इंद्रधनुषी रंगों से गुलजार रास्ते, जगमगाते चौक चौराहे, फूलों से सजे मकान दुकान, हर जुबान पर राधे राधे और कृष्ण का नाम। स्वर्ग जैसी है कृष्ण जन्मभूमि की सजावट, रोशनी से जगमगाता मंदिर और दूर से दिखाई दे रहा शिखर, गजब की आभा है गिरधर गोपाल के धाम की। कुछ घंटे ही बाकी हैं जब मथुरा में जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। इस मंदिर के परिसर में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। आयोजन बड़ा है, इसलिए तैयारी भी अभूतपूर्व है।
3: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण मंदिर भगवान का प्राकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकाश व्यवस्था को करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखी है कि मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है अंदर भी और मंदिर के बाहरी परिसर में भी।
4: हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि कल हम लोगों के आराध्य सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का 5253वां जन्मदिन भगवान जी की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे ब्रज को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट करके तैयारी की गई है। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
0: कन्हैया सिन्हा सिर्फ ब्रज का नहीं द्वारका का भी है और वहाँ जगत मंदिर में जन्मोत्सव की धूम देखते बनती है। न सिर्फ द्वारका बल्कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अंदाजा है कि जन्मोत्सव पर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ठाकुर जी से आस्था कैसे जुड़ी है इसे इन तस्वीरों से समझिए। जिसकी मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, जिसकी कृपा से जीवन संवर जाता है, उसी गिरधर गोपाल का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए उनके धाम पर श्रद्धालुओं का रीला है।
5: पहली बार आई हूँ द्वारका जी के यहाँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर प्रतिमा थी उनकी, क्या ही बताया, नजर उतार दी हमने तो उनकी। उनका रूप और श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत था।
0: द्वारका के धाम में भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन होता है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुले में भगवान को स्नान कराया जाएगा और इसके बाद सुबह 9 बजे से आंतरिक पूजा सम्पन्न की जाएगी। रात में ठीक 12 बजे जगत मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आरती का आयोजन किया जाएगा। ब्रज हो या द्वारका, भगवान कृष्ण के नगरी में जन्मोत्सव की विशेष तैयारी है। प्रेम भक्ति और श्रद्धा के इस उत्सव को देखने उसमें डूब जाने के लिए कृष्ण भक्त भी तैयार हैं। मथुरा से संजय शर्मा और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां हैं। फूलों से भव्य सजावट की गई है और रोशनी से मंदिर पूरी तरीके से जगमगा रहा है। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग इस्कॉन मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान की भव्य आरती और विशेष भोग पर जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता श्वेता झा।
7: इस वक्त पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है।

0: आज पीताम्बर वस्त्र इन्होंने पहना है, धारण किया हुआ है, लेकिन कल विशेष करके वृंदावन से इनके लिए वस्त्र आए हैं और उन वस्त्रों को ये धारण करेंगे जो विशेष करके मोर के रूप में पूरी तरह से उसे डेकोरेट किया गया है, उसकी डिटेलिंग की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण को मोर कितने प्रिय हैं, मोर पंख वो खुद अपने मुकुट में हमेशा लगाए रहते हैं। तो कल जो वस्त्र है उसकी डिजाइनिंग भी वैसी ही की गई है, भव्य साज सज्जा आज पूरी रात यहाँ पर चलने वाली है। भक्तों की कतार आपको हम दिखा देते हैं, हालांकि आज जो भक्त हैं वो शाम की आरती में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कल की तैयारी किस तरह से होने वाली है।
1: भगवान का जब देशी विदेशी फूलों से पूरे प्रांगण को सजाया जाएगा और इसमें झांकियां बड़ी सुंदर हैं, भगवान की लीलाओं पर आधारित झांकियां हैं, लाइटिंग की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और फाउंटेन चल रहा है, पूरा आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये जो तैयारी है वास्तव में जितने श्रद्धालु आएंगे उनको आनंद देने वाला है।
2: कान्हा के जन्म का इंतजार अब बस कुछ घंटों का ही है। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिर कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। कहीं फूलों और रोशनी से भव्य सजावट हुई है तो कहीं पर भजन कीर्तन और कृष्ण लीला के जरिए भक्तों का उत्साह चरम पर है। ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन मंदिर जन्मोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर झांसी में बारिश के बावजूद युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। अब निगाहें उस खास घड़ी पर है जब आधी रात को बाल गोपाल का जन्म होगा और गूंजेगा जय कन्हैया लाल की। रिपोर्ट देखिए।

0: चारों ओर उमंग, एक ही पुकार, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिनकी शरण में सुकून है, अब उन्हीं नटखट नंदलाल के जन्म का इंतजार है। खास दिन है, खास घड़ी है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। साल भर के इंतजार के बाद वो घड़ी फिर से आने वाली है, जब आधी रात को सोहर गाए जाएंगे, बधाइयां होंगी और हर तरफ बस एक ही जय घोष सुनाई देगा, जय कन्हैया लाल की। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिरों की सजावट पूरी हो चुकी है, तैयारियां अंतिम दौर में है। कहीं फूलों से श्रृंगार हो रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी में कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो रही हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। रोशनी से जगमग पूरा मंदिर परिसर, अलग अलग रंगों की लाइट्स के बीच भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई दे रही है।
1: यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई है। यहाँ पर शुक्रवार को सुबह 4 बजे से आयोजन शुरू होगा, जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, अच्छे से सजावट की गई है और भक्तों में खूब उत्साह दिख रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले से ही, और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है।
0: मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर बेहिसाब खुशी है। कोई कान्हा के दर्शन की तैयारी में है तो कोई इस खूबसूरत सजावट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है, लिहाजा भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। दर्शन के लिए कतारों की व्यवस्था भी है, ताकि आस्था की इस भीड़ में हर भक्त को सहजता के साथ अपने आराध्य के दर्शन हो सके।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां हैं वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कृष्ण मंदिरों में जो है तैयारियां जोरों पर है, और ईस्ट ऑफ कैलाश का ये इस्कॉन मंदिर कल होने वाले भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर में चाहे सजावट की बात हो, भोग की बात हो, भक्तों की व्यवस्था की बात हो, हर तरीके से मंदिर जो है इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
0: इसी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाएगा। भक्तों के लिए कपाट सुबह

0: करीब 4 बजे खुलेंगे। दिन भर पूजा पाठ, भजन और कीर्तन का सिलसिला चलेगा और जब घड़ी की सुई मध्यरात्रि के करीब पहुंचेगी, आधी रात में बाल गोपाल का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, आरती उतारी जाएगी और जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाएंगी।
1: पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो कल ये मंदिर जो है सुबह 4 बजे जो है वो मंदिर जो है मंदिर परिसर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा सुबह 4 बजे से, और उसके बाद ही भक्तों का तांता आपको इस मंदिर में जो है वो दिखने वाला है। तो अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूरा दिन ही लोगों के लिए कल शुभ रहने वाला है। लोग सुबह से ही जो है दर्शन करने आएंगे और रात को 9 बजे के बाद से ही जो है अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को जो है अलग अलग फलों के रसों से जो है अलग अलग ड्राई फ्रूट से जो है उनका अभिषेक जो है किया जाएगा। तो हम कोई एक समय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कल 9 बजे के बाद से जो है जलाभिषेक शुरू कर दिया जाएगा। उनके अभिषेक की हर एक प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और उससे पहले हर कोई भक्त जो है यहाँ पर आकर जो है उनके विशेष दर्शन करेगा। मंदिर की तस्वीरें भी एक बार दिखा दीजिए क्योंकि ऑल्टर अभी थोड़ी देर पहले खुला है, तो मैं दर्शन करवा दूँ कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ जो है राधा रानी और श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया है। और भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपको अच्छी खासी भीड़ जो है भक्तों की नजर आ जाएगी। हर कोई बस उनके दर्शन के लिए आतुर है कि हम एक झलक आज उनकी जरूर पा लें, क्योंकि कल तो आएंगे आएंगे लेकिन कल काफी ज्यादा भीड़ मिलने वाली है। लेकिन अभी वो तसल्ली से जो है अपने प्रभु को जो है देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाऊंगी तो यहाँ पर लगातार जो है भजन मंडली बैठी हुई है, वो लगातार जो है अपने भजन जो है अपने प्रिय को सुना रही है और उसी में झूमते हुए जो भक्त है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो वाकई में इस वक्त मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें है वो वाकई में खास हो चुकी है। और अगर हम सिर्फ जन्माष्टमी की बात करें ना दीपाली, तो ये एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि ये श्री कृष्ण के जीवन और उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको याद करने का भी अवसर है। और पूरे साल जो है हर कोई इंतजार करता है कि कब जन्माष्टमी आएगी और उसके बाद जो है हर कोई उनके जन्मोत्सव में जो है शामिल होगा, मंदिरों का रुख करेंगे।
0: ये रौनक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि झांसी का क्राफ्ट मेला मैदान भी कृष्ण भक्ति में डूबा है। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मेगा फेस्टिवल में बारिश भी युवाओं के उत्साह को रोक नहीं पाई। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे, किसी ने भक्ति गीतों पर सुर मिलाए, किसी ने रॉक बैंड के साथ तालियां बजाई, तो भक्ति रैप ने युवाओं को खास अंदाज में जोड़ दिया।
2: युवाओं को प्रेरणा देने के लिए भगवत गीता आदि में जो बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं मन पर संयमित रखने के लिए, तो इन्हीं के उद्देश्य से बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सुंदर शिक्षाएं, रॉक बैंड आदि का कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव का आयोजन होगा।
0: मंच पर हो रही कृष्ण लीला ने पूरा माहौल बदल दिया। देवकी वासुदेव से लेकर नंद के आंगन तक श्री कृष्ण के जन्म की कथा जैसे आंखों के सामने उतर आई हो। कान्हा के स्वरूप में कलाकारों का नृत्य, भावपूर्ण अभिनय और जन्म प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। कई आंखें नम हो गई तो कई चेहरे भक्ति में खिल उठे। और इसी परिसर में सजा है वृंदावन बाजार, जहां कान्हा की पोशाक, पगड़ी, माला, तस्वीरें, भगवत गीता और बच्चों के लिए गोपी ड्रेस तक मिल रही है। यानी झांसी में ही ब्रजधाम जैसा पूरा एहसास है। बस अब इंतजार जन्माष्टमी के आधी रात का है, जब घड़ी 12 बजाएगी, मंदिरों में घंटियां गूंजेंगी, आरती के स्वर उठेंगे और भक्तों की आंखों के सामने बाल गोपाल का प्राकट्य होगा। क्योंकि ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, उस प्रेम का उत्सव है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, आशुतोष कुमार, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, भक्त अपने आराध्य को पालने में झुलाने के लिए भी खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आस्थानी बाजार में चांदी के खूबसूरत पालनों की मांग बढ़ा दी है। सूरत के बाजार में छोटे से लेकर लाखों रुपए तक के पालने तैयार किए जा रहे हैं। कहीं शुद्ध चांदी का पालना है तो कहीं पर लकड़ी पर चांदी की नक्काशी, आकर्षक का काम उसमें किया गया है। जन्माष्टमी पर कान्हा को पालना भेंट करने की परंपरा अब नए रंग रूप के साथ बाजार में नजर आ रही है।

0: कान्हा को पालने में झुलाने का सौभाग्य, उन्हें प्यार करने का सुख, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मैया यशोदा को द्वापर में मिला। भक्ति, स्नेह, अपनत्व की उसी डोर से कन्हैया आज भी पालने में झुलाए जाते हैं। कहते हैं नंदगांव में यशोदा ने कन्हैया के लिए चंदन की लकड़ी का पालना बनवाया था, पर इस दौर पर चांदी का भी ऑप्शन था। वैसे तो चांदी इन दिनों आसमान चढ़ी है, पर जैसे शक्ति वैसी भक्ति। बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनके लिए कान्हा के आगे कीमत मायने नहीं रखती। उनकी डिमांड पर सूरत के इस शोरूम में भांति भांति के पालने तैयार हैं।
1: हर जन्माष्टमी पे हर कृष्ण भक्त ऐसा रहता है कि हम अपने कृष्ण भगवान को चांदी के पाना, चांदी के झूले में झुलावे और फिर उसका जन्मोत्सव मनाए। उसको देखते हुए कस्टमर हमारे पास में आते हैं और चांदी के झूले के बारे में पूछते हैं और लेके जाते हैं और चांदी के झूले का ऑर्डर भी देते हैं। ये टाइम पे हमने जो बनाया हुआ है, हमने एक वैरायटी रखा हुआ है कि हमने 20 ग्राम से छोटा एक जो मन में भाव रहता है उसके लिए छोटे से छोटा 20 ग्राम का भी बनाया हुआ है झूला, और हमने 2 किलो का झूला भी रेडी रखा हुआ है। साथ साथ में भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो भी 20 ग्राम से लेके 1 किलो तक की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रहती है, वो दोनों चीज हमने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये टाइम पे कस्टमर ने जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, क्योंकि चांदी का रेट हर साल पे बढ़ता रहता है, तो कस्टमर ने सोचा कि अगले साल पे अगर चांदी का रेट बढ़ जाता है तो ये साल पे लेना अच्छा है। तो कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी चांदी का झूला ये टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड रही। इस टाइम पे राखी और चांदी के झूले की डिमांड चांदी के रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रहा।
0: चांदी के पालने के साथ ही भावना तो जुड़ी ही है, पर चांदी के भाव देखते हुए इसे एक अच्छा निवेश भी माना जा रहा है। बजट नहीं है तो 10 ग्राम का पालना लीजिए, और पैसे हैं तो 2 किलो तक का विकल्प भी मौजूद है। कीमत 3,000 से 8 लाख रुपए तक है। हाँ, लेकिन जिस तरह चांदी की कीमतें बढ़ी, लग रहा था कि पालनों की खरीदारी में कमी आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जन्माष्टमी के मौके पर पालना खरीदने की होड़ लगी है। बेशक बजट के हिसाब से बाजार में नए नए अंदाज के पालने मौजूद हैं। लकड़ी के पालने पर चांदी की लेयरिंग और उस पर बेहतरीन नकाशी, ऐसे लकड़ी और चांदी के मिले जुले पालने श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहे हैं।
2: जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है तो हम आज लड्डू गोपाल के लिए झूला देखने के लिए आए हैं। तो इस ज्वेलरी शॉप पे बहुत सारे सिल्वर के झूले बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं, तो आज हम वही देखने के लिए आए हैं। दिन ब दिन प्राइस तो बहुत बढ़ते जा रहा है। पिछले साल जो प्राइस था उस हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और हमको ऐसा लगता है प्रेडिक्शन ये कि आगे चल के फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी और त्योहार आ रहा है उसको देखते हुए भी आज हम सिल्वर का झूला तो जरूर खरीदेंगे। हम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, हमारे घर में हम सब कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक तरह से मेन त्योहार है, तो उसको हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, तो उसी के लिए हम झूला तो जरूर लेंगे।
0: चांदी के पालनों की डिमांड भी अलग अलग वजहों से है। किसी को घर के मंदिर में कान्हा को पालने में विराजमान करना है, तो कोई जन्माष्टमी पर अपने इष्टदेव को पालना भेंट करना चाहता है। इसी तरह लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भी जबरदस्त डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में.

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है छोटे से बाल गोपाल की। भले ही श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में पले बढ़े, लेकिन अपने इस अवतार में उन्होंने बाल सुलभ लीलाओं का आनंद सारे संसार को दिया। वो भगवान है, नारायण के अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए वो वही नन्हे से बाल गोपाल हैं। गोकुल की गलियों में मस्ती करते माखन चुराते, गोकुल की गलियों में माखन चुराते बाल कृष्ण की कहानियां आज भी बेहद श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती हैं। दही हांडी का पर्व माखन चोर कन्हैया की उन्हीं कहानियों से जुड़ा है। देश में इस पर्व को लेकर युवाओं के बीच में जबरदस्त उत्साह रहता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दही हांडी प्रतियोगिताओं की तैयारियां काफी लंबे वक्त से पहले शुरू हो गई थी, तो चलिए आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी से पहले मुंबई में दही हांडी को लेकर कैसा उत्साह बना है।

5000 साल पहले द्वापर युग में गोकुल के घर गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। माखन की मटकी फूट रही है, कान्हा माखन चुरा रहे हैं, बाल सखा के साथ मनमोहन मन भर कर माखन खा रहे हैं। सनातन धर्म की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध बेहद पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कान्हा की भक्ति में लीन संसार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाता और त्योहार की तरह मनाता आ रहा है। द्वापर काल में ब्रज की महिलाओं ने कान्हा की शरारतों से तंग आकर मथे हुए माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया था ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक पहुंचे ना। लेकिन नटखट कान्हा की समझदारी के आगे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाती थी। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी पौराणिक कहानी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ।

0: बरसों से जन्माष्टमी के त्योहार पर देश के कई इलाकों में दही हांडी के आयोजन होते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले इन आयोजनों की ख्याति सारी दुनिया में फैली। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के कई दिनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों की ऊर्जा से भरी ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गोविंदा जोर शोर से मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
1: 5 सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पतंग इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बाकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी। बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग। आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं, लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: अरे बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
3: बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
1: आपको बताया कि दही हंडी सिर्फ मेल यानी कि पुरुषों का ही एक बहुत बड़ा खेल नहीं है, बल्कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, मंच सजा हुआ है जहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनकी भी कोई टीम होगी और सबको उन्होंने चीयर्स करने के लिए यहाँ पर पहुंचे होंगे। आपको बताएं, दही हंडी महाराष्ट्र में यानी कि पिरामिड बनता है, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके 8 थर 9 थर लगा करके ऊंचे जहाँ पर एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही होती है उसे लटकाया जाता है। बाकायदा उसे सर से कोई फोड़ता है तो कोई नारियल से फोड़ता है, और कृष्ण जन्माष्टमी जो है मुंबई महाराष्ट्र अलग रूप में बनाया जाता है। लेकिन वाकई में बहुत ही एक तरह से खतरनाक खेल भी है, लेकिन बहुत साहसी खेल भी है।
0: वैसे तो जन्माष्टमी पर देश के कई इलाकों में दही हांडी उत्सव की रौनक दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का रंग कुछ और ही नजर आता है।

इस उत्सव के दौरान लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, जहां लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी की मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए 9 लेयर का पिरामिड बनाया जाता है। जो लड़का पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे लड़कों को हांडी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके मिलते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पूरे दही हांडी उत्सव के दौरान लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन जोर शोर से होने लगा था, लेकिन राज्य में इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा साल 2022 में दिया गया। महाराष्ट्र में इस उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया और इससे जुड़े कई नियम भी बना दिए। इन तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए आज भी जन्माष्टमी से पहले शहर भर में गोविंदा दही हांडी की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। अब के साल दही हांडी उत्सव में महिला गोविंदाओं का भी धमाल है। मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स के बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही है। जन्माष्टमी से पहले दही हांडी के लिए नारी शक्ति पूरी तरह तैयार दिख रही है।

0: कर करके ऊपर जाके, जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते जा, ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दहेंडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना ज़रूरी है।
1: पर्व के जश्न में सराबोर ये लड़कियां निर्भया महिला गोविंदा पथक की सदस्य हैं, जो इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं।

0: हम लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया, हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है, हम लोग चार थोड़े लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दहीहंडी में।
1: पिछले 2 महीनों से यहाँ मौजूद छोटी बड़ी लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस और आपसी तालमेल पर फोकस कर प्रैक्टिस कर रही है।

0: जो सेफ्टी है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसे भी है चीज़ें. और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सकें हम एक दूसरे को. उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं.
1: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गली गली दही हांडी के रंग बिखरे हैं. उत्सव की उमंग और रौनक से सारी मुंबई सराबोर है. गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गोविंदाओं की टोलियां निकल पड़ी हैं दही हांडी फोड़ने के लिए. कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाना शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ इस पर्व की आस्था और परंपरा का कलेवर बदला. उत्सव में जोश और रोमांच का रंग और गहरा हुआ, जिनके रंगों में आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश रंगा नजर आता है. मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे.

4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है और इससे पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। इसी कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हुए हैं। जन्माष्टमी से पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच गए। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। अब की बार जन्माष्टमी के मौके पर वो कान्हा की नगरी में मौजूद रहेंगे। जन्माष्टमी से पहले सीएम मथुरा पहुंचे।

अनंत काल चक्र से घूमती आई धरती 5000 साल पहले द्वापर युग के इस एक लम्हे पर आकर थम गई थी, जब ब्रज मंडल के मथुरा में मौजूद एक कारागार में सनातन धर्म के सौभाग्य का चंद्र उदय हुआ था। कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की एक काल कोठरी में प्रकाश बनकर प्रकट हुए थे नारायण। माँ देवकी की कोख से अजन्मे का जन्म हुआ। काली अंधेरी रात में नए जीवन और उल्लास के उजाले से ब्रज की धरा गमक उठी। यूं तो श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में पढ़ा और सुना जा सकता है, लेकिन कृष्णावतार के प्राकट्य और उसके उल्लास को अपनी आँखों से देखना हो, महसूस करना हो, तो आप मथुरा वृंदावन चले जाइए

0: द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नाचते गाते सैकड़ों कलाकार और हजारों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सज धज कर तैयार है। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा की जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस खास मौके पर सबकी नजर खास तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर रहेगी।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्म मंदिर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस मौके पर करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ब्रज पहुंचने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बेहद खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास सौगात भेजी गई है। इनमें चांदी की चम्मच, पायजेब, मुरली और कंगन शामिल है और भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भी पहुंचा है। तो वहीं पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित पुष्प, वस्त्र, मेवा, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, मोर पंख और बांसुरी समेत अन्य मंगल सामग्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अयोध्या से मथुरा भेजी गई है। यानी काशी, उज्जैन, अयोध्या हो या फिर मथुरा, मंदिर हो या घर द्वार, यशोदा नंदन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर पूरी हैं। बस इंतजार है तो कान्हा के आने का। और इसी इंतजार के बीच गुड न्यूज टुडे भी निकल पड़ा है श्री कृष्ण के नगर की ओर, जहां शहर के प्रवेश द्वार से ही कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्य वसाम्य हम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ, करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है, स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, भजन कीर्तन भोग राग की तैयारियां चल रही हैं और उपवास की भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको उसके नजदीक बैठना होगा, उपवास करना होगा और उसी उपवास की तैयारियों के साथ एक उत्सव का वातावरण लगातार चल रहा है। ब्रजमंडल में आप दाखिल होंगे, उससे पहले आपको वहां के आनंद की खुशबू, आपको वहां के आनंद के झोंके, झकोरे आपको लिए चलते हैं अंदर, जहां ये जय घोष चल रहा है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बूढ़न को हाथी घोड़ा, ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आइए चलिए हमारे साथ और हम चलते हैं अब मथुरा और ब्रजमंडल के दिव्य यात्रा पर, वो भी जन्माष्टमी के पावन पर्व का उत्सव और आनंद मनाने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। मेरे साथ चलिए कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, मथुरा।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव भले ही कल मध्यरात्रि में मनाया जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी के सिलसिले में धार्मिक उत्सवों का सिलसिला देश भर में पहले से शुरू हो चुका है। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां यहाँ कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फूल मंगवाए गए। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग की गई। शाम होते ही मंदिर खूबसूरत लाइटिंग से जगमगा उठता है। वैसे दिल्ली ही क्या, ये नज़ारा देश भर में शहर शहर दिखाई देता है। जन्माष्टमी से पहले झांसी, भोपाल, पटना समेत कई शहरों में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं को कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में स्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। साथ ही साथ भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है।
1: तो इस्कॉन वालों ने इतना अच्छा यहाँ पर वृंदावन जैसा माहौल दिया है, मुझे आके यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने कान्हा जी की एक तस्वीर ली है, कान्हा जी का पगड़ी लिया है और ये माला भी लिया है उनका। ये देखिए कितना सुंदर सा पीले कलर का मैंने उनका पोशाक लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस्कॉन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ झांसी में ही पूरा पूरा वृंदावन का माहौल दे दिया है। हरे कृष्णा।
0: वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया।
2: भगवान ने जहां एक बार अपने हाथ से कोई भी चीज को छोड़ा, दोबारा उससे कभी मोह नहीं रखा। भगवान ने अपने कदम बढ़ाए जब गोकुल वृंदावन से, तो दोबारा हम कभी किसी साहित्य में उनको माखन खाते नहीं देखते। भगवान के हाथ से बांसुरी जो गोकुल वृंदावन में राधा को हाथ में सुपुर्द की, दोबारा उनके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देखी गई। ऐसे कई सारी बातें जीवन के अंदर हम सब भी ऐसी कई चीजों से प्रेरणा पा सकते हैं।
0: वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कालिया मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल दिन भर जीएनटी पर ऐसे ही तमाम तस्वीरें जन्माष्टमी से जुड़े हुए रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी है। नमस्कार।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त,

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा? क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान? जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: जन्मोत्सव से पहले कान्हा की नगरी मथुरा का जबरदस्त श्रृंगार, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, रोशनी से जगमग हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजा बद्री विशाल का दरबार, पहली बार रंग बिरंगी लाइटों से किया गया अद्भुत श्रृंगार, श्रद्धालुओं का मन मोह रही है सजावट। भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य जन्मोत्सव से पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों के अन्नप्राशन उत्सव में हुए शामिल, कान्हा बने बच्चे को किया दुलार। मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी की नई सौगात, मुंबई से सिंधुदुर्ग के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत, रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से मिलेगी राहत। जयपुर के आर्टिस्ट हिमांशु ने कार को बनाया आर्ट गैलरी, कला संस्कृति से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए शुरू करेंगे 3500 किलोमीटर की यात्रा।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कान्हा के जन्मोत्सव की, जिसकी धूम ब्रज से लेकर द्वारका तक है, बद्रीनाथ धाम से लेकर मुंबई तक है, और कन्हैया के प्राकट्य का सभी को इंतजार है बेसब्री से। उनके स्वागत के लिए मंदिरों को रोशनी से सजा दिया गया है। आज आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर आज ठाकुर जी की दिव्य पोशाकी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की झांकियां आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ मथुरा की भव्य सजावट भी आपको तमाम दिखाने जा रहे हैं। मथुरा की तरह द्वारका में भी जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको भगवान कृष्ण की द्वारका धाम की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा दिल्ली NCR में जन्मोत्सव की धूम जबरदस्त है, वो भी दिखाएंगे। इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव पर क्या तैयारियां हैं और भगवान को कैसा भोग लगेगा, ये सब विस्तार से आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्म स्थान और बद्रीनाथ धाम की अद्भुत तस्वीरों के साथ। देखिए, दोनों मंदिरों की भव्य सजावट की गई है, ऐसा लगता है जैसे सितारों से मंदिर को सजा दिया गया हो। दो तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ में पहली बार इस तरह की लाइटिंग की गई है। रात में रंग बिरंगी रोशनी के बीच बद्रीनाथ मंदिर का ये दृश्य आनंद से भर देने वाला है। इसी तरीके से देखिए, मथुरा में कान्हा का धाम इंद्रधनुषी रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ है। मंदिर के जगमगाते शिखर को दूर से ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। मथुरा में जन्मोत्सव से पहले आज भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 9 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि से यात्रा शुरू हुई और पूरा माहौल जो है भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान उठा। बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों और भक्ति संगीत की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए नजर आए। उनके हाथों में धार्मिक झंडे थे और वो लगातार भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। पूरा रास्ता कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। इस शोभा यात्रा में मथुरा के स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इन कलाकारों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और ब्रज की संस्कृति की जीवंत कर दिया उसको। कई सुंदर झांकियां और कलाकारों के प्रदर्शन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव दे गए। तस्वीरें देखिए। देखिए, ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक अपने चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है। मथुरा में कदम रखते ही भक्ति रंग और रोशनी का ऐसा संगम नजर आ रहा है मानो पूरी नगरी कान्हा के स्वागत में सज उठी हो। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर शहर की गलियों तक हर तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर द्वारका में भी जगत मंदिर जन्माष्टमी के लिए तैयार है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब आधी रात को दोनों धामों में कन्हैया के प्राकट्य के साथ जयकारों से आसमान गूंज उठेगा। रिपोर्ट देखिए।

0: कान्हा का इंतजार तो सभी को है, पर ब्रज की बात निराली। यहाँ तो कण कण में कृष्ण कन्हाई है, इसलिए जब जन्मोत्सव की घड़ी आई है, इस इलाके की भव्यता देखते बनती है। नगर में प्रवेश के साथ मथुरा की भव्यता मन मोह लेती है, और रही श्रद्धालुओं के स्वागत की बात, तो उसकी शुरुआत मथुरा से पहले ही भक्ति पथ पर शुरू हो जाती है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है, और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंभे हैं। इन खंभों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं, और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंभे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्यहम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंग मंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं, और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है, और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है।
2: ना केवल सजावट हमने बनाया और डिजाइन भी किया इसको, और वाई दे आर 84, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 84 कोसी यात्रा और 84 लाख योनिया, उनको ध्यान में रखते हुए द कॉन्सेप्ट इज सच कि 84 ये खंभे हैं और 84 लाख योनियों को जब इंसान क्रॉस करता है तब हम लोग इस मनुष्य का जीवन पाते हैं। तो हर एक खंभा 1 लाख योनी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर गायें हैं। आपने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं गायों के बीच में बसता हूँ, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ऊपर कदम कृष्ण कमल है, आप देखेंगे, मैं नीचे और राधे राधे, क्योंकि पूरे वृंदावन मथुरा में कोई नमस्ते तो कहता नहीं है,
1: सब
2: राधे राधे कहते हैं, तो राधे राधे इज द वर्ड। देन ऊपर है माधव और राधा, जो यहाँ की भक्ति का, जो कृष्ण की भक्ति, ब्रज की भक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
1: निष्कपट भक्ति जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है।
2: जी जी, एब्सोल्युटली। और फिर हम देखते हैं सुदर्शन चक्र, ये कहता है कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश के लिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने जब भी सुदर्शन चक्र उठाया उसको रिप्रेजेंट करता है। देन वी सी मयूर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमेशा हमने मयूर पंख देखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीचे ब्रज के मोटिव्स हैं, कदम के फूल हैं, पारिजात के फूल हैं, ये सब फूल वो हैं, मोटिव वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ते हैं।
0: शाम ढलती है और मथुरा में एंट्री के साथ ही रंग और रोशनी का भव्य संसार नजर आता है। इंद्रधनुषी रंगों से गुलजार रास्ते, जगमगाते चौक चौराहे, फूलों से सजे मकान दुकान, हर जुबान पर राधे राधे और कृष्ण का नाम। स्वर्ग जैसी है कृष्ण जन्मभूमि की सजावट, रोशनी से जगमगाता मंदिर और दूर से दिखाई दे रहा शिखर, गजब की आभा है गिरधर गोपाल के धाम की। कुछ घंटे ही बाकी हैं जब मथुरा में जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। इस मंदिर के परिसर में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। आयोजन बड़ा है, इसलिए तैयारी भी अभूतपूर्व है।
3: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण मंदिर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकाश व्यवस्था को करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखी है कि मंदिर के भीतरी भी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है अंदर भी और मंदिर के बाहरी परिसर में भी।
4: सभी सौभाग्यशाली हैं कि कल हम लोगों के आराध्य सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का 5253वां जन्मदिन भगवान जी की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे ब्रज को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट करके तैयारी की गई है। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
0: कन्हैया सिन्हा सिर्फ ब्रज का नहीं द्वारका का भी है और वहाँ जगत मंदिर में जन्मोत्सव की धूम देखते बनती है। न सिर्फ द्वारका बल्कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अंदाजा है कि जन्मोत्सव पर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ठाकुर जी से आस्था कैसे जुड़ी है इसे इन तस्वीरों से समझिए। जिसकी मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, जिसकी कृपा से जीवन समर जाता है, उसी गिरधर गोपाल का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए उनके धाम पर श्रद्धालुओं का रेला है।
5: पहली बार आई हूँ द्वारका जी के यहाँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर प्रतिमा थी उनकी, क्या ही बताए, नजर उतार दी हमने तो उनकी। उनका रूप और श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत था।
0: द्वारका के धाम में भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन होता है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुले में भगवान को स्नान कराया जाएगा और इसके बाद सुबह 9 बजे से आंतरिक पूजा संपन्न की जाएगी। रात में ठीक 12 बजे जगत मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आरती का आयोजन किया जाएगा। ब्रज हो या द्वारका, भगवान कृष्ण के नगरी में जन्मोत्सव की विशेष तैयारी है। प्रेम भक्ति और श्रद्धा के उत्सव को देखने उसमें डूब जाने के लिए कृष्ण भक्त भी तैयार हैं। मथुरा से संजय शर्मा और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां हैं। फूलों से भव्य सजावट की गई है और रोशनी से मंदिर पूरी तरीके से जगमगा रहा है। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग इस्कॉन मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान की भव्य आरती और विशेष भोग पर जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा।
7: इस वक्त पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और तैयारियां हर मंदिर में हर घर में हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ईस्ट ऑफ कैलाश स्कॉन में है जहां पर सीधे आप देख सकते हैं ठाकुर जी को। श्री कृष्ण और राधा रानी आज पीतांबर वस्त्र इन्होंने पहना है, धारण किया हुआ है, लेकिन कल विशेष करके वृंदावन से इनके लिए वस्त्र आए हैं और उन वस्त्रों को ये धारण करेंगे जो विशेष करके मोर के रूप में पूरी तरह से उसे डेकोरेट किया गया है, उसकी डिटेलिंग की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण को मोर कितने प्रिय हैं। मोर पंख वो खुद अपने मुकुट में हमेशा लगाए रहते हैं, तो कल जो वस्त्र है उसकी डिजाइनिंग भी वैसी ही की गई है। भव्य साज सज्जा आज पूरी रात यहाँ पर चलने वाली है। भक्तों की कतार आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि आज जो भक्त हैं वो शाम की आरती में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कल की तैयारी किस तरह से होने वाली है।
8: भगवान का जो देशी विदेशी फूलों से पूरे प्रांगण को सजाया जाएगा और इसमें झांकियां बड़ी सुंदर हैं। भगवान की लीलाओं पर आधारित झांकियां हैं, लाइटिंग की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और फाउंटेन चल रहा है, पूरा आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये जो तैयारी है वास्तव में जितने

पूरी तरीके से रंगे हुए हैं, कहीं फूलों और रोशनी से भव्य सजावट हुई है तो कहीं पर भजन कीर्तन और कृष्ण लीला के जरिए भक्तों का उत्साह चरम पर है। ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन मंदिर जन्मोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर झांसी में बारिश के बावजूद युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। अब निगाहें उस खास घड़ी पर है जब आधी रात को बाल गोपाल का जन्म होगा और गूंजेगा जय कन्हैया लाल की। रिपोर्ट देखिए।

0: चारों ओर उमंग, एक ही पुकार, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जिनकी शरण में सुकून है, अब उन्हीं नटखट नंदलाल के जन्म का इंतजार है। खास दिन है, खास घड़ी है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। साल भर के इंतजार के बाद वो घड़ी फिर से आने वाली है, जब आधी रात को सोहर गाए जाएंगे, बधाइयां होंगी और हर तरफ बस एक ही जय घोष सुनाई देगा, जय कन्हैया लाल की। दिल्ली से लेकर झांसी तक मंदिरों की सजावट पूरी हो चुकी है, तैयारियां अंतिम दौर में है। कहीं फूलों से श्रृंगार हो रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी में कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो रही हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। रोशनी से जगमग पूरा मंदिर परिसर, अलग अलग रंगों की लाइट्स के बीच भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई दे रही है।
1: यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां की गई है। यहाँ पर शुक्रवार को सुबह 4 बजे से आयोजन शुरू होगा, जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, अच्छे से सजावट की गई है और भक्तों में खूब उत्साह दिख रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले से ही, और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है।
0: मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर बेहिसाब खुशी है। कोई कान्हा के दर्शन की तैयारी में है तो कोई इस खूबसूरत सजावट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है, लिहाजा भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। दर्शन के लिए कतारों की व्यवस्था भी है, ताकि आस्था की इस भीड़ में हर भक्त को सहजता के साथ अपने आराध्य के दर्शन हो सके।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां है वो एकदम अंतिम रूप में है। मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ कल के इंतजार में है, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कृष्ण मंदिरों में जो है तैयारियां जोरों पर है, और ईस्ट ऑफ कैलाश का ये इस्कॉन मंदिर कल होने वाले भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर में चाहे सजावट की बात हो, भोग की बात हो, भक्तों की व्यवस्था की बात हो, हर तरीके से मंदिर जो है इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
0: इसी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाएगा। भक्तों के लिए कपाट सुबह करीब 4 बजे खुलेंगे। दिन भर पूजा पाठ, भजन और कीर्तन का सिलसिला चलेगा, और जब घड़ी की सुई मध्य रात्रि के करीब पहुंचेगी, आधी रात में बाल गोपाल का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, आरती उतारी जाएगी और जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाएंगी।
2: पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो कल ये मंदिर जो है सुबह 4 बजे जो है वो मंदिर जो है मंदिर परिसर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा सुबह 4 बजे से, और उसके बाद ही भक्तों का तांता आपको इस मंदिर में जो है वो दिखने वाला है। तो अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूरा दिन ही लोगों के लिए कल शुभ रहने वाला है। लोग सुबह से ही जो है दर्शन करने आएंगे और रात को 9 बजे के बाद से ही जो है अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को जो है अलग अलग फलों के रसों से जो है अलग अलग ड्राई फ्रूट से जो है उनका अभिषेक जो है किया जाएगा। तो हम कोई एक समय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कल 9 बजे के बाद से जो है जलाभिषेक शुरू कर दिया जाएगा, उनके अभिषेक की हर एक प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी, और उससे पहले हर कोई भक्त जो है यहाँ पर आकर जो है उनके विशेष दर्शन करेगा। मंदिर की तस्वीरें भी एक बार दिखा दी थी क्योंकि ऑल्टर अभी थोड़ी देर पहले खुला है, तो मैं दर्शन करवा दूं कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ जो है राधा रानी और श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया, और भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपको अच्छी खासी भीड़।

0: भक्तों की नजर आ जाएगी। हर कोई बस उनके दर्शन के लिए आतुर है कि हम एक झलक आज उनकी जरूर पा ले, क्योंकि कल तो आएंगे लेकिन कल काफी ज्यादा भीड़ मिलने वाली है। लेकिन अभी वो तसल्ली से जो है अपने प्रभु को जो है देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाऊंगी तो यहाँ पर लगातार जो है भजन मंडली बैठी हुई है, वो लगातार जो है अपने भजन जो है अपने प्रिय को सुना रही है और उसी में झूमते हुए जो भक्त है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो वाकई में इस वक्त मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें है वो वाकई में खास हो चुकी है। और अगर हम सिर्फ जन्माष्टमी की बात करें ना दीपाली, तो ये एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि ये श्री कृष्ण के जीवन और उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको याद करने का भी अवसर है। और पूरे साल जो है हर कोई इंतजार करता है कि कब जन्माष्टमी आएगी और उसके बाद जो है हर कोई उनके जन्मोत्सव में जो है शामिल होगा, मंदिरों का रुख करेंगे।
1: ये रौनक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि झांसी का क्राफ्ट मेला मैदान भी कृष्ण भक्ति में डूबा है। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मेगा फेस्टिवल में बारिश भी युवाओं के उत्साह को रोक नहीं पाई। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे, किसी ने भक्ति गीतों पर सुर मिलाए, किसी ने रॉक बैंड के साथ तालियां बजाई, तो भक्ति रैप ने युवाओं को खास अंदाज में जोड़ दिया।

0: युवाओं को प्रेरणा देने के लिए भगवत गीता आदि में जो बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं मन पर संयमित रखने के लिए, तो इन्हीं के उद्देश्य से बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सुंदर शिक्षाएं रॉक बैंड आदि का कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव का आयोजन होगा।
1: मंच पर हो रही कृष्ण लीला ने पूरा माहौल बदल दिया। देवकी वासुदेव से लेकर नंद के आंगन तक श्री कृष्ण के जन्म की कथा जैसे आंखों के सामने उतर आई हो। कान्हा के स्वरूप में कलाकारों का नृत्य, भावपूर्ण अभिनय और जन्म प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। कई आंखें नम हो गई तो कई चेहरे भक्ति में खिल उठे। और इसी परिसर में सजा है वृंदावन बाजार, जहाँ कान्हा की पोशाक, पगड़ी, माला, तस्वीरें, भगवत गीता और बच्चों के लिए गोपी ड्रेस तक मिल रही है। यानी झांसी में ही ब्रजधाम जैसा पूरा एहसास है। बस अब इंतजार जन्माष्टमी के आधी रात का है, जब घड़ी 12 बजाएगी, मंदिरों में घंटियां गूंजेंगी, आरती के स्वर उठेंगे और भक्तों की आंखों के सामने बाल गोपाल का प्राकट्य होगा। क्योंकि ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, उस प्रेम का उत्सव है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, आशुतोष कुमार, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, भक्त अपने आराध्य को पालने में झुलाने के लिए भी खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आस्थानी बाजार में चांदी के खूबसूरत पालनों की मांग बढ़ा दी है। सूरत के बाजार में छोटे से लेकर लाखों रुपए तक के पालने तैयार किए जा रहे हैं। कहीं शुद्ध चांदी का पालना है तो कहीं पर लकड़ी पर चांदी की नक्काशी, आकर्षक का काम उसमें किया गया है। जन्माष्टमी पर कान्हा को पालना भेंट करने की परंपरा अब नए रंग रूप के साथ बाजार में नजर आ रही है।

0: कान्हा को पालने में झुलाने का सौभाग्य, उन्हें प्यार करने का सुख, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मैया यशोदा को द्वापर में मिला। भक्ति स्नेह अपनत्व की उसी डोर से कन्हैया आज भी पालने में झुलाए जाते हैं। कहते नंदगांव में यशोदा ने कन्हैया के लिए चंदन की लकड़ी का पालना बनवाया था, पर इस द्वार पर चांदी का भी ऑप्शन था। वैसे तो चांदी इन दिनों आसमान चढ़ी है, पर जैसे शक्ति वैसी भक्ति। बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनके लिए कान्हा के आगे कीमत मायने नहीं रखती। उनकी डिमांड पर सूरत के इस शोरूम में भांति भांति के पालने तैयार हैं।
1: हर जन्माष्टमी पे हर कृष्ण भक्त ऐसा रहता है कि हम अपने कृष्ण भगवान को चांदी के पाना, चांदी के झूले में झुलावे और फिर उसका जन्मोत्सव मनाए। उसको देखते हुए कस्टमर हमारे पास में आते हैं और चांदी के झूले के बारे में पूछते हैं और लेके जाते हैं और चांदी के झूले का ऑर्डर भी देते हैं। ये टाइम पे हमने जो बनाया हुआ है, हमने एक वैरायटी रखा हुआ है कि हमने 20 ग्राम से छोटा एक जो मन में भाव रहता है उसके लिए छोटे से छोटा 20 ग्राम का भी बनाया हुआ है झूला, और हमने 2 किलो का झूला भी रेडी रखा हुआ है। साथ साथ में भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो भी 20 ग्राम से लेके 1 किलो तक की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रहती है, वो दोनों चीज हमने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये टाइम पे कस्टमर ने जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, क्योंकि चांदी का रेट हर साल पे बढ़ता रहता है, तो कस्टमर ने सोचा कि अगले साल पे अगर चांदी का रेट बढ़ जाता है तो ये साल पे लेना अच्छा है, तो कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी चांदी का झूला ये टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड रही। इस टाइम पे राखी और चांदी के झूले की डिमांड चांदी के रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रहा।
0: चांदी के पालने के साथ ही भावना तो जुड़ी ही है, पर चांदी के भाव देखते हुए इसे एक अच्छा निवेश भी माना जा रहा है। बजट नहीं है तो 10 ग्राम का पालना लीजिए, और पैसे हैं तो 2 किलो तक का विकल्प भी मौजूद है। कीमत 3,000 से 8 लाख रुपए तक है। हाँ, लेकिन जिस तरह चांदी की कीमतें बढ़ी, लग रहा था कि पालनों की खरीदारी में कमी आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जन्माष्टमी के मौके पर पालना खरीदने की होड़ लगी है। बेशक बजट के हिसाब से बाजार में नए नए अंदाज के पालने मौजूद हैं, लकड़ी के पालने पर चांदी की लेयरिंग और उस पर बेहतरीन नकाशी, ऐसे लकड़ी और चांदी के मिले जुले पालने श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहे हैं।
2: जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है तो हम आज लड्डू गोपाल के लिए झूला देखने के लिए आए हैं, तो इस ज्वेलरी शॉप में बहुत सारे सिल्वर के झूले बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं, तो आज हम वही देखने के लिए आए हैं। दिन ब दिन प्राइस तो बहुत बढ़ते जा रहा है, पिछले साल जो प्राइस था उस हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और हमको ऐसा लगता है प्रेडिक्शन ये कि आगे चल के फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी और त्यौहार आ रहा है उसको देखते हुए भी आज हम सिल्वर का झूला तो जरूर खरीदेंगे। हम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, हमारे घर में हम सब कृष्णा जी को बहुत मानते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक तरह से मेन त्यौहार है, तो उसको हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, तो उसी के लिए हम झूला तो जरूर लेंगे।
0: चांदी के पालनों की डिमांड भी अलग अलग वजहों से है। किसी को घर के मंदिर में कान्हा को पालने में विराजमान करना है, तो कोई जन्माष्टमी पर अपने इष्टदेव को पालना भेंट करना चाहता है। इसी तरह लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भी जबरदस्त डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।